0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: अरे लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हकीमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन डाक्टर देखे
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? না, আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: হ্যাঁ, তখন দালাল ছিল না।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছিলেন? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ সে আয়ে ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024 और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया 5 साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
4: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: सुभेंदु
1: भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
5: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
6: I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार कहा हुआ बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
7: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने अर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाती बारे में सुराय होते ही लोग
8: कौन गया था
7: ये तुम्हारा बड़ा फल दे
8: कितना कतो बच्चों ने डाउन
7: ये लॉकडाउन कोई बच्चों रच्चे
9: अमी 2 बच्चों एक मास होए से इकने आठ सिलम चुराई पता रच्चे कौन पते आठ सी शेरा बोलते वार बोला
8: क्या नहीं रच्चे
9: आठ सिलम अमर वाई पाने कोशिश तो सिलो तार मालासी वजह किधर समस्या सिलो।
0: तब डर था लेकिन कुछ दिन का, हो सकता है इन्हें लगा हो कि जैसा पहले है वैसा ही चलता रहेगा, जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं रहते रहेंगे। लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
10: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
11: দিনে আসা যায় রাতেও আসা যায়।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है जो 9,000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट, और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
5: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
2: बॉर्डर के सुरक्षित करा और भारतीयों देर दर्जा देखिए था घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
12: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
13: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
12: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
14: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
12: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
13: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
13: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
12: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं।
0: इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
5: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे, और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा, वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
15: सारा पश्चिमबंग मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শকুন্তলাকে মমতা ব্যানার্জি পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে এস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোক চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
16: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
5: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें यह नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
17: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट जीरो निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट जीरो था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
18: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
19: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
18: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है।
19: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए बाप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
19: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
20: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
21: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बेच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की RC पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
22: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
23: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
22: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
23: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
22: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
5: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles, conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
4: Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: क्या आप किसी भी व्यक्ति का भोजन खा लेते हैं? क्या जानबूझकर दान में खराब कपड़े देते हैं? क्या लोगों से मुफ्त सहायता और सेवा लेते हैं? ये तमाम चीजें बढ़ा सकती हैं आपका दुर्भाग्य। कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं दुर्भाग्य और कैसे करें इसको दूर? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
6: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
25: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Country roads,
26: thank God I get to wake
25: and everything
26: up
25: else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
27: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

कर्नाटक में सीएम बदलने की सुगबुगाहट तेज। डीके शिवकुमार बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, सूत्रों की खबर। कांग्रेस आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में गूंजा आतंकवाद का मुद्दा। भारत ने कहा हर हाल में टेररिज्म का अंत जरूरी। साझा बयान में हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता पर जोर।

दिल्ली के खजूरी खास में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी में भी फायरिंग। रेस्टोरेंट में नाबालिग के सिर में गोली मारकर भागे बदमाश। और धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। गुजरात टाइटन को 92 रनों से दी शिकस्त। रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करें बड़ी खबर से, और पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। राजधानी दिल्ली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जो युवक मारा गया है उसका नाम राजा अक्की था। ताबड़तोड़ गोलियां मारकर अज्ञात बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हमलावर ने 3 गोलियां अक्की को मारी हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा, जहां उसका शव अभी मॉर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ये मौका है वारदात की, आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली में कानून व्यवस्था का कि हमलावर किस तरह बेखौफ थे। अक्की को 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। हालांकि मृतक का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस हर उस पहलू से जांच करेगी कि क्या वो ये आपसी वैमनस्य रंजिश के तहत हुआ। वजह चाहे जो भी हो, ये घटना देश की राजधानी में हुई है। अपराधी बेखौफ हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मारकर भाग जाते हैं। अज्ञात बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के जिस इलाके में ये पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खजूरी खास का इलाका, जो पीड़ित है उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। जो युवक मारा गया है उसका नाम अक्की राजा बताया गया है, लेकिन अज्ञात आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। अब ऐसे में जाहिर है कि इन तीनों अपराधियों के साथ साथ जो पीड़ित मृतक है उसका भी एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 3 गोलियां अक्की को मारी गई हैं। इन तस्वीरों में आपने कार्टेजेस भी देखा जो मौकाए वारदात पर छूटे रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुरुदेव बहादुर में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जो कि जांच की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और अब पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर के राजधानी में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, अपराधी इतने बेखौफ हैं कि एक युवक को आते हैं और गोलियां मारकर भाग जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में खौफनाक हत्या। अज्ञात लोग आते हैं और 23 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन जिस युवक को गोली मारी गई है, 23 साल का भी, उसका भी एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस इस पहलू पर भी जांच करने की कोशिश करेगी कि क्या ये किसी आपसी वैमनस्य या रंजिश के तहत किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां दबंगों ने एक गाड़ी पर धावा बोल दिया। मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का है, जहां मास्टर कॉलोनी में एक स्विफ्ट कार को 7 से 8 युवकों ने रोक लिया। अचानक से गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, तोड़फोड़ करने लगे और कार में बैठे युवक की पिटाई शुरू कर दी। अब जैसे जैसे कार सवार वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके की घटना है। अचानक कुछ लोग आते हैं, डंडे लेकर के आते हैं, बेतहाशा हमले शुरू कर देते हैं और उसके बाद कार में जो चालक है वो देखिए गाड़ी रिवर्स करके भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग निकल कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमलावर हैं बेखौफ होकर के हमला करते हैं। ये देखिए, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है और सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसे तस्वीरें कैद हो गई हैं। अगर पुलिस जांच करती है तो इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जांच में उन्हें मदद मिल सकती है, जिसमें आरोपियों की पहचान की जा सकती है। कार रुक गई, ताबड़तोड़ हमला हो रहा था और यह सारी गुंडई सरेआम हो रही थी। और अब खबर राजनीति के मैदान से जुड़ी हुई। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह कि अब सीएम सिद्धारमैया मान गए हैं। किस लिए मान गए हैं? इस्तीफा देने को। तो क्या कर्नाटक में तख्ता पलट होगा? जी हां, कर्नाटक की कमान डीके शिवकुमार को मिल सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये कि कांग्रेस आला कमान के कहने पर मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा देने को तैयार है। सिद्धारमैया के पद छोड़ने के बाद अब डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सिद्धारमैया राज्यसभा आएंगे और उसके बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा बनेंगे और यहां से वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कर्नाटक में तख्ता पलट होगा। अब ये पहले ही जब चुनाव हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि एक फॉर्मूला बना है, ढाई ढाई साल जो है पद होगा। अब कुछ समय बीता है तो लगातार ये कयास चल रहे थे कि कर्नाटक में सियासी नाटक आखिर खत्म होगा कब। तो अब खबर ये आ रही है कि सिद्धारमैया को आलाकमान ने सीएम पद छोड़ने को कहा गया है, जिसके बाद वो तैयार हो गए हैं और डीके शिवकुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
1: आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू फॉर हेवन सेक नाउ स्टॉप योर स्पेकुलेशन।
2: सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जब दिल्ली में बैठक करके निकलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस बात पर रहता है कि राहुल गांधी के साथ भीतर हुए मंथन में कर्नाटक में क्या फेरबदल होगा या नहीं, इस पर कुछ भी ना कहा जाए।
3: टुडे एंटायर डिस्कशन इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कमिंग राज्यसभा इलेक्शंस एंड काउंसिल इलेक्शंस ऑफ कर्नाटक। व्हाटएवर स्पेकुलेशन यू पीपल आर डूइंग That is only speculation, no reality at all.
2: लेकिन क्या सिद्धारमैया के चेहरे पर दिखती थोड़ी निराशा और डीके शिवकुमार के चेहरे पर हल्का सा सुकून जो नजर आता है, क्या कर्नाटक की वही सबसे बड़ी खबर है? क्या कर्नाटक में आखिरकार डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पाने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिद्धारमैया की विदाई का वक्त अब आ चुका है? ना कुछ सिद्धारमैया बोलते हैं, ना कुछ डीके शिवकुमार बोलते हैं। लेकिन आज तक संवाददाता खबर देते हैं कि सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। हाईकमान ने सिद्धारमैया से राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आने और फिर एक बड़ी भूमिका निभाने को कहा है। भरोसा सिद्धारमैया को हाईकमान ने ये भी दिया कि बाकी सभी मामलों और उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा।
4: इंदिरा भवन में लगभग 7 घंटे बैठक चली। इस बैठक में जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पार्टी नेतृत्व ने वन ऑन वन बातचीत की तो उनको जो ऑफर रखा उसको लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि उनको सोचने का कुछ समय चाहिए। राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति संभालने के बारे में उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है और इसलिए वो अभी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते।
2: तो क्या बार बार दिल्ली तक आकर खाली हाथ लौट कर जाने वाले डीके शिवकुमार के अब अच्छे दिन आने जा रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से जनवरी में हुई मुलाकात के बाद लिखा था कि कोशिशें भले नाकाम हो जाएं, दुआएं नाकाम नहीं होती। तो क्या वही दुआएं अब डीके शिवकुमार की पूरी होंगी जिनको 2.5 साल बाद कुर्सी मिलने का भरोसा दिया गया, या फिर अब भी कोई पेच डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में है?
4: कांग्रेस हाईकमान पर अक्सर फैसले टालने को लेकर आरोप लगते आए हैं, जिसकी कीमत भी कांग्रेस को कभी सत्ता गवा के राज्यों में और या फिर नेता गवा के चुकानी पड़ी है। लेकिन पहले केरला और अब कर्नाटक में जिस तरीके से पार्टी हाईकमान और खासतौर से राहुल गांधी सक्रिय नजर आए हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है कि अगर 2029 में कांग्रेस की बारी आनी है तो फैसले कड़े लेने होंगे और पूरी तैयारी से उतरना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: कर्नाटक और कांग्रेस चर्चा में है मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पहले ही बदल चुके हैं, वहां सरकार बदल चुकी है, तो नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ फैसलों के लिए चर्चा में हैं, खासकर घुसपैठ को लेकर के। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, अब वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से अब भागना ही होगा।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा।

0: किरदार तो है उनका, तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे, ये सब बांग्लादेशी है वो ले लेना चाहिए।
1: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
1: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: और ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
1: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बारी को था है?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन आउट बोले डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: হ্যাঁ, তখন দালাল ছিল না।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
1: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ সে আয়ে ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024 और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
1: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया 5 साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
0: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
5: शुभेंदु
0: जल्दी भागो,
1: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर BSF को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों

0: का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें, कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
2: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की गले मिलते ही फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हेमंता ने लिखा था बुरे दिन। उसके आगे उन्होंने लिखा कि आप जानते हैं कौन, और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग किया, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया था। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा, उन तस्वीरों का संदेश क्या ऐसे मिल रहा है।
3: I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
1: ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
4: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने अर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाति बारे में सुराय होते ही लोग
5: कौन जगह थी
4: ये तुम्हारे बेलाफल दे
5: সেটা কত বছর মোটামুটি
4: এই লকডাউন কয় বছর আছে
6: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম চড়াই পথে আসছি কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না
5: কেন এসেছি
6: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল তার মানসিক হয়েছে কিডনির সমস্যা ছিল
0: তব ডর থা লেকিন কুছ দিন কা হো সকতা হে ইনহে লাগা হো কি জ্যাসা পহলে হে ওয়াইসা হি চলতা রহেগা জ্যাসে ইয়ে বাংলাদেশ জাকার পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতে আয়ে হ্যায় রহতে রহেঙ্গে লেকিন বিজেপি না সিরফ সত্তা মে আয়ি बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
7: बहुत कष्ट करेछे, खूब कष्ट करेछे,
8: दिने आशा जाए रातो आशा
9: जाए। तो এখানে কি জন্য এসেছিল?
8: কাজ করার জন্য।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है, जो 9,000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है, जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
2: मन में आपके एक सवाल जरूर आता होगा ना कि आखिर जहां पर इतनी सारे सुरक्षा बल होते हैं बॉर्डर पार करके ये लोग देश में घुसे कैसे। बहरहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार किया था। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ को रोकने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है।
10: बॉर्डर के सुरक्षित करा अभारतीय देर दर्जा देखिए दा घुसपेटिया हटाओ जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस जाओ बांग्लादेश।
11: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है
12: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
11: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
13: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
11: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
12: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
11: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल असम मिजोरम मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
12: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
11: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी, यहां बने रहिए, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से पर।
15: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
16: Oh, ouch.
15: However you make money work, we can work with that.
17: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.

0: किसी भी व्यक्ति का भोजन खा लेते हैं, क्या जानबूझकर दान में खराब कपड़े देते हैं, क्या लोगों से मुफ्त सहायता और सेवा लेते हैं, ये तमाम चीजें बढ़ा सकती हैं आपका दुर्भाग्य। कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं दुर्भाग्य और कैसे करें इसको दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

कर्नाटक में सीएम बदलने की सुगबुगाहट तेज, डीके शिवकुमार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। सूत्रों की खबर, कांग्रेस आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में गूंजा आतंकवाद का मुद्दा, भारत ने कहा हर हाल में टेररिज्म का अंत जरूरी। साझा बयान में हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता पर जोर। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। दिल्ली के खजूरी खास में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में फायरिंग, रेस्टोरेंट में नाबालिग के सिर में गोली मारकर बदमाश भागे। और धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, गुजरात टाइटन को 92 रनों से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक बार फिर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। अमर कॉलोनी के एक रेस्तरां में गोलीबारी हुई है। दिल्ली के अमर कॉलोनी के इस गोलीबारी में 17 साल के एक लड़के को बदमाशों ने गोली मार दी। रेस्तरां में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद बदमाशों ने लड़के को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। घायल शख्स को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत अभी वहां गंभीर बनी हुई है। हौसले बदमाशों के इतने बेखौफ, कनपटी पर गोली मारी, भाग गए दिल्ली के एक रेस्तरां में। किसी बात पर कहा सुनी रह गई। सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और उसके बाद बदमाश आते हैं, एक लड़के को गोली मारकर भाग जाते हैं। खाने को लेकर के, बेहद मामूली बात को लेकर के विवाद उठता है और विवाद इस कदर पहुंचा कि उन्होंने पिस्टल निकाल ली, गोली मारी, भाग गए। रुक करते हैं अगली खबर का, जो आ रही है ग्वालियर से। एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है ग्वालियर में। ग्वालियर झांसी हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। घटना ये डबरा सिटी इलाके की है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उछलकर वो डिवाइडर के पार चली गई। उधर से एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए हाईवे से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। कार सवार दूसरा शख्स घायल है, जिसे इलाज के लिए ले जाया गया है। इस टक्कर के बाद कार कई बार पलटते हुए खेतों में जा गिरी और शराब की बोतलें बरामद हुई कार से। देखिए, ये सीसीटीवी की तस्वीरें, ग्वालियर झांसी रोड था। कितनी रफ्तार में आ रही गाड़ी, ये देखिए। ऐसा लग रहा होगा कि आपको किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों का स्टंट का सीन है, लेकिन ये जिंदगी में रियल लाइफ का स्टंट है। अब ये नशे में था या कार बेकाबू हुई, ये पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन जब गाड़ी पलटी, उसके बाद उसमें से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हो गई, कार का ड्राइवर भाग गया। चीन से भी एक हादसे की तस्वीर सामने आई है। चीन के हुबेई प्रांत में इन दिनों भीषण बाढ़ आई है, पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। एक खौफनाक तस्वीर जो सामने आई है, उसमें तेज बहाव के बीच एक गाड़ी पुल पर फंस जाती है। पुल आगे से टूटा हुआ है, कार खराब हो गई और ड्राइवर उसे रिवर्स नहीं कर पा रहा था। कुछ ही सेकंड में गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। हालांकि गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते गाड़ी से उतर गए थे। इस पूरे हुबेई प्रांत में पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार भीषण बाढ़ की इलाका चपेट में है। कई जगहों पर सड़कें बह चुकी है। देखिए, ये गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पाया। उसमें जो चालक थे और बाकी लोग थे, भाग जाते हैं। अचानक सड़क धस जाती है, पुल नीचे धस जाती है और गाड़ी देखिए तिनके की तरह पानी में बहती जाती है। तो आप खबरें सियासत से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ फैसलों को लेकर चर्चा में है, खासकर घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर फिर से वापस जाने का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और बढ़ा दिया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से तो अब भागना होगा।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है वो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: और ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि,
3: जशोर। कत बचर आगे इसछेन?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन आउटब्रेक डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? না, আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: না, তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছিলেন? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এইখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ সে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা আয় ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल, CNM, अच्छा चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज, अच्छा ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता आया, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
4: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: बांग्लादेश भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की गले मिलते एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हेमंत शर्मा ने लिखा था कि बुरे दिन। अब इसके आगे उन्होंने लिखा था कि आप जानते हैं कि कौन, साथ में शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने टैग किया उस पोस्ट में। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत जवाब भी दिया था, उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया नाउ? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया। द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। प्लीज लेट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह गेट दिस आउट ऑफ हिज हेड दैट द होल वर्ल्ड वांट्स टू कम एंड लिव इन इंडिया।
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने अर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाती बारे में सुराय होते ही
9: कौन गया
8: ये तुम्हार बेला फल दे
0: तब डर था लेकिन कुछ दिन का हो सकता है इन्हें लगा हो कि जैसा पहले है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं रहते रहेंगे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
10: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
11: दिने आशा जाए रातो आशा जाए।
12: तो এখানে কি জন্য এসেছে?
11: কাজ করার জন্য।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है, जो 9000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है, जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
6: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी को परिवर्तन को लेकर खबरदार किया था। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए बांग्लादेश की सीमा पर अब बाढ़ लगाई जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर अपना काम शुरू कर दिया है।
5: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
9: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
13: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
9: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
14: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
9: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
13: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
9: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाढ़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
13: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
9: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
6: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: आप किसी भी व्यक्ति का भोजन खा लेते हैं क्या? जानबूझकर दान में खराब कपड़े देते हैं क्या? लोगों से मुफ्त सहायता और सेवा लेते हैं? ये तमाम चीजें बढ़ा सकती हैं आपका दुर्भाग्य। कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं दुर्भाग्य और कैसे करें इसको दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
17: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कर्नाटक में सीएम बदलने के सुख बुगाहट तेज, डीके शिवकुमार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। सूत्रों की खबर, कांग्रेस आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में गूंजा आतंकवाद का मुद्दा, भारत ने कहा हर हाल में टेररिज्म का अंत जरूरी। साझा बयान में हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता पर जोर। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा। बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। दिल्ली के खजूरी खास में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी में फायरिंग, रेस्टोरेंट में नाबालिग के सिर में गोली मारकर बदमाश भागे। और धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, गुजरात टाइटन को 92 रनों से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में दो चीजें आपके कर्मों से पैदा होती हैं, एक है सौभाग्य और एक है दुर्भाग्य। आपके किन कर्मों से आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो रहा है और उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मई 2026, दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 6:21 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि दुर्भाग्य क्या होता है और आपके किन कर्मों से आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। दुर्भाग्य क्या होता है? देखिए, काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है। कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी कुल मिलाकर उत्तम रहती हैं, लेकिन फिर भी सही समय आने पर हमारा भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी होता है, और ये दुर्भाग्य कहीं बाहर से नहीं आता, ये दुर्भाग्य हम खुद पैदा करते हैं अपने कर्मों के द्वारा और हमें पता नहीं होता। एक दिन हमारे कर्म दुर्भाग्य बन करके सामने आ जाते हैं। अगर हम जीवन में कुछ काम ना करें और कुछ कामों में सावधानी रखें, थोड़ी ईमानदारी रखें, तो जीवन में दुर्भाग्य को आने से रोक सकते हैं। यानी आपके अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं आपके जीवन में दुर्भाग्य लाने के लिए और आपकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। दुर्भाग्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, आपके बहुत छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को ले आते हैं। खाने पीने से जीवन में कैसे दुर्भाग्य आता है? अगर किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। कोई व्यक्ति चोरी बेईमानी करता है, गलत काम से पैसा कमाता है, ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होती हैं। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं, गलत स्वभाव वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है।

खाते हैं तो इससे आपकी कमाई कम होती है, आपका धन कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि खाना कहीं गलत आपने खा लिया है, किसी गलत आदमी का खा लिया है और जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, तो निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराइए। कम से कम 3 मंगलवार को निर्धनों को भोजन कराएं। रोज सवेरे 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू करिए। खाने की वजह से जीवन में जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। दुर्भाग्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसका उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

बड़ी समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रेरणा दीक्षित ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1993, रात में 8:10, जन्म स्थान है कानपुर। प्रेरणा कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रेरणा, आपकी शादी का समय फिलहाल चल रहा है। साल 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत के समय में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिख रहा है। बेवजह की जो आप चिंताएं करती हैं, बेवजह का तनाव पालती हैं, उसको थोड़ा कम करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो खान पान के अलावा आपके कपड़ों से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। आपके कपड़ों से दुर्भाग्य कैसे आता है? अगर अच्छे वस्त्र होने के बावजूद आप खराब और

आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। अगर कपड़ों के कारण जीवन में दुर्भाग्य आ गया है या दुर्भाग्य आ रहा है तो साफ और बेहतर वस्त्र धारण करिए। मंगलवार को एक बार हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दीजिए और भूल कर भी खराब क्वालिटी के या घटिया स्तर के कपड़े दान मत करिए। दुर्भाग्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, जीवन में मुफ्त की वस्तुएं लेने से भी दुर्भाग्य पैदा होता है। मुफ्त की वस्तुओं से कैसे दुर्भाग्य आता है? जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, दबाव बनाकर, प्रेशर में या दोस्ती यारी में बेवकूफ बनाकर मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, जब आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, जब आप किसी को कुछ दिए बिना उसकी सेवा लेते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति की सेवा लेते हैं, तो आप जिस मात्रा में मुफ्त में चीजें लेते हैं उस मात्रा में अपना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं, उस मात्रा में आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है। आपको लगता है मैंने पैसे दिए बिना ये

चीज ले ली उसके बदले में आपने दरअसल अपनी किस्मत उसको दे दी है और उसका दुर्भाग्य आपने ले लिया है। जब भी कोई चीज लें तो यथाशक्ति उसका मूल्य चुकाएं। अगर गलती से ऐसा हो गया है तो एक बार किसी गरीब आदमी को अन्न का और धन का दान कर दें, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और भविष्य में मुफ्त की चीजें जहां तक संभव हो लेने से बचना चाहिए। देखिए, आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, जाने अनजाने कोई गलत काम हो गया है और उसके बाद आपके जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप नियमित रूप से सप्ताह में एक दिन या रोज गीता का पाठ करें, और रोज ना कर पाए तो कम से कम रविवार के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके गलतियों का प्रायश्चित होगा और गलतियों की क्षमा आपको मिल पाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

आसानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन धन का लेन देन करना अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन माना जाता है और बुध ग्रह का पैसे रुपए के लेन देन से गहरा संबंध है। इसीलिए अगर बुधवार को धन देते हैं तो वापस पाने में आसानी होती है और अगर धन लेते हैं तो चुका पाने में आसानी होती है। तो धन लेना हो या देना हो अगर बुधवार के दिन करेंगे तो धन का नुकसान कभी नहीं होगा, धन का लाभ आपके साथ बना रहेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं।

ही रहेगी। नंबर दो, धन का लाभ होगा। नंबर तीन, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर चार, काम की अधिकता रहेगी। नंबर पांच, करियर की समस्या हल होगी। नंबर छह, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर सात, परिवार की चिंता हो सकती है। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर नौ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है

Compar. अगला प्रश्न ब्रजेश अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ब्रजेश जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अप्रैल 1970 रात में 9 बजे, जन्म स्थान है आगरा। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ब्रजेश जी आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2027 तक इंतजार करिए। फरवरी 2027 तक आपका मध्यम समय है। फरवरी 27 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह और रोज शाम ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरा धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आजकल अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई नया काम आरंभ मत करिएगा और आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर जल का और फल का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनाएगी। अदालत तय करेगी कि चुनाव आयोग को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एफआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इसे नागरिकता जैसा जांच बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया कहा था। दिल्ली में एफआईआर को लेकर आज चुनाव आयोग एक ऐलान करेगा, 30 जून से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के लिए करीब 13,000 से ज्यादा बीएलओ की तैनाती की जाएगी। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची आएगी, 4 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप लगा है। देश में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश पकावक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कमेटी के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबर को खारिज किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट थी। सीबीएसई ने भी कहा है कि वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है, किसी प्रकार की सुरक्षा की चूक इसमें नहीं हुई है। कर्नाटक में सिद्धरमैया छोड़ सकते हैं सीएम का पद, डीके शिवकुमार को मिल सकती है कमान, होंगे नए मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया को मीटिंग में सीएम पद छोड़ने को कहा गया। राज्यसभा जाने की पेशकश भी कांग्रेस आलाकमान ने दी है। यूपी में बिजली की कटौती पर सियासत जारी है। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में बिजली के तारों पर कपड़े लटकते थे। बिजली संकट को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, बोले डबल इंजन से निकल रहा है धुआं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर के भी अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले पीडीए के लोगों का फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। मुंबई से सटे ठाणे में सोसाइटी में कुर्बानी पर कोहराम मचा है। आखिरकार जो सुलझ गया है, सोसाइटी से कुर्बानी के बकरों को बाहर किया गया। ठाणे की सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए थे, हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था। विरोध के बाद बकरों को बाहर किया गया। सोसाइटी के बाहर सुअर लेकर भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान ब्लेडबाजी में 3 लोग घायल हुए। मलिहाबाद में किले और मकबरे को लेकर के घमासान जारी है। आज हिंदू संगठन हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे। पुलिस ने हिंदू संगठनों को पूजा करने से रोक दिया, दूर से हनुमान चालीसा पढ़कर रवाना किया। मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की। बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से किया इसका आगाज। अमित शाह ने कहा, बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, आतंकी हमलों पर इससे लगाम भी लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली मामले में सुनवाई हुई। केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भूमि की आवश्यकता बताई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर से पैरोल मिली है। 30 दिन की पैरोल पर वो फिर से बाहर निकला है। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा हुआ है। यूपी विधानसभा, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके टारगेट पर थे। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर उड़ान भरी है। 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देश की राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद अब 83.09 रुपए प्रति किलो सीएनजी की कीमत पहुंची है। पंजाब नगर निकाय चुनाव को लेकर के रायकोट में तनाव हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार को आप समर्थकों ने पीटा। प्रवर्तन निदेशालय की जीरकपुर में बड़ी कार्यवाही हुई। रॉयल स्टेट दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी शिवराज की किताब का विमोचन हुआ। पीएम के साथ रिश्तों का किताब में जिक्र किया गया है। त्रिशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया है कि 12 से 20 मई तक की सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई है। त्रिशा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ससुराल पहुंची जांच की टीम, शुरुआत की पूछताछ की। करीब आधे घंटे त्रिशा के ससुराल में सीबीआई की टीम ने पड़ताल की, क्राइम सीन का मुआयना किया। त्रिशा के मायके में भी सवाल जवाब हुआ। आज तक की खबर पर मुहर लगी। सीबीआई को केस डायरी देने 9:30 बजे भोपाल पुलिस के एसआईटी ने त्रिशा केस में एसआईटी टीम पर भी सवाल उठे हैं। सीबीआई ने केस डायरी सही प्रोफार्मर में नहीं होने पर नाराजगी जताई। खबर मौसम से, नौतपा शुरू होने के बाद उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। भीषण लू और हीट वेव से जूझ रहे हैं बड़ी आबादी।
उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक बार फिर सबसे गर्म स्थान साबित हुआ। 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गंभीर लू की श्रेणी में रखा जाता है 47 डिग्री से ज्यादा तापमान को। बांदा के अलावा प्रदेश के 5 और जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। उधर राजस्थान में लू का प्रकोप जारी है। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। 46 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर और फलोदी राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान बने, जबकि जैसलमेर में 45.6 डिग्री और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब में भी भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। सिरसा में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया, तो दोनों पड़ोसी राज्यों में सबसे गर्म जगह घोषित की गई। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा भी है। रोहतक में 45.6 डिग्री और भिवानी में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दक्षिण भारत में भी सूरज की तपिश तेज होने लगी है। हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी है। राहत कार्य के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टरों को रात में भी तैनात किया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से जूम्बी बॉम्बी तकनीक से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे खास बकेट ऑपरेशन का सहारा लिया जा रहा है। रांची में पानी संकट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाल्टी लेकर महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया है। महोबा में भी पानी के लिए लंबी कतारें लगी हैं। टैंक के बाहर पानी के लिए लूट मची पड़ी है। जोधपुर के लूणी इलाके में जल का संकट गहरा गया है। 150 गांव प्रभावित हुए हैं। कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, 15 दिन में समाधान की मांग की। इटावा में भीषण गर्मी में पारा 44 के पार जा पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है, दिशा निर्देश जारी किया। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक भी परेशान है। करनाल में भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता भी प्रभावित हुई है। लगातार दूसरी बार फाइनल पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन RCB। IPL के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त दी। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने मात दी। RCB के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेस करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर हो गई। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने नाबाद 93 रनों की कप्तानी पारी खेली। विराट कोहली और कुणाल पांड्या ने 43-43 रन बनाए। IPL के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है बेंगलुरु की टीम। सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया तीसरा स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस। एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से मुकाबला होगा। फाइनल में पहुंचने के लिए मिलेगा दूसरा मौका। IPL में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच। न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीम। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो के मैच होंगे। IPL के फाइनल के रेस से बाहर होगी आज हारने वाली टीम। जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधानी। सीजन में खेले गए 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास क्लासन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज है। क्लासन ने मिडिल ऑर्डर में शानदार बैटिंग का प्रदर्शन अब तक किया है। IPL में अब तक शानदार रहा है दोनों ही टीमों का सफर। हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। राजस्थान की टीम चौथे स्थान के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। हरिद्वार में टाइगर का शिकार करने वालों पर एक्शन हुआ है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात के नर्मदा में बीजेपी MP जशू राठवा का बंदूक लेकर जश्न मनाते वीडियो वायरल हुआ। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की रैली में शामिल हुए थे। वायनाड में महिला पर हाथी ने हमला किया, महिला की मौत हो गई। मध्यप्रदेश के इंदौर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाड़ी टकराने पर विवाद हुआ था जो मारपीट में बदल गया। इंदौर के वेयरहाउस विवाद में किडनैपिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले, विवाद बढ़ा। ग्वालियर में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी, 1 युवक की मौत हो गई। मेरठ में गैंगस्टर को पकड़ने जो पुलिस गई थी उसकी परिवार से जमकर झड़प हुई, हंगामा हुआ, वीडियो सामने आया। मथुरा में शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी फिलहाल फरार है, पुलिस ने जांच शुरू की है। ग्वालियर में पति पत्नी लुटेरे बन गए, पत्नी की शादी दूसरे शख्स के कराकर लूटपाट करने की कोशिश की। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार हुआ। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान सामने आया है कि खाड़ी देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना तिस्कनोस्किया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई। रूसी हथियार कंपनियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की है ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारी और अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है।
पुतिन ने कहा कि फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए AK-47 पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन हमलों से रूसी फैक्ट्रियों और रिफाइनरियों को भारी नुकसान हो रहा है। रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के ओडिशा में भीषण हमला हुआ है, एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। रूस के बाद उत्तर कोरिया ने शक्ति प्रदर्शन किया, समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक साथ कई हथियारों का परीक्षण किया है। उधर इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान में भीषण हमले किए हैं, हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में पुराना ओवरपास पुल ढह गया, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। बेल्जियम में ट्रेन और स्कूल बस में भीषण टक्कर हुई, हादसे में 2 छात्र समेत 4 लोगों की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
5: It was to live sports action.
7: To the near side corner, to wrap around, he scores!
5: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
10: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
11: एक हिंट तो देते।
12: विक्रम!
11: हिंट।
10: बड़े आराम से।
13: Lion O's family, super action family.
14: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स।
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
20: बस दो दो हजार
21: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
22: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
23: आगे आगे,
24: अरे उधर
23: उधर किधर,
24: करेक्ट करेक्ट।
25: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: Character, the taste of success.
8: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuba kesri.

0: तीन दिनों से लाइट नहीं है और ये लोग वहाँ 5 घंटे इंतजार करने के बाद, कर्मचारियों का, अधिकारियों का इंतजार करने के बाद यहाँ कभी नगर उपकेंद्र पर आए हैं।
1: आज से नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा मतलब अगले 9 दिन भीषण गर्मी, कहीं कोई राहत नहीं। देश के कई इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री चल रहा है। यूपी के कई शहरों में 45 के पार चला गया है। गर्मी इतनी भीषण कि डॉक्टर से लेकर सरकार तक कह रही है कि घरों से बाहर मत निकलना, लेकिन घर में तो बिजली ही नहीं आ रही, तो लोग क्या करेंगे? जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यूपी में ही हालात खराब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती पर सख्ती दिखाई है। यूपी में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई की जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? क्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मिल रही है? क्या इस भीषण गर्मी में यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं कट रही? आज हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे कि यूपी के शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कितनी बिजली आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा आपको यूपी के बिजली मंत्री के दावे भी बता देते हैं। ये यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा हैं, पूर्व IAS रहे हैं। आजकल ये हर रोज अपनी एक्स टाइमलाइन पर यूपी में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हैं। बढ़िया फोटो खिंचवा कर बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यूपी वालों को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने आज ये पोस्ट किया है, दावा किया कि यूपी में बिजली की महाआपूर्ति हो रही है। ये भी बताया कि कल रात 10:39 तक 31,804 मेगावाट की पीक सप्लाई की गई। कहा कि सर्वत्र 2400 घंटे बिजली दी गई। ये भी दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में भी 22 से 22.5 घंटे तक बिजली दी गई। अब जरा यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा के इन दावों का रियलिटी चेक करते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्योंकि मंत्री जी के दावों की हवा तो प्रदेश की राजधानी में ही निकल रही है। कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, प्रॉपर शहरी इलाका लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका, जहां रात रात भर बिजली नहीं आ रही, दिन में बस कुछ ही घंटे बिजली आती है। और इन हालात में भी महिलाओं को घर वालों के लिए खाना तो बनाना ही है। तो शहरी इलाकों में 2400 घंटे बिजली सप्लाई का दावा तो फेल हो गया मंत्री जी। पंखा झलते हुए लोग खुद ही बता रहे हैं कि बिजली के क्या हाल है। बिजली आ कम रही है और कट ज्यादा रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और बड़े शहर वाराणसी का हाल दिखाते हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा सर्राफा मार्केट है, वाराणसी का रेशम कटरा। यहाँ हजारों कारीगर सर्राफा से जुड़े हैं, जिनकी पूरी कारीगरी बिजली पर ही निर्भर है। सोने चांदी की शुद्धता मापनी हो या कोई आभूषण पॉलिश करना हो, जिन मशीनों से ये काम होता है उन्हें ठंडा माहौल चाहिए होता है। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर और बिना बिजली के इस तापमान को बहाल करना मुश्किल हो रहा है। कानपुर का भी हाल देख लीजिए। कानपुर यूपी का बड़ा महानगर है। दावों में तो यहाँ भी 2400 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन रियलिटी चेक हाल बता रहा है। ये कानपुर का एक बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पूरा सेंट्रलाइज्ड AC लगा हुआ है, लेकिन लाइट ही नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि कारोबारियों को बुकिंग कैंसिल होने का डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: मुल्क की आवाम आए दिन पेट्रोल डीजल सीएनजी की महंगाई से परेशान है, फिर भी कहीं रिहायशी सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर बवाल है तो कहीं किले में मजार के खिलाफ जय श्री राम का नारा। पहले इनका मामला समझिए। मलिहाबाद के कसमंडी में 11वीं सदी के राजा कंसा पासी के किले के बाहर जमा हुए ये भक्तगण बड़े मंगल की विशेष पूजा की चाहत लिए पहुंचे। ये खंडहर बरसों से खाली पड़े हैं, पर अब इनकी दरों दीवार गर्द में लिपटी तारीखों के दरारों में इबादत बस सियासत खोजती है। इस जिद का दौरे उसूल बस इतना कि किला हिंदू राजा पासी का तो मजार मुस्लिम सालार गाजी की यादों वाली कैसे हो सकती है। मौकाए बकरीद करीब था तो माहौल भी मुफीद, मजार के मुकाबले सुंदरकांड पढ़ने का शगुफा ऐसा गर्म हुआ कि पहरे में संगीने तर गई, फिर न तो पाठ हुआ न नमाज की इजाजत मिली। इस सियासत का मकसद और मंजिल और मौजू हासिल बस इतना कि जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को पीडीए का चेहरा बनाया, उसी पासी समाज के लोग किले पर कब्जे और मजार पर नमाज के विरोध में उठ खड़े हुए। मजहब की सियासत बनाम जात की बात करने वाले मानते हैं कि दरअसल इस नए विवाद की जमीन पर पासी वोट के गणित का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है, क्योंकि दलित वोट का हिसाब उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल दलित आबादी 21%, जाटव 11% यूपी में, पासी 3.5% की ताकत रखते हैं, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक धनगर बाल्मीकि और अन्य 4.5%। दलितों के भीतर जाटों के बाद सबसे बड़ी तादाद पासी वोट की है, जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले पाले से खींचकर हिंदूवादी राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश कंसा पासी के किले में हो रही है। और अब थाने के मीरा रोड में हुए इस बवाल की कहानी भी सुनिए। सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी करते ये लोग इसलिए नाराज है क्योंकि यहाँ बकरे के नाम पर शुरू हुए झगड़े में ब्लेडबाजी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बकरीद की कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाए जाने लगे। कुर्बानी के लिए शेड बना दी गई। इसका विरोध हुआ तो झड़प हो गई। 3 हिंदू युवक जख्मी हुए। पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा, पहरेदारी बैठानी पड़ी। मामला बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ी, पुलिस का तनाव भी। बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे। आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा।
7: अब आधे बकरे निकल गए, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे। ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
6: इस सोसाइटी के बवाल से पुलिस सतर्क हो गई। अमन कमेटी की मीटिंग से लेकर फ्लैग मार्च तक के इंतजाम करने पड़े। बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है और कुर्बानी के लिए जगह भी तय कर दी गई। वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है। इस बार बंगाल से लेकर असम तक, यूपी से तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर राजनीति। पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी। मुंबई से विद्या के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

कांग्रेस का मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। तय होगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा ऐतिहासिक आदेश। बकरीद को लेकर लखनऊ के कंसापासी किले में माहौल गरमाया, हनुमान चालीसा पर अड़े हिंदू संगठन। थाने में कुर्बानी पर भारी बवाल के बाद सुरक्षा, नैनीताल के फ्लैट्स ग्राउंड में नमाज रद्द। इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना। 31 लोगों के मरने और 40 के घायल होने की खबर, लेबनान की तरफ से भी किया गया अटैक। तो वहीं धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

0: मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी और हर खबर पर आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की, क्या है इनसाइड स्टोरी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बकरीद से पहले यूपी में इतना हंगामा क्यों है। जिक्र बंगाल का भी होगा जहां पर घुसपैठ पर सख्ती की बात करेंगे। वही खबर तुषा केस की भी आपको दिखाएंगे कि कल रात सीबीआई अधिकारी क्यों नाराज हुए। साथ ही बात दिल्ली की भी करेंगे जहां फिर से मर्डर को लेकर सवाल उठे हैं। इस बुलेटिन में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ईरान डील में आखिर क्या नया पेच है। और खबर गर्मी से झुलसते शहरों की होगी, साथ ही आगे का पूर्वानुमान और आईपीएल का भी पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम सियासी खबर के साथ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी है और अब तक डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सालाकबार ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है और सिद्धारमैया इसके लिए मान भी गए हैं। कल कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, इसमें सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों शामिल हुए और देर रात सीएम बेंगलुरु लौट गए। हालांकि डीके शिवकुमार अभी भी दिल्ली में ही रुके हुए हैं। खबरों के मुताबिक 28 मई को सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तमाम संभावनाओं के बीच सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जिसमें कर्नाटक की सियासी तस्वीर साफ हो सकती है।
1: कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली में डटे हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से ही दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी के साथ दोनों नेताओं की बंद कमरे में मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया है। हाईकमान ने सिद्धारमैया से राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आने और वहां एक बड़ी भूमिका निभाने को कहा है। भरोसा सिद्धारमैया को ये भी दिया गया है कि उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा।
2: इंदिरा भवन में लगभग 7 घंटे बैठक चली। इस बैठक में जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पार्टी नेतृत्व ने वन ऑन वन बातचीत की तो उनको जो ऑफर रखा उसको लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि उनको सोचने का कुछ समय चाहिए।
1: तो क्या बार बार दिल्ली तक आकर खाली हाथ लौटने वाले डीके शिवकुमार के अच्छे दिन आने जा रहे हैं? ये वही डीके शिवकुमार हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लिखा था, कोशिशें भले ही नाकाम हो जाएं, दुआएं नाकाम नहीं होती। तो क्या डीके शिवकुमार की दुआएं अब कबूल हो गई हैं?
2: कहीं ना कहीं नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है कि अगर 2029 में कांग्रेस की बारी आनी है तो फैसले कड़े लेने होंगे और पूरी तैयारी से उतरना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली में कल जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से 2.5 साल के सीएम पद के वादे की याद उनको दिलाई और कहा कि वादा निभाया जाना चाहिए। राहुल ने सिद्धारमैया से यह भी कहा है कि उनके सीएम पद पर 6 महीने ज्यादा ही हो गए हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सोशल इंजीनियरिंग का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि मेरी गारंटी योजनाओं को देखिए, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। इस पर राहुल ने कहा कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो वादा किया गया था उसका सम्मान होना चाहिए। तब सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दोनों के बीच कल जब बैठक हुई तो उसमें क्या कुछ बातचीत हुई, चलिए अब आपको वो समझा देते हैं। अब इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, उनको समझाया गया कल उस बैठक में। दोनों की बातचीत, राहुल गांधी ने कहा कि 2.5 साल का वादा अब पूरा कर देना चाहिए आपको। राहुल गांधी ने उनको समझाया, ये भी कहा कि मुझे वादे के बारे में बताया गया था और आप 6 महीने के अतिरिक्त सीएम भी रहे हैं। उन्होंने उनकी तारीफ भी की है राहुल गांधी ने। सिद्धारमैया ने कहा कि आप मेरे कार्यकाल को देखें तो मैंने कई जो योजनाएं थी उन पर भी खास ध्यान दिया। भाई राहुल गांधी ने कहा कि आप सबसे बड़े नेता हैं लेकिन अगर वादा किया गया था तो आपको उसको पूरा करना चाहिए। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सिद्धारमैया ने कहा है। कल बैठक हुई है और कल बैठक में जो बातचीत हुई वो आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप इस्तीफा दें, हम आपका समर्थन करेंगे और मैं राज्यसभा नहीं लूंगा, राज्य की राजनीति में ही बना रहूंगा, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। 2.5 साल का वादा जो पहले किया गया था उसका पूरा करने की बात राहुल गांधी ने कही। अब खबर 28 मई को मनाए जाने वाली बकरीद को लेकर, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां है। उधर यूपी में इस पर तकरार शुरू हो गई है, क्योंकि वहां बकरीद की नमाज और महादेव की पूजा को लेकर विवाद है। लखनऊ के महिलाबाद में कंसापासी किले में पूजा और नमाज का पेच फंस गया है।
3: बकरीद कुर्बानी पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। खासकर उत्तर भारत के उन राज्यों में ज्यादा हंगामा है जहां अगले एक साल के अंदर चुनाव होने हैं। लखनऊ के मलिहाबाद के कंसापानी के किले में बकरीद की नमाज को लेकर तनातनी हो गई है। मुस्लिम पक्ष इस जगह पर नमाज पढ़ने को अड़ा है तो हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कंसापासी के ऐतिहासिक किले में हिंदू संगठनों ने अभी से पूजा पाठ शुरू कर दिया है।
4: मलिहाबाद स्थित कंसापासी किले का विवाद गहराता जा रहा है। आज हिंदू समाज के लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से तैनात किया गया है और यहां पर एक परमानेंट बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता है।
3: हिंदू पक्ष का दावा है कि कंसापासी किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर दिया है।
5: बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल SP और CO सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है।
3: बकरीद को लेकर यूपी के संभल में भी अलर्ट है। संभल पुलिस सड़कों पर है। पुलिस के आला अफसरों ने शहर के संवेदनशील इलाकों में मार्च किया। बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है, लेकिन इस बार बंगाल से लेकर असम तक और यूपी से लेकर तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर सियासत हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: तो बकरीद पर यूपी पुलिस अलर्ट है और शांतिपूर्वक बकरीद से निपटने में जुटी हुई है। वहीं कानपुर देहात के एक CO के वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल CO कहते हैं कि पुलिस मौके पर ना जाए, जब कांड हो जाए तब जाओ, लेकिन जाओ भी तो कुछ एक्शन मत लो, दूर से देखो, कार्रवाई मत करो।
1: कानपुर में पुलिस अफसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अफसर कह रहा है कि बकरीद के दिन बवाल हो तो पुलिस समय पर नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कानपुर देहात के CO संजय सिंह हैं। उनके बगल में जो शख्स बैठा है वो अकबरपुर का तहसीलदार पवन कुमार है। बकरीद को लेकर पीस कमेटी बैठक थी, जिसमें CO संजय सिंह पुलिस कर्मियों से कह रहे हैं कि घटना घटे तो टाइम पर मत पहुंचना। CO संजय सिंह कानून व्यवस्था संभालने की बजाय बवाल बढ़ाने की सलाह दे रहा है। वीडियो में वो कहता हुआ दिख रहा है कि पब्लिक को जो करना है करने देना, चुपचाप दूर खड़े होकर देखते रहना, कुछ होगा तो मैं सबको बचा लूंगा।
0: और अब अगली खबर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की, जो कि प्रयागराज में संगम तट पर बोट में सवार हुए, देर रात तक वहां संगम में घूमे और प्रयागराज में एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां पर बोलते हुए उन्होंने यूपी की पिछली सरकार में अपराध के रिकॉर्ड गिनाए। साथ ही वर्तमान कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी ने बेटियों से छेड़छाड़ की या अपराध का दुस्साहस करेगा कोई तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
6: आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी

0: उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इन दिनों भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला देश में सबसे गर्म स्थान है, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर समेत कई शहर 45 डिग्री के पार रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी गर्मी का कहर जारी है। ब्रह्मपुरी में तापमान 46.6 डिग्री और चंद्रपुर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी लू की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी कम नहीं है। दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में भी मौसम ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिन तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव का असर बना रहेगा। हालांकि 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अभी के लिए सावधानी ही इस प्रचंड गर्मी से बचाव है।
1: तो ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ भारत में ही है, यूरोपीय देश भी हीटवेव की चपेट में है। पेरिस से लंदन तक यही हाल है। ब्रिटेन में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि मई में इतनी गर्मी ब्रिटेन और फ्रांस में कभी भी नहीं देखी गई। और अब ब्रिटेन के कई शहरों में पारा 34 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि वहां के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है।
0: यूरोप भी इस समय गर्मी की मार झेल रहा है। पश्चिमी यूरोप के देशों में पारा असामान्य गति से बढ़ गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन तक गर्मी ने कई दशक पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेरिस में पारा 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि ब्रिटेन में मई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट और क्यू गार्डन्स में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। तेज गर्मी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर हीट हेल्थ अलर्ट जारी किए गए हैं। फ्रांस में गर्मी और डूबने की घटनाओं से कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में घास में आग लगने की घटना भी सामने आई है। लंदन में बिना एसी वाली ट्रेनों और मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों का सफर मुश्किल हो गया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप में ये असामान्य गर्मी जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे दोपहर में बाहर न निकलें। गर्मी से बचने के लिए लंदन के स्विमिंग पूलों में भारी भीड़ देखी जा रही है।
1: आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देकर हमला किया तो ईरान का गुस्सा फूटा है। ईरान ने इसे घोर उल्लंघन बताया और कहा कि उसे भी जवाबी कार्रवाई का अधिकार है।

0: अमेरिका और ईरान के बीच अब तक डील नहीं हुई, दोनों तरफ से बातचीत का दौर जारी है, वार्ताकार बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं, लेकिन ताजा अमेरिकी हमलों से ईरान नाराज है। अमेरिका के मिसाइल दागने को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, आत्मरक्षा में जरा भी संकोच नहीं करेगा। नाराजगी ईरान के ठिकानों पर हमले को लेकर है, साथ ही लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर भी है। इजरायल ने एक बार फिर से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान कहता रहा कि अमेरिका के डील के तहत इजरायल को भी लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। तनाव का एक मुद्दा हॉर्मुज भी है, जहां ईरान टोल टैक्स वसूलने के सिस्टम पर आगे बढ़ा है, लेकिन अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हॉर्मुज में टोल टैक्स लगाना पूरी तरह गलत है।
1: And there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen.
0: तमाम कड़वाहट के बीच जानकारी सामने आई है कि ईरान के रोके गए फंड को रिलीज कराना एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले में कतर मध्यस्थता कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मैच में बेंगलुरु ने गुजरात को 92 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही

फाइनल में जगह बना ली है। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 255 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन गुजरात के सभी खिलाड़ी 162 रनों पर ऑल आउट हो गए और इस जीत के बाद बेंगलुरु फाइनल्स में पहुंच गई है। पहले क्वालिफायर मैच में रजत पाटीदार ने महज 33 गेंद में शानदार नाबाद 93 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं विराट कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हो गए हैं। कृणाल पांड्या ने भी 43 रनों का योगदान दिया और अब आज हैदराबाद और राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा, तो हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

0: अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सुपर एट। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ का कहर, तेज बहाव के बीच टूटे पुल पर फंसी गाड़ी कुछ सेकंड में ही नीचे गिरी, बाल बाल बचे कार सवार। ग्वालियर झांसी हाईवे पर बेकाबू कार पलटी, बेहिसाब रफ्तार की वजह से कार उछलकर डिवाइडर से पार निकली और बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। रांची में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से झड़प। हैदराबाद में एयर इंडिया की बस में लगी भीषण आग, बस में नहीं था कोई यात्री, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक सोसाइटी में लगी आग, 15वीं मंजिल पर फ्लैट में तबाही, बाल बाल बची लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में आग बेकाबू, अब तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल, चार दिनों से जारी संकट, बचाव कार्य तेज। इंदौर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल, गाड़ी टकराने पर शुरू हुआ था विवाद। वाराणसी में भव्य गंगा आरती का आयोजन, हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु, गंगा दशहरा के मौके पर 11,000 दीपों से की गई आरती। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 나 갔다 오나?
2: 내 거인가?
3: 오에 cards 기 두간. इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
6: जेके मैक्स पेंट्स,
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
13: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
14: Character, the taste of success.
15: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
15: आप कैसे कर लेते हो?
17: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
18: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं
18: और म्यूचुअल फंड्स है
19: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
21: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
22: बस 2000
23: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
24: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
25: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
26: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
27: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
28: परेशानी तो इतनी हो रही है, कुछ कर रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
25: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
29: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
25: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
30: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
31: और अब जब जनता पे इतना भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
32: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
25: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, तय होंगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा ऐतिहासिक आदेश। बकरीद को लेकर लखनऊ के कंसाबासी किले में माहौल गरमाया, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील, थाने में कुर्बानी पर भारी बवाल, नैनीताल के फ्लैट्स ग्राउंड में नमाज रद्द। इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना, 31 लोगों के मरने और 40 के घायल होने की खबर, लेबनान की तरफ से भी किया गया अटैक। धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, गुजरात टाइटंस को 92 रनों से दी शिकस्त।

कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनाएगी। अदालत तय करेगी कि चुनाव आयोग को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एफआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने इसे नागरिकता जांच जैसा बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया कहा। दिल्ली में एफआईआर को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा ऐलान, 30 जून से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के लिए करीब 13,000 से ज्यादा बीएलओ की तैनाती, 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची, 4 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप। देश में अवैध घुसपैठ और जनसंख्या के बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन। अमित शाह ने कमेटी के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबर को किया खारिज, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार की सुरक्षा चूक नहीं हुई। त्रिशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक की सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा पत्र। त्रिशा मौत मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, त्रिशा के ससुराल पहुंची जांच टीम। करीब आधे घंटे त्रिशा के ससुराल में सीबीआई की टीम ने की पड़ताल, क्राइम सीन का भी किया गया मुआयना, त्रिशा के मायके में भी सवाल जवाब। आज तक की खबर पर मुहर, सीबीआई को केस डायरी देने रात 9:30 बजे निकली एसआईटी। त्रिशा केस में एसआईटी टीम पर सवाल, सीबीआई ने केस डायरी सही प्रोफॉर्मा में नहीं होने पर जताई थी नाराजगी। बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बदलाव किए गए, मैनेजमेंट कमेटी में होंगे अब 3 नए चेहरे। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर में रखरखाव को लेकर निर्देश दिए गए। हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों के चयन में अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को भी बड़ा आदेश दिया गया, मंदिर के आसपास के इलाके के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का ऑर्डर। धामी सरकार का बड़ा फैसला, नैनीताल खेल के मैदान में ईद की नमाज की अनुमति रद्द, सीएम धामी ने सख्त निर्देश के बाद डीएसए महासचिव ने अनुमति निरस्त कर दी। अहमदाबाद विमान दुर्घटनाग्रस्त पर 105 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया हॉस्टल, पीड़ित परिवारों ने सरकार के फैसले का किया विरोध, कहा स्मारक स्थल के रूप में सम्मानपूर्वक रखा जाए। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा चाक चौबंद, एडीजी के नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन के साथ ड्रोन से भी चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। रांची में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय को घेरने की कोशिश की, भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी भिड़े। पंजाब के किसान और किसान संगठनों के प्रतिनिधि ने सीएम सैनी से की मुलाकात, किसानों के बिगड़ते हालात के विषय पर दी जानकारी। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, आईपीएल के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने दी मात, आरसीबी के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेस करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर हुई। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली नाबाद 93 रनों की कप्तानी पारी, विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने बनाए 43-43 रन। आईपीएल के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है बेंगलुरु की टीम, सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया तीसरा स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस, एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा मुकाबला, फाइनल्स में पहुंचने का मिलेगा दूसरा मौका। आईपीएल में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो के मैच, आईपीएल की फाइनल की रेस से बाहर होगी आज हारने वाली टीम, जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर हैदराबाद को सावधान रहने को कहा, इस सीजन में खेले 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी है तो हैदराबाद के पास भी क्लासेन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज, क्लासेन ने मिडिल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। आईपीएल में अब तक शानदार रहा है दोनों ही टीमों का सफर, हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही, वहीं राजस्थान की टीम ने चौथे स्थान के साथ प्लेऑफ में बनाई जगह।
नौतपा शुरू होने के बाद से उत्तर और पश्चिमी भारत में प्रचंड गर्मी, भीषण लू और हीटवेव से जूझ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक बार फिर से रहा देश का सबसे गर्म स्थान, 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। गंभीर लू की श्रेणी में रखा जाता है 47 डिग्री से ज्यादा तापमान। बांदा के अलावा प्रदेश के 5 और जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान में लू का प्रकोप जारी, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। 46 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर और फलोदी बने राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान, जबकि जैसलमेर में 45.6 डिग्री और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी से हाहाकार, सिरसा में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, दोनों पड़ोसी राज्यों में सबसे गर्म जगह घोषित। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा, रोहतक में 45.6 डिग्री और भिवानी में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज। दक्षिण भारत में भी सूरज की तपिश तेज, हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच नेहरू पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किया जा रहा है उपाय। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में लगी भयंकर आग, राहत कार्य के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रात में भी तैनात किया। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खास बैम्बी बकेट ऑपरेशन का ले रहे हैं सहारा। रांची में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, बाल्टी लेकर महिलाओं ने किया समस्या। महोबा में पानी के लिए लगी लंबी कतार, टैंक के बाहर मची लूट। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में भीषण जल संकट, 150 गांव प्रभावित हुए, कलेक्ट्रेट पर युवाओं का प्रदर्शन, 15 दिन में समाधान की मांग। इटावा में भीषण गर्मी में पारा हुआ 44 के पास, जिला आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक परेशान, करनाल में भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता प्रभावित। चारधाम यात्रा के बीच उत्तरकाशी के जंगल धधके, वन्य जीवों और पक्षियों के अस्तित्व पर संकट। सोलन के जंगलों में धधकी आग, सेना एयरफोर्स और दमकल विभाग राहत कार्य में जुटी। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी भयंकर आग, गर्मी बढ़ने से भड़के लपटे। दिल्ली फायरिंग मामले में नया सीसीटीवी आया सामने, अमर कॉलोनी में गोली मारने के बाद आरोपी 3 लड़के भागते हुए नजर आए। ओडिशा के कालाहांडी में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से 6 मजदूरों की मौत। हरिद्वार में टाइगर का शिकार करने वालों पर एक्शन, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गुजरात के नर्मदा में बीजेपी एमपी जशू राठवा का बंदूक लेकर जश्न मनाते एक वीडियो वायरल हुआ। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की रैली में थे शाम। वायनाड में महिला पर हाथी ने किया हमला, महिला की मौत हुई। इंदौर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल, गाड़ी टकराने पर शुरू हुआ था विवाद। इंदौर में वेयरहाउस विवाद में हुई किडनैपिंग, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर चले लाठी डंडे। ग्वालियर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी भयंकर टक्कर, युवक की हुई मौत। मेरठ में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस से परिवार की झड़प, जमकर हंगामा। मथुरा में शराब पीने से रोकने पर पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार। ग्वालियर में पति पत्नी बने लुटेरे, पत्नी की शादी दूसरे शख्स से कराकर की लूटपाट। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। वरुण धवन स्टार फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना रिलीज, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी डेविड धवन निर्देशित फिल्म। रितेश देशमुख के करियर के बड़े फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 24 दिन में 101.4 करोड़ रहा नेट कलेक्शन। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में भी शानदार कमाई की, फिल्म ने 67 दिनों में की वर्ल्ड वाइड पर 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। समांतर रुद्रप्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार, 19 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुसबा खामेनेई का बड़ा बयान, खाड़ी देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए नहीं बनेंगे ढाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस के विपक्षी नेता स्वेतलाना से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात को लेकर हुई चर्चा। रूसी हथियार कंपनियों से राष्ट्रपति पुतिन की मांग, ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारी और अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत। पुतिन ने कहा कि फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए AK-47 काफी नहीं, यूक्रेन की तरह से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से रूसी फैक्ट्रियां और रिफाइनरियों को हो रहा है भारी नुकसान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 6:21 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, धन

तो होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ला।

होंगे बड़ी समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि।

बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।

0: ये उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाकिमपुर चेक पोस्ट है। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार अपने 3D फॉर्मूले यानी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट पर बेहद सख्त है। इसी के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पर वापस बांग्लादेश जाने के लिए ऐसी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
1: और यहाँ आप देख सकते हैं कि हकीमपुर, ये वही हकीमपुर है जहाँ साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे, वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है, जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे, वो यहाँ पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाए।
2: अच्छा,
1: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते हैं कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी।
3: এখানে দমদম থাকতাম ও ক্যান্সারের রোগী তো তাই হসপিটালে চিকিৎসা করতে এসেছিলাম।
0: बंगाल में घुसपैठ के संदिग्धों में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि घुसपैठ अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसपैठ के खिलाफ सख्ती सिर्फ बंगाल में नहीं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर वाले राज्यों का दौरा करने का फैसला किया है। मंगलवार को अमित शाह राजस्थान के सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे, यानी घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह के नए मिशन का आगाज हो चुका है। घुसपैठ पर मोदी सरकार की ये सख्ती बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा का वो एजेंडा है जिसे वो राम मंदिर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सफलता के बाद लागू कर रही है। यही वो मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी का हिंदुत्व चुनावों में बेहद मजबूत नजर आता है। वैसे तो विपक्ष आज भी सरकार के सामने आई चुनौतियों के बीच अपना राजनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। मसलन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से देश पर आई आर्थिक चुनौतियों को विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर गिना रहा है। पेट्रोल डीजल और CNG के दामों में हुई बार बार बढ़ोतरी को विपक्ष ने स्लो पॉइजन तक कह दिया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सरकार को फ्लॉप करार दिया है, देश के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो गए हैं, तो विपक्ष के हर सवाल का सीधा जवाब बीजेपी का विकास और हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व के इसी हाईवे पर विपक्ष से बीजेपी बहुत आगे निकल गई लगती है। आज तक ब्यूरो।

कांग्रेस का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आला कमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, तय होंगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वेटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा ऐतिहासिक आदेश। बकरीद को लेकर लखनऊ के कंसा पासी किले में माहौल गरमाया, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील, थाने में कुर्बानी पर भारी बवाल, नैनीताल के फ्लैक्स ग्राउंड में नमाज रद्द। इसराइल एक बार फिर लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, 31 लोगों के मरने और 40 के घायल होने की खबर, लेबनान की तरफ से भी किया गया अटैक। और धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

0: गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में क्यों मची है भागम भाग, बांग्लादेश बॉर्डर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। त्रिशा बॉक्स मिस्ट्री में कहां पहुंची है सीबीआई की जांच, थोड़ी देर बाद इसी खबर पर ताजा अपडेट। इसराइल के बेच दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, 2 महीने पहले जहां ईरान ने किया था हमला वहां क्या है हाल। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की सत्ता को लेकर एक बड़ी खबर के साथ। क्या कर्नाटक के सीएम की कुर्सी से सिद्धारमैया की विदाई तय हो चुकी है? जी हां, सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धारमैया कर्नाटक की सियासी तस्वीर साफ कर सकते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर है। कर्नाटक के सीएम को लेकर लंबे समय से रस्साकशी जारी थी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक हुई है। इसी बैठक में सिद्धारमैया की विदाई की पटकथा को अंतिम रूप दिया गया। सिद्धारमैया देर रात सीएम बेंगलुरु लौट गए, हालांकि डीके शिव कुमार अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में कल की बैठक में क्या हुआ, इस्तीफे पर मान गए सिद्धारमैया? आज तक के सूत्रों के जरिए से ये पता चला है कि राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच हुई बातचीत की अहम जानकारी के अनुसार सिद्धारमैया से कहा गया कि 2.5 साल का वादा पूरा किया जाना चाहिए। तो 2.5 साल के वादे का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आप 6 महीने अतिरिक्त मुख्यमंत्री रहे हैं। इस पर सिद्धारमैया ने कहा कि मेरी सोशल इंजीनियरिंग देखिए, मैंने जो गारंटी योजनाएं लागू की, मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए। इस पर राहुल ने सिद्धारमैया से कहा कि आप निसंदेह हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर वादा किया गया था तो हमें उसे पूरा करना होगा, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। इसके जवाब में सिद्धारमैया ने हथियार डाल दिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं दे दूंगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने तुरंत कहा कि कृपया इस्तीफा दे दीजिए और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आइए, हमें आपके समर्थन की जरूरत है। लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यसभा नहीं जाऊंगा, राज्य की राजनीति में बना रहूंगा। दिल्ली से मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। नागार्जुन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। लेकिन इस बीच मौसमी, आपसे पहला सवाल, क्योंकि कल की मीटिंग बेहद अहम थी, कुछ भी खुलकर साफ नहीं हुआ, लेकिन आज धीरे धीरे तस्वीर साफ हो गई कि सिद्धारमैया को जाना ही होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन, ये बड़ा सवाल।
1: देखिए नेहा, किस कदर गोपनीयता जो है कांग्रेस पार्टी ने रखी, क्योंकि पता था कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। इतने बड़े क्षेत्रीय शत्रुप है सिद्धारमैया और लंबे समय तक उन्होंने पार्टी में बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली तो, और राहुल गांधी बहुत ज्यादा सिद्धारमैया को ऊपर आंकते हैं उनके स्टेचर और उनके व्यक्तित्व को लेके। तो कुल मिला के बहुत ही संवेदनशीलता से पार्टी आला कमान ने सिद्धारमैया के सामने ये पूरी पेशकश रखी। इससे पहले सब नेता डिनाई कर रहे थे कि ये नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ये चर्चा है। और सबसे पहले जिस तरीके से आप भी बता रही हैं और नागार्जुन ने भी बताया कि सबसे पहले सिद्धारमैया की मुलाकात होती है चारों नेताओं से, राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल और उसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला से। उसके बाद सिद्धारमैया 40 मिनट राहुल गांधी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की भूमिका यहाँ पे बहुत अहम हो जाती है। उन पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो फैसला नहीं लेते, टाल देते हैं फैसले को। और कई बारी पार्टी आलाकमान इतना कमजोर है कि अपना दिया हुआ वादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन इस बारी राहुल गांधी ने वॉक द टॉक कह लीजिए, बड़े फर्मली सिद्धारमैया को कहा कि अब उनका
0: ठीक है, फर्मली ये कहा गया कि इस्तीफा दे दीजिए और हो सकता है औपचारिक रूप से जल्द इस्तीफा आ जाए। नागार्जुन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नागार्जुन, आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धारमैया इसका ऐलान करेंगे और राज्यसभा न जाने का फैसला उनके द्वारा जो लिया गया है उसकी वजह क्या है?
2: उनका ऑफर है कि जब जब इस्तीफा देने वाले हैं उनको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट भी होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ओबीसी नेता भी है सिद्धरामैया पूरे कर्नाटक में और पूरे साउथ इंडिया में. इसके मुताबिक सो दे वांटेड टू एंश्योर दैट उनको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट या डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ेगा. इसके लिए एक राज्यसभा ऑफर भी दी गई है, बट सिद्धरामैया ने उसको मना किया कि राजनीति जो करेंगे वो स्टेट में ही करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश उनको नहीं लगता है कि आना है. तो बट राहुल गांधी ने उनको कहा कि आपके सम्मान करते हैं, आप आ जाइए, पार्टी को और मजबूत कीजिए, दिल्ली में आके ओबीसी विंग को या राज्यसभा बनके पार्टी को पॉलिसी में आप थोड़ा मजबूत कर दीजिए. बट अभी तो मना किया है, एक हफ्ता अभी बाकी है, जून 8 आखिरी दिन है राज्यसभा इलेक्शन डेडलाइन, जो नॉमिनेशन होता है शायद मान भी सकते हैं इस हफ्ते में. सिद्धरामैया
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का. और अब बात उस खबर की जिस पर पिछले कुछ दिनों से यूपी से बंगाल और महाराष्ट्र तक चर्चा तेज है, बकरीद शांतिपूर्ण गुजर जाए इसे लेकर दिल्ली से यूपी तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है.
3: संभल की पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है. कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएसी और आरआरएफ के जवान फ्लैग मार्च के लिए निकले.
4: बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है.
3: दरअसल 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा का जख्म आज भी संभल में ताजा है, लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है. संभल में सतर्कता दिख रही है तो लखनऊ के मलिहाबाद में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो चुका है. मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर है. हिंदू संगठन के लोग कल वहां हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई.
5: नहीं पढ़ने देंगे, क्यों पढ़ी गई? उन्होंने नमाज पढ़ी है, पूजा करेंगे, अब पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है पूजा करना.
3: पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है. एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे मकबरा.
6: लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है.
3: बहरहाल यहां लगातार तनाव बना हुआ है. ऐसा कहा जा रहा है कि किला परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आज भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं. साफ है बकरीद से पहले यूपी में नया धर्म युद्ध छिड़ गया है, लेकिन कसमंडी में किला और मस्जिद विवाद के साथ सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी का मुद्दा भी यूपी में गर्म है. योगी सरकार ने बकरीद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक का फरमान जारी किया है. इस फरमान के बाद जहां हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं, वहीं विपक्ष की भौहें तन गई हैं.
7: किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी.
8: गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं.
9: ये सारे मुद्दे केवल अल्पसंख्यकों के जब त्योहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है.
3: मजहब कोई भी हो, हर त्योहार अमन शांति का संदेश देता है. ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नमाज और कुर्बानी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी छाया कल बकरीद पर ना पड़े. लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो.

0: से एक होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया। इसी तरह मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन तीनों बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवान गोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। एक ऐसा ही घुसपैठिया आज तक संवाददाता तपस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर पर मिला, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
1: কত বছর আগে
2: এসেছেন? 5 বছর আগে।
1: 5 বছর আগে কি জন্য এসেছিলেন?
2: ব্রেন আউটব্রেক ডাক্তার দেখাইছে।
1: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন। আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
2: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
1: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
2: জি,
1: মানে দালালের মারফত?
2: না, একা চলে
1: এসেছি।
2: একাই এসেছি? তখন দালাল ছিল।
1: আচ্ছা,
2: একা কাটি চলে এসেছি।
1: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
2: না।
0: 5 साल से रह रहे थे, अब लौट रहे हैं। ये बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बखुद सीमा पर पहुंच रहे हैं, ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बच सके। तपस सेन गुप्ता, हकीमपुर चेक पोस्ट, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
3: तपस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तपस, होल्डिंग सेंटर में जाने से अच्छा बांग्लादेशी को ये लग रहा है कि वापस अपने मुल्क चले जाएं, लेकिन ऐसे कितने होंगे जो इस वक्त अभी बॉर्डर पर ही हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं?
4: जी देखिए, कल हमने देखा था नेहा कि सैकड़ों के तादाद में लोग पहुंचे थे जो बांग्लादेश पहुंचना चाहते थे, अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर की कल रात को पूरे सारे लोगों को डिस्पैच नहीं किया जा सका है, कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है। आज अलग अलग बॉर्डर बनगांव और बशीराट के अलग अलग बॉर्डरों से उन्हें बांग्लादेश में भेजा जाएगा। बीजीबी के अलग अलग पोस्ट में उन्हें उनके दस्तावेजों को भेजा गया है। लेकिन आज सुबह से हकीमपुर से जो खबरें आ रही है कि कल जितने तादाद में लोग पहुंचे थे, आज उनका तादाद कुछ हद तक कम हुआ है। तकरीबन 35-40 लोग ही इकट्ठा हुए हैं और बीएसएफ उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी समय कर रहे हैं। और लगातार ये जो होल्डिंग सेंटर बनाने का जो एक फैसला राज्य सरकार ने लिया, ये कहीं ना कहीं इन अवैध रूप से आए हुए जो लोग थे, बांग्लादेशी हैं, उनके अंदर एक भय बना दिया है, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा है कि अगर वो होल्डिंग सेंटर में चले जाते हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या फिर डिटेन करके होल्डिंग सेंटर में रखा जाता है, तो फिर मामला पूरा बहुत लंबा खिंच सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उससे बेहतर है कि वो हकीमपुर चेकपोस्ट पहुंचे, वहां अपने आप को सरेंडर करे, अपने डॉक्यूमेंट्स को दे, बीएसएफ वेरीफाई करे, बीजीबी से वेरीफाई करवाए और फिर आसानी से वो दूसरे छोर पर चले जाए। इस वजह से हकीमपुर में सबसे ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल के और किसी भी भारत बांग्लादेश सीमा से ऐसी खबरें नहीं आ रही है। लेकिन हकीमपुर बॉर्डर जो है लैंड बॉर्डर है और वहां से दूसरे छोर पर जाना काफी आसान है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अब लोग खुद सामने आकर अपने आप को सरेंडर करके बांग्लादेश जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिस वजह से हकीमपुर में काफी ज्यादा तादाद में लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब तुषा मौत मिस्ट्री की। ताजा खबर यह कि एसआईटी ने सीबीआई को बीती रात केस फाइल सुपुर्द कर दी है। दूसरी ओर बीती रात भारी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार समर सिंह का भोपाल एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया। इस दौरान वो मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधे रहा।
0: भोपाल एम्स में रूटीन मेडिकल चेकअप कराने के बाद जब पुलिस समर्थ सिंह को लेकर निकली, तो त्रिशा की संदिग्ध मौत को लेकर जुड़े तमाम सवालों के साथ आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह तैयार थे।
5: समर्थ को मेडिकल के बाद पुलिस अब लेकर के निकल रही है एम्स से, और ये आप तस्वीरों में देखिए, भोपाल एम्स की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी और साथ ही में जो निजी सुरक्षा कर्मी एम्स के यहाँ पे समर्थ को पुलिस लेके गई है वापस यहां से, एम्स से मेडिकल चेकअप हो गया है समर्थ का।
0: समर्थ ने आज तक के सवालों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सीबीआई कल से लगातार समर्थ से पूछताछ कर रही है। 7 दिन के रिमांड पर समर्थ को भोपाल के कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। सीबीआई से पहले एसआईटी समर्थ से 3 दिन पूछताछ कर चुकी है, लेकिन खबर है कि इतनी पूछताछ में एसआईटी और सीबीआई

0: से कुछ ठोस नहीं निकलवा पाई है। त्रिशा मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई समर्थ के घर गई। सीबीआई टीम में दो महिला अफसर भी थीं। ऐसा कहा गया कि त्रिशा की सास गिरबाला सिंह से पूछताछ करने सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीबीआई के अधिकारी वहां करीब 30 मिनट रहे, लेकिन मीडिया से बगैर बात किए निकल गए। जांच संभालने के बाद से सीबीआई एक्शन में है, लेकिन एसआईटी की कार्यप्रणाली सवालों में है। आरोप है कि कल देर शाम तक एसआईटी केस डायरी ही पूरी नहीं कर पाई थी। आखिरकार कल रात करीब 9:30 बजे एसआईटी त्रिशा मौत मिस्ट्री से जुड़ी केस डायरी सीबीआई को हैंडओवर करने निकली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सही प्रोफार्मा में केस डायरी नहीं होने पर सुबह ही नाराजगी जताई थी। इस बीच गिरबाला सिंह की सीडीआर पर एसआईटी ने कोर्ट में कल जवाब दाखिल कर दिया। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि गिरबाला सिंह, समर्थ सिंह और त्रिशा की सीडीआर सुरक्षित रखने की मांग को देखते हुए 12 मई से 20 मई तक की सीडीआर को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित मोबाइल सिम कंपनियों को पत्र लिखे गए हैं। कंपनी से डेटा मिलने पर इसे भी केस डायरी में जोड़ा जाएगा। त्रिशा के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत के बाद गिरबाला सिंह ने कई लोगों को कॉल किए थे, जिनमें से कुछ प्रभावशाली लोग भी थे। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित इसी घर से त्रिशा का फंदे से लटकता शव मिला था। त्रिशा के ससुराल वाले इसे खुदकुशी बता रहे हैं, जबकि त्रिशा का परिवार इसे दहेज हत्या बता रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
1: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है?
2: देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि आज सीबीआई जो है वो आधिकारिक रूप से समर्थ की कस्टडी ले सकती है। सीबीआई की टीम कल दिन भर भोपाल के अलग अलग इलाकों में गई, समर्थ के घर गई, इसके साथ ही त्रिशा के परिवार से भी मुलाकात की। भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी सीबीआई के अफसरों ने कल मुलाकात की है और नाराजगी जताई थी कि एसआईटी की जो केस डायरी है वो व्यवस्थित तरीके से बनाई नहीं गई है, सही प्रोफॉर्मा में नहीं है, कई सारी चीजें खटक रही है जो सीबीआई जांच में नहीं सामने आएगी। तो ऐसे में कमिश्नर के आदेश पे कल फिर एसीपी जो है वो दिन भर कटारा हिल्स थाने में बैठे रहे और रात तकरीबन 9:30 बजे तक केस डायरी तैयार हुई, फिर वो सीबीआई को रात को सौंपी गई। और माना जा रहा है कि आज जो दो प्रमुख डेवलपमेंट है इस केस में, पहला है सीबीआई समर्थ की आधिकारिक रूप से आज कस्टडी ले सकती है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि गिरिबाला सिंह जो अग्रिम जमानत याचिका के बाद बाहर चल रही है अग्रिम बेल पर, अब आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने पे आज फैसला है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में हियरिंग लगी है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने गिरिबाला सिंह की इस अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती दी है जो कि भोपाल कोर्ट में हुई थी, उसे आज हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज की तारीख दी गई है, तकरीबन 2:30 को 2:30 बजे ये हियरिंग होगी और उसके बाद पता चल सकेगा कि अग्रिम बेल पर बाहर चल रही गिरिबाला सिंह क्या बाहर ही रहेंगी अभी या फिर लोअर कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट आज रद्द करता है। तो ये दो प्रमुख डेवलपमेंट है जिस पर आज तक की नजरें आज बनी रहेंगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर एसआईआर पर आज आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर आज फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में ये बेंच तय करेगी कि चुनाव आयोग को संविधान और कानून के तहत एसआईआर कराने का अधिकार है भी या नहीं। पिछले साल एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो आज सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, बेंच ये तय करेगी कि जो तमाम याचिकाएं हैं सुबह 10:30 बजे उस पर फैसला आ सकता है।

0: मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन जो 10:30 बजे फैसला आएगा वो किसी पर्टिकुलर याचिका का है कि सब सम्मिलित हैं इसमें याचिकाएं?
1: सारी याचिकाएं सम्मिलित हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगा कि वर्तमान जो मौजूदा संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें निर्वाचन आयोग को इस तरह से जिस तरह से SIR कराया गया है वो SIR कराने का अधिकार है या नहीं। यानी कुल मिलाकर बड़े संवैधानिक ऐसा मामला है जिस पर कोर्ट अपना ये तय करेगा कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन ग्राउंड पे दाखिल की गई हैं, जिन ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है, उन ग्राउंड्स पर क्या मौजूदा स्थिति में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत क्या निर्वाचन आयोग को SIR कराने का अधिकार है। ये मामला जिस समय सुप्रीम कोर्ट में आया था उस समय बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन कुछ निर्देश दिए थे। इसे देखते हुए लगता है कि शायद कोर्ट ने बार बार ये कहा भी था सुनवाई के दौरान कि निर्वाचन आयोग को ये सारा अधिकार है, जो निर्वाचन आयोग ये कर रहा है SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक दायरों के अंदर है, लिहाजा ऐसे में किसी भी तरह की कोई परेशानी की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात दिल्ली के बेलगाम अपराधियों की करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अमर कॉलोनी इलाके में रेस्टोरेंट में एक शख्स को गोली मारी गई, वही खजूरी इलाके में युवक को गोलियों से पूंद दिया गया।
2: दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक गोलीबारी हो गई। घटना एक रेस्टोरेंट में हुई जहां 17 साल का लड़का खाना खाने के लिए आया था। उसके पास में ही बैठे 3 लड़कों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन्हीं में से एक शख्स ने लड़के को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दिल्ली के खजूरी इलाके में भी वारदात हुई जहां F ब्लॉक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम राजा अक्कीडॉन था, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था। बदमाशों ने उसे 3 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को आशंका है कि गैंगवार में यह हत्या हुई है।
0: और अब आपको दिखाते हैं इसराइल के बेत शेमेश से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मार्च में ईरान के मिसाइली हमले में बेत शेमेश को काफी बर्बाद किया गया था, 2 महीने बाद क्या है वहां के हाल, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
3: मैं इस वक्त इसराइल के बीच शमाश इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां 1 मार्च को ईरान से आने वाली मिसाइल ने इसे निशाना बनाया और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए और इस तरह के अलग अलग अटैक्स इसराइल के अलग अलग इलाकों में हुए 40 दिन के दौरान। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए और तमाम लोगों की मौत भी हुई। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये एक रिहायशी इमारत थी, इसमें जब ये हमला हुआ तो बच्चों की एक पार्टी चल रही थी। एक 13 साल का बच्चा जो मरने वालों में से सबसे कम उम्र का था और एक 76 साल के जो एल्डर पर्सन थे उनकी भी यहां पर मौत हुई। और ये सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था, यहां पर एक सिनेगॉग था, यानी कि एक धार्मिक महत्व की जगह जहां पर ज्यूज आते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और इसी तरह तमाम अलग अलग जो रिलीजियस साइट्स हैं वहां पर भी इम्पैक्ट आया है ईरान की तरफ से आने वाले इन मिसाइल्स का। और ये जो डिवेस्टेशन है, ये जो नुकसान है यहां पर आप देख रहे हैं, जो तबाही है, इसराइल के कई इलाकों ने इसे झेला है। न सिर्फ इस साल जब 28 फरवरी के बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन और एपिक फ्यूरी शुरू हुआ जो अमेरिका का और इसराइल का संयुक्त ऑपरेशन था, बल्कि पिछले साल जून के महीने में जब 12 दिन की एक लड़ाई हुई थी ईरान और इसराइल के बीच, तो उस दौरान भी इस तरह की कई हमले हुए थे पूरे इसराइल के अंदर। और अब एक बार फिर बातचीत की जा रही है लेकिन बहुत असहजता है अभी भी इसराइल के लोगों में। यहां के जो पुलिस स्पोक्सपर्सन है उन्होंने हमें बताया कि इस इमारत में एक ऐसी महिला जो पुलिस में कार्यरत हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां पर रेस्टोरेशन के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता, उनका घर था ये, जब उन्होंने देखा कि उनके पिता यहां पर हैं जो इस हमले में मारे गए हैं, तो उन्होंने अपना दुख उस वक्त पीछे रखा और जो बाकी लोग थे उन सब की मदद की, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। तो तमाम युवा, तमाम पुलिस कमांडर्स और आईडीएफ के जो कमांडर्स हैं उन सबका ये कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं क्योंकि लगातार इसराइल को उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपने देशवासियों, अपने जो सिविलियंस हैं उन पर होने वाले हमलों के बाद काउंटर अटैक्स जरूर करेंगे और उनको बचाने में हमेशा लगे रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, बीट शमेश, इसराइल आज तक।
0: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

बनारस बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, तय होंगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा ऐतिहासिक आदेश। बकरीद को लेकर लखनऊ के कंसा पासी किले में माहौल गरमाया, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील, थाने में कुर्बानी पर भारी बवाल, नैनीताल के फ्लास ग्राउंड में नमाज रद्द। इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाने, 31 लोगों के मरने और 40 के घायल होने की खबर, लेबनान की तरफ से किया गया अटैक। धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, सीएम आरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 ठिकानों पर रेड। ईडी ने कार्रवाई पीएमएलए के तहत की, जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित पिनाराई विजयन के किराए के घर पर छापेमारी की। मामले में आरोप है कि सीएम आरएल कंपनी ने 2018-19 के बीच पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी को 1,72,00,000 रूपये का अवैध भुगतान किया। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी है कि कंपनी ने भुगतान को लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में भी हलचल तेज। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए बोला हमला। आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन जारी, जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश कर रही है सेना की टीम। सूत्रों के अनुसार जंगल के इलाकों में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं। आतंकियों का सामना करने के लिए एक और सेना की टुकड़ी भेजी गई है। डीके शिव कुमार केपीसीसी पार्टी अध्यक्ष से देंगे इस्तीफा। सतीश जारकीहोली पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी से बातचीत के बाद सिद्धारमैया इस्तीफे देने पर राजी, कल मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। मैराथन मीटिंग के बाद हाईकमान सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया, लेकिन सिद्धारमैया ने इससे इनकार कर दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने के अटकलों के बीच कल सीएम सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सीएम डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल रहे पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा, जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा, पूरी चर्चा सिर्फ आने वाले राज्यसभा चुनाव और कर्नाटक के काउंसिल चुनावों पर केंद्रित थी। सीएम पद को लेकर मचे हलचल के बीच सिद्धारमैया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। एसआरएफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच सुनाएगी फैसला। अदालत तय करेगी चुनाव आयोग को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एसआर कराने का अधिकार है या नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इसे नागरिकता जांच जैसा बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया कहा है। दिल्ली में एसआर को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा ऐलान, 30 जून से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के करीब 13,000 से ज्यादा बीएलओ की तैनाती, 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची, 4 सितंबर तक संपत्तियां दर्ज होंगी। ममता बैनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने पर आरोप। देश में अवैध घुसपैठ और जनसंख्यकीय बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश भाकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन। अमित शाह ने कमेटी के बारे में कहा कि कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक करने की खबर को किया खारिज। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट है। सीबीएसई ने यह भी कहा कि वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें किसी प्रकार की सुरक्षा चूक नहीं हुई है। पेशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया, 12 से 20 मई तक सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा पत्र। त्रिषा मौत मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, त्रिषा की ससुराल पहुंची जांच टीम। करीब आधे घंटे त्रिषा की ससुराल में सीबीआई की टीम ने की पड़ताल, क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। आज तक की खबर पर मोहर सीबीआई ने केस डायरी रात 9:30 बजे लेकर निकली एसआईटी। त्रिषा केस में जांच टीम पर उठे सवाल, सीबीआई ने केस डायरी की खामियों पर जताई आपत्ति। बांकी बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव, मैनेजमेंट कमेटी में होंगे अब 3 नए चेहरे। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर में रखरखाव को लेकर निर्देश दिए। हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों के चयन में अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को बड़ा आदेश दिया, मंदिर के आसपास के इलाके में विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का ऑर्डर। धामी सरकार का बड़ा फैसला, नैनीताल खेल के मैदान में ईद की नमाज की अनुमति रद्द। अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर 105 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया हॉस्टल, पीड़ित परिवारों ने सरकार के फैसले का किया विरोध, स्मारक स्थल के रूप में सम्मान पूर्वक रखा जाए। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा चाक चौबंद, एडीजी नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन के साथ ड्रोन से भी चप्पे चप्पे की निगरानी। रांची में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय को घेरने की कोशिश की, भारतीय जनता युवा मोर्चा से भिड़े। पंजाब के किसान और किसान संगठनों ने प्रतिनिधि ने सीएम सैनी से की मुलाकात। नौतपा शुरू होने के बाद से उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी, भीषण लू और हीटवेव से जूझ रहे हैं लोग।
उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक बार फिर रहा देश का सबसे गर्म स्थान, 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गंभीर लू की श्रेणी रखा जाता है, 47 डिग्री से ज्यादा का तापमान, प्रदेश के 5 और जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान में लू का प्रकोप जारी, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर आज का सबसे गर्म स्थान। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर और फलोदी बने राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान, जबकि जैसलमेर में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी से हाहाकार, सिरसा में 40 डिग्री तापमान दर्ज, दोनों पड़ोसी राज्यों में सबसे गर्म जगह घोषित। पिछले कुछ दिन में लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा, रोहतक में 45.6 डिग्री और भिवानी में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज। दक्षिण भारत में सूरज की तपिश तेज, हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग, राहत कार्य के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रात में भी किया तैनात। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश, जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खास बैम्बी बकेट ऑपरेशन का ले रहे हैं सहारा। चारधाम यात्रा के बीच उत्तरकाशी के जंगल धधके, वन्य जीव और पक्षियों के अस्तित्व पर संकट। सोलन के जंगलों में धधकी आग, सेना एयरफोर्स और दमकल विभाग राहत कार्य में जुटे। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी आग, भीषण गर्मी बढ़ने से भड़की लपटें। दिल्ली फायरिंग मामले में नया सीसीटीवी, अमर कॉलोनी में गोली चलने के बाद 3 लड़के भागते हुए नजर आए। उड़ीसा के कालाहांडी में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के गोरेला में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार में फैली दहशत। संभल में वाघ भारती तीर्थ की जमीन से 40 साल पुराना कब्जा हटाया गया, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजकोट में पोते ने दादा की हत्या कर बनाई एक्सीडेंट की कहानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग में खाना नहीं बनाने पर सगे बेटे ने दिव्यांग मां को डंडे से पीट पीट कर मार डाला, आरोपी बेटा फरार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में खेत की जमीन अचानक धसी, ग्रामीणों में दहशत। झांसी में जयमाला के बाद हुआ बवाल, 5 लाख की डिमांड, दूल्हा पक्ष का मारपीट का आरोप, दुल्हन ने तोड़ी शादी। भोपाल में आईपीएस अफसर की बेटी ने की खुदकुशी, घर में मिली 11वीं की छात्रा का शव, जांच में जुट गई है पुलिस। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रही मां और 6 महीने की बेटी की मौत। अकोला में छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने चप्पलों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। सूरत में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति, दिल्ली से गिरफ्तार, सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह। हरिद्वार में टाइगर का शिकार करने वालों पर एक्शन, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात के नर्मदा में बीजेपी एमपी जशू राठवा का बंदूक लेकर जश्न मनाते वीडियो वायरल, निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की रैली में थे शामिल। वायनाड में महिला पर हाथी ने किया हमला, महिला की मौत। इंदौर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, गाड़ी टकराने का पर शुरू हुआ था विवाद। इंदौर में वेयरहाउस विवाद में हुई किडनैपिंग, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। ग्वालियर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। मेरठ में गैंगस्टर को पकड़ने के पुलिस ने परिवार की से झड़प, बरपा हंगामा। मथुरा में शराब पीने से रोकने पर पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार। ग्वालियर में पत्नी बने लुटेरे, पत्नी की शादी दूसरे शख्स से कराकर की लूटपाट। लगातार दूसरी बार फाइनल पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, आईपीएल के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रन से बेंगलुरु ने दी मात, आरसीबी के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेस करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रन पर ढेर। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली नाबाद 93 रन की कप्तानी पारी, विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने बनाए 43 रन। आईपीएल के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है बेंगलुरु की टीम, सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया 3रा स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस, एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा मुकाबला। आईपीएल में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगे हैदराबाद और राजस्थान की टीम्स। दोनों ही टीम्स के लिए आज करो या मरो की स्थिति, आईपीएल के फाइनल की रेस से बाहर होंगी आज हारने वाली टीम। राजस्थान रॉयल्स से धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधान, इस सीजन में खेले गए 14 मैचेस में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास क्लासन जैसा बल्लेबाज है, क्लासन ने मिडिल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन।
आईपीएल में अब तक शानदार रहा है दोनों का सफर। हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, राजस्थान की टीम ने चौथे स्थान के साथ बनाई प्लेऑफ में जगह। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। वरुण धवन सारा फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना लॉन्च, 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी डेविड धवन की निर्देशित फिल्म। रितेश देशमुख का दिल के सबसे फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में की शानदार कमाई, 67 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1800 करोड़ से ज्यादा। सामंथा रुद्र प्रभु की फिल्म माँ एंटी बंगारम का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, ईरान ने अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोस्तफा खामनी का बड़ा बयान, खाड़ी देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए नहीं बनेंगे ढाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात को लेकर चर्चा। रूसी हथियार कंपनियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग, ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारी और अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत। पुतिन ने कहा फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए AK-47 काफी नहीं, यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से रूसी फैक्ट्रियां और रिफाइनरीज को हो रहा है भारी नुकसान। रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन के ओडिशा में भारी भीषण हमला, 1 शख्स की मौत 3 घायल। रूस के बाद उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में दागी बैलिस्टिक समेत कई मिसाइल। इजरायली सेना का पूर्वी लेबनान भीषण हमला, हवाई हमले में 12 लोगों की मौत कई घायल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में ढहा पुराना ओवरपास पुल, मलबे में 3 लोग की मौत 3 घायल। बेल्जियम में ट्रेन और स्कूल बस में टक्कर, हादसे में 2 छात्र समेत 4 की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
12: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
13: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: In association with
5: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Vimal, bolo zuban kesri.
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
9: जहां खबर वहां खबरदार.
4: इन एसोसिएशन विद
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
14: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
15: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है. सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं.
16: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा.
15: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया. तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे.
17: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं. दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है.
15: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया. बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी. सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है. कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है. शशि भूषण, पटना, आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मुल्क की आवाम आए दिन पेट्रोल डीजल सीएनजी की महंगाई से परेशान है, फिर भी कहीं रिहायशी सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर बवाल है तो कहीं किले में मजार के खिलाफ जय श्री राम का नारा। पहले इनका मामला समझिए। मलिहाबाद के कसमंडी में 11वीं सदी के राजा कंसा पासी के किले के बाहर जमा हुए ये भक्तगण बड़े मंगल की विशेष पूजा की चाहत लिए पहुंचे। खंडहर बरसों से खाली पड़े हैं पर अब इनकी दरो दीवार गर्द में लिपटी तारीखों के दरारों में इबादत बस सियासत खोजती है। इस जिद का दौरे उसूल बस इतना कि किला हिंदू राजा पासी का है तो मजार मुस्लिम सालार गाजी की यादों वाली कैसे हो सकती है। मौकाए बकरी करीब था तो माहौल भी मुफीद, मजार के मुकाबले सुंदरकांड पढ़ने का शगुफा ऐसा गर्म हुआ कि पहरे में संगीने तर गई, फिर न तो पाठ हुआ न नमाज की इजाजत मिली। इस सियासत का मकसद और मंजिल और मौजू हासिल बस इतना कि जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को पीडीए का चेहरा बनाया उसी पासी समाज के लोग किले पर कब्जे और मजार पर नमाज के विरोध में उठ खड़े हुए। मजहब की सियासत बनाम जात की बात करने वाले मानते हैं कि दरअसल इस नए विवाद की जमीन पर पासी वोट के गणित का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है, क्योंकि दलित वोट का हिसाब उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल दलित आबादी 21%, जाटव 11% यूपी में, पासी 3.5% की ताकत रखते हैं, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक धनगर बाल्मीकि और अन्य 4.5%। दलितों के भीतर जाटव के बाद सबसे बड़ी तादाद पासी वोट की है, जिससे समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले पाले से खींचकर हिंदूवादी राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश कंसा पासी के किले में हो रही है। और अब थाने के मीरा रोड में हुए इस बवाल की कहानी भी सुनिए। सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी करते ये लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि यहाँ बकरे के नाम पर शुरू हुए झगड़े में ब्लेडबाजी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बकरीद की कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाए जाने लगे, कुर्बानी के लिए शेड बना दी गई, इसका विरोध हुआ तो झड़प हो गई, 3 हिंदू युवक जख्मी हुए, पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा, पहरेदारी बैठानी पड़ी। मामला बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ी, पुलिस का तनाव भी। बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे, आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा।
10: अब आधे बकरे निकल गए हैं, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे, ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
5: इस सोसाइटी के बवाल से पुलिस सतर्क हो गई, अमन कमेटी की मीटिंग से लेकर फ्लैग मार्च तक के इंतजाम करने पड़े। बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है और कुर्बानी के लिए जगह भी तय कर दी गई। वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है, इस बार बंगाल से लेकर असम तक, यूपी से तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर राजनीति। पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी। मुंबई से विद्या के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री। सूत्रों की खबर, आला कमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, तय होंगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा ऐतिहासिक आदेश। बकरीद को लेकर लखनऊ के कंसा पासी किले में माहौल गरमाया, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील, ठाणे में कुर्बानी पर भारी बवाल, नैनीताल के फ्लैट्स ग्राउंड में नमाज रद्द। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन, सीपीएम ने बुलाई आपात बैठक, विरोध मार्च निकालेगी पार्टी। इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना, 31 लोगों के मरने और 40 के घायल होने की खबर, लेबनान की तरफ से भी किया गया अटैक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। इस खास पेशकश में वो सारी खबरें होंगी जो इस वक्त की हेडलाइंस है, और वो भी जो आज सुर्खियों में छाने जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें आज सुबह में क्या खास है। बात होगी कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री बदलाव पर मुहर लग चुकी है। हम बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को इस्तीफे के लिए कैसे मनाया। साथ ही बात होगी बकरीद कुर्बानी और नमाज पर उबाल की। रुख करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे लखनऊ और ठाणे का। और बात होगी आज की एक और बड़ी खबर SIR की, जिसे लेकर सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ा फैसला आज आने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में जबरदस्त सियासी हलचल है। अब बदलाव तय माना जा रहा है। बतौर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कल आखिरी दिन हो सकता है। बड़ी खबर यह आ रही है कि सिद्धरमैया की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसमें इस्तीफे का ऐलान वो कर सकते हैं। सिद्धरमैया ने कल अपने मंत्रियों को नाश्ते पर भी बुलाया है। इसे एक फेयरवेल ब्रेकफास्ट के रूप में माना जा रहा है। 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत DK शिवकुमार, जो कि उप मुख्यमंत्री इस वक्त है, उनको कमान सौंपी जा सकती है। DK शिवकुमार आज दिल्ली में है, बल्कि वो फ्लाइट पकड़ के रुक कर रहे हैं वापस कर्नाटका का। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर उनका चला। DK आज ही बेंगलुरु लौटेंगे और सिद्धरमैया की बुलाई ब्रेकफास्ट मीटिंग में भी शामिल होंगे। 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत नवंबर में ही सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करनी थी, लेकिन सिद्धरमैया डटे रहे। 3 साल होने वाले हैं और DK शिवकुमार का गुट दबाव बढ़ा रहा था, तो हाईकमान हरकत में आया है। कल मैराथन बैठक चली और आखिर में राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को इस्तीफे के लिए मना ही लिया। तो काम आसान नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने कर दिखाया। तो आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से सिद्धरमैया को मनाया गया, समझाया बुझाया गया। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें राहुल गांधी ने किसी तरह मनाया। राहुल गांधी ने सिद्धरमैया के साथ 1-to-1 मीटिंग की और इस बैठक में उन्हें 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात याद दिलाई। CM बनते वक्त के वादे का जिक्र भी किया। उन्हें दिल्ली आने का ऑफर दिया, राज्यसभा का भी ऑफर दिया गया। सिद्धरमैया का आखिर कहना ही पड़ा उनको कि आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि राहुल गांधी कहेंगे तो, लेकिन दिल्ली नहीं आऊंगा, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में ही रहूंगा और राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहूंगा, राज्यसभा आने का उनका कोई मन नहीं है। और इसके अलावा ये देखते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसे में कहा, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमारे सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वादा किया गया था तो आपको निभाना ही होगा, हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, ये राहुल गांधी का कहना था। तो ऐसे में सिद्धरमैया ने कहा कि अगर आप, यानी कि राहुल गांधी मुझसे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से मान गए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जाहिर तौर पर अब उम्मीद यही की जा रही है कि वो आज अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह भी कहना पड़ा कि आप कृपया इस्तीफा दे दीजिए और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए आप आइए और हमें आपके समर्थन की जरूरत है, यानी कि आपकी अहमियत है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन सिद्धरमैया माने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं आऊंगा, मुझे राज्य की राजनीति में ही बना रहना है। उन्होंने साफ कर दिया, यानी कि राज्यसभा उनको जो कहा जा रहा था कि एक तरह से ऑफर है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में आ जाए, उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे रहना राज्य की राजनीति में ही है। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, और साथ में सगय राज भी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली और बेंगलुरु दोनों में कैसी गहमा गहमी है। सगय, आपका रुख पहले कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद DK शिवकुमार जब वहां लैंड करेंगे बेंगलुरु में, तो शायद एक नाश्ता हो सकता है जो अहम हो।
1: हाँ जी बिल्कुल, कल एक ब्रेकफास्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। हम अभी बाहर, चीफ मिनिस्टर घर के बाहर है, यहीं पे कल सुबह तकरीबन 9 बजे ब्रेकफास्ट का मीटिंग होगा। अभी कर्नाटका में ये एक ट्रेडिशन है, जब भी एक नया मिनिस्टर आएंगे, नया बिल पास करेंगे, नहीं तो बजट सेशन होता है, उसी टाइम पे ये एक मीटिंग होता है। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी मील हो, उसका मीटिंग होता है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को होस्ट करते हैं। और उसका ट्रेडिशन कल भी फॉलो करेंगे, जहाँ पे सिद्धरामैया उनका आखिरी दिन है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद लोकभवन जाएंगे और उनका इस्तीफा टेंडर करेंगे। यही है अभी लेटेस्ट अपडेट कर्नाटका से, जहाँ पे सीएम ने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ब्रेकफास्ट में बुलाया गया है।
0: जी बिल्कुल, और इस तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग पहले भी होती आई है, बहुत अहम होती है कर्नाटक की राजनीति में। मौसमी, आपके पास आते हैं, ये जो पूरा फैसला लिया गया उसके लिए काफी जद्दोजहद लगी, तो आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से सिद्धरमैया को मनाया गया, लेकिन वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, केंद्र की राजनीति उन्हें नहीं सुहारी, वो राज्य में ही बने रहना चाहते हैं, क्यों?
2: अंजलि देखिए, जब कोई भी ये खबर नहीं चला रहा था, तब हम लोग ने आज तक पे सबसे पहले ब्रेक की थी कि सिद्धरमैया को बोला गया है कि वो स्टेप डाउन करें, और ये वो वक्त था जब कांग्रेस दो लाइन में ही उन्होंने प्रेस वार्ता अपनी खत्म कर दी थी कि सिर्फ राज्यसभा चुनाव के और एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो आप समझ लीजिए कि कोशिश ये थी कि किसी तरीके से कोई रिजेंटमेंट नहीं हो, सिद्धरमैया का जो कदकाट है वो काफी बड़ा है और राहुल गांधी के जरिए ये काम कराया जाए। देखिए काफी टफ काम था, अगर यही बात किसी वेणुगोपाल बोलते या कोई और रणदीप सिंह सुरजेवाला सिद्धरमैया को बोलते तो बात बिगड़ सकती थी। तो उनके मान सम्मान को देखते हुए, हर ये पूरी मामले की पेचीदगी को देखते हुए नेतृत्व ने ये, राहुल गांधी ने डायरेक्ट सिद्धरमैया से बोला, और जाहिर तौर पर ये गोपनीयता इसलिए बरकरार रखी गई कि पिछले कई वाक्य ऐसे हुए हैं जब नेतृत्व को लेकर खूब लड़ाई छिड़ी है और पार्टी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। अब देखिए सिद्धरमैया, इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कह दी तो सिद्धरमैया तुरंत हामी कैसे भर दे, तो उन्होंने कल बल्कि जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी को बोला मैं सोच के बताता हूं, और वो बिना हाँ ना कहे वहां से चले गए। तो जाहिर तौर पे सिद्धरमैया नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये इंसिडेंट इस तरीके से हो और ये बात इस तरह से हो कि उनको अपना पद छोड़ना पड़े, और उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि मैंने अच्छा काम किया है, जिसकी तारीफ भी राहुल गांधी ने कर दी। तो अपने आप में आप देखना होगा, मुझे लगता है कि सिर्फ एक दो हफ्ते की बात है, शायद सिद्धरमैया को मना लिया जाएगा कि वो राज्यसभा ले लें, लेकिन अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो वो राज्य की पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे, क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स उन्होंने की नहीं है।
0: जी बिल्कुल मौसमी, और जैसा कि आपने भी कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है दोनों के बीच खींचतान, जद्दोजहद सामने आई हो, हम आपको दिखाते हैं कि कब कब ऐसा हुआ कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति बाहर आ गई, लेकिन हर बार ऐसा ही लगा कि सिद्धरमैया का पलड़ा भारी रहा, लेकिन इस बार डीके शिवकुमार जो है वो लगता है कि विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, 13 मई 2023 तब से शुरू हो गई थी जब ये नतीजे आए थे कर्नाटक के, और कांग्रेस को 135 सीट मिली थी और बीजेपी और जीडीएस का जो गठबंधन था उसको आप देख सकते हैं कि 66 और 19 सीटें ही मिली। ऐसे में उस वक्त माना यह जा रहा था कि डीके शिवकुमार ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मुख्यमंत्री बने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। तब बात यह निकल के आई कि हो सकता है कि उस वक्त ढाई साल का फॉर्मूला तय किया गया है कि दोनों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, लेकिन पहला मौका सिद्धरमैया को मिला, और ऐसे में डीके शिवकुमार जो है उनकी लगातार मांग आती रही कि मुझे सीएम बनाया जाए, या उनके सपोर्टर्स की ये मांग आती रही। तो 30 जून 2025 को साफ कह दिया गया उनके खेमे की तरफ से कि मुझे मुख्यमंत्री बताया जाए, और हाईकमान तक ये बात पहुंचाई गई। 20 नवंबर 2025 में ढाई साल पूरे हुए सिद्धरमैया सरकार के, यानी कि अगर कोई अंदर खाने ऐसा प्रपोजल था उसका वक्त पूरा हो गया था, तो समर्थकों की मांग तेज हो गई और सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। फिर वक्त आया 3 दिसंबर का, जब डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच गए, सिद्धारमैया बोले कि मैं बुलावे पर ही वहां पर जाऊंगा, यानी कि दिल्ली आऊंगा। और ऐसे में बदलाव को लेकर गहमा गहमी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कर्नाटक में भी, और दिल्ली तक इसकी खबरें चल रही थी। फिर वक्त आया 26 मई का इस साल, जब सिद्धारमैया सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए, यानी कि वो 2.5 साल का फॉर्मूला पार हो चुका था, और डीके शिव कुमार बोले कि समय जवाब देगा। तो उनकी बात को सुनिए, उन्होंने ऐसा कहा, और किसी तरीके से सिद्धारमैया को आखिरकार कहा जा रहा है कि इस्तीफे के लिए मनाया जा चुका है, इसमें राहुल गांधी की अहम भूमिका रही है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी सगय राज का, जो इस वक्त बेंगलुरु में ही मौजूद है। सगय, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या कोई बड़ा नेता वहां पहुंच गया है? या ये भी बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें क्या माना जा रहा है कि क्या पता चलेगा लोगों को? कर्नाटक के लोग वेट कर रहे हैं बहुत दिन से कि क्या हो रहा है।

0: जो सीसीटीवी कैमरों से भी तमाम पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
1: उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि नमाज न तो सड़कों पर होगी न ही सार्वजनिक जगहों पर होगी। तो आपको बता दें, उनका कहना है कि बकरीद में सड़कों पर नमाज की कतई इजाजत नहीं है, बकरीद में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी भी नहीं होगी और सड़कों पर नमाज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं रहेगी। ये उन्होंने पहले भी कहा है। तो कई मुस्लिम नेता नमाज को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है उस पर नाराज भी हैं।
2: स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी।
3: गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
4: ये सारे मुद्दे केवल अल्पसंख्यकों के जब त्योहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है।
1: और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी विद्या और साथ में लखनऊ से जुड़ गए हैं समर्थ श्रीवास्तव। रुक करते हैं पहले समर्थ आपका, क्योंकि मुद्दा वहां ज्यादा गर्माया हुआ है। हमें बताइए कि परेशानी क्या हो रही है और किस तरीके से प्रशासन वहां पर अब कोशिश कर रहा है कि शांति बनी रहे।
5: देखिए, लखनऊ की दो कहानियां हैं, एक तो बकरीद है और दूसरा जो विवाद चल रहा है मलिहाबाद कसमंडी कला को लेकर, यानी कि जो विवादित स्थल है वो मंदिर है या फिर वो मदरसा है या फिर वो एक तरह से मकबरा है, इसको लेकर पूरा विवाद लखनऊ में गहराता जा रहा है। कल हिंदू संगठन उस इमारत पर पहुंचे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, शिव पूजन किया। कोशिश तो संगठनों की थी कि वो करीब तक पहुंचे, लेकिन हालांकि पुलिस और पीएसी के बलों ने 50 मीटर पहले ही उन्हें रोक दिया। और जब उन्हें रोक दिया तो भरी दोपहरी जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और शिव पूजन करने लगे। दूसरी कहानी है बकरीद की। कल बकरीद है और पुराना लखनऊ जो है सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है प्रदेश का। आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहां पर जो है बैरिकेड जो है वो सड़कों पर अभी से लगा दिए गए हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, यहां पर ट्रैफिक का आवागमन चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो कुछ बैरिकेड्स को यहां पुलिस ने फिलहाल लगाया हुआ है और ये बैरिकेड्स आज क्योंकि नॉर्मल डे है आज इनको यहीं पर लगाया गया है। कल यानी कि बकरीद के दिन में जो डायवर्जन्स ट्रैफिक के होंगे वो भी रहेंगे और कई जगह से रास्ता भी रोका जाएगा और कई जगह पर पुलिस इस तरह के बैरिकेड्स का प्रयोग कर रास्तों यानी कि आवागमन ऐसा करेगी कि किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति को अपने त्योहार में दिक्कत भी ना हो और किसी और समुदाय के व्यक्ति को उससे परेशानी भी ना हो। मुख्यमंत्री ने यूपी को लेकर साफ निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होगी। मैं जिस क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहा हूं,
1: आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम पूरे दिन अपडेट लेते रहेंगे। और आइए अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां पर चलिए वहां जाने से पहले आइए आपको बता देते कि ये पूरा मुद्दा क्या है लखनऊ में। लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी कला में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर हुई है। हिंदू संगठन के लोग कल वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे, जैसे हमें समर्थ ने भी बताया, तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे मकबरा बता रहा है। तो ये आपको तस्वीरें उसी इलाके के दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है। पुलिस ने वहां पर हिंदू संगठनों को रोक दिया तो वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा शुरू कर दी। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का, जो इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। समर्थ, ये जो पूरा विवाद है, क्या ये नया है या ये लंबे समय से चलता आया है या अभी इस वक्त जो माहौल गर्माया है उसमें उठ खड़ा हुआ है?
5: देखिए, विवाद तो ये पुराना है, कई दफा अगर आप उस जगह जाएं तो चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन इस बीच में जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध पुरजोर तरीके से करना शुरू किया और खासकर जो पासी समाज है उनके लिए ये बहुत इमारत जगह जो है खास है। विवादित ढांचा कहा जा रहा है, वो पक्ष इसे मंदिर मांगता है, शिव मंदिर मानता है, तो वहीं जो दूसरा पक्ष है जो समुदाय विशेष का है वो इसे मकबरा मानता है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने यहाँ पर नमाज

0: का भी नमाज भी अदा की। हालांकि जमानों से यहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही थी, लेकिन कल उसी के जवाब में हिंदू संगठन भी यहाँ पर पहुंचे और हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और शिव पूजन किया। बाकायदा वो आरती का थाल लेकर पहुंचे थे। उनकी कोशिश थी कि उस ढांचे की तरफ जाएं जिसे कि मंदिर या मकबरा को लेकर उसको लेकर लड़ाई चल रही है, और वहीं पर जाकर पूजा अर्चना करें, वहीं पर पाठ करें। लेकिन पुलिस और पीएसी वहां मौजूद थी, और क्योंकि अभी तक कोर्ट के जरिए कुछ साबित नहीं हो पाया है, इसलिए पुलिस ने उनको वहीं पर जाने से रोक दिया। और जब पुलिस ने उन्हें वहां पर जाने से रोका, तब वो लोग वहीं पर सड़क पर बैठ गए भरी दोपहरी, वहीं पर उसी पास जहां पर वो इमारत है लगभग 50 से 100 मीटर दूर बैठ गए और वहीं पर पूजन पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो कुल मिलाकर ये जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। कल का दिन बेहद खास होने वाला है इस कड़ी में, क्योंकि कल बकरीद है। तो कल ये
1: हमारी नजर रहेगी समर्थ, आपसे लगातार इस पर अपडेट लिया जाता रहेगा। लेकिन अब रुक करते हैं ठाणे का, जहां पर बकरी को सोसाइटी में लाने को लेकर विवाद हुआ। तो विद्या, इस पर क्या ताजा जानकारी है, क्योंकि कल बकरीद है, माहौल तनाव वाला है, वहां अभी क्या स्थिति है?
2: जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ प्रीति साटम जो यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। मैं क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे, इस वक्त हम गोरेगांव इलाके में हैं, यहाँ क्या समस्या आ रही है?
3: यहाँ पे बाजू के ही सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने शेड बीड बांधा है, वहाँ पे बकरे भी है। लेकिन मैं और हमारे जो पूरे रेसिडेंशियल एरिया है, सभी लोग यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खुलेआम नहीं कर सकते आप।
4: शेड बनाया है काले रंग का पूरा टेंट है, तो पूरा खुला तो नहीं है, पूरा कवर्ड है। उनका कहना है कि वो मेंटेन कर रहे हैं सब चीज, इन द सेंस वो जैसे वेस्ट है वो सब बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं।
3: सर्कुलर में ये भी लिखा है
4: बीएमसी के सोशल
3: कि जहाँ पे अलॉट किया है वहीं पे उनको वो काम करना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा ये स्कूल है, स्कूल के बाजू के ही बिल्डिंग में, मतलब आपने देखा होगा कि कितना डिस्टेंस है।
4: लेकिन अभी तो छुट्टी चल रही है,
3: वहाँ पे सर्कुलर में है ना स्कूल्स के यहाँ पे, या हेवी फुटबॉल जो है। और ये बात है कि अलॉट किया वहीं पे काम होना चाहिए ना, जो भी है वो हमारे
4: यहाँ पर कहाँ पर क्या किया जा सकता है।
3: वो शेड बांध के आप खाना खाइए, कवाली गाइए, भाई बहनों से मिलिए, लेकिन इस तरह बकरों की कुर्बानी हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे कि खुलेआम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये
4: तो यहाँ पर कहाँ पर है कि
1: जी,
4: हो सकता है शायद फैसिलिटी ठीक
1: जी
3: दिया है।
1: इस वक्त आपको रोकेंगे तो लगातार जो है ये विवाद बढ़ रहा है सोसाइटी में बकरा लाने को लेकर। ये हम आपको दिखा रहे थे कि इस तरह से आपत्ति जता रहे हैं दूसरे लोग। तो इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
12: Thank God I get to wake
11: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
8: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
14: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
12: Thank God I get to wake
11: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: बस दो हजार
16: अगर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा
17: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो
18: और वही कहाँ गए थे घूमने
19: जीके मैक्स
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
21: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट
21: जेके मैक्स
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. खुशियों के रंग
22: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
23: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
24: सोच बदलो और बैंक भी
25: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था
26: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था
27: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का
28: नहीं
27: और म्यूचुअल फंड से
28: सही
29: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
30: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: In association with
2: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
1: Hint, bade aaram se.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Vimal, bolo zubaan kesri.
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

के शिव कुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आला कमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, आज बेंगलुरु जाएंगे सुरजेवाला। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, तय होंगी चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता

माहौल गरमाया। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील। ठाणे में कुर्बानी पर भारी बवाल। नैनीताल के फ्लैट्स ग्राउंड में नमाज रद्द। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। सीपीएम ने बुलाई आपात बैठक। विरोध मार्च निकालेगी पार्टी।

मौसम की। मई का आखिरी हफ्ता है और गर्मी ने देश के ज्यादातर राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का खतरा बेहिसाब बढ़ा हुआ है, तो मैदानी इलाकों में इसका असर दिख रहा है। वहीं तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर ज्यादा राहत है। ऐसे में लोग हिल स्टेशन की ओर दौड़ रहे हैं। अब नतीजा ये हो रहा है कि वहां भी भारी ट्रैफिक जाम की समस्या दिख रही है। देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे गर्मी का प्रकोप जारी है, और वहीं मनाली जैसे हिल स्टेशंस की भी, जहां पर मैदानी इलाकों से भाग रहे लोग ट्रैफिक जाम वहां पर बना रहे हैं। तो पारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी हो या महाराष्ट्र, दिल्ली हो या हरियाणा, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन पहले देश के सबसे ज्यादा तापमान वाले इलाके थे यूपी के बांदा के, और वहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी वहां तापमान 47.4 डिग्री था। दूसरे नंबर पर राजस्थान का श्रीगंगानगर था जहां 47 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहां का ब्रह्मपुरी जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। वहां तापमान 46.4 डिग्री दर्ज हुआ और चंद्रपुर में 46.4 डिग्री ही रहा। अब रुक करते हैं हरियाणा का, वहां पर भी तापमान ऊंचा है, सिरसा में 46 डिग्री, तो बीकानेर जो कि राजस्थान में है वहां पे भी 46 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली भी तप रही है क्योंकि यहां पर 43.5 डिग्री का तापमान रहा है। तो अब आपको यूपी में उन शहरों का तापमान भी बता देते हैं जहां भीषण गर्मी से जिंदगी बेहाल है। जैसा कि बांदा आप सभी जानते हैं लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, 47.4 पे रहा। उरई का इलाका देख लीजिए, इसके अलावा झांसी पे भी 45 के पार। प्रयागराज भी तप रहा है 45.4 के साथ। तो ये तापमान का जो हाल है उसकी वजह से यूपी बेहाल है। तो चलिए अब बात करेंगे हम दूसरे इलाकों की। तो नौतपा के बीच देश तप रहा है, मैदानी इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी और इसका असर पहाड़ों पर दिखने लगा है। जैसे हमने आपको बताया वहां ट्रैफिक की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नतीजा यह है कि हिमाचल के पहाड़ भी जाम हो गए हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी सब जगह भारी भीड़ है।

0: हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली भी इस वक्त भयंकर जाम से जूझ रही है। सुहाने मौसम और वादियों का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों का सफर अब ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मनाली लेह मार्ग पर करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। वीकेंड मनाने लोग जाते हैं तो उनका पूरा वीकेंड ही बर्बाद हो जाता है।
1: मैं फिलहाल इस समय मनाली ले राष्ट्रीय मार्ग राज्य मार्ग पर हूं, तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक वाहनों की एक लंबी कतार जो है इस पूरे इलाके में लग चुके है। करीब 7 से 8 किलोमीटर जो लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। लोग अब खासे खासे परेशान हो रहे हैं, तो आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये करीब 3 से 4 किलोमीटर का जाम जो है ये हमारे बिल्कुल सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं, लोगों साथ के साथ साथ जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आए हैं, वो काफी जो परेशान नजर आ रहे हैं।
0: गाड़ियां तो बस जैसे सड़क पर रेंगती हुई नजर आई। यही हाल मनाली रोहतांग मार्ग का भी रहा, जहां पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि सामान्य तौर पर 4 घंटे में तय होने वाला सफर 8 से 10 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है।
2: चीज है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग हैं अभी वेकेशन में आए हुए, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक सफर करना पड़ा। मतलब मान के चलो आप मुश्किल से 4 घंटे जैसा तो आदमी ट्रैफिक में रह गए हैं, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा तकलीफ हुई है। हाँ ठीक है, बट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो वेदर है, जो सीन सिनेरियो है, वो उसको भी एंजॉय कर लेते हैं।
3: 7 बजे निकला था जी सुबह होटल से, नगर रोड सी, मैंने रोहतांग जाना था। रोहतांग कस्टमर को घुमाया आज, घुमा के 3-4 घंटे जाम में लगे हैं मेरे। उसके बाद 1 घंटा मैंने घुमाया, अब 3-4 घंटे वापसी में लग रहे हैं। अब जहाँ इन्होंने जाना है वहाँ कम से कम जिस जगह घूमना है, अडिम्बा टेम्पल, वो बंद हो जाना है। इतना आज का दिन खराब हो गया, मतलब जाम ज्यादा है सर, बहुत ट्रैफिक के लिए थोड़ी दिक्कत है।
4: ठीक है, और ट्रैफिक जो है मतलब प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, इतना बुरा हाल है। ठीक है, कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं, सुबह से निकले हैं। ठीक है, प्रशासन मतलब आपको ट्रैफिक का कोई बंदा नहीं मतलब दिखेगा कोई भी। ठीक है, ऊपर से रोड की जो हालत है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही रफ रोड है। 4-5 घंटे सुबह और 4-5 घंटे मतलब अभी फंसे हैं जाम में। ठीक है, पूरे रास्ते में जाम ही है।
0: ये रोहतांग पास और शिंकुला की ओर जाती हुई गाड़ियों की तस्वीरें हैं। यहाँ करीब 4,000 वाहन एक साथ पहुंच गए, जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। प्रशासन की ओर से रोहतांग पास के लिए केवल 1300 वाहनों को ही अनुमति दी गई थी। यहाँ बीते दिनों ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने रोहतांग का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ आकर वो भारी जाम में फंस गए। मनाली रोहतांग मार्ग की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइनें नजर आ रही हैं। सारी गाड़ियां एक के पीछे एक करके फंस गई हैं। ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर मिल रही है, वो तुरंत पहुंच जा रहे हैं और यहां आकर जाम में फंस जा रहे हैं। यही हाल मंडी का भी है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। ये जाम पंडो से थलोट तक दिन भर लग रहा है। कई जगहों पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो आपने देखा, गर्मी की मार झेल रहे लोग इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चाहे तीर्थ स्थान हो या पर्यटन स्थल, हर जगह लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त पहाड़ बुरी तरह से चौक हो चुके हैं, हर जगह जाम लगा हुआ है। 4 घंटे की यात्रा 10 घंटे में पूरी हो रही है और लोग हैं कि रुक ही नहीं रहे।

मैदानों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 के पार है। कई शहरों में तो बिजली का भी गंभीर संकट, लाइट ही नहीं आ रही। भीषण गर्मी में जल संकट भी हो गया है, शहरों में पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही।

0: ऐसे में लोगों को इस प्रचंड गर्मी में पहाड़ दिख रहे हैं। लोगों ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का रुख कर लिया है। नतीजा ये है कि पहाड़ों पर भीड़ का भारी दबाव पड़ गया है, भयंकर जाम लगा हुआ है। लोग मैदानों से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन जाम में फंस जा रहे हैं। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 6,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। मई के महीने में कभी भी इतने ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन नहीं किए। अभी तक का रिकॉर्ड 2023 का है, जब पूरे सीजन में 18 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, और इस बार की भीड़ देखकर लग रहा है कि यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगातार नजर आ रही हैं। जून के महीने में और अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब सवाल है कि इतनी भीड़ मैनेज कैसे होगी, क्योंकि अभी से बद्रीनाथ के रास्ते में जाम के हालात बने हुए हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: मई में ही पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं, तो जून के महीने में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यही हाल केदारनाथ धाम में भी है। ये केदारनाथ का वीआईपी गेट है, देखिए दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे धक्का मुक्की हो रही है। हालात ये हैं कि घंटों लाइन में रहने के बाद भी दर्शन नहीं हो पा रहे। नौबत यहां तक आ गई कि हर भक्त 2,500 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाकर अंदर जाना चाहता है, और उसे भी जगह नहीं मिल पा रही। अभी तक करीब 9 लाख लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने का वक्त हुआ है, और इस 1 महीने में इतने यात्री केदारनाथ धाम में कभी नहीं पहुंचे।
2: पहली बार देखा गया है कि मात्र 34 दिन में इतनी अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हर रोज 30,000 के आसपास यात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ, मधमेश्वर, शहीद जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता है, यहाँ भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। आए दिन बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे पर जाम लग रहा है। पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के अधिक पहुँचने के कारण अब व्यवस्थाएं भी हावी हो गई हैं।
0: लोगों को किस किस तरह की समस्या हो रही है, अब ये जानिए। 8-8 घंटे लाइन में लगने के बावजूद लोग दर्शन नहीं कर पा रहे।
3: ये बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मार रहे थे बदतमीजी से।
4: इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन।
3: अरे उन्होंने कहा कोई वीआईपी नहीं है सब, मतलब बद्दी बद्दी गालियां बोली उन्होंने। मतलब एक, तो ठीक है, एक बुजुर्ग बाबा चलने लकड़ी साथ में थी, उनको धक्का मारा हो।
5: मैंने यहाँ पे मतलब रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था, और सुबह के 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में एक भी पसंद खुली नहीं है। अभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर आ गए दोबारा से, वो अंदर जाने।
6: मैनेजमेंट कैसा आपका?
5: मैनेजमेंट एक बार बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोग बोले धक्का मुक्की हो गया, तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे।
7: यहाँ पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं, 1 बजे रात से, जबकि हमको अभी मन के चलिए अभी टाइम हो रहा है, अभी हमको दर्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रशासन वगैरह कोई सुविधा नहीं है, और वीआईपी जो है वो सबका दर्शन हो रहा हम लोगों के लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है।
4: मंदिर समिति के द्वारा
7: कोई सुविधा नहीं,
4: बिल्कुल आप खुश हो।
7: अभी हमको देखिए, हम 1 बजे रात में लाइन लगे, अभी हमको पूजा
0: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी मौसम बदल गया है, जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 दिन पहले ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, और यहाँ भी हेमकुंड साहिब के रास्ते में भीड़ और जाम लगना शुरू हो गया है। जोशीमठ में जमकर बारिश हो रही है, तो मौसम काफी ठंडा हो गया है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो गई। शनिवार को ही हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, और कपाट खुलते ही बर्फबारी हुई, ठंड भी बढ़ गई, और भारी संख्या में संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है। अब आपको नैनीताल का हाल दिखाते हैं। नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में नैनीताल में भीड़ बढ़ गई है। वीकेंड पर तो नैनीताल और आसपास के इलाकों में पर्यटकों का जबरदस्त दबाव देखने को मिला था। मॉल रोड पर दिन भर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। नैनी झील भी भयंकर भीड़ का दबाव झेल रही है। आज तक ब्यूरो।
6: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
9: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
13: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat-rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
14: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: बस दो हजार
17: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
18: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
19: जहां खबर वहां खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: कमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया।
1: एसआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। तय होंगे चुनाव आयोग की सीमाएं, वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सबसे बड़ी अदालत निकालेगा ऐतिहासिक आदेश।
0: बकरीद को लेकर लखनऊ में कसा, पासी किले में माहौल गरमाया। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद परिसर सील, थाने में कुर्बानी पर भारी बवाल। नैनीताल के फ्लैट ग्राउंड में नमाज रद्द।
1: केरल के पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। सीपीएम ने बुलाया बाद बैठक, विरोध मार्च निकालेगी पार्टी।
0: और इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाने। 31 लोगों के मरने, 40 के घायल होने की खबर। लेबनान की तरफ से किया गया अटैक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन के, सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई है क्योंकि थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ये तय करेगी कि चुनाव आयोग को संविधान और कानून के तहत एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। पिछले साल एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कई राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। चुनाव हो चुके हैं, फैसले आ चुके हैं, सरकारें बदल चुके हैं और अब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला आ सकता है।
0: वक्त हो गया है शतक आज तक का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन
1: सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लातूर के डॉक्टर शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर शिरूरे ने तीन छात्रों को कैंपस के लीक प्रश्न दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनमें से एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी। जांच में सामने आया कि प्रश्न आरोपी पीपी कुलकर्णी से हासिल किए गए थे। जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच जारी। दूसरा गिरफ्तार आरोपी पुणे स्थित मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स फैकल्टी है। आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से फिजिक्स प्रश्न हासिल किए। अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही देश भर में 49 जगहों पर छापेमारी भी की गई। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन। सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 ठिकानों पर रेड। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम से पिनराई विजयन के किराए के घर पर छापेमारी की है। बेटी के आवास पर भी रेड। मामले में आरोप है कि सीएमआरएल कंपनी ने 2018-19 के बीच में पिनराई विजयन की बेटी की कंपनी को 1,72,00,000 रुपए का वैध भुगतान किया। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी है कि कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी सेव जो है शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद से केरल की राजनीति में जबरदस्त हलचल। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बताते हुए बोला हमला।
0: आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन जारी। जंगल के छिपे आतंकवादियों की तलाश कर रही है सेना की टीम। सूत्रों के अनुसार जंगल के इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों का सामना करने के लिए एक और सेना की टुकड़ी भेजी गई है। डीके शिव कुमार केपीसीसी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। सतीश जारकीहोली पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी से बातचीत के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देने पर राजी। कल मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। मैराथन मीटिंग के बाद हाईकमान ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद राजसभा भेजने का ऑफर दिया, लेकिन सिद्धारमैया ने इससे इनकार कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने जाने की अटकलों के बीच कल सीएम सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल रहे पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा जो अटकलें लगाई जा रही है वो सिर्फ अटकलें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा पूरी चर्चा से आने वाले राज्यसभा चुनाव और कर्नाटक के काउंसिल चुनाव पर केंद्रित थी। सीएम पद को लेकर मची हलचल के बीच सिद्धारमैया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं बड़ा ऐलान।
1: एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच सुनाएगी फैसला। अदालत तय करेगी चुनाव आयोग को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने इसे नागरिकता जांच जैसा बताया है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी प्रक्रिया बताया। दिल्ली में एसआईआर को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा ऐलान, 30 जून से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के लिए लगभग 13,000 से ज्यादा बीएलओस की तैनाती, 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची, 4 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता में ईद कार्यक्रम के दरमियान सनातन को गंदा धर्म कहने का उन पर आरोप है। देश में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन। अमित शाह ने कमेटी के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबर को खारिज किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट थी।
0: इस बीच बड़ी खबर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, क्योंकि इसी को लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद फैसला दे सकता है, सुनवाई अब भी जारी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करे।
1: तो चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर को लेकर बड़ी टिप्पणी। चुनाव आयोग को इतनी व्यापक एसआईआर प्रक्रिया चलाने का अधिकार है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था। और अधिकार है, चुनाव आयोग का अधिकार बरकरार है, शक्तियां चुनाव आयोग की बरकरार है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी शुरुआती जो टिप्पणी है वो सामने आई है। इसके साथ साथ कई सारी और भी जो है बातें थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए।
0: संजय, शुरुआती टिप्पणियों में क्या महत्वपूर्ण बातें? संजय, आपको मेरी आवाज नहीं रही
3: है और उनका एक एक कंसर्न।
4: जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
0: जी
4: हाँ, कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी की, जो एसआर की प्रक्रिया है वो किसी भी तरह से डेविएशन नहीं है, जो नियम और कायदे बनाए गए हैं।
3: तरह से डेविएशन नहीं है, जो नियम और कायदे बनाए गए हैं उस कायदे और कानून के मुताबिक है, इसलिए वो कहीं भी ऐसा डेविएशन नहीं है इसमें।
1: संजय, जो बड़ा सवाल था कि एसआईआर वैध है या अवैध है, इस पर भी कोई टिप्पणी आ गई है, फिर नागरिकता की जांच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उन शक्तियों को लेकर क्या टिप्पणी हुई है?
3: कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताया है और निर्वाचन आयोग से कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से इस प्रक्रिया का पालन किया है, लिहाजा कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा वजह नजर नहीं आती है जिससे कि इस प्रक्रिया को रोका जाए या इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाए।
0: कब तक ये सुनवाई पूरी हो सकती है, क्या संभावना है, लंबी चल सकती है क्योंकि कई याचिकाएं हैं?
3: सुनवाई की बात नहीं है अब तो, ये सिर्फ फैसले की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है जिसमें कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई खामी नहीं है और हमने 4 मुद्दों पर जांच की है। 4 मुद्दों पे से क्या जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या निर्वाचन आयोग को उसका अधिकार है? और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत जिस तरह से ये प्रक्रिया चलाई गई है, ये वैध है या अवैध है, जिस पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर यह कहा गया था कि ये इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन का जरिया बनाया गया है। लेकिन पूरी जांच में 4 मुद्दों पर विशिष्ट जांच की गई और अदालत को ऐसा नहीं लगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी है, जैसे कानून में प्रक्रिया बताई गई उस प्रक्रिया का पालन किया गया है।
1: जी संजय, सृष्टि ओझा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सृष्टि, यहां बड़ा सवाल यह था कि भाई इस प्रक्रिया में खामी यह है कि इसके जरिए जो वैध मतदाता है उनके नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर के जरिए, यह आरोप था, इस पर क्या टिप्पणी आई है?
5: राजीव, अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना ऑर्डर सुना ही रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक चीज बहुत क्लियरली कही है वो ये है कि जो प्रोसीजर ईसीआई ने फॉलो किया है, जस्ट बिकॉज वो प्रोसीजर एक नॉर्मल रिवीजन जिस तरीके से होता है, इसके पहले जिस तरीके से एसआईआर किया गया है उससे थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि ईसीआई ने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो सही नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स का जब ये जो मतदाता सूची का जो रिविजन होता है वो उस तरीके से होना चाहिए कानून के अंदर के फ्री और फेयर इलेक्शन होते रहे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईसीआई ने जो भी जो प्रोसेस है फॉलो करते हुए एसआईआर बिहार में जो है कंडक्ट करवाया था, उसका ऑब्जेक्ट ये था कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो पाए। चूंकि उस प्रोसेस का कनेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन से है और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वो प्रोसेस फॉलो किया गया था, इसलिए ईसीआई की उस प्रोसेस में कोई भी गलती निकाली नहीं जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस प्रोसीजर को इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया, काफी मौके लोगों को दिए गए थे, जो मतदाता है उन्हें दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो जो भी जिस भी तरीके की जरूरत होती है कि इलेक्शन कमीशन को जो जो करना होता है इंश्योर करने के लिए कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स सप्लाई कर पाए, उसका मौका पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दिया था। इसका मतलब कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने जो कानून में जो प्रोसेस दिया है उसे फॉलो किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल रिवीजन जो है इसके पहले होता है उससे थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, या सिर्फ इसलिए कि मतदाताओं को कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा सबमिट करने के लिए बोला गया है इस वाले केस में, इसके कारण ये नहीं कहा जाता कि पूरा प्रोसेस ही गलत है, कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर कंडक्ट करवाया है वो गलत है। तो
6: ठीक है, लौटेंगे आपके पास सृष्टि, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हाल में हमने देखा था कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे, विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं कहा था कि चुनाव आयोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जो आगामी चुनाव है राज्यों में, क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वहां पर एसआईआर कराते हैं या नहीं, या फिर मैंडेटरी रहेगा कि सभी जगह पर एसआईआर होगा?
3: ये तो मैंडेटरी है, 20 से 30 साल के अंदर पर, 20 से 25 साल के अंतर पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कराना अनिवार्य है और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है। तीन तरह के रिवीजन होते हैं, एक तो होता है समरी रिवीजन, संक्षिप्त पुनरीक्षण, एक होता है विशेष पुनरीक्षण और एक होता है स्पेशल विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसमें कि फॉर्म भराए जाते हैं और ये देखा जाता है कितने लोग मारे गए, उनके नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। अब तो खैर प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट होता है वैसे ही उसके साथ ही उसका आधार कार्ड और उसका वोटर आईडी, उसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा था कि ऐसा भी संभव है कि आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण हो, क्योंकि इसके बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और रही बात, आपने सवाल किया कि बाकी राज्यों के चुनाव में, तो निर्वाचन आयोग ने अभी पिछले हफ्ते ही ये अधिसूचना जारी कर दी है कि बाकी जितने 22 राज्य हैं उन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जो जून से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक वो अभियान चलेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइमलाइन दी गई है जिससे कि ये प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से पूरी हो सके।
1: बिल्कुल, प्रक्रिया भी चलेगी, प्रक्रिया वैध भी है और चुनाव आयोग को शक्तियां भी, संजय, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि वो इसे जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे चुनावों में।
3: जो झटके खाकर आगे बढ़ते हैं वही वीर होते हैं, और ये विपक्षी पार्टियां भी ऐसी ही हैं कि वो उनको झटका लगे उससे कोई मतलब नहीं, उनका काम झंडा बुलंद करना है, मुद्दे उठाना है, मुद्दे उठाना उनका काम है, मुद्दे उठाए, जब ये सत्ता में आ जाएंगी तो ये भी फिर उसी तरह जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा उससे बचने की कोशिश करेंगी, उसका जवाब देंगी। तो यही सारी चीजें हैं, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है और इनका काम मुद्दे उठाना था, मुद्दे सही या गलत है उसका फैसला करना कोर्ट का काम है, कोर्ट ने वो फैसला कर दिया, कोर्ट ने बता दिया कि जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें कोई दम नहीं था और जो प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए थे प्रक्रियाएं कानून सम्मत हैं, विधि सम्मत हैं और अकॉर्डिंग टू एक्ट हैं, तो इसमें कोई सवाल इफ एंड बट की स्थिति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां जहां हमें कुछ चीजें दुरुस्त करने की जरूरत थी वहां हमने निर्देश दिया और निर्वाचन आयोग ने उनका पालन किया है। तो ऐसे में विपक्ष का ये सवाल उठाना कि ये प्रक्रिया गलत है, निर्वाचन आयोग को अधिकार नहीं है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और ये कह दिया है कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है, संविधान भी उन्हें अधिकार देता है,
6: संविधान भी अधिकार देता है और कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है। सृष्टि मेरे सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, क्या प्रक्रिया जो एसआईआर की है उसमें कोई सुधार की बात कही गई है और ये ऑर्डर कब तक पूरा हो जाएगा?
5: जी जैसा कि शुरू में ही जब कोर्ट ने ये जजमेंट प्रनाउंस करना शुरू किया था, उन्होंने चार मेन सवाल रखे थे, बनाए थे कि ये चार इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस मामले में डिसाइड करने होंगे, जिसमें एक बड़ा सवाल ये था कि इलेक्शन ऑफ कमीशन के पास इस कानून के अंदर, लॉ के अंदर ये पावर है या नहीं कि वो SIR को उस तरीके से कर पाए जिस तरीके से बिहार में और उसके बाद बाकी स्टेट्स में किया गया है। अभी तक जो जितना जजमेंट प्रनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ECI की इस प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं निकाली गई है। कोर्ट ने कहा है कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस केस में याचिकाकर्ताओं ने उठाया था वो ये था कि अपने पावर से बाहर जाके इलेक्शन कमीशन ने SIR करवाया है। बहुत ही जो डॉक्यूमेंट्स भी अगर हम देखें तो आधार कार्ड और राशन कार्ड को डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत सारे चेंजेस जो है पुराने SIR प्रोसेस से वो इलेक्शन कमीशन इस बार लेके आया है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान याचिकाकर्ताओं के हिसाब से जो मतदाता है फील्ड पर उनको होगा, क्योंकि सब मतदाताओं के पास इतने रिसोर्सेज शायद नहीं होते कि वो अपने, अगर उनका नाम डिलीट हो गया है तो इलेक्शन कमीशन या कोर्ट के पास आके जो है अपना नाम वापस,
1: उनके पास कानूनी विकल्प। लेकिन संजय, अप्रत्यक्ष नागरिकता की जाँच की जा रही है, ये SIR पर बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, एक तरीके से कहा जा रहा था कि ये भी NRC ही है, तो ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया।
3: जी हाँ, ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है, जो निर्णय सुनाया है उसमें कह दिया है कि निर्वाचन आयोग ने संविधान और अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहते हुए सारा काम किया है। इस पर उठाए गए सारे सवाल बेबुनियाद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं मिली है। जिन चार मुख्य आधार स्तंभों पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की है, जिसमें एक है कि निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम किया है क्या, और इसमें क्या इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर जोर दिया है क्या, क्या फॉर्म भरमाने की प्रक्रिया सही थी। इन तमाम चार मुद्दों पर विचार करके कोर्ट ने पाया कि ये चार जो सवाल उठाए गए थे मुख्य सवाल, वो सवाल अपने आप में ध्वस्त हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि निर्वाचन आयोग ने जो भी किया अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर किया और सही किया। उसमें जहां कुछ गड़बड़ थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन किया गया, तो इसलिए कहीं कोई डेविएशन नहीं।
1: संजय, जो ऑपोजिशन खासतौर पर ममता बनर्जी का आरोप था कि एक समुदाय विशेष के वोट काटे जा रहे हैं, दल विशेष के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सच नहीं माना?
3: बिल्कुल, कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रक्रिया संविधान में और जनप्रतिनिधित्व कानून में सुझाई गई है उस प्रक्रिया के मुताबिक काम हुआ है, लिहाजा अब इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं कि इन लोग, कोर्ट का ये मानना है जो इलेक्शन कमीशन ने दलील दी थी जिनके पास दस्तावेज हैं उनको हमने अलाउ किया है, कोई भी सुपात्र मतदाता छूटे ना और कोई भी अपात्र मतदाता जुटे ना, इसलिए इसके लिए काम किया गया। और जिस समय विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग ने यहां कोर्ट में स्पष्ट कहा कि विपक्षी पार्टियों को अपील करनी चाहिए, आपत्तियां करनी चाहिए, दावे करने चाहिए, उसके लिए एक महीने का टाइम दिया, बिहार में एक भी विपक्षी पार्टी दावा करने नहीं आई। आखिर क्यों, जब दस्तावेज थे और जब ये कहा जा रहा था कि बिहार में बहुत सारे लोग मर गए हैं लेकिन फिर भी उनका

0: हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम है। बहुत सारे लोग जिंदा हैं, उनका नाम नहीं है। वो कोर्ट में भी पेश किए गए थे, लेकिन वो अपनी चीजें सिद्ध नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक चाय के प्याले में उठाया गया तूफान था, ये स्टॉर्म इन ए कप ऑफ टी वो था, वो साबित हुआ। ये अलग बात है कि विपक्षी नेताओं ने उन लोगों के साथ चाय पी और ये कहा कि हम तो मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के सामने दलीलें नहीं दी गई, साक्ष्य और सबूत पेश नहीं किए गए, लिहाजा वो सारे आरोप और सारी चीजें फुस साबित हुई कोर्ट में, और कोर्ट ने उन्हीं चीजों पर भरोसा किया जिसके साक्ष्य दिए गए, जिसके सबूत दिए गए और दस्तावेज मुहैया कराए गए।
1: सृष्टि मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, क्योंकि अब सर्वोच्च अदालत ने इतनी तमाम महत्वपूर्ण बातें एक तरीके से कहें तो चुनाव आयोग के फेवर में कही है, क्या इसे भी चैलेंज किया जा सकता है?
2: जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा अब इस मामले में इसी केस का रिव्यू फिर से मांगा जा सकता है, लेकिन क्योंकि सेम ही बेंच उसे आगे जाके डिसाइड करेगी तो उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद बहुत ही कम है। जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, ये इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में डिसाइड करेगा वही इस प्रोसेस में आगे भी फॉलो होगा। शुरू में ही कोर्ट ने कहा कि बिहार का मामला सबसे पहले कोर्ट के सामने आया था, तो वो बिहार का जो मामला एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, उसी में जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए उनके बेसिस पे जजमेंट सुना रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है, ईसीआई जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है बिहार में या फिर वेस्ट बंगाल में या बाकी स्टेट्स में, वो एक तरीके से सेम ही है। हाँ, अगर अपना प्रोसेस किसी भी तरीके से एसआईआर का किसी स्टेट में इलेक्शन कमीशन बदलता है तो बिल्कुल पार्टी कोर्ट के सामने आके एक सवाल उठा सकती है। एक और बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की अभी ऑर्डर सुनाते सुनाते आई है वो ये है कि एक जो अगर हम कानून की बात करें और कानून की इलेक्टोरल रोल्स किस तरीके से एडिट होते हैं, किस तरीके से डिलीट उसमें से नाम किए जा सकते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो कोई एक रिजिड एक सख्त जो प्रोसेस है वो कानून में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही एक जो एग्जैक्ट प्रोसेस है आपको हर बार फॉलो करना है। कानून ये मांगता है कि जब किसी भी तरीके का प्रोसेस किया जाए, किसी का नाम अगर डिलीट करा जाए तो उसमें फेयरनेस हो, और ईसीआई ने इस मामले में ये बात
3: फेयरनेस की बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सृष्टि, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजय, किसी भी सीट पर हटाए गए मतदाता और हार जीत का अंतर अगर ज्यादा होगा तो कोर्ट ने कहा था कि हम दखल देंगे, लेकिन कोर्ट ने दखल नहीं दिया है, न जरूरत पड़ रही है।
0: हाँ, फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं पड़ी है जिसमें, हालांकि दावा तो तृणमूल कांग्रेस ने किया है कि कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर हटाए गए लोगों के अंतर से ज्यादा है, लेकिन जब इसकी जांच की गई, निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग सीटों के अलग अलग आंकड़े हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि जो कोर्ट के सामने मामला आया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं की है, कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रही बात बिहार के मामले को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी, बिहार के मामले को और उसके अलावा जो बंगाल का मामला है, उन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है और कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है।
3: बिल्कुल संजय, ऑपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा था कि भाई ये जीत जो हुई है ये बीजेपी की जीत नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया है कि ये एक्चुअली बीजेपी की ही जीत है, चुनाव आयोग की नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वो फेयर थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया एसआईआर की अपनाई गई है, ये बिल्कुल संविधान के दायरे में है, अधिकार क्षेत्र के दायरे में है। निर्वाचन आयोग ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है, जो आरोप लगाए गए थे। जो फॉर्म भरवाने की बात है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि अलग अलग समय देश काल और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं। बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड जो जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन लोगों के अमूमन राशन कार्ड नहीं होते हैं। ऐसे में राशन कार्ड को रखना निर्वाचन आयोग का कहना था कि उचित नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड खो गए, तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे, 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद 12वां डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड भी लगाया गया। आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान का सबूत है, ना कि उसके नागरिक होने का, उसके जन्मतिथि और एड्रेस का प्रूफ नहीं है। उसके लिए आपको एड्रेस और जन्मतिथि के प्रूफ के लिए जो निर्धारित दस्तावेज हैं वही आपको पेश करने पड़ेंगे। तो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा तो आधार कार्ड को पहचान के लिए इंक्लूड करने की बात जरूर कही, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड
3: नागरिक, जो बड़ा प्रश्न लगा था संजय, उठाया जा रहा था कि नागरिकता चेक की जा रही इंडायरेक्टली, जो मेरा सवाल भी था, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कोई टिप्पणी आई है कि क्या चुनाव आयोग के पास इनडायरेक्टली ये नागरिकता

0: फैसले का अधिकार है ना, क्योंकि ये केंद्र के पास है।
1: लेकिन ये तो निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दलीलों में कहा है कि उसका नागरिकता जांचने का कोई पर्पस भी नहीं है, उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ जिनके पास दस्तावेज हैं उनको वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल करने या जो लोग अयोग्य हैं उनके नाम हटाने की प्रक्रिया है। इसमें हम नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय करेगा, इसलिए हम नागरिकता की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन नागरिकता के दस्तावेजों के आधार पर हम वोटर लिस्ट में उनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर फैसला कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है। और ये चूंकि ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है,
0: कुछ अचरज व्यक्त किया गया, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देखा, मतलब लाखों नाम कट गए, या यूपी में देखा करोड़ों नाम कट गए, क्या इस पर किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त किया गया या सामान्य ही माना गया इस इतने बड़ी पैमाने पर नाम काटने को?
1: अभी तक जो ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट ने पढ़ा है, चीफ जस्टिस ने पढ़ा है निर्णय का, उस ऑपरेटिव पार्ट में इस तरह की चीजें अभी तक नहीं आई हैं। कोर्ट ने सिर्फ वो चार बिंदुओं पर अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और फैसला सुनाया है। ये लंबा चौड़ा फैसला है, चूंकि ये आगे आने वाले बहुत समय के लिए समीचीन होगा फैसला, लिहाजा डिटेल ऑर्डर जब ये अपलोड होगा इसकी वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद ही पता चलेगा कि बाकी इन सवालों पर कोर्ट की टिप्पणियां क्या हैं। फिलहाल कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट है कि जो सवाल, जो दलीलें, जो आरोप और आक्षेप निर्वाचन आयोग पर लगाए गए थे उनको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। किन किन आधार पर खारिज किया है वो डिटेल फैसला एक बार आ जाए तो उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
2: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एसआई की वैधता पर जो सवाल उठाए गए थे उस पर पूर्ण विराम अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। एसआई की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो कि काफी हद तक चुनाव आयोग के पक्ष में है, कोर्ट ने एसआर को वैध और संवैधानिक माना है। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया वैध नहीं है, ये सिर्फ उन वोटर्स को उस लिस्ट से बाहर निकालने की है जो या तो मर चुके हैं या फिर उनके पास उचित डिटेल्स नहीं है। एसआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है।
0: तो क्लीन चिट एक तरीके से चुनाव आयोग को मिल गई है, दूध का धुला पाया गया है और चुनाव भी प्रभावित नहीं हुए। चुनाव आयोग की शक्तियों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि उनके पास ये शक्तियां हैं, एसआईआर करवाने की जो है शक्तियां हैं। लेकिन संजय, सवाल तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हमारा एसआईआर पर नहीं, हमारा सवाल उसके उसकी प्रक्रिया पर है, उसका जो इंटेंशन है उस पर, इंटेंशन यानी कि वो लगातार सवाल उठा रहे थे जो है चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, कि हमें उनकी नीयत पर प्रश्न है।
1: तो ये नियत के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नियत का कुछ नहीं है, जो अधिकार के दायरे में किया गया काम किसी तरह से बदनीयती नहीं साबित करता है, और अधिकार का अतिक्रमण हो तो पता चलता है कि हाँ नियत में खराबी थी। इसलिए इन सारे लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, अगर उसके ऊपर भी अगर ये अपना निर्णय थोपना चाहते हैं तो ये राजनीतिक रूप से थोप सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोर्ट ने इन सारे लोगों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को भी बताया कि जो ऐसा यार है वो चार चीजों पर है कि जिनका एक्सक्लूजन है, या तो वो मर चुके हैं या फिर वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या फिर इनका दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नाम है यानी द्वित्व है।
0: संजय, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, कोई खुले में, कोई जो है पीठ पीछे ये जरूर कह रहा था कि जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं वहां पर जो ये किया गया है कि वहां पर 15-20,000 वोटर्स नाम काट दिए गए ताकि वहां पर जो है बीजेपी को फायदा हो जाए, ये सीधे सीधे वो आरोप लगे। तो क्या इतनी डिटेलिंग में गई है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी सुनवाई में?
1: बिल्कुल डिटेलिंग में गई है, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस के दौरान सामने आई हैं। एक बार चीज जब रिकॉर्ड पे आ जाए तो उसका जजमेंट में जरूर जिक्र होता है, उसको रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे ये कोर्ट का विशेष अधिकार है, न्यायिक दृष्टिकोण है। तो जब विस्तृत जजमेंट जब आएगा वेबसाइट पर तो उसमें इन तमाम चीजों के जवाब जरूर होंगे कि इन आरोपों पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की भी दलीलें सुनी, याचिकाकर्ताओं की भी दलीलें सुनी, और उस पर कोर्ट का क्या मानना है उस पर जरूर रोशनी डाली गई होगी। तो ये सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं हमारे, आपके और जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मुझे लग रहा है कि एक बार 2-1 घंटे में जजमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद तमाम चीजों पर से बादल हट जाएंगे और जैसी ये धूप चमक रही है वैसी ही रोशनी उस जजमेंट पर भी पड़ेगी, उन सवालों पर भी पड़ेगी।
2: क्योंकि हाल फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, किसी राज्य विशेष का भी यहाँ पर जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में किया है?
1: अभी फिलहाल तो किसी स्टेट का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये बहस नहीं थी, ये सवाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर था और अभी दिल्ली के जो सीईओ हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो 1 तारीख से वो शुरू हो जाएगी 1 जून से तो उस प्रक्रिया कैसे चलेगी आगे बढ़ेगी उस पर वो ब्रीफ कर रहे हैं और जितने स्टेट्स में हो चुकी है 12-13 स्टेट में उसके अलावा बाकी जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यानी ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब लगभग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया अगले 5-6 महीनों में पूरी हो जाएगी और उस समय ये
3: थे एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहां पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहाँ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है।
4: 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने?
3: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजनेबल हैं, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, ना ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी वो पूरा किया गया।
2: तो ऐसा प्रक्रिया को वैध नहीं ठहरा सकते सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। अब से कुछ ही देर पहले ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, कई याचिकाएं एसआर के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला, कानून के हिसाब से ही चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। क्या यहां पर संजय ये भी स्पेसिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कौन सी शक्तियां थी जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल? विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, इनके जो व्यक्ति विशेष पर भी टिप्पणी की गई कि वो निष्पक्ष नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की?
1: इसमें सब सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल कोई टिप्पणी अभी अब जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने में तो अभी नहीं की है, लेकिन ये सारे सवाल सुनवाई के दौरान उठाए गए थे और जब सुनवाई पे सवाल उठाए जाते, सुनवाई के दौरान चीजें उठाई जाती हैं तो कोर्ट उसका जिक्र जरूर करता है, अपने निर्णय में बताता है कि ये चीजें रिकॉर्ड पे ली गई और इस पर हमारा ऑब्जर्वेशन ये है। फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय को समग्र रूप से अगर आप देखें तो तमाम जितने सवाल थे उन तमाम सवालों को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, अनसुना कर दिया है और कोर्ट के ये निर्णय से स्पष्ट है कि वो तमाम सवाल लचर साबित हुए हैं, वो कोर्ट में अपना रेजोनेंस शो नहीं कर पाए हैं, सिद्ध नहीं कर पाए हैं, लिहाजा कोर्ट ने उनको बिल्कुल
0: देखा। यही है जो आप बात कर रहे संजय, ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि आप हमसे सवाल क्यों पूछते हैं, तो ऑपोजिशन से यहाँ क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए थे, आपने एसआईआर को लेकर इतनी तरह की बातें कि लोगों में डर का माहौल था कि हमारा नाम तो निकट जाएगा, हमें इतनी सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, और जब आप कोर्ट में गए तो कुछ भी ठोस था ही नहीं।
1: जिसके पास दस्तावेज होंगे, जिसके पास प्रमाण होगा, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, लेकिन जिसके पास दस्तावेज नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास खंडित होगा और आदमी की आत्मा सबसे बेहतर जानती है कि वो न्याय के पथ पर है, सच्चाई के पथ पर है या वो झूठ है। चोर को भी ये पता रहता है कि वो चोरी करना गलत काम है, इसलिए वो रात के अंधेरे में करता है, और अपने बच्चों को ये कभी नहीं बताता कि वो क्या काम करता है और क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिन शक्तियों की बात की जा रही है उसमें ये था कि SIR करने का अधिकार तो है, लेकिन इस तरह के फॉर्म बांटकर लोगों से दस्तावेज लेकर, ये निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये सवाल उठाए गए थे, ये मनमानापन है। फॉर्म बांटने को लेकर इन्होंने कि फॉर्म क्यों बांटे जा रहे हैं, दस्तावेज 11 क्यों लिए जा रहे हैं, इसमें से कम दो दस्तावेज की जरूरत बताई गई है। तो उनका ये कहना था कि
5: लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है।
6: लेकिन सर, SIR सवाल उठाती रही है और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में SIR के
5: नहीं। देखिए, आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा
6: सर। लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना फिर।
5: क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगी कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं।
6: सर, कर्नाटक में
2: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय शर्मा, ये जो विपक्ष पार्टियां बैठेंगी अब एक साथ, इस पर मंथन करेंगी, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए थे, हमने तो ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है।
1: अब तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई डेविएशन नहीं है, तो अब याचिकाकर्ताओं के लिए समय है कि वो अपने बयानों से कैसे डेविएट करते हैं, कैसे बताते हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था। अब ये भी कह सकते हैं कि हमारे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, हमने तो कोर्ट के आगे ऐसा बोला ही नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं, राजनीति अपने हिसाब से चलती है।
0: संजय, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है।
7: SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि SIR की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई,
8: देखिए ऐसा है कि SIR की जो प्रक्रिया है, क्या मोदी जी की सरकार में कोई नई नवेली प्रक्रिया है क्या, कोई नई नवेली योजना है क्या? ये भारत में लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली SIR की प्रक्रिया है और SIR के जरिए जो है वो जो वैध नागरिक है और मतदाता है उनकी सुरक्षा होती है और जो अवैध नागरिक और मतदाता है उनकी समीक्षा होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे SIR को लेकर के जो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, एक भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं समाज में के एक हिस्से को ये सांप्रदायिक संदेश देने की कोशिश की कि भैया ऐसा SIR होगा तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, SIR होगा तो तुम जो है वो भारत से निकाल दिए जाओगे। ये लगातार ये तो हिस्ट्री शीटर हो गए हैं ये लोग। इस मामले में आप देखोगे CA में, उसमें भी यही तरह की इसी तरह का इन्होंने जो है वो एक कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की।
7: सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही है, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर के सवाल उठा रही हैं वो रुकेगी?
8: मैं तो मानता हूँ चोर चोरी से जाएगा, सीना चोरी से नहीं जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब देखिएगा अभी जो है वो बिहार के चुनाव में ये चारों खाने चित हुए, इसी SIR का मुद्दा लेकर घूम रहे थे। जो है वो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा, लेकिन अभी भी ये जो है वो अपनी जो इनकी रिवाज और मिजाज है, इनकी जो फितरत है, इनकी जो करतूत है, उससे ये बात नहीं आएंगे। अभी भी इसको जो है वो नए रंग रूप में जो है वो ढाल करके, और चाहे कोर्ट कुछ कहे और चाहे जनता कुछ कहे, चाहे जनादेश कुछ कहे, लेकिन इनका जो उपदेश अभी चलेगा देखिएगा।
7: शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
2: सृष्टि ओझा में सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, जाहिर तौर पर जितने सवाल यहां पर विपक्षी पार्टियों ने उठाए थे, याचिका दायर की थी, अब कोर्ट ने उन सबको एक तरीके से धत्ता बता दिया। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक अधिकार भी है और साथ ही जो प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब और डिटेल्स सामने आ सकेंगी, या फिर सभी कुछ अब साफ हो चुका है क्लैरिटी के साथ?
9: जी बिल्कुल, जितने भी सवाल अभी तक उठाए जा रहे थे, कोर्ट की बात हो या हम देखें बाहर जो अपोजिशन पार्टीज ने भी बार बार इस प्रक्रिया के लिए के खिलाफ सवाल उठाए थे, कोर्ट ने आज बहुत ही साफ तौर पे उसका जवाब दे दिया है। और चूंकि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब है वही फाइनल जवाब है। कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसीजर कानून के अंदर उन्हें फॉलो करना था वही किया है। इस बार अगर इस SIR प्रक्रिया में जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो जनरल प्रोसेस से थोड़ा अगर अलग है, इस कारण से उस प्रोसेस को गलत नहीं बताया जा सकता। कानून के अंदर एक जो रिक्वायरमेंट है बहुत साफ तौर पर लिखी गई है, वो है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर होने चाहिए, किसी भी मतदाता के खिलाफ के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है जो प्रोसेस फॉलो किया है उससे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, साथ ही काफी सेफगार्ड्स भी अपने इस प्रोसेस में उन्होंने रखे हैं जिससे मतदाताओं को मौका मिले बार बार अगर उन्हें कोई।
0: लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तो चिंता है अभी भी बिल्कुल सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि, आपका और संजय आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बकरीद की। कल बकरीद है और कई राज्यों में पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है। दिल्ली से लेकर यूपी महाराष्ट्र तक टेंशन है। यूपी के संभल और मुजफ्फरनगर में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। बड़ी तादाद में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है
2: और दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। बकरीद पर तनाव ना हो पाए और कानून व्यवस्था बरकरार है, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। कई इलाकों में यहां भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो हर बकरीद यूपी का संभल उबल पड़ता है, इस बार पूरी तैयारी के माहौल ना बिगड़े पुलिस ने मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया है। लोगों से शांति की अपील की है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है।
0: अब इस गहमा गहमे के बीच में यूपी के मलिहाबाद में किला और मकबरा जबरदस्त विवाद बना हुआ। ठाणे की मीरा रोड की एक सोसाइटी में तो बकरा लाने पर ऐसी जंग छिड़ी कि पुलिस का पहरा वहां पर बिठाना पड़ा। सियासी पारा गर्मी के पारे को पार कर गया।

0: मुजफ्फरनगर में फ्लैग मार्च, संभल में सुरक्षा बलों का मोर्चा, दिल्ली में भी सुरक्षा चक्रव्यूह। बकरीद से एक दिन पहले यूपी पुलिस की सांसें फूल रही हैं। सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। पुलिस दस्ता सड़कों पर मार्च कर रहा है तो ईदगाह का मुआयना कर रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की, उनका सहयोग मांगा।
1: अभी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, जो हमारे कांवड़ मास की तैयारी शुरू हो गई है, साथ में जो आने वाले बकरीद है उसकी भी तैयारी की जा रही है। सभी जो हितधारक है उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि एक अच्छे माहौल में सभी कुछ सकुशल संपादित हो सके।
0: संभल में भी पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएससी और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
2: बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है।
0: दरअसल 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा का जख्म आज भी संभल में ताजा है। लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है। संभल में सतर्कता दिख रही है तो लखनऊ के मलिहाबाद में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो चुका है। मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर है। हिंदू संगठन के लोग कल वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।
3: नहीं पढ़ने देंगे, क्यों पढ़ी गई? उन्होंने नमाज पढ़ी है, पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है पूजा करना।
0: पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे मकबरा।
4: लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है।
0: योगी सरकार ने बकरीद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक का फरमान जारी किया है। इस फरमान के बाद जहां हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं वहीं विपक्ष की भौहें भी तन गई हैं।
5: किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी।
6: गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
7: ये सारे मुद्दे केवल अल्पसंख्यकों के जब त्योहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है।
0: मजहब कोई भी हो, हर त्योहार अमन शांति का संदेश देता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नमाज और कुर्बानी को लेकर जो कुछ विवाद चल रहा है उसकी छाया कल बकरीद पर ना पड़े। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
8: तो पहरेदारी अलग अलग हिस्सों में बढ़ानी पड़ी है और पहरेदारी संभल में भी बढ़ाई गई। वहां पर बकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया और उसी कंट्रोल रूम में इस समय हमारे संवाददाता अभिनव माथुर मौजूद है। अभिनव, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, क्या क्या देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, प्लीज आप वहां से विस्तार से बताएं।
2: बिल्कुल राजीव, जो है बकरीद के त्यौहार को लेकर संभल का जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट मोड पर है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम अंकित खंडेलवाल लगातार संभल के संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए ये इस वक्त आपको हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से शहर के अलग अलग इलाकों की जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां की निगरानी की जा रही है। और आपको यहां पर देखिए जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी निगरानी करते हुए नजर आएंगे, उनके हाथ में जो भी इन पूरी स्क्रीन के जो भी कमांडिंग इक्विपमेंट है वो उनके हाथों में है। और देखिए बारीकी से जामा मस्जिद का, चाहे वो मुख्य द्वार हो या शहर के दूसरे चौक चौराहे हो, उनकी विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 5 जोन और 18 सेक्टर में संभल को डिवाइड किया गया है, उसमें मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है, 3 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएसी को लगाया गया है, उसमें विशेष तौर पर यह निगरानी की जा रही है। और ये देखिए जामा मस्जिद के सामने बनी हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो यहां पर बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं देखिए पुलिसकर्मियों के द्वारा जो भी सूचनाएं हैं वो लगातार नोट की जा रही है बारीकी से, कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके का अगर कोई मैसेज इस तरीके का मिलता है तो वो उच्च अधिकारियों को जो है इसके बारे में बता सके।
9: बकरीद को लेकर लखनऊ पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीसीपी पश्चिम ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक की है। बैठक में एडीसीपी, एसीपी कैसरबाग और बाजार खला समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। नियमित पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी को और मजबूत किया जाएगा। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ईदगाह मस्जिद और कुर्बानी स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
8: चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और लगता है कि कांग्रेस कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही। कल दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद सिद्धारमैया को कह दिया गया है कि वो गद्दी खाली करें। पूरी संभावना है कि उनकी जगह डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जाए।
9: सिद्धारमैया ने दिल्ली में तो इस्तीफे की हामी भर दी, लेकिन देखने की बात है क्या वो वाकई इस्तीफा देने की औपचारिकता पूरी करते हैं, और करते हैं तो कब करते हैं। खबर यह है कि वो 28 मई को इस्तीफा देंगे, यानी कल कर्नाटक से सिद्धारमैया के सीएम के तौर पर आखिरी दिन हो सकता है।

0: कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का द एंड, राहुल ने कर लिया फैसला, नया सीएम चुन लिया। तो शिव के हाथों में कर्नाटक की बागडोर, सिद्धा इस्तीफा देंगे या नया गेम करेंगे। दिल्ली में चले मैराथन बैठक से सिद्धारमैया के लिए जो आदेश और संदेश निकला, उससे साफ है कि कर्नाटक में उनके लिए सत्ता के दिन अब शेष नहीं रहे। दिल्ली दरबार ने उन्हें बड़ी शिष्टता से बता दिया कि उन्हें सीएम का पद छोड़ना होगा। सूत्रों की माने तो 1-to-1 मीटिंग में राहुल गांधी और सिद्धारमैया की निर्णायक बातचीत हुई। बैठक में राहुल गांधी ने दो टूक कहा, 2.5 साल पहले वादे का आप सम्मान करिए, आप वादे से 6 महीने ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके।
1: सिद्धारमैया का जो कदकाठ है वो काफी बड़ा है और राहुल गांधी के जरिए ये काम कराया जाए, देखिए काफी टफ काम था। अगर यही बात किसी वेणुगोपाल बोलते या कोई और रणदीप सिंह सुरजेवाला सिद्धारमैया को बोलते तो बात बिगड़ सकती थी। तो उनके मान सम्मान को देखते हुए, हर ये पूरी मामले की पेचीदगी को देखते हुए नेतृत्व ने ये, राहुल गांधी ने डायरेक्ट सिद्धारमैया से बोला और जाहिर तौर पर ये गोपनीयता इसलिए बरकरार रखी गई कि पिछले कई वाक्य ऐसे हुए हैं जब नेतृत्व को लेकर खूब लड़ाई छिड़ी है और पार्टी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है।
0: सिद्धारमैया ने भी अपना पक्ष रखा, अपने कामकाज का हवाला दिया। बैठक में सिद्धा ने कहा, आप मेरा सोशल इंजीनियरिंग देखिए, गारंटी स्कीम को कैसे लागू किया ये देखिए, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। लेकिन राहुल गांधी इरादा कर चुके थे, वो सिद्धा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से कहा, आप हमारे सबसे बड़े नेता हैं, आपका हम बेहद आदर करते हैं, जो वादा किया उसका मान रखिए। अब तक सिद्धारमैया को एहसास हो गया था कि इस बार बात नहीं बनने वाली। उन्होंने कहा, आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस पर राहुल गांधी का फाइनल कॉल आया, प्लीज इस्तीफा दे और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। खबर यही है कि सिद्धारमैया 28 मई को इस्तीफा देंगे। डीके शिवकुमार को नया सीएम बनाने की पूरी संभावना है, लेकिन अब भी कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन पर कांग्रेस के नेताओं की लगातार चुप्पी है। सत्ता परिवर्तन पर ना तो सिद्धारमैया कुछ बोल रहे हैं, ना ही डीके शिवकुमार अपनी चुप्पी तोड़ रहे। तो अब सबकी नजर बेंगलुरु और सिद्धारमैया पर है कि आखिर सामने आकर वो इस्तीफा देने का कब ऐलान करते हैं। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ नागराज, बेंगलुरु आज तक।
2: रुकेंगे आज फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम, एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। आउच। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, we can work with that.
6: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: Sokudo.
10: A
9: आगे आगे
10: उधर
9: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
20: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
2: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
22: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
23: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
22: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
24: नहीं,
22: और म्यूचुअल फंड्स है
24: सही।
25: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: बस 2000
4: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
5: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
6: इन एसोसिएशन विद
7: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
6: हिंट, बड़े आराम से
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
6: विमल बोलो जुबा केसरी।

0: एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, कहा वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता छीनना नहीं। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों से खबर, आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। बकरीद को लेकर संभल और लखनऊ का माहौल गर्म, जगह जगह फ्लैग मार्च और मुस्तैदी, कंसा बाली किला सील, मुंबई के सोसाइटीज में कुर्बानी पर भारी बवाल। विशा के पति को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई, भोपाल पुलिस की केस डायरी देख भड़के एजेंसी के अधिकारी, 2:30 बजे सास गिरीबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई। गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, हीट वेव में भट्टी की तरह तप रहे हैं देश के कई शहर, पीएम मोदी की अपील, लू और गर्मी से रहें सावधान, लगातार पीते रहें पानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल, आप देख रहे हैं 12 बजे 12 रिपोर्ट और शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण पर मोहर लगा दी, यानी एसआईआर पर मोहर लगा दी, क्लीन चिट चुनाव आयोग को दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, अब कोर्ट की टिप्पणियां, जो विपक्ष के आपत्तियां आरोप थे, उन पर एक ही करके सिलसिलेवार बताएं।
3: बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की है, वो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, व्यावहारिक है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरोप ये लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमाने ढंग से एसआईआर शुरू कर रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया में कई खामियां हैं, लोगों से उसके फॉर्म भराए जा रहे हैं, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये तो नागरिकता पहचान करने का जैसा हुआ कि वो नागरिकता का प्रूफ दे रहा है निर्वाचन आयोग, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो प्रक्रिया कानून में विदित है, जो बताया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में, उसके मुताबिक ही हो रहा है। और जाहिर है कि निर्वाचन आयोग का मकसद सिर्फ सुयोग्य मतदाताओं को निर्वाचन सूची में, निर्वाचक सूची में शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को वहां से निकालना, ये है। इसलिए इसके इंटेंशन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कतई उचित नहीं है, सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि उसके प्रूफ के रूप में किसी भी तरह की कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीजें या आंकड़े नहीं दिए गए हैं। हवा हवाई बातें
0: हल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख ऑपोजिशन ने किया था। संजय, आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच में ऑपोजिशन अब भी सवाल उठा रहा है। मनोज झा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने।
4: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है तो डिटेल देखते हैं।
0: इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन पर हमारा सवाल केंद्रित था। क्या जो मनोज सवाल उठा रहे हैं संजय, इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिटी आई?
3: इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी ये बात हुई थी। शुरू में इन्होंने कहा कि इंक्लूजन में दिक्कत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और याचिका में यह कहा गया और दलीलें ये दी गई कि एक्सक्लूजन की ओर आगे बढ़ रहा है, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड किया जा रहा है लोगों को। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी याचिका कुछ और कह रही है, आपकी दलीलें कुछ और कह रही हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। और इसके साथ ही पहले इंक्लूजन को लेकर सवाल उठाए गए, बाद में एक्सक्लूजन को लेकर उठाए गए कि एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है लोगों को। तो ये तमाम चीजें कंफ्यूजिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड जजमेंट आने का जो अपलोड हो जाएगा। अभी जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें ऑपरेटिव चीज बाद में एक्सक्लूजन को लेकर उठाए गए कि एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है लोगों को। तो ये तमाम चीजें कंफ्यूजिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड जजमेंट आने का जो अपलोड हो जाएगा। अभी जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें ऑपरेटिव चीजें बताई गई हैं कि किन चार बिंदुओं पर कोर्ट ने विचार किया और किन चार बिंदुओं पर उन्होंने
0: से काफी कुछ क्लियर भी दिखाई दे रहा है। संजय बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिद्धारमैया की विदाई तय हो गई है। बड़ी खबर यह है कि हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए। वो कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धारमैया कर्नाटक की सियासी तस्वीर भी साफ कर सकते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर है। कर्नाटक के सीएम को लेकर लंबे समय से रस्साकशी का ही दौर देखने को मिला। कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सिद्धारमैया की विदाई की पटकथा को अंतिम रूप दिया गया। सिद्धारमैया देर रात जो है बेंगलुरु लौट गए। हालांकि डीके शिवकुमार अभी भी दिल्ली में ही रुके हैं। आखिर दिल्ली में कल की बैठक में क्या हुआ, इस्तीफे पर क्या मान गए सिद्धारमैया, आज तक तो सूत्रों के जरिए राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच हुई बातचीत की अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से कहा कि 2.5 साल का वादा पूरा किया जाना चाहिए, आप 6 महीने अतिरिक्त मुख्यमंत्री रहे हैं। इस पर सिद्धारमैया ने कहा कि मेरी सोशल इंजीनियरिंग देखिए, मैंने जो गारंटी योजनाएं लागू की हैं, मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए। इस पर राहुल ने सिद्धारमैया से कहा कि आप निसंदेह हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर वादा किया था तो हमें उसे पूरा करना होगा, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। इसमें जय जवाब में आगे सिद्धारमैया ने फिर हथियार ही डाल दिए और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि कृपया इस्तीफा दे दीजिए और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आगे आए, हमें आपके समर्थन की जरूरत है। लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यसभा नहीं जाऊंगा, राज्य की राजनीति में मैं बना रहूंगा।
5: कर्नाटक सियासत में सियासी का हलचल और तेज बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल बेंगलुरु पहुंचे हैं और सूत्रों के अनुसार गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोकभवन जाके इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने से पहले वो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे। यही घर है जहां पे कल कावेरी ऑफिशियल रेजिडेंस है सीएम सिद्धारमैया का, यही घर पे कल ब्रेकफास्ट का मीटिंग होगा और उसके बाद लोकभवन जाके इस्तीफा देंगे। डीके शिवकुमार वो उप मुख्यमंत्री है, वो भी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली सूत्रों के अनुसार कल जब बातचीत हुआ था हाईकमांड के साथ, हाईकमांड ने बहुत ज्यादा ऑफर दिया है। उसमें एक है राज्यसभा सीट और दूसरा है नेशनल रोल, क्योंकि उनका पूरा विजन है 2029 लोकसभा इलेक्शन। और कांग्रेस मानता है कि सिद्धारमैया एक बहुत बड़ा बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का लीडर है और उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए।
0: 12:12 रिपोर्ट में बात करेंगे बकरीद की। बकरीद को लेकर शहर शहर बवाल मचा है, कहीं पर कोई माहौल बिगाड़े ना, इसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। दिल्ली में अजमेरी गेट से लेकर जामा मस्जिद तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तो यूपी के संभल और मुजफ्फरनगर से भी फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई। बकरीद कल है और उससे पहले ये फ्लैग मार्च, ये तैयारियां हैं। पुलिस अपनी तैयारी को पुख्ता कर लेना चाहती है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटे ना यूपी के अलग अलग शहरों में। इसके साथ में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में भी पुलिस ने बकरीद से पहले फ्लैग मार्च किया है और कल अजमेरी चौक से लेकर जामा मस्जिद के बीच में पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर दिखाई दिए और फ्लैग मार्च करके उन्होंने साथ साथ में हर पक्ष से बातचीत भी की है। शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को, इस त्योहार को मनाने की उन्होंने अपील भी की। साथ ही साथ एक चेतावनी भी दी गई कि किसी ने अगर अप्रिय घटना करने की प्रयास किया, किसी तरह से माहौल को बिगाड़ने का, खराब करने का, सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और अब चार अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस जगह जगह जगह फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दी है। बकरीद से पहले ही कई जगहों से टेंशन की खबरें सामने आए, तो बकरीद के दिन किसी तरह की कोई टेंशन ना हो इसको लेकर पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी है। और अब आपको लखनऊ से हमारे संवाददाता समर्थ की रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: बकरीद के मौके को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं, पुलिस को चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने को कहा है, जिसके चलते पुलिस ने पुराने लखनऊ में खासकर या जहां बड़ी मस्जिदें हैं वहां के आसपास बल्लियां लगाना शुरू कर दिया है। इन बल्लियों को लगाकर वो एक मार्ग निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, यानी कि समुदाय विशेष के लोग जब नमाज करने के बाद अपनी रूट पर निकले तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और जबकि अन्य लोग जो अपने काम के लिए निकले उन्हें भी किसी के त्यौहार की वजह से कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, जो कुर्बानी है वो भी एक निर्धारित स्थान, यानी कि जो पूर्व में निर्धारित स्थान है वहीं पर दी जाएगी, कोई नई जगह निर्धारित नहीं की जाएगी। इसके अलावा खुले में यानी कि सड़क पर नमाज करना पूर्णतः उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है, ऐसा करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो मौलाना हैं उनसे पुलिस संपर्क साध रही है, मौलाना जो हैं वो भी इस बात से अग्री कर रहे हैं और प्रशासनिक जो नियम है उनका पालन करने की बात कर रहे हैं।
0: बकरीद में कुर्बानी को लेकर कल मीरा रोड में बवाल हुआ था और मुंबई के गोरेगांव में भी विवाद हुआ है। गोरेगांव में इसमें बकरे रखने पर कुछ निवासियों ने आपत्ति की, इस पर बीजेपी पार्षद प्रीति साडम वहां पर पहुंच गए, लोगों ने फिर कुर्बानी का विरोध किया।
7: गोरेगांव ईस्ट में एक जो बिल्डिंग है उसके कुछ बगल में ही एक टेंट बनाया गया है जिसमें बकरे रखे गए हैं बकरीद के लिए, लेकिन इनको काफी समस्या है जिसकी वजह से इन्होंने यहां के बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं उनसे संपर्क किया था। आइए उनसे जानते हैं क्या किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको।
8: जी सिर्फ हमारी इतनी विनती है, वो अपना जो त्यौहार है वो मना है, इतना ही है कि वो अपना बकरी का कुर्बानी ना दे बस इस एरिया में।
7: प्रीति साटम जो यहाँ पर है इनसे बात करते हैं। मैं क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे, इस वक्त हम गोरेगांव इलाके में हैं, यहाँ क्या समस्या आ रही है?
9: यहाँ पे बाजू के ही सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने शेड बीड बांधा है, वहाँ पे बकरे भी है, लेकिन मैं और हमारे जो पूरे रेसिडेंशियल एरिया है सभी लोग यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं।
0: बकरीद में कुर्बानी पर बवाल के बीच में भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने एक अनोखी पहल शुरू की है। हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल में कुर्बानी के लिए इको फ्रेंडली बकरे तैयार करवाए। ये बकरे मिट्टी के बने हैं, एक बकरे की कीमत 1,000 रुपए है। और पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह।
10: देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा 28 तारीख को, और इस दिन कुर्बानी भी दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने इस बार मिट्टी के बकरे तैयार करवाए हैं कुर्बानी के लिए। इन मिट्टी के बकरों को बाकायदा बेचा भी जा रहा है, और ये ऐसे कई सारे बकरे हैं जो इस कारखाने में बनाए गए थे हिंदू उत्सव समिति की तरफ से। पिछले साल भी हिंदू उत्सव समिति ने ऐसे मिट्टी के कई सारे बकरे जो हैं वो उपलब्ध कराए थे, और इस बार भी कुर्बानी के लिए बकरे उपलब्ध हैं। इस पोस्टर के साथ फिलहाल इन बकरों को रखा गया है, क्या मकसद है इसके पीछे का ये हम जानेंगे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करीब 1,000 रुपए की कीमत के ये एक इको फ्रेंडली बकरे को इनका मानना है कि कई लोग खरीद चुके हैं, अभी भी अगर ऑर्डर आते हैं तो और भी बकरे उपलब्ध कराने को तैयार हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, इको फ्रेंडली दिवाली और होली हो सकती है तो बकरीद भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। हालांकि इस पे कई बातें आ सकती हैं, तर्क आ सकते हैं कि किसी के त्यौहार को मनाने का तरीका कैसा हो वो खुद तय करें, लेकिन इन सबके बीच में ये एक पहल है हिंदुत्व समिति की तरफ से कि लोग असल जानवरों की कुर्बानी ना दे करके मिट्टी के बने हुए इन जानवरों की कुर्बानी दे और अपना त्यौहार भी मनाए।
0: 12:12 रिपोर्टर में खबरों का सिलसिला जारी है। और अब अगली खबर, पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई के बीच घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी तादाद में घुसपैठिए वापस लौटने लगे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर हकीमपुर चेक पोस्ट कल से घुसपैठियों की यहाँ भीड़ जमा है जो वापस जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी दी है कि अगर वो बंगाल छोड़कर जल्द से जल्द नहीं गए तो कार्रवाई होगी। डिटेंशन सेंटर बकायदा तैयार और इस बीच में वो वापस लौटने भी लगे हैं।
11: और एनआरस एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है
12: जी।
11: अरे ये लोग चला जाना चाहिए, देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है ये लोग।
0: अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी भी आपको देते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी के बहाने आज गठबंधन इंडिया के नेताओं का मिलन हो सकता है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के बेटे इराज का जन्मदिन है। गाजियाबाद में बौद्ध पार्टी का आयोजन किया गया, इसमें आरजेडी, इसमें गठबंधन इंडिया से जुड़े कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्षी खेमे में इस पार्टी की चर्चाएं गर्म है।
13: लालू प्रसाद यादव अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं और गाजियाबाद में उन्होंने ये समारोह रखा है, जिसमें निमंत्रण तमाम सांसदों और विधायकों को तो गया ही पार्टी के, उसके अलावा बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके बड़े बड़े चेहरे नज़र आ सकते हैं इस जन्मदिन के उत्सव में, जहां पे अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी को भी निमंत्रण गया है। सुबुगाहट तेज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार को भी जन्मदिन में शिरकत करने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। जाहिर तौर पर पूरा लालू परिवार इस जन्मदिन के समारोह में मौजूद रहेगा और दिलचस्प बात यह होगी कि एक तरीके से बिहार की हार और उसके बाद बंगाल की हार के बाद ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए और उनकी खुशी में शरीक होते हुए नजर आ सकते हैं। देखना क्या ये होगा कि क्या वाकई में इंडिया ब्लॉक के भी मजबूती और समीकरण अलग अलग बनते हुए इससे नजर आएंगे कि नहीं।
0: द ट्रिशा मौत मामले में सीबीआई जांच का दूसरा दिन है आज, लेकिन इस मामले की पहले से जांच कर रही भोपाल पुलिस की एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। एसआईटी के सुस्त रवैये पर और केस डायरी को लेकर सीबीआई ने नाराजगी जताई तो एसआईटी प्रमुख एसीपी रजनीश कश्यप कटारा हिल्स थाने में खुद ही केस डायरी पूरी करते नजर आए।
14: त्रिशा की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। मंगलवार से सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है और मंगलवार पहले ही दिन सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और त्रिशा के परिवार से मुलाकात कर उनसे कई अहम सवाल किए। हालांकि सीबीआई ने एसआईटी की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई इस बात पर नाराज दिखी कि एसआईटी बेहद सुस्त रफ्तार से अब तक जांच कर रही थी। इसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एसीपी रैंक के अफसरों ने दिन भर कटारा हिल्स थाने में बैठकर केस डायरी को तैयार किया और मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ये केस डायरी सीबीआई को सौंपी गई। माना जा रहा है कि आज आधिकारिक रूप से सीबीआई समर्थ को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देगी, जिसके बाद इस जांच में और तेजी आने का अनुमान है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: अब राजौरी में चल रहे सर्च ऑपरेशन की करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गंभीर मुगलन जंगल में छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी इन जंगलों में छिपे हुए हैं और छिपे हुए आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और जो सैन्यकर्मी है भेजे गए। सर्च ऑपरेशन का यह 5वां दिन है।
15: जम्मू संभाग के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान में लगातार 5वें दिन आज आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। दरअसल शनिवार को सुरक्षा बलों ने यहां पर इस क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान शुरू किया और शनिवार को तकरीबन सुबह 11:30 बजे

0: जो है वहां पर एक आतंकी हाइड आउट को ध्वस्त किया है। वहां पर आतंकवादियों के कपड़े, बैग वगैरह सब मिले हैं और सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से आशावान है कि जो छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द वहां पर ढेर कर दिया जाएगा।
1: दिल्ली में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। अमर कॉलोनी इलाके में रेस्टोरेंट में एक शख्स को गोली मार दी गई तो खजुरी इलाके में भी युवक को गोलियों से भून दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसी वारदातों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। हालांकि अमर कॉलोनी फायरिंग केस में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।
2: राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था की तस्वीर कैसी है अमर कॉलोनी की इस घटना को देखकर साफ हो जाएगा। एक लड़का अपने दोस्त के साथ पहुंचता है अमर कॉलोनी, जो कि बहुत भीड़ वाला इलाका है। यहां पर पूरी दुकानें शाम को खुली रहती हैं, अच्छी खासी भीड़ होती है। ठीक यहीं पर जहां पर आप देख रहे हैं सामने जो दुकान है, यहीं पर वो बैठा रहता है अपनी दोस्त के साथ। तभी एक लड़का उस पीड़ित लड़के के चेयर के बगल से गुजरता है, उसका हाथ चेयर पे टच होता है, आपस में कुछ कहासुनी होती है, वो लड़का वापस चला जाता है। कुछ ही देर में वो लौट कर आता है, उसके साथ दो तीन लड़के और होते हैं और उनके पास अवैध तमंचा था, वो लेकर के आते हैं और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से लड़के के ऊपर गोली चला देते हैं। क्रिटिकल कंडीशन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, इलाज जारी है। इस घटना की कुछ ही देर के बाद खजूरी खास से जानकारी आई कि 23 साल के एक लड़के को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों तस्वीरों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि राजधानी दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: पटना के मसौढ़ी में अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। मसौढ़ी थाना इलाके के चरमा गांव में यह मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कुल दो आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया।
3: अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा बदस्तूर जारी है। आज पटना के मसौढ़ी में पुलिस ने एक बार फिर से एक कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया। दरअसल 13 मई को पटना के गोपालपुर थाना इलाके में एक कैश वैन की लूट हुई थी जिसमें 27 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इसी मामले में पुलिस ने दो अपराधियों की घेरेबंदी की और फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ में अजय पासवान के पैर में गोली लगी। अजय पासवान के अलावा श्रवण नाम के एक दूसरे अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अजय पासवान और उसके गिरोह के ऊपर 20 से ज्यादा लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब घायल अपराधी का इलाज करा रही है।
1: अब बात करते हैं गर्मी की। दिल्ली में आज मौसम क्या हाल है बता रहे आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
4: बीते कई दिनों से उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी प्रायद्वीप लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है और दिल्ली एनसीआर भी उसे अछूता नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो अभी भी तापमान बढ़ता रहेगा और वो 42 से 46 डिग्री के बीच हो सकता है। यहां तक कि मंगलवार को अधिकतम तापमान दिल्ली के आयनगर में 44 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा गर्म है तो वहीं महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी सबसे गर्म क्षेत्रों में से है। लेकिन अभी मौसम से राहत की जो गुंजाइश है वो फिलहाल देखने को मिलेगी 28 तारीख के बाद, जब मामूली बदलाव यानी तेज हवा चलेगी, बिजली के साथ जो थंडर स्टॉर्म है ओले भी गिर सकते हैं और उसके बाद 28 तारीख की शाम से मौसम में कुछ मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये राहत मामूली होगी, यानी 28 तारीख की शाम के बाद से तापमान धीरे धीरे कम होगा और ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। उधर मानसून की गतिविधियां अपने समय पर तो हैं, परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल हैं, लेकिन 25 तारीख की जो डेडलाइन थी वो पार कर चुकी है और ऐसे में ये संभावना जरूर है कि मानसून 2 से 3 दिनों में दक्षिण भारत में दस्तक देगा।
1: आईपीएल के फाइनल में पहुंच गए हैं आरसीबी और कल के पहले क्वालिफायर में क्या हुआ बता रहे हैं आज तक के खेल संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
5: गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। पहली फाइनलिस्ट बन गई है आईपीएल 2026 की और आरसीबी के पास मौका है टाइटल को डिफेंड करने का। 254 आरसीबी ने बोर्ड पर लगाए थे जिसके सामने गुजरात की टीम 162 रन पर ही ढेर हो गई। गुजरात अब क्वालिफायर 2 खेलेगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना सामना होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से क्वालिफायर 2 में कौन पहुंचता है। आरसीबी ऑलरेडी फाइनलिस्ट बन चुकी है, इसका मतलब साफ है कि क्वालिफायर 2 में से जो भी विजेता बनेगा वो आरसीबी के सामने फाइनल मुकाबला यानी कि खिताबी मुकाबला खेलेगा। वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें, लगातार शानदार रंग में नजर आ रहे हैं और आरसीबी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। इस सीजन भी विराट कोहली ने 600 रन बना लिए हैं और ऑरेंज कैप की रेस में लगातार

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: बस 2000
5: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
6: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
7: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
8: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
9: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था। हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
10: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
11: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
8: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
12: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
8: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
13: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
14: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
15: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
8: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, कहा वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता छीनना नहीं। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री, सूत्रों से खबर, आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी सिद्धरमैया। बकरीद को लेकर संभल और लखनऊ का माहौल गर्म, जगह जगह फ्लैग मार्च और मुस्तैदी, कंसापाली किला सील, मुंबई की सोसाइटीज में कुर्बानी पर बवाल। विशा के पति को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई, भोपाल पुलिस की केस डायरी देख भड़के एजेंसी के अफसर, 2:30 बजे सास गिरीबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई। गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, हीट वेव में भट्टी की तरह तप रहे हैं देश के कई शहर, पीएम मोदी की अपील, लू और गर्मी से रहे सावधान देशवासी, लगातार पीते रहे पानी।

0: ट्रंप और ईरान के बीच में डील कब फाइनल होगी इसका पता नहीं, लेकिन इसराइल अपने काम पर लगा हुआ है। कल लेबनान को लहूलुहान करने के बाद से अब इसराइल ने खासा पर कहर बरपाया। इसराइल ने हमास के कमांडर और 7 अक्टूबर के भयावह हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद ओदेह को मारने का दावा किया है। गाजा पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और उसमें ये बहुत बड़ी कामयाबी का दावा भी किया गया है, जो मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर का हमास का कमांडर मोहम्मद ओदेह को मारने का दावा किया गया
1: है।

0: गाजा की जमीन कल इजरायली बारूद से भरी हुई थी। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। मलबे में तब्दील इमारत में से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा था। इस हमले में हमास का एक बड़ा मिलिट्री कमांडर मारा गया था, जिसका नाम था मोहम्मद ओदेह। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि मारा गया मोहम्मद ओदेह 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। मोहम्मद ओदेह को 11 दिन पहले ही मारे गए एजेदीन अल हद्दाद की जगह पर तैनात किया गया था। इजराइल का कहना है कि इसी ओदेह ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान हमास की ओर से इंटेलिजेंस चीफ का काम किया था। इस तरह ईरान में जंग बंद होने के बाद इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान तक बमों की बारिश शुरू कर दी। लेबनान में तो इजरायली सेना लगातार खतरनाक हमले कर रही है। 26 मई को भी दक्षिणी लेबनान में एक नदी के किनारे इजराइल की सेना और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। जब इजरायली सैनिक लेबनान में उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे थे तो हिजबुल्लाह ने उन पर चुनिंदा हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से परेशान इजराइल ने अब पूरे इलाके पर कब्जा करने की मुहिम शुरू की है। दरअसल लेबनान में लिटानी नदी की सरहद तक सीज फायर लागू रखने की बात अब बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक महीने से ज्यादा समय से सीज फायर लागू होने के बावजूद नदी के दक्षिण का एक बड़ा इलाका अभी भी इजरायली सेना के नियंत्रण में है। ऊपर से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि अब इजरायल लेबनान में अपने अभियानों का विस्तार करेगा।
1: मेरी रक्षा मंत्री की और IDF के चीफ ऑफ स्टाफ की दिशा निर्देशानुसार हम लेबनान में अपना अभियान और तेज कर रहे हैं। IDF बड़ी संख्या में सैन्य बलों के साथ जमीन पर तैनात है और महत्वपूर्ण भूभागों पर कब्जा कर रही है। हम उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ ही हम विस्फोटक ड्रोन के खिलाफ रचनात्मक और नवोन्मेषी समाधान विकसित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अपने वीर कमांडरों और सैनिकों का समर्थन करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। वे मोर्चे पर डटे हुए हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है।
0: हालांकि पिछले ही दिनों लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका में शांति वार्ता भी हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह की हरकतों और इजराइल के मंसूबों के कारण ये शांति भंग हो रही है। आज तक ब्यूरो।
2: गजा पर इसराइली हमले 2.5 साल से चल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल ने गजा में छिपे हमास को खत्म करने की कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन अब तक हमास को खत्म करना मुमकिन नहीं हो सका है। कल रात को गजा में किए गए हमलों से ठीक पहले इसराइल की सेना ने उत्तरी गजा के बेत हनान इलाके में सुरंग की तस्वीरें जारी की थी। इसराइल ने हमले के बाद बनाए गए येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में ये 11 किलोमीटर लंबी सुरंग उनको मिली थी, जिसमें हमास के आतंकवादियों का बड़ा नेटवर्क काम करता था। इन सुरंगों में मौजूद हथियार, गोला बारूद का जखीरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कभी आतंकवादियों का कितना बड़ा नेटवर्क काम करता होगा। ये सुरंग उस घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के ठीक नीचे, जहां से हमास के आतंकवादी हमले करके आम लोगों की रिहाइश का फायदा उठाते थे। गजा से लेबनान तक जो इसराइल ने कहर बरपा रखा है, उसे इसराइल का क्या हाल है, उस पर एक तरफ तो ईरानी मिसाइलों की बौछारें हो रही हैं, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के रॉकेट उस पर हमले कर रहे हैं। उस इसराइल की जमीन पर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा मौजूद है। उन्होंने इसराइल के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट भेजी है जो आपको दिखाते हैं।
3: इजराइल के बेत शेमेश का इलाका है। चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारत के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं, जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच में बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी।
4: मैं इस वक्त इसराइल के बीत शमाश इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां 1 मार्च को ईरान से आने वाली मिसाइल ने इसे निशाना बनाया और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए। और इस तरह के अलग अलग अटैक्स इसराइल के अलग अलग इलाकों में हुए 40 दिन के दौरान। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए और तमाम लोगों की मौत भी हुई और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये एक रिहायशी इमारत थी। इसमें जब ये हमला हुआ तो बच्चों की एक पार्टी चल रही थी। एक 13 साल का बच्चा जो मरने वालों में से सबसे कम उम्र का था और एक 76 साल के जो एल्डर पर्सन थे उनकी भी यहां पर मौत हुई। और ये सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था, यहां पर एक सिनेगॉग था, यानी कि एक धार्मिक महत्व की जगह जहां पर ज्यूज आते हैं, प्रेयर्स करते हैं।
3: इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्सडून ने भी हमें बताई।
4: सो वी सी हियर दिस रबल, दिस वाज द इरानियन क्लस्टर मिसाइल।
5: यह ईरानी आतंकी शासन द्वारा हमारे नागरिक समुदायों पर सीधा हमला था। आप सभी का यहाँ आकर इसे अपनी आंखों से देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, आप एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच हैं और ये वही तरीका था जो हमने ईरान के आतंकी शासन द्वारा रोजाना देखा, जिसका मकसद न केवल अपने नागरिकों को मारना था बल्कि इसराइल में हमारे नागरिकों को भी निशाना बनाना था। आप यहाँ उस यहूदी प्रार्थना स्थल का मलबा देख सकते हैं जो कभी यहाँ खड़ा था। आप यहाँ उन रिहायशी घरों को देख सकते हैं जो परिवार के सदस्यों के थे। दुर्भाग्य से यहाँ 9 लोगों की जान चली गई। यह हमारा दिल तोड़ देता है क्योंकि ये हमारे समुदाय के सदस्य थे। ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ हम रहते हैं और यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने बार बार दोहराया है, चाहे वह इस इमारत पर सीधा हमला हो, जैसा कि आपने 1 मार्च के ऑपरेशन में शुरू में देखा था जहां वे क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करके नागरिकों को भारी संख्या में हताहत और मौत के घाट उतारते हैं। यही उनका लक्ष्य था।
3: ईरान के साथ 39 दिन की जंग में आसमान में फूटते पटाखों और ईरानी जमीन पर बरसते बारूद की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन इसराइल की धरती ने भी कम जख्म नहीं झेले हैं। इसराइल में आज दुश्मन के हमलों की दहशत ऐसी है कि जिन बच्चों की खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की उम्र है, उन्हें डर, दहशत और जान बचाने की जुगत के गुर सिखाने में वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ईरानी मिसाइलें भले थमी हुई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है। हमारी संवाददाता ने इजरायली सुरक्षा बलों के उप प्रवक्ता बेन कोहेन से पूछा कि आम नागरिकों की मौत तो गाजा और लेबनान में भी हो रही है, उनका क्या कहना था सुनिए।
4: Do you think there have been certain reports about civilians being killed there, being affected where the IDF has been deployed? What do you have to say about this?
5: IDF और उसके सामने आने वाले आतंकवादी संगठनों के बीच स्पष्ट अंतर यह है कि हम वास्तव में नागरिकों के जीवन को महत्व देते हैं, चाहे वे इजरायली नागरिक हों या किसी भी मोर्चे पर नागरिक हों। हम बहुत सावधानी बरतते हैं जिसमें अचानक हमला करने की रणनीति को छोड़ देना भी शामिल है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम उन्हें पहले से चेतावनी देते हैं। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहूंगा जो यह सोचते हैं कि बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे झूठी कहानी गढ़ने के लिए मारे गए हिजबुल्लाह आतंकवादियों की संख्या न बताएं। हम सीधे आतंकवादियों पर हमला करते हैं, हम नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहते। हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि ऐसा न हो।
3: इसराइल का कहना है कि लेबनान की सरहद के आसपास रहने वाले इजरायली नागरिकों को जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। अगर लेबनान शांति वार्ता आगे बढ़ाना चाहता है तो सीमावर्ती इलाकों के विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिसे हिजबुल्लाह रोक रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: इसराइल के उत्तरी इलाके में लेबनान का खतरा है तो ऊपर से ईरानी हमलों का भी खतरा है, लेकिन इन तमाम खतरों के बीच में इसराइल में भारतीय कैसे रह रहे हैं? हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा एक ऐसे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में पहुंची जिसे एक भारतवंशी महिला बरसों से चला रही है।
6: इस वक्त मेरे साथ रीना पुष्करणा जी हैं जो इसराइल में भारतीय व्यंजन लेकर आई सालों पहले और अब इसराइलियों को बेहद यहाँ का खाना पसंद है। क्या लग रहा है आपको, कैसे है ये पूरी स्थिति?
7: जो सिचुएशन जो यहाँ पे वॉर की सिचुएशन जो 2.5 साल से चली हुई है, वो एक्चुअली हम ठहर रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव हुए।
6: जो पश्चिम एशिया का युद्ध शुरू हुआ उससे बहुत कुछ अफेक्ट हुआ है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, क्या ऐसा असर यहाँ इसराइल में भी आपको देखने को मिल रहा है?
7: काफ़ी कुछ पेट्रोल यहाँ पे भी बढ़ रही है। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ग्रीस और टर्की से आता था। आजकल टर्की बात नहीं करती इसराइल से, सो वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रीस से आ रहे हैं। पर काफ़ी काफ़ी चीज़ें हिंदुस्तान से, जैसे हमारे मसाले और हमारा बासमती चावल वगैरह, पैसों की कमी है सबके पास
8: जी।
2: इस बीच में मुंबई से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बकरीद से पहले फिर से बवाल हुआ है, एक और सोसाइटी में बवाल की खबर मिल रही है। कुर्बानी का एक और विरोध किया जा रहा है, ठाणे में विरोध किया जा रहा है। हमारे संवाददाता विद्या इस समय उसी सोसाइटी में मौजूद है। विद्या, कौन सी सोसाइटी है, विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं?
9: जी, इस वक्त मैं घाटकोपर इलाके में खड़ी हूँ। घाटकोपर का ये सागर पार्क इलाका है और यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी ये मुझे दिख रही है, यहाँ पे क्या समस्या है?
10: मैं एफ विंग है, उसमें मैं रहता हूँ। हमारे नीचे ही बकरा काटे जाते हैं।
9: अच्छा, हर साल कटते हैं?
10: हर एक साल कटते विदाउट इन्फॉर्मेशन। हम लोग कमिटी में भी है, हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं करते इन लोग कि भाई मैं बीएमसी में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पुलिस थाने में अप्लाई कर रहा हूँ। हम लोग चार दिन से इधर उधर ही घूम रहे हैं, ये बीएमसी में जाते हैं, ये इधर जाते हैं।
9: तो यहाँ पे लेकिन बकरे तो लाए गए हैं, तब आप लोगों को नहीं पता चला?
10: तभी तो एक्शन लिया ना हम लोगों ने। अच्छा। भाई बकरे आ रहे, अरे फिर घुमाने लगे, फिर हम लोग ने एक्शन लिया। अच्छा। कि इधर बहुत जैन लोग भी है, अदर कास्ट भी है, उन लोग ने बोला भाई ये हो रहा है तो इसको रोकना चाहिए। तो
9: मैंने लेकिन जहाँ तक मुझे सुनाई दिया कि यहाँ पे परमिशन बीएमसी ने दे दी थी बकरे।
10: अब बाद में हम लोग का गया ने, हम लोग ने पूरा लेटर लिख के दिया हुआ है, वो लेटर आया मेरे पास।
9: तो उसके बाद आप लोगों ने जब ऑब्जेक्शन रेज किया तब जाके ये, और बीजेपी को भी लोगों को आपने ही संपर्क किया?
10: हमने सबको किया, बजरंग दल ये वो, हम लोग को कराओ कुछ इसका। अच्छा। कि मेरे यहाँ गेस्ट लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
9: अच्छा। तो इतना इम्पैक्ट, लोग ही नहीं आते आपके घर में?
10: घर में नहीं आते, मेरे बच्चे लोग है बाजू में रहते हैं, अभी वेकेशन में वो आते थे, अभी बोलता नहीं आएंगे आपके वहाँ बकरा कटते हैं, हम नहीं आएंगे। बच्चे है, हाँ, एक लड़का एक लड़की है, दोनों मना कर देते नहीं आएंगे आपके यहाँ, आप आओ मेरे यहाँ।
9: तो जैसा आपने सुना यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के घरों पर, उनके सांसारिक जीवन पे लग रहा है, जिसकी वजह से वो ये परेशान थे, इसकी वजह से इन्होंने बीएमसी से लेके काफी सारे लोगों से संपर्क किया। और अब जाके जैसे अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता किरण सुमैया भी आए थे और एक एश्योरेंस दिया गया है कि ये सारे बकरे यहाँ से निकाले जाएंगे।
2: बहुत शुक्रिया विद्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच में आप तस्वीरें देखेंगे, ये किरीट सुमैया है जो वहां पहुंचे हैं और नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी नेता है किरीट सुमैया, राज्य में बीजेपी की सरकार, लेकिन उनको भी नारेबाजी करने पड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल कुछ लोग वहां कुर्बानी का विरोध कर रहे थे, बकरीद के लिए वहां पर जानवर लेकर आया गया है और उसका विरोध किया जा रहा है। और हमने आप उन बुजुर्ग की भी आपको बात सुना है जो कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य आने से बच रहे हैं, कहते हैं कि वहां कुर्बानी हो रही है। और दूसरी तरफ तमाम जो अथॉरिटीज उनको जानकारी दे दी गई है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से ये नाराजगी, ये विवाद, ये बवाल की खबरें आ रही, लेकिन इस बीच में आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सुमैया और कुछ हिंदूवादी संगठन वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो इर्द गिर्द हैं, वो खूब नारेबाजी कर रहे हैं, खूब नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ तो ठाणे की तस्वीर है और ठाणे में एक तस्वीर हमने ये आपको दिखाई, एक तस्वीर आज की हमने दिखाई, एक और सोसाइटी में विरोध हुआ है और वो लोग कह रहे हैं कि हर साल ऐसा होता है। विद्या भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए। विद्या, अब हम हिंदू पक्ष की बात तो सुन रहे हैं लेकिन मुस्लिम पक्ष का इस कुर्बानी को लेकर क्या कहना है? क्या सोसाइटी के भीतर कुर्बानी की उनको परमिशन मिली थी या नहीं?
9: जी बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल अंदर ही सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पर परमिशन दी गई थी, बीएमसी की तरफ से परमिशन दी गई थी सर?
8: बीएमसी ने परमिशन दिया है लेकिन सोसाइटी का लेटर वहाँ पे गया है,
9: जबकि आप लोगों ने उसके बाद जब परमिशन दे दी,
8: क्योंकि ये देखो ये भी कमेटी मेंबर है, ये भी नायक सर भी है, सरदार जी भी कमेटी है, लेकिन इनको किसको बताया नहीं गया, उन्होंने अपने हिसाब से लेटर का मिसयूज करके परमिशन ली गई थी। जब बीएमसी को मालूम पड़ा तो उन्होंने वो परमिशन कैंसिल कर दी।
9: तो इस बार कैंसिल हो गई है, आप लोग कितने सालों से प्रयास कर रहे थे अब जाके?
11: कल रात को यस्टरडे इवनिंग अराउंड 8 o'clock दे हैव रिसीव्ड दैट योर परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, यू कैनॉट कैरी ऑन द कुर्बानी, ऐसा करके आया।
9: लेकिन पहले क्या यहाँ बिल्डिंग रेजिडेंशियल इलाके में ही वो लोग कुर्बानी?
11: हाँ जी वही करते थे FGH के नीचे।
2: ये तो शिकायत करते हैं विद्या, अगर आपके आसपास कोई पुलिसकर्मी वैसे दिखाई दे रहे हैं उनसे भी बात करें कि क्या मामला सॉर्ट आउट हो रहा है अब?
9: देखिए यहाँ पे जो पुलिसकर्मी तो हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये सब के सब लॉ एंड ऑर्डर, देखिए काफी सारे पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पे तैनात हैं, उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो, लेकिन इस वक्त क्योंकि परमिशन जो है वो अथॉरिटीज हायर ऑफिसर्स रहते हैं वो कहीं और से दी जाती है, और ज्यादातर वो बीएमसी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रहती है तो बीएमसी से भी परमिशन ली जाती है, तो तमाम अथॉरिटीज इन्वॉल्व जिसकी वजह से उनका यहाँ पे इस वक्त वो कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि अगर इस तरह की समस्या है तो जैसा कि किरिट जी ने भी अभी किरिट सोमैया जो आए थे बीजेपी के नेता, उन्होंने भी वही कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर हर बार बकरे निकालने पड़ रहे हैं, इस तरह की समस्या।
2: बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यह आरोप है कि फर्जी दस्तखत करने के बाद जो है बीएमसी में अप्लाई किया गया और उसके बाद परमिशन लेके जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
15: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
14: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
16: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ।
17: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम, एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। आउच। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, वी कैन वर्क विद दैट।
18: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
20: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
21: What about me, Jack? What about me?
20: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
22: Well played, Jack. Well played.
20: Jack FM, playing what we want.
23: घर बैठे एक क्लिक पर चंद मिनटों में दूध, दही, चिप्स या रात का खाना दरवाजे पर पहुंचाने वाली ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। दरअसल क्लिक कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स आम आदमी की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी ने इन कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी। इससे क्विक कॉमर्स का औसत डिलीवरी खर्च 35 से 50 रुपए प्रति ऑर्डर हो गया है, वहीं फूड डिलीवरी का खर्च 55 से 60 रुपए प्रति ऑर्डर पर पहुंच चुका है। कुल डिलीवरी कॉस्ट में ईंधन खर्च की हिस्सेदारी करीब 20% है, ऐसे में तेल महंगा होने से प्रति ऑर्डर खर्च में 1.20 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बोझ के बाद ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो और जेप्टो जैसी कंपनियों पर डिलीवरी कॉस्ट का दबाव बढ़ गया। इलाहरा कैपिटल के मुताबिक कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को कस्टमर्स पर डाल सकती हैं, जिससे हर ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज बढ़ जाएगा। अगर कंपनियां खुद ये खर्च उठाती हैं तो स्विगी का मुनाफा 12% और जोमेटो का 5% घट सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल से देश भर में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इसे आपदाओं का दशक बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो करोड़ों लोग दोबारा गरीबी में फंस सकते हैं। कच्चा तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। वहीं दूध, ब्रेड, किराना समेत रोजमर्रा के सामान महंगे हो गए हैं। कंपनियों के मुनाफे में कमी आने पर चटनी का खतरा बढ़ जाएगा। महंगे पेट्रोल से गिग वर्कर्स की कमाई भी घटी है, ऐसे में वो कंपनियों से ज्यादा पे आउट की मांग कर सकते हैं। पीएम ने आम लोगों से गैर जरूरी खर्च घटाकर कम से कम 6 से 12 महीने के इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह दी। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत घरेलू बाजार है। इसकी वजह है कि जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी करीब 57%, लेकिन महंगाई और महंगे तेल की मार से इस खपत की रफ्तार धीमी पड़ी है। लोग गैर जरूरी सामान टाल रहे हैं, महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते विकल्प चुन रहे हैं। इसका असर देश की विकास दर पर पड़ना तय है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज एजेंसियों ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया। बुधवार को यूनाइटेड नेशंस ने भारत की विकास दर अनुमान 6.6 से घटाकर 6.4% कर दी। वहीं मूडीज 6.8 से घटाकर 6% कर चुकी है। इन मुश्किलों को बढ़ाने में इस साल का कमजोर मॉनसून भी बड़ा रोल निभा सकता है। आशंका है कि अल नीनो के असर से इस बार मॉनसून औसत से कम रहेगा। इससे ग्रामीण मांग कमजोर होने पर FMCG सेक्टर में ग्रोथ सुस्त होने का खतरा बढ़ गया। जाहिर है कि अगर खपत थमी तो ऑटो, सीमेंट, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजगार सब पर असर पड़ेगा और बढ़ती महंगाई से सुस्त होती मांग देश की आर्थिक सेहत के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। आदित्य के राणा, आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

एसआई की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, कहा वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता छीनना नहीं। करारों में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आलाकमान कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। बकरीद पर यूपी से लेकर मुंबई तक माहौल गर्म, संबल और लखनऊ में फ्लैग मार्च और मुस्तैदी, कसा पासी किला सील। थाने के बाद मुंबई की सोसाइटीज में कुर्बानी पर भारी बवाल। त्रिशा के पति को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई, भोपाल पुलिस की केस डायरी देख भड़के एजेंसी के अफसर, 2:30 बजे सास गिरिबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई। गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, हीट वेव में भट्टी की तरह तप रहे हैं देश के कई शहर, पीएम मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी, लगातार पीते रहे पानी।

एसआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया। कहा चुनाव आयोग को एसआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार। अदालत ने माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं। सीजीआई ने कहा ईसीआई के पास एसआर करने का अधिकार था और इसे करने के लिए किसी भी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में सहायता मिली। कोर्ट ने संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया। सीबीआई नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में लातूर के डॉक्टर शामिल। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर शिरडे ने 3 छात्रों को केमिस्ट्री के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि प्रश्न आरोपी पीवी कुलकर्णी से हासिल किए गए थे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच जारी है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी पुणे स्थित मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स फैकल्टी है। आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवालदार के फिजिक्स प्रश्न हासिल किए थे। अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में 49 जगहों पर छापेमारी हुई। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन। सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 ठिकानों पर रेड। ईडी ने कार्रवाई पीएमएलए के तहत की है। जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित पिनाराई विजयन के किराए के घर पर छापेमारी की। बेटी के आवास पर भी रेड। मामले में आरोप है कि सीएमआरएल कंपनी ने 2018 से 19 के बीच पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी को 1,72,00,000 रुपए का अवैध भुगतान किया। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि कंपनी ने भुगतान को लेकर कोई सेवा शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताया। आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर बैठक। कैबिनेट को की मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन जारी। जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश कर रही है सेना की टीम। सूत्रों के मुताबिक जंगल के इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकियों का सामना करने के लिए एक और सेना की टुकड़ी भेजी गई है। डीके शिव कुमार केपीसीसी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। सतीश जारकीहोली पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के बाद सुधार मैया इस्तीफा देने पर राजी। कल मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक मैराथन मीटिंग के बाद हाईकमान ने सुधार मैया को सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। सुधार मैया ने इनकार कर दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने के अटकलों के बीच कल सीएम सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल रहे पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। केसी वेणुगोपाल ने कहा पूरी चर्चा सिर्फ आने वाले राज्यसभा चुनाव और कर्नाटक के काउंसिल चुनाव पर केंद्रित थी। सीएम पद को लेकर मची हलचल के बीच सिद्धारमैया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ममता बैनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज। 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धन कहने का आरोप। देश में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन। अमित शाह ने कमेटी के बारे में बताते हुए कहा कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबर को किया खारिज। बोर्ड ने स्पष्ट किया हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट है। सीबीएसई ने यह भी कहा कि वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है। बाकी भारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव। मैनेजमेंट कमेटी में होंगे अब 3 नए चेहरे। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर में रखरखाव के दिए निर्देश। हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों के चयन में अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। अधिकारियों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। मंदिर के आसपास के इलाके के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का ऑर्डर। धामी सरकार का बड़ा फैसला। नैनीताल खेल के मैदान में ईद की नमाज की अनुमति नहीं। सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद डीएसए महासचिव ने अनुमति निरस्त कर दी है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर 105 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया हॉस्टल। पीड़ित परिवारों ने सरकार के फैसले का किया विरोध। का स्मारक स्थल के रूप में सम्मानपूर्वक रखा जाए। विशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा है पत्र। विशा मौत मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। विशा की ससुराल पहुंची जांच टीम। जयपुर के मानसरोवर में अन्नू मीणा सुसाइड केस में जांच तेज। पति फरार घर से। बकरीद को लेकर लखनऊ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। डीसीपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक की। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश।
डीसीपी ने ईदगाह मस्जिद और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखने का आदेश दिया। धर्मगुरुओं से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा चाक चौबंद। एडीजी के नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। इस दौरान गंगा नियंत्रण वाहन के साथ ड्रोन से भी चप्पे चप्पे की निगरानी। रांची में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता युवा मोर्चा से भिड़े। नौतपा शुरू होने के बाद से उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी, भीषण लू और हीट वेव से जूझ रहे लोग। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला एक बार फिर देश का सबसे गर्म स्थान, 47 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। गंभीर लू की श्रेणी में रखा जाता है 47 डिग्री से ज्यादा तापमान। बांदा के अलावा प्रदेश के 5 और जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के पार है पारा। राजस्थान में लू का प्रकोप, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर और फलोदी बने राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी से हाहाकार। सिरसा में 40 डिग्री तापमान दर्ज। दोनों पड़ोसी राज्य सबसे गर्म जगह घोषित। पिछले कुछ दिन में लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा, रोहतक में 45 डिग्री और भिवानी में 44 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दक्षिण भारत में सूरज की तपिश तेज। हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में लगी आग, राहत के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीक�प्टर्स का इस्तेमाल किया। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश। जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खास बैम्बी बकेट ऑपरेशन का ले रहे हैं सहारा। चारधाम यात्रा के बीच उत्तरकाशी में धत के जंगल, वन्य जीव और पक्षियों के अस्तित्व पर संकट। सोलन के जंगलों में धतकी आग, सेना एयरफोर्स और दमकल विभाग राहत कार्य में जुटे। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी आग, गर्मी बढ़ने से भड़की लपटे। दिल्ली फायरिंग मामले में नया सीसीटीवी। अमर कॉलोनी में गोली मारने के बाद 3 लड़के भागते हुए दिखाई दिए। उड़ीसा के कालाहांडी में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से 6 की मौत। लखनऊ में बड़ा हादसा, दूसरी मंजिल से फेंका गया मलबे का बोरा, राहगीर के सर पर गिरा, मौके पर हुई मौत। चुरू में बड़ी कार्रवाई, प्याज की बोरी में छुपा कर ले जाया जा रहा है 2.5 करोड़ का डोडा पोस्ट जब्त। वाशिम में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कॉम्प्लेक्स का डेकोरेशन गिरा, घटना सीसीटीवी में कैद। पटियाला में ब्लू ड्रम में युवती का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, 4 दुकानें चलकर खाक। लखनऊ में शादी के 6 महीने बाद महिला ने लगाई फांसी, मायके वालों लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। झांसी के प्राचीन करौंदी माता मंदिर में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। अमरोहा में हादसा, मंदिर में घुसा ट्रक, रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 की मौत। उत्तर 24 परगना बैरकपुर में सनसनी, 10 दिन के डॉक्टर पति की लाश के साथ कमरे में रह रही थी पत्नी। सुल्तानपुर विदाल 112 पुलिस टीम पर हमला, बीच बचाव कराने गई पुलिस से धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ के गुरेला में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार में दहशत। संभल में वाघ भारती तीर्थ की जमीन से 40 साल पुराना कब्जा हटाया गया, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजकोट में पोते ने दादा की हत्या कर बनाई एक्सीडेंट की कहानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग में नहीं खाना बनाने पर सगे बेटे ने दिव्यांग मां को डंडे से पीट कर मार डाला, आरोपी बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में खेत की जमीन धंसी, ग्रामीणों में दहशत। झांसी की जयमाला के बाद हुआ बवाल, 5 लाख की डिमांड, दूल्हा पक्ष का मारपीट का आरोप, दुल्हन ने तोड़ी शादी। भोपाल में आईपीएस अफसर की बेटी लगाई फांसी, घर में मिली 11वीं की छात्रा का शव, जांच में जुट गई है पुलिस। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रही मां और 6 महीने के बेटे की मौत। अकोला में छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने चप्पलों से की पिटाई, वीडियो वायरल। सूरत में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति, दिल्ली से गिरफ्तार, सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह। आईपीएल में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। टीमों के लिए आज का रोया मरो की स्थिति, आईपीएल के फाइनल की रेस से बाहर होगी आज हारने वाली टीम। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधान। सीजन के लिए 14 मैच में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास है क्लासन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज। आईपीएल में अब तक शानदार रहा है दोनों का सफर, हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में 3रे स्थान पर जगह बनाई, राजस्थान की टीम ने 4थे स्थान के साथ प्लेऑफ में बनाई जगह। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघर में होगी रिलीज। वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्कोना है चुनरी चुनरी गाना लॉन्च, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रितेश देशमुख की करियर की बड़ी फिल्मों से एक राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 24 दिन में 101 करोड़ की कमाई। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में की शानदार कमाई, 67 दिन में वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
समांथा रूथ प्रभु की फिल्म मां एंटी बंगारम का ट्रेलर लॉन्च. फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन. निजुड को लॉन्च. अमेरिकी मीडिया और विपक्षी डेमोक्रेट्स पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप. ट्वीट पर सेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स और चीन वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखकर बताया फर्जी मीडिया. ईरान चीन ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कोशिश तेज करने की बताई जरूरत. विदेश मंत्री वांग यी ने शामिल पक्षों की ओर से युद्ध विराम समझौते के सम्मान की कही बात. हज में शामिल होते सऊदी अरब पहुंचे ईरान तीर्थयात्रियों की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी. मक्का और अमेरिका और इसराइल पर हमले के लगाए आरोप. इसराइली सेना ने मंगलवार को दक्षिण लेबनान पर हवाई हमलों की वीडियो जारी की. हिजबुल्ला ठिकानों को निशाना बनाने का दावा. मंगलवार रात गाजा में एक रिहायशी इमारत को इसराइल ने बनाया निशाना. इसराइल में हमास के नए सशस्त्र विंग प्रमुख ओदे पर हमले का दावा. अमेरिका के वॉशिंगटन में केमिकल टैंक में विस्फोट से कई लोगों की मौत की आशंका. अधिकारियों के मुताबिक कई अन्य हैं घायल. मेडिकल चेकअप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को बताया पूरी तरह स्वस्थ. अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे. अमेरिका की न्यूजर्सी में मंगलवार को आइस डिटेंशन केंद्र के बाहर प्रदर्शन. आइस एजेंट्स की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की. यूरोप में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित. कई लोगों की गई जान. ब्रिटेन में टूटा उच्चतम तापमान का 100 साल पुराना रिकॉर्ड. जॉर्जिया की राजधानी में हजारों विपक्ष समर्थकों का प्रदर्शन. स्वतंत्रता दिवस के जश्न. मौजूदा राजनीतिक हालात का विरोध.

0: और अब बात है एसआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और ये मनमाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक नहीं है बल्कि कानूनी तौर पर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
1: आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है।
2: बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा।
3: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
0: इस बीच इस पूरे फैसले पर मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने।
4: एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई
5: देखिए ऐसा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, क्या मोदी जी की सरकार में कोई नई नवेली प्रक्रिया है, क्या कोई नई नवेली योजना है, क्या ये भारत में लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली एसआईआर की प्रक्रिया है। और एसआईआर के जरिए जो है वो जो वैध नागरिक है और मतदाता है उनकी सुरक्षा होती है, और जो अवैध नागरिक और मतदाता है उनकी समीक्षा होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे एसआईआर को लेकर के जो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, एक भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं समाज में के एक हिस्से को ये सांप्रदायिक संदेश देने की कोशिश की कि भैया ऐसा एसआईआर होगा तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, एसआईआर होगा तो तुम जो है वो भारत से निकाल दिए जाओगे। ये लगातार ये तो हिस्ट्री शीटर हो गए हैं ये लोग। इस मामले में आप देखोगे सीए में, उसमें भी यही तरह की इसी तरह का इन्होंने जो है वो एक कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की।
4: सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही है, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर के सवाल उठा रही हैं वो रुकेगी?
5: मैं तो मानता हूँ चोर चोरी से जाएगा, सीना दूरी से नहीं जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब देखिएगा अभी जो है वो बिहार के चुनाव में ये चारों का निश्चित हुए, इसी एसआईआर का मुद्दा लेकर घूम रहे थे। जो है वो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा,

0: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
1: अब क्या हो सकते हैं
0: भाई, अब विरोधी के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
2: और बात पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद बांग्लादेशियों पर सख्ती बढ़ गई है। शुभेंदु सरकार के ऐलान के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेश जाने वालों की भीड़ लग गई है। तो दूसरी ओर बांग्लादेशियों की पहचान कर सरकार होल्डिंग सेंटर भेज रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद में दो होल्डिंग सेंटर भेजे गए।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है, 3D नीति, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पहले डिटेक्ट, उसके बाद डिटेन और फिर डिपोर्ट कर देना, यानी जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे उन्हें दोबारा बांग्लादेश भेज देना। और ये खबर सामने आने के बाद अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर्स बनाने की भी बात की गई और कुछ कुछ जगहों पर होल्डिंग सेंटर्स तैयार भी हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि हकीमपुर, ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे, एसआईआर जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं। यहां आप देख सकते हैं कि हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं उन दस्तावेजों को बारीकी से परखा जाता है, फिर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है उस बायोमेट्रिक प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स को रखा जाता है रिकॉर्ड में, फिर उन दस्तावेजों को बांग्लादेश के बीजीबी को हैंडओवर किया जाता है, फिर बीजीबी अपने दस्तावेजों के साथ उन दस्तावेजों को वेरीफाई करते हैं, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि जिन्हें भेजा जा रहा है वो बांग्लादेश के नागरिक हैं तब उन्हें दूसरे छोर पर रिसीव कर लिया जाता है बीजीबी के ओर से। फिलहाल जो सूत्र के मुताबिक पता चला है कि तकरीबन 50 के आसपास लोग कल यहां से पहुंच चुके हैं इस हाकिमपुर चेक पोस्ट से दूसरे छोर पर, आज अभी भी सैकड़ों के तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। यहां पर कुछ लोग, यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को अंदर ले जाया गया, उन्हें उस ट्रक पे ले जाया जा रहा है जहां उनको आगे जाके वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद बीजीबी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये काफी लंबा प्रोसेस है लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से पिछले साल हजारों के तादाद में लोग हाकिमपुर चेक पोस्ट आ पहुंचे थे, शायद इस बार भी ये शुरुआत है और आने वाले समय में और भी तादाद में लोग यहां इकट्ठा होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, हाकिमपुर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर।
2: वक्त की छोटी सी ब्रेक का उछला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
7: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
6: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: Order for Jennifer C.
10: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
9: Yeah. Can you handle that much caffeine?
10: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
9: Oh, really? That's great.
10: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
9: Yeah, you just said that.
10: Did you say I just said that?
9: Yeah, I'm cutting you off.
10: I can't have any more? Why not?
11: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
12: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, कहा वोटर लिस्ट में नाम हटने का मतलब नागरिकता छीनना नहीं है। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर, आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धारमैया। बकरीद पर यूपी से लेकर मुंबई तक माहौल गर्म, संभल और लखनऊ में फ्लैग मार्च और मुस्तैदी का सापासी किला सील, थाने के बाद मुंबई की सोसाइटीज में कुर्बानी पर भारी बवाल। त्रिशा के पति को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई, भोपाल पुलिस की केस डायरी देखकर भड़के एजेंसी के अफसर, 2:30 बजे सास के दिबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई। गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, हीट वेव में भट्टी की तरह तप रहे हैं देश के कई शहर, पीएम मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी।

0: इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कल बकरीद है, उससे पहले इसे लेकर कई राज्यों में तनाव बढ़ गया है। कहीं टकराव की स्थिति है तो कहीं भारी सुरक्षा इंतजाम कर तमाम आशंकाओं को टालने की कोशिश है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी के अलग अलग शहरों में सड़क पर नमाज और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी रोकने को लेकर कई जिलों की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कुर्बानी पर सियासी संग्राम है। मुंबई के डिंडोशी, घाटकोपर और कुछ अन्य इलाकों में बीजेपी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया है। इसके अलावा आपको बता दें, बकरीद से पहले यूपी में सरकार सख्त है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार ने पहले ही बता दिया है कि नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई है। सरकार ने बता दिया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। सीएम के आदेश के बाद यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों में खास चौकसी है।
1: योगी सरकार का फरमान है, कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई। सड़कों पर नमाज अदा की तो होगा एक्शन। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी दी गई तो नहीं बचेंगे दोषी। बकरीद से पहले ही यूपी सरकार ने सख्त फरमान दे दिया। इसके बीच यूपी में जबरदस्त तैयारी है। तमाम जिलों में नमाज और कुर्बानी के आयोजनों की कसरत की जा रही है। लखनऊ पुलिस का ये फ्लैग मार्च उसी तैयारियों का हिस्सा है। लखनऊ, नखास और राजा बाजार चौकड़िया इलाके में भारी संख्या में पुलिस वाले मार्च करते दिखे। यूपी सरकार की सख्ती है, लिहाजा प्रशासन फुल अलर्ट मोड में है। लखनऊ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बकरीद से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। लखनऊ पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नियमित पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी को और मजबूत करने पर जोर है। साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तैयारियों की इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने ईदगाह, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए।
2: आप यहाँ पर कोई आदेश हो बताइए, आप बिना आदेश आप पूजा नहीं रोक सकते।
1: लखनऊ पुलिस की ये तैयारी बैठक उस वक्त हुई है जब मलिहाबाद इलाके में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो गया। मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर हुई। हिंदू संगठन के लोग 26 मई को वहां हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।
3: पर देखिए, हिंदू संगठन पहुंचा है पूजा करने के लिए और थाली लेकर आया है अपने साथ में पूजा की, और उन अड़े हुए हैं कि हम आज बड़ा मंगल है, यहां पर हम पूजा करेंगे हनुमान की और हनुमान चालीसा करेंगे।
1: तनाव बढ़ा तो कसमंडी किला मस्जिद विवाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। बकरीद के दिन विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंसा फांसी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो दूसरा इसे मकबरा।
4: मकामी लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है।
1: ऐसे तनाव को देखते हुए बकरीद से एक दिन पहले यूपी पुलिस की सांसें फूल रही हैं।
5: बड़ा पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहां पहुंचे तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो ये संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात किए गए हैं।
1: सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी की एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आई। मुजफ्फरनगर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। पुलिस दस्ता सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा है, साथ ही ईदगाह का मुआयना भी कर रहा है। मुजफ्फरनगर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और कानून तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की और उनका सहयोग मांगा।
6: सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से समय समय पे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शहर के जितने संवेदनशील पॉइंट है उस पे जाके फुट पेट्रोलिंग करते हैं और पूरी फोर्स को लेके आते हैं। साथ में शासन के द्वारा जो है बहुत सारे नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग होती है, उनकी भी ट्रायल होता है सर। साथ उनमें जो सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके कई सारे हम लोग को सहयोग मिलता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है।
1: संबल में भी कुछ ऐसी ही तैयारी है, वहाँ पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएसी और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से वहाँ पुलिस बल अलर्ट पर है।
7: बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है, और इसी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर के बाद से जो पूरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील बनी रहती है, ऐसे में उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को जो है कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसके लिए आप यहां देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद जो रखी जा रही है। और
1: 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के जख्म आज भी संभल में ताजा है, लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है। पुलिस ने पूरे संभल को 5 जोन 18 सेक्टर में बांट दिया है। 3 कंपनी आरआरएफ और पीएसी के अलावा कई थानों के पुलिस फोर्स की तैनाती का फैसला किया है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। यूपी पुलिस ने बकरीद को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि कोई तनाव ना बढ़ पाए। संभल से अभिनव माथुर और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वही यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। पुराने लखनऊ में जगह जगह बैरिकेडिंग हुई है, सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुर्बानी ना हो इसे लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बकरीद पर बड़ा इमामबाड़ा के पास से देखिए आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट।
5: तो जो मस्जिद है वहां पर नमाज होती, लेकिन जब विवाद बढ़ा, पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहां पहुंचे, तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है, तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहां आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहां भी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर रास्ता जो आवागमन है वो बाधित ना हो और दिक्कतें ना हो, इस वजह से यहां पर ये मुस्तैदी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की दृष्टि है, पुलिस की सुरक्षा यहां पर बनाई गई है, बढ़ाई गई है। आपको मैं इधर भी लेकर आऊँगा तो यहां भी आप देखेंगे तो तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार तैनात हैं, कुछ यहाँ पर हैं कुछ उस छोर पर हैं। तो पुलिसकर्मी जो हैं वो दिन हो दोपहर से मत भरी दोपहरी है, तेज़ गर्मी है, इस गर्मी में भी यहाँ पर आपके लिहाज से ये जगह काफ़ी अहम हो जाती है।
0: उधर यूपी के बलरामपुर में बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
8: उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्यौहार है, अलग अलग जिलों में इसकी तैयारियां की गई हैं। पुलिस फोर्स को नाकेबंदी के लिए हर जिले में तैयार किया गया है। इस समय बलरामपुर जिले में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार है और कहीं भी किसी तरीके की कोई स्थिति ना पैदा हो उसके लिए भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियों का आवागमन है उसको भी रोक के डाइवर्ट किया जा रहा है, चूंकि कल की जो तैयारियां होंगी उसमें जो काफी लोग आने वाले हैं उनको एक दिशा में भेजा जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर पुलिस फोर्स को अलग से निर्देश भी मिले हैं कि वो किस तरीके से इस पूरी जो बकरीद का त्यौहार है उसको पूरी तरीके से संपन्न कराएगी, और इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ उमेश सिंह जी मौजूद है। उमेश जी, किस तरीके से जागरूकता और तैयारियां हैं आप लोगों की?
9: वैसे तो हम लोगों का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, मृत्यु दर को न्यून करने के लिए प्रतिदिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कल बकरीद का त्यौहार है, शहर में ई रिक्शा का वन वे भी रहेगा और यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहेगी।
0: अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च से लेकर सुरक्षा बढ़ाने तक की कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि बकरीद आने से पहले ही वहां पर इस तरह की घटनाएं हो गई कि अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर, लखनऊ, घाटकोपर मुंबई, बलरामपुर, इन तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

0: और इस बीच यूपी नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बकरीद से पहले तनाव है। पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद है।
1: मुंबई के डिंडोशी इलाके में ये मैरीगोल्ड को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां बकरों की कुर्बानी की तैयारी थी, लेकिन इसकी खबर लगते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। लोगों ने कुर्बानी का विरोध किया है।
2: यहाँ पे बाजू के सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए तैयारी हो चुकी है।
3: लेकिन बिल्डिंग है?
2: ये आजाद बिल्डिंग है और वहीं पे जो आपने देखा होगा कि शेड बांधे, बकरे भी है। लेकिन हम यहाँ पे स्थानीय नागरिक जो है और मैं यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि खुलेआम बकरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। आप हम जैसे बाकी के त्योहार मनाते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, वैसे भी उन्होंने भी करना चाहिए।
1: घाटकोपर में भी बवाल हुआ है। वहाँ आज सुबह एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विवाद हो गया। कुर्बानी के लिए बीएमसी ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में मामला तूल पकड़ा तो बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की बात कही।
4: अरे पार्थ पट्टा, कुर्बानी जरूर होगी, होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बत्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी।
1: एक दिन पहले ही किरीट सोमैया और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने बकरीद के दौरान हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी रोकने की मांग की। ऐसी सियासत के बीच मुंबई के मीरा रोड इलाके में भी तनाव बढ़ गया था। रविवार को दिन भर चले हंगामे के बाद रात में भी सोसाइटी परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान एक युवक पर ब्लेड से हमला किया गया। पुलिस ने उस हमले की शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार पहले ही बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश जारी कर चुकी है। तो बंगाल की शुभेंदु सरकार ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। साथ ही बकरीद पर पहले से तय दो छुट्टियों को कम कर एक दिन सिर्फ 28 मई को छुट्टी करने का ऐलान किया। असम की हिमंता सरकार भी अन्य बीजेपी शासित सरकारों के सुर में सुर मिला रही है।
5: काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गो माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा, होगा बकरीद होगा। जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
0: सुधांशु त्रिवेदी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
6: आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे। कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर? उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पे। हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे, जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे। कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे, कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे? अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है। और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था, बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया, आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद।
7: कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे?
6: मैंने तो यह प्रश्न सामने रखा है, आपने कितनी बार उनको जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के, बूथ केंद्रों के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हुए देखा है, और तो और अपने ही वर्कर्स पे आरोप लगाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी अहमदाबाद गए तो कहते हैं गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ और एक कांग्रेस जो बीजेपी के साथ। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा अपमान करने के बाद कोई सोचे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल करना चाहता हूं, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप कई राज्यों में सरकार में भी हैं और तीन राज्यों में तो आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। जहां तेलंगाना और कर्नाटक तो समृद्ध राज्य हैं, आप मॉडल दीजिए ना, गवर्नेंस का मॉडल दीजिए। हम जब विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस का मॉडल दिया था तमाम।
0: इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: बीकानेर में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की है, बॉर्डर जिलों के लिए 307 टिकट सुरक्षा प्लान बनाया है और बैठक में राजस्थान के सीएम, वरिष्ठ अधिकारी और 5 सीमा जिलों के डीएम एसपी मौजूद रहे। बैठक में भारत पाक सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शाह ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए। बीएसएफ, एनसीबी, सीबीडीटी और राज्य एजेंसियों को संयुक्त बॉर्डर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया। नकली आधार कार्ड, संदिग्ध फंडिंग और साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। वक्त ब्रेक का उछला, दिखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय
11: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
12: इन एसोसिएशन विद
13: Order for Jennifer C.
14: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
13: Yeah. Can you handle that much caffeine?
14: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
13: Oh, really? That's great.
14: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
13: Yeah, you just said that.
14: Did you say I just said that?
13: Yeah, I'm cutting you off.
14: I can't have any more? Why not?
15: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
16: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So
19: thank God I get to wake
18: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
10: In association with
9: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

एस आई आर की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, बीजेपी बोली हार पर विपक्षी एजेंडे की हवा निकल गई। इंटरनेशनल बॉर्डर के 15 किलोमीटर भीतर तक किसी भी अवैध निर्माण पर होगी जीरो टॉलरेंस की नीति, बीकानेर में निर्देश के बाद कच्छ सीमा पर गृह मंत्री अमित शाह।

0: अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सिद्धा जाएंगे, डी के शिव कुमार आएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद निकला निष्कर्ष। बकरे की कुर्बानी पर कानूनी जंग अब दिखाई दे रही है। कई राज्यों में बकरीद को लेकर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम, महाराष्ट्र में भी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं त्रिशा के पति को सीबीआई अब लेगी रिमांड पर, सुलझ सकती है त्रिशा की मौत मिस्ट्री, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी सीबीआई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में हम हाजिर हैं। और आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में आज किन खबरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब न्यूज रूम लाइव के बारे में बात होगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल एंड फाइनल वाला फैसला आ गया है, भरोसा यहां पर जताया गया, ये हमारी पहली खबर होगी। इसके साथ ही जो दूसरी हमारी खबर होगी वो भी हम आपको बताएंगे, कर्नाटक में जो सियासी नाटक चल रहा था क्या उसका दी एंड हो गया है, सिद्धरमैया डीके शिवकुमार इसका फुल एंड फाइनल क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे ए से लेके जेड तक। तीसरी जो हमारी बड़ी खबर रहने वाली है वो तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे घुसपैठियों, पश्चिम बंगाल में जो सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है, शिवेंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, तो अभी भी घुसपैठियों का जमावड़ा लगा हुआ है भारत छोड़ने वाले अभियान पर। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताएंगे नीला ड्रम, याद है आपको नीले ड्रम को लेकर अब क्या खबर आ रही है, ये हम आपको ठीक 2:30 बजे बताने जा रहे हैं कि अब नीले ड्रम में किसकी लाश मिली है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया है और सहमति भी दे दी गई और ये कह दिया गया है कि अधिकार है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और कोर्ट ने एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और ये मनमाना नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि असंवैधानिक नहीं है बल्कि कानूनी तौर पर सही है।
2: जिस विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष आग बबूला हो रहा था, उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रहा था, उस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, एसआईआर वैध और संवैधानिक है, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है, एसआईआर का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है, वोटर लिस्ट से नाम हटाना नागरिकता खत्म होना नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसआईआर की प्रक्रिया पर किस हद तक जाकर मुहर लगाई है, ये आप आज तक संवाददाता संजय शर्मा से समझिए।
3: इस पर उठाए गए सारे सवाल बेबुनियाद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं मिली है। जिन चार मुख्य आधार स्तंभों पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की है, जिसमें एक है कि निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम किया है क्या, और इसमें क्या इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर जोर दिया है क्या, क्या फॉर्म भरमाने की प्रक्रिया सही थी, इन तमाम चार मुद्दों पर विचार करके कोर्ट ने पाया कि ये चार जो सवाल उठाए गए थे मुख्य सवाल, वो सवाल अपने आप में ध्वस्त हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि निर्वाचन आयोग ने जो भी किया अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर किया।
2: सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर चुनाव आयोग की बड़ी जीत है, ये फैसला चुनाव आयोग के हौसले बुलंद करने वाले हैं। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया जिसे विजय संदेश भी माना जा सकता है।
4: भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
2: अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ और स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद एसआईआर पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे या सियासत थम जाएगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा।
5: के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था, हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
6: इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये दायित्व हर राजनीतिक दल पे है, सत्ताधारी भी विपक्ष भी, और विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। अभी
2: राजनीति अपने लिए गुंजाइश तलाशती रहती है, लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
0: तो एसआईआर पर आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का किंतु परंतु की कोई गुंजाइश यहां पर छोड़ दी रहा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी तरफ से, लेकिन क्या ये माना जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसके बाद इन सवालों पर लगाम लग जाएगी? क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बताएं।
7: सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठाने वालों को कौन रोक सकता है? सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाने का अब सिलसिला बंद हो जाएगा। सवाल उठाए जाते रहेंगे, क्योंकि आज ही दिल्ली के सीईओ अशोक कुमार ने घोषणा की है कि दिल्ली में 30 जून से घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का बीएलओ जाएंगे और अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली सहित देश के 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, और इसके साथ ही ये लगभग नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, यानी पूरे देश में नवंबर तक एसआईआर का अभियान ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि 12 राज्यों में पहले हो गया है, बिहार में उससे पहले हुआ था, और इसके साथ ही ये सारे राज्यों में बंगाल और झारखंड ये सब हो चुके हैं। अब जितने बचे हैं उन सारे बचे हुए राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया चल रही है, तो लिहाजा नए सवाल उठते रहेंगे, नए फक्सर लगते रहेंगे और नए नतीजे आते रहेंगे। लेकिन आज का ये फैसला, ये जो निर्णय है, ये बहुत सारी चीजों को, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे सवालों के रास्ते इसने बंद कर दिए हैं, तो आगे भी ऐसा लग रहा है कि सवाल उठते रहेंगे, लेकिन एक बहुत ये दूरगामी असर डालने वाला फैसला है, और इससे
0: दूरगामी असर डालने वाला फैसला है। हालांकि विपक्ष के अभी भी कई सारे सवाल होंगे, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी यहां पर विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी की बात की जा रही है, सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया कि विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है।
8: हाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है।
0: देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को तो गिरना ही था विपक्ष को, लेकिन यहां अब विपक्ष का क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उनसे बात किया हमारे सहयोगी देव अंकुर ने।
9: देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है एसआईआर कहवाने हक को इनकार कर रहा है। एसआईआर जिस ढंग से की गई है उस पे लोगों का एतराज है, जिस प्रकार नाम काटे गए हैं जोड़े गए हैं उस पे एतराज लोगों को है। अगर ये तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लेते ही पहले ही और उसका अप्रोच बताते, सब अपने सुझाव देते, उसके बाद में अगर ये शुरू होता तो देश में कहीं बवाल नहीं मचता। अब बंगाल में 27 लाख वोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चाहता था तभी जुड़ नहीं पाए, जुडिशियल ऑफिसर को बैठाया तब भी नहीं जुड़ पाए। तो मेरे हिसाब से चुनाव पोस्टपोन होना चाहिए था, चाहे 6 महीने हो चाहे 3 महीने,
10: पश्चिम बंगाल के।
9: और आज मैं देखता हूँ कई जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय वही जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुनता रहता हूँ सोशल मीडिया को भी, क्योंकि आप 27 लाख लोगों को वंचित कैसे कर सकते हैं। और एक टिप्पणी आ गई सुप्रीम कोर्ट से कि ये अगली बार चुनाव के टिकट वोट दे देंगे, ये कभी होता नहीं।
0: तो देखिए अब एसआईआर पर सुप्रीम मोहर लगी है तो बयानों का सिलसिला भी जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी बात रखी जा रही है, सुनवाते हैं आपको पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है।
5: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था।
11: बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा।
12: देखिए ऐसा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, क्या मोदी जी की सरकार में कोई नई नवेली प्रक्रिया है क्या, कोई नई नवेली योजना है क्या? ये भारत में लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली एसआईआर की प्रक्रिया है, और एसआईआर के जरिए जो है वो जो वैध नागरिक है और मतदाता है उनकी सुरक्षा होती है, और जो अवैध नागरिक और मतदाता है उनकी समीक्षा होती है।
0: अब ये तो बात एसआईआर की होगी, अब कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। कर्नाटक की सियासी नाटक को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और खबर ये है कि सिद्धारमैया कल 11 बजे इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस के नेताओं की, उसके बाद ये फैसला लिया गया, और अब ये खबर है कि सिद्धारमैया कल इस्तीफा दे सकते हैं। कल सुबह 11 बजे का ये वक्त है, शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, और उसके बाद ये भी कहा गया कि सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच में भी बातचीत हुई और फिर इस्तीफे की बात हुई। तो ये बड़ी खबर क्योंकि कर्नाटक पर सभी की नजर इस वक्त बनी हुई थी कि वहां पर होगा क्या। 2.5 साल का फॉर्मूला जो था उसमें 6 महीने पहले की, 6 महीने ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बने हुए। अब ये कहा जा रहा है कि अब सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ऐसे में अब कैसा मंत्रिमंडल होगा, क्या मल्टीपल डिप्टी सीएम होंगे यहाँ पर, वो बात की बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक, क्योंकि 2028 में कर्नाटक में चुनाव है, तो उससे पहले कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत हो, और यही बात राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच में हुई थी कि आप कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मौसमी, कर्नाटक को लेकर क्या खबर आ रही है, कल ये तय है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे?
13: देखिए जो खबर आ रही है उसमें ये साफ तौर पे उन्होंने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा।
0: कर्नाटक को लेकर क्या खबर आ रही है, कल ये तय है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे?
13: देखिए जो खबर आ रही है उसमें ये साफ तौर पे उन्होंने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमारा ब्यूरो बता रहा है कि 11 बजे लगभग ये समय मिला है उनको, तो अपने आप में यहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, ये सभी लोग जो है अब कर्नाटक रुख कर रहे हैं क्योंकि सिद्धारमैया से मुलाकात करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग होनी है डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में तो एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है मांचू, और अपने आप में ये वो वक्त है जब केरल के बाद एक बड़ा नेतृत्व को लेके जो फैसला लिया है वो ग्राउंड जीरो पर हम लोग को दिखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। डीके शिवकुमार यहीं हम लोग कर्नाटक भवन में, डीके शिवकुमार अभी दिल्ली में ही है और कर्नाटक का रुख वो करेंगे, कल सुबेरे उनकी मुलाकात है चीफ मिनिस्टर से। तो अपने आप में हालांकि ये देखना होगा कि पार्टी आलाकमान क्या डीके शिवकुमार से आज मिलता है, केसी वेणुगोपाल से उनको उनसे उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि वो पाइपलाइन में है कि आगे क्या करना है, डीके शिवकुमार को किस तरीके से आगे बढ़ना है, सिद्धारमैया और बाकी उनके पूरे ग्रुप को साथ में लेके, उनके गुट को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा।
0: शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आखिर बैठ रहा है कि हो कैसे गया ये सब, सिद्धारमैया इतनी आसानी से इस्तीफे के लिए मांग कैसे गए और इसके पीछे की अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो चलिए कर्नाटक की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता देते हैं।
14: कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का द एंड। राहुल ने कर लिया फैसला, नया सीएम चुन लिया। तो शिव के हाथों में कर्नाटक की बागडोर। दिल्ली में चले मैराथन बैठक से सिद्धारमैया के लिए जो आदेश और संदेश निकला उससे साफ है कि कर्नाटक में उनके लिए सत्ता के दिन अब शेष नहीं रहे। दिल्ली दरबार ने उन्हें बड़ी शिष्टता से बता दिया कि उन्हें सीएम का पद छोड़ना होगा। सूत्रों की माने तो 1-to-1 मीटिंग में राहुल गांधी और सिद्धारमैया की निर्णायक बातचीत हुई। बैठक में राहुल गांधी ने दो टूक कहा, 2.5 साल पहले वादे का आप सम्मान करिए, आप वादे से 6 महीने ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके।
15: सिद्धारमैया का जो कदकाठ है वो काफी बड़ा है और राहुल गांधी के जरिए ये काम कराया जाए, देखिए काफी टफ काम था। अगर यही बात केसी वेणुगोपाल बोलते या कोई और रणदीप सिंह सुरजेवाला सिद्धारमैया को बोलते तो बात बिगड़ सकती थी। तो उनके मान सम्मान को देखते हुए, हर ये पूरी मामले की पेचीदगी को देखते हुए नेतृत्व ने, ये राहुल गांधी ने डायरेक्ट सिद्धारमैया से बोला। और जाहिर तौर पे ये गोपनीयता इसलिए बरकरार रखी गई कि पिछले कई वाक्य ऐसे हुए जब नेतृत्व को लेकर खूब लड़ाई छिड़ी है और पार्टी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है।
14: सिद्धारमैया ने भी अपना पक्ष रखा, अपने कामकाज का हवाला दिया। बैठक में सिद्धा ने कहा, आप मेरा सोशल इंजीनियरिंग देखिए, गारंटी स्कीम को कैसे लागू किया ये देखिए, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। लेकिन राहुल गांधी इरादा कर चुके थे, वो सिद्धा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से कहा, आप हमारे सबसे बड़े नेता हैं, आपका हम बेहद आदर करते हैं, जो वादा किया उसका मान रखिए। अब तक सिद्धारमैया को एहसास हो गया था कि इस बार

0: कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ा हेरफेर सीबीएसई के परीक्षा परिणामों में हुआ है और इसकी जांच होना चाहिए, एसआईटी बनाई जानी चाहिए, भयंकर हेरफेर हो गई, ये राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। देश के लाखों बच्चे और माता पिता सदमे में हैं और ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से।
1: CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM-based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.
0: आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह कल बीकानेर पहुंचे थे, बीएसएफ के प्रहरी सम्मेलन में पहुंचे थे। अब आज बड़ी ये खबर है कि आज हाई लेवल बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है और बैठक में राजस्थान के सीएम, वरिष्ठ अधिकारी और 5 सीमा जिलों के डीएम एसपी मौजूद रहे। बैठक में भारत पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त करने का आदेश भी दिया। अब देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और राज्य एजेंसियों और को संयुक्त बॉर्डर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। 360 डिग्री सुरक्षा प्लान बनाया है बॉर्डर जिलों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस हाई लेवल बैठक में। तो सीमा प्रहरियों से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मुलाकात की गई। और ईरान और अमेरिका की बात करें तो ईरान अमेरिका के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि एक पायदान बातचीत का ऊपर बढ़ता है और कई पायदान नीचे खिसक जाता है, क्योंकि हमने ये देखा जब भी बातचीत का दौर होता है उसी के बाद अमेरिका की तरफ से या तो हमला कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह पर हमला कर दिया जाता है। और यहां पर सभी के मन में सवाल है, क्या यहां तनाव शांत होगा या तनाव और बढ़ेगा।
2: ईरान की जंग में सुलह के लिए ट्रंप की एक शर्त ने मुस्लिम मुमालिक में बवंडर खड़ा करके रख दिया है। ईरान से डील के बीच ट्रंप ने एक पैतरा ले लिया था कि लंबे वक्त के शांति समझौते के लिए इसराइल को मान्यता देना जरूरी है और उस अब्राहम अकॉर्ड पर सभी मुस्लिम मुल्कों को दस्तखत करना चाहिए। ट्रंप के हंटर के आगे पाकिस्तान के सुर जब बदलने लगे तो पाकिस्तान में अब आतंकवादी संगठनों ने धमकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी ने पाकिस्तानी हुकूमत को ही धमकी दे डाली है।
3: मेज पे साइन करते हैं, तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
2: दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के नुमाइंदे ट्रंप के आगे दुम हिलाते नजर आए हैं, उससे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बेहद नाराज हैं और अब इसराइल जैसे दुश्मन को अपने मुल्क के करीब लाने का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ रहे हैं।
4: में इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, टर्न अराउंड है, बकायदा पिछले दौर से इस दौर का मुवाजना करें तो उसमें मार का हक है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं?
5: नहीं, मैं मेरा देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल स्टाइल है,
4: स्टाइल ऑफ गवर्नेंस उनका बिल्कुल अपना ही है,
5: और

0: अमेरिका में भी उसकी आपको प्रेसिडेंस नहीं मिलेगी।
1: सिर्फ इसराइल को तस्लीम करना है या उसकी एक्सपेंशन की के साथ तस्लीम करना है? ये क्योंकि सब कह रहे हैं जी ये सारा काम जो हो रहा है इब्राहिम कार्ड की वजह से खिते में प्रॉब्लम है।
2: अबाउट इब्राहिम अकॉर्ड, द स्पिरिट इज दैट यू नो इब्राहिम बीइंग द कॉमन हेरिटेज एंड द कॉमन फोर फादर ऑफ द थ्री ग्रेट।
3: दरअसल अब्राहम अकॉर्ड के मुद्दे पर पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत इन दिनों एक तरफ कुआं दूसरी ओर खाई की नौबत में फंसी हुई है। रक्षा मंत्री खुलेआम कह चुके हैं कि अब्राहम अकॉर्ड कबूल नहीं कर सकते। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय कह रहा है कि तीन महान धर्मों के सह अस्तित्व को कबूल किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस दोगले चरित्र को लेकर अमेरिका अलग बौखला रहा है। ट्रंप के करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलेआम पाकिस्तान की मुखालफत शुरू कर दी है। ग्राहम ने लिखा है कि उन्हें पहले से लग रहा था कि पाकिस्तान गड़बड़ है और इसराइल से उसकी दुश्मनी है। पाकिस्तान में ईरानी विमान छिपाए जा रहे हैं, उसका रक्षा मंत्री इसराइल विरोधी बयान दे रहा है, तो पाकिस्तान क्लियर करे कि ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड वाली अपील पर उसका क्या कहना है। लेकिन पाकिस्तान में आज की तारीख में न तो सियासत में, न हुकूमत में और न ही फिसड्डी फौज में वो कुव्वत है कि कट्टरपंथियों और आतंकवादी संगठनों की मर्जी के बगैर इसराइल के समर्थन वाले अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने का फैसला ले सके। सुबोध कुमार, दिल्ली आज तक।
4: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
4: भारत की। अब तक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम। And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
10: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
9: Big 12 Radio.
11: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
9: and
11: down.
9: And talk sports.
12: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
9: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
15: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
16: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
15: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
17: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
18: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
19: It's my music and it's my station.
18: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
23: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
24: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
25: नहीं,
24: और म्यूचुअल फंड से
25: सही।
26: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
27: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
28: बस 2000
29: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
30: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
31: कानपुर की धरती से गूंजेगी यूपी के विकास की बुलंद आवाज। यूपी की तरक्की का क्या है रोड मैप? जनता के सवालों का सटीक जवाब, दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है, सिर्फ यूपी तक पढ़।

दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक गोलीबारी हो गई। घटना एक रेस्टोरेंट में हुई जहां 17 साल का लड़का खाना खाने के लिए आया था। उसके पास में ही बैठे तीन लड़कों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन्हीं में से एक शख्स ने लड़के को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दिल्ली के खजूरी इलाके में भी वारदात हुई, जहां एफ ब्लॉक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम राजा अक्कीडॉन था। उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था। बदमाशों ने उसे तीन गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को आशंका है कि गैंगवार में यह हत्या हुई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
1: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी कसौली के साथ लगते घने जंगलों में लगी भीषण आग, आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि लगते एयरफोर्स स्टेशन कसौली के बेहद नजदीक पहुंच गई। भीषण आग को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के अभियान में लगाया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी भरकर किया गया छिड़काव। देहरादून के त्योड़ी क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई। आग की भीषण लपटों में जले सेब के बगीचे। उत्तराखंड के चमोली में जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान, जानवरों ने किया आबादी की ओर रुख। चमोली के जंगल में बढ़ती जा रही आग लगने की घटना, जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया। कहा चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। अदालत ने माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लातूर का डॉक्टर शामिल। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर शिरूरे ने तीन छात्रों को केमिस्ट्री के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इनमें एक आरोपित कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी शामिल। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन। सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 ठिकानों पर रेड। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की। जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित पिनराई विजयन के किराए के घर पर भी छापा मारा, बेटी के आवास पर भी रेड। आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन जारी, जंगल में छुपे आतंकवादियों की तलाश कर रही सेना की टीम। सूत्रों के अनुसार जंगल के इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं। आतंकियों का सामना करने के लिए एक और सेना की टुकड़ी भेजी गई। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी से बातचीत के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देने पर राजी, वो कल मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। कर्नाटक के सीएम बदले जाने की अटकलों के बीच कल सीएम सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है, जबकि सीएम डीके शिवकुमार भी इसमें शामिल होंगे। बीकानेर में गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल सुरक्षा बैठक, सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सीएम को मिले बड़े अधिकार, फर्जी कंपनियों म्यूल अकाउंट्स पर होगी कार्रवाई, नकली आधार कार्ड और संदिग्ध फंडिंग की जांच के निर्देश। सीबीएसई रिजल्ट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले ये गलती नहीं सोची समझी साजिश। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए तत्काल स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी गठन की मांग। छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पुरी से गिरफ्तार, कई हफ्तों से था फरार, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तारी। मोदी सरकार के केंद्र में 12 साल पूरे होने पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। दिल्ली में 2.5 लाख कमाने वालों का भी बनेगा राशन कार्ड, कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला। भविष्य में सीबीजीसी आधारित डिजिटल राशन वितरण प्रणाली लागू करने को भी तैयारी में दिल्ली सरकार, खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी। न्यूज रूम लाइव में अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज रूम लाइव में अब हम आपसे बात करेंगे उन खबरों की जो अपराध से जुड़ी हुई हैं और जो आंखें खोलने पर मजबूर कर देंगे। उन 4 तस्वीरों के बारे में बात करेंगे, 4 खबरों के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे एक बार फिर से ब्लू ड्रम की और टैटू आखिर कौन था इसका कातिल और किसने किया। उसके बाद बात करेंगे अनुमीडा टॉर्चर कथा की, फांसी का सच क्या है, राजस्थान से ये खबर है, इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी होगी। और इस खबर के बाद हम आपको बताएंगे आगे कि क्या कुछ जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुदकुशी का मामला सामने आया था उसकी हालांकि जांच की बात कही जा रही थी, तो ट्रिशा मौत मामले में अब सीबीआई किस तरह की जांच कर रही है और अब कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, और हम आपको ये भी बताएंगे इस पूरे मामले में कि भोपाल में एक आईपीएस की 16 साल की बेटी ने आखिर क्यों कर दिया आत्महत्या। ये सारी खबरों के बारे में आपसे बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले पटियाला की बात करेंगे। पटियाला में एक बार फिर से ब्लू ड्रम वाला केस सामने आया है, जहां पर एक युवती की लाश मिलती है और उसके बाद से सनसनी मच जाती है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस नीले ड्रम में जो लाश मिली है उसके पीछे की वजह क्या है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटियाला में एक नीले ड्रम में लाश मिलती है, मृतक लड़की की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पटियाला के अर्बन स्ट्रेट इलाके में नीले रंग के ड्रम से एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ। मृतक लड़की की उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मृतक लड़की के हाथ पर नेहा नाम का टैटू बना हुआ है। तो एक बार फिर से नीले ड्रम की बात आ रही है। अब उस पूरे खबर की डिटेल हम आपको बता देते हैं। मौत का ब्लू ड्रम, एक लड़की की लाश मिलती है और जैसे ही लड़की की लाश मिलती है पूरा पटियाला दहल उठता है और सनसनी मच जाती है कि आखिर किसकी लाश थी। अब यहां पर दिल वाला टैटू है, नेहा लिखा हुआ है, दिल वाला टैटू है, पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये लड़की है कौन, जहां नेहा और दिल वाला एक टैटू उसमें बना हुआ है। ये जांच का विषय है और जांच अभी तक की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या बयान आया पुलिस का, वो हम आपको सुनवा देते हैं।
2: ड्रम विच्चों एक लड़की की लाश मिली है जिहदी अजे शनाख्त नहीं हो सकी, उहदे प्रवासी जापदी है जिहदी 15 तों 20 साल उम्र जापदी है। उहदी खब्बी बांह ते नेहा, इंग्लिश विच नेहा दा टैटू छपिया होया, और सज्जी बांह ते NA दिल दा टैटू छपिया होया।
1: असीम बसी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। असीम, ब्लू ड्रम सनसनी फैलनी थी, लेकिन अब पुलिस कैसे कड़ियों को जोड़ रही है, क्या खुलासे हुए अभी तक?
3: देखिए मैं आपको बता दूंगी, पटियाला के आउटस्कर्ट्स के ऊपर एक इनपुट आया, जब वहाँ पे थोड़ा गार्बेज डंप है, कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, तो वहाँ पर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि एक ड्रम के अंदर एक सस्पिशियस हालात में इस तरह की एक जो है बॉडी पड़ी है। तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती, उन्होंने देखा कि एक यंग लड़की की डेड बॉडी है, 15 से 20 साल के बीच में बताया जाता है। कहा जो एज़ पर पुलिस ऑल्सो कुछ स्क्रैचेस जो हैं फेस के ऊपर हैं और एक ब्लड क्लॉट जो है हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लड मार्क्स हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बाजू पे जो है टैटू है वो नेहा नाम का है और दूसरे बाजू पे एक टैटू है वो कहा जा रहा है NA का है और बीच में जो है हार्ट बना हुआ है NA। सो पुलिस कनेक्ट करने चाहती है डॉट्स, लेकिन हमारी SSP से भी बात हुई है। बड़ी बात यह है कि रियल आइडेंटिटी क्या है लड़की की, उसका असली नाम क्या है, कहाँ से रहने वाली है, क्या उसका प्रोफाइल है, वो अभी तक पुलिस जो है अभी उनको नहीं पता लगा है। पुलिस जांच में ड्यूटी हुई है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कहीं से CCTV वगैरह मिल जाए,
1: सभी पहलुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बात करते हैं अनु मीणा केस की। राजस्थान से ये मामला सामने आया और अभी इस पूरे मामले में पति अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और वो कह रहा है कि CCTV फुटेज यहाँ पर देखे जाने चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकार हुई अनु मीणा, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फांसी लगाकर जान की भी बात आ रही थी कैमरे में। अब ये देखिए, ये जो CCTV यहाँ पर सामने आया उसके भी कई एंगल सामने आ रहे हैं। घर के CCTV वीडियो दिखा रहा है कि वो किस हद तक हैवान था, यहाँ तक कि बेटे ने भी कहा कि पापा मम्मी को मारते थे, इस तरह के अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब फरार पति का वीडियो देखिए, ये भी आ गया। जयपुर के अनुमीड़ा केस में फरार पति का एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है और पुलिस इस वीडियो के आधार पर भी जांच कर रही है। अब इस वीडियो में ये आप देखिए, इस वीडियो में यहां पर देखा जा सकता है कि कैसे स्क्रीन तोड़ी जा रही है, मारपीट की जा रही है, गौतम पर प्रताड़ित करने का यहां आरोप लगा है। और जैसे कि फुटेज में दिख रहा है, CCTV में दिख रहा है कि कैसे मारपीट यहां पर की जाती थी। घरेलू हिंसा कि पीछे की वजह घरेलू हिंसा भी सामने आ रही है।
4: पापा मम्मी को मारते थे,
5: दारू के नशे में वो मारते थे।
4: एक पिता के लिए बेटे का ये शब्द कितना दर्दनाक हो सकता है, समझा जा सकता है। अब माँ नहीं है और बच्चे का सब्र भी खत्म हो गया। वो चीख चीख कर अपने पिता की हरकतों को बयान कर रहा है। एक बच्चा जो शायद पूरी कहानी शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन उसकी मासूम आवाज घर के अंदर के डर और हिंसा की तरफ इशारा जरूर कर रही है।
5: दारू के नशे में वो मारते थे और एक दिन बोला कि सुनीता तेरी मम्मा बनेगी, ये तो बेकार है, ये तो मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनीता तुम्हारी मम्मा बनेगी।
6: आपको ऐसे बोला, और सुनीता कौन है?
5: हमारे काम वाली बाई थी लेकिन अब उसको हटा दिया।
4: बेटे के बयान की तस्दीक घर के पुराने सीसीटीवी तस्वीरें भी कर रही हैं, जिसमें गौतम गुस्से में टीवी तोड़ते दिख रहा है, बच्चे के सामने पत्नी अनु को मारते दिख रहा है, टॉर्चर करते दिख रहा है। वीडियो में कैद गौतम का यह बर्ताव न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि ये इस बात की गवाही भी दे रहा है कि गौतम किस तरह का इंसान था, कैसे वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता था, कैसे वो अपने ही घर को जहन्नुम बना देता था, कैसे वो अपनी ही पत्नी की पिटाई करता, उसे प्रताड़ित करता। अब सवाल है कि क्या अनु लंबे समय से घरेलू हिंसा झेल रही थी, क्या शिकायतों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका, और आखिर गौतम कब तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहेगा? अनु अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अनु के पति गौतम पर गंभीर आरोप लगे हैं, पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन आरोपी अब भी फरार है।
7: जो घटना था वो 7 अप्रैल का था, उस समय जो भी पुलिस की कार्रवाई थी, मर्द पंचायतनामा वगैरह सब कर लिया गया था। उसके बाद FIR कुछ डीले के बाद रजिस्टर हुआ, क्योंकि परिवार पहले लास्ट राइट्स वगैरह में बिजी थे, और उसके बाद जब आके उन्होंने कंप्लेंट दी तो हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी अनुसंधान परिवादी पक्ष से पूर्णतः कराया जा चुका है, जो भी FSL टीम वगैरह का विजिट था वहां पे बुला के जो घटना स्थल था, जो घर था मृतका का, उसे सील कर लिया गया था उसी समय थाने द्वारा। एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में FSL टीम का विजिट भी करा लिया है, और अभी परिवादी पक्ष अनुसंधान जैसे कि मैंने बताया पूरा हो चुका है। CCTV फुटेज परिवार के पास ही था, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया, ओरिजिनल DVR हमने सीज कर लिया है, उसे भी हम FSL के लिए भेज देंगे। आरोपी से अभी अनुसंधान कुछ भी नहीं हो पाया, उसकी तलाश।
4: फरारी के बीच गौतम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सफाई दी, उसने खुद को बेगुनाह बताया, कहा कि उसे फंसाया जा रहा है।
8: तब उसने व्हाट्सएप में मुझे वीडियो कॉल करा, तो मुझे नीचे से वो चुन्नी लेके ऊपर गई, जब मैं उसको खूब समझाता रहा कि टू पी, वो मेरी कसम खूब दिलाई उसको और खूब उससे निवेदन करा, लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के इंस्टेंट मेरे पड़ोसी दिग्विजय जांगिड़ जी को फ़ोन किया और उनसे निवेदन किया कि जल्दी से आप गेट तोड़ो, कैसे ऊपर से नीचे से, अभी कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे करने जा रही है। और उन्होंने गेट तोड़ने में थोड़ा समय लगा दिया, इसलिए वो मैं उससे बचा नहीं पाया। मैं वापस चौमो से यू टर्न लेके मेरे घर पहुंचा, हॉस्पिटल लेके गया उसको, वहाँ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन उसको डेथ डिक्लेयर करी।
4: गौतम की सफाई उस पर लगे आरोपों से इतर है, वो वीडियो में अनु को फंदे से उतारता दिख रहा है, वो वीडियो में अनु को CPR देता दिख रहा है, लेकिन इससे वो बच नहीं जाता, उस पर लगे आरोप कम नहीं पड़ जाते। अनु की मां ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि बेटी लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही थी, उसे मारा पीटा जाता था, मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था,
9: रात को आ जाती थी मेरे पैर पकड़ के एडमिट ले जाता, उसको नहीं करूंगा आज के पास मैं कभी नहीं करूंगा, पैर पकड़ देते थे आके मेरे, मैं कहती अनु ये रोज का काम है, मर जाए तू, अरे यार मम्मी आप तो माफी मांग रही।
4: परिवार का आरोप है कि अनु ने कई बार अपनी तकलीफ बताई थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे शायद किसी ने नहीं सोचा था, घर वालों ने सोचा नहीं कि घरेलू हिंसा को हल्का समझने में अपनी बेटी को ही खो देंगे।
10: अब बात बीते महीने जयपुर में हुए अनु मीणा सुसाइड केस की। इस मामले में सामने आए CCTV फुटेज ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अनु मीणा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम बुरी तरह से पीट रहा है। अनु मीणा के मोबाइल से कुछ ऐसे वीडियो और सबूत बरामद हुए हैं जो बता रहे हैं कि लगातार उस ससुराल वालों के हाथों प्रताड़ना झेल रही थी। अब नए सबूत आने के बाद पुलिस नए धाराओं में जांच कर रही है। अनु मीणा के भाई नीरज मीणा ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को बहुत दिनों से पीटा जा रहा था और आत्महत्या के लिए उकसाया गया।
4: इस केस ने एक बार फिर घरेलू हिंसा के उन मामलों को सामने ला दिया है जो चार दीवारों के अंदर दबे रह जाते हैं, जहां चीखें बाहर नहीं आती और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। सवाल सिर्फ अनु की मौत का नहीं है, सवाल ये है कि अगर हिंसा के संकेत पहले से थे तो क्या उसे रोका जा सकता था, क्या समय रहते मदद मिलती तो आज अनु जिंदा होती। देव अंकुर, विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: सच्चाई ये भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों से घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अनु मीणा सुसाइड केस में क्या हुआ? घरेलू हिंसा की शिकार थी अनु, वीडियो देखा उसमें पता चल रहा है, हालांकि फांसी लगाकर जान दे दी। एक वीडियो ये भी आया जिसमें पति CPR देता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी वो फरार है। लेकिन घरेलू हिंसा की बात यहां पर कही जा रही थी। वो जो कैमरा CCTV कैमरा लगा था उसमें टॉर्चर साफ दिख रहा है कि वहां पर LED तोड़ी जा रही है, TV तोड़ी जा रही है, धक्का दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बच्चे के सामने ये हैवानियत हो रही है। उस बच्चे पर क्या बीती? वो बच्चा भी कह रहा है कि पिता मम्मी को मारते थे। फरार पति का वीडियो भी सामने आ गया है और वो कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, CCTV फुटेज देखा जा रहा है जिसमें वो हैवानियत दिखाई दे रही है, लेकिन इस मामले में जांच अब कहां तक पहुंची?
11: देखिए, पुलिस अब टीम बनाकर इसकी खोजबीन में लग गई है, कहां से इसने वीडियो जारी किया है। ये फरार है, इसके घर वालों से जानने वालों से पता पूछा जा रहा है। पुलिस अब इसे गिरफ्तार करेगी क्योंकि ये लगातार भाग रहा है, पुलिस बुला रही है तो आ नहीं रहा है।
1: शरद, ये खबर भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है केरल से, वो हम आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम रेड मारने पहुंची थी, लेकिन वहां पर आम लोगों ने ED की टीम का घेराव कर लिया। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ है, गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची रेड मारने के लिए, उसी वक्त यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हुआ, जमकर हंगामा हुआ। केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन के घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन के घर पर जैसे ही रेड मारने के लिए ED की टीम पहुंचती है, जमकर हंगामा हो जाता है। कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहते हैं और उसके बाद ये देखिए ED की टीम को वापस लौटना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये केरल की तस्वीरें हैं। पिनराई विजयन उनके घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी, अब विजयन के घर समेत 10 जगहों पर ED की रेड। इसका उनके किराए का आवास भी था, लेकिन अब यहां पर आप देखिए कैसा हंगामा हुआ, गाड़ी को तोड़ दिया गया। ये देखिए, बड़े बड़े पत्थरों से गाड़ी को तोड़ दिया गया और यही वो गाड़ी है जिसमें ED के लोग आए थे, लेकिन इसी दौरान यहां पर कई कार्यकर्ता थे और ED की छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पत्थर फेंक दिए गए, गाड़ी को तोड़ दिया गया, शीशे सब तोड़ दिए गए और ये हंगामा जारी रहा। ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। देखिए एक बार फिर आपको बता दें, दो तस्वीरें देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, आप गुस्सा देखिए। यहाँ पर पीछे भागने के लिए कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों को और खदेड़ा जा रहा है, ED की टीम को तो खदेड़ ही दिया है। यहाँ पर मुनीश पांडे जुड़े हुए हमारे साथ। मुनीश, ED की छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ तिरुवनंतपुरम में।
12: जी बिल्कुल हिमांशु, आज सुबह से ED की छापेमारी 10 जगहों पर चल रही थी और खासकर कि ये जो मामला है कोचीन मिनरल से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर ED ने पहले भी कार्रवाई की हुई थी, लेकिन आज जब सुबह छापेमारी शुरू की तो शुरुआत में तो सब कुछ शांत रहा। पिनारी विजयन जो कि केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी, दोनों ही के जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई कुछ ही घंटों के बाद में धीरे धीरे घर के बाहर समर्थक जो है पिनारी विजयन के वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और थोड़ी ही देर में जो भीड़ है वहां पर उग्र हो गई और उन्होंने जो ED के अधिकारी हैं उनके खिलाफ में नारे लगाए, ED के खिलाफ में नारे लगाए और उसके बाद जो ED की गाड़ी थी उसको उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो ED के अधिकारी थे उन्होंने बीच में ही जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी उसको छोड़ा और किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि जब भी ED ऐसी कार्रवाई करती है तो जो लोकल पुलिस है और उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी वहां पर तैनाती होती है, उनकी सुरक्षा के तहत ये छापेमारी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आ रही हैं कि ED को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भीड़ उग्र होगी और उसके बाद से ही जो जवान वहां पर तैनात थे उनकी भी संख्या कम पड़ गई और किसी तरह से जान बचाकर ED के अधिकारियों को वहां से निकलना पड़ा। ED के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि वो मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जानबूझकर भीड़ को भड़काई गई थी, क्या किसी तरीके का मैसेज दिया गया था कि आके ईडी अधिकारियों के खिलाफ में नारे लगाएं या फिर उनके खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई करें, उसको लेकर वो बातें कर रहे हैं वहां के प्रशासन से, और उसके बाद में एक FIR जो है अब ईडी वहां पर दर्ज कराएगी उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ईडी अधिकारियों को टारगेट किया और उनके ऊपर निशाना।
1: मुनीश, ये तो तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि पिनराई विजयन के जो समर्थक हैं, अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिस गाड़ी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंटें फेंकी जा रही हैं, तोड़ दिया गया इस गाड़ी को, ये इस गाड़ी में आप देखिए कैसे डरे सहमे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो रेड मारने वहां पर पहुंचे थे वो बैठे हुए हैं, और ऐसे में गाड़ी को तोड़ दिया गया, पत्थर यहां पर मारे जा रहे, गाड़ी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया और जान बचाकर यहां पर भागा जा रहा है। पूरी भीड़ अचानक टूट पड़ती है, हालांकि पुलिस ने कुछ रेस्क्यू करने की कोशिश भी की लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी को तहस नहस कर दिया। एक बार फिर से पूरी तस्वीर देखिए, आप देखिए कैसे इस गाड़ी को घेर लिया गया है और एक बड़ी सी ईंट उठाकर फेंका जा रहा है, बार बार गाड़ी को तोड़ा जा रहा है और गाड़ी को पूरी तरह से डैमेज किया गया। कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा था कि पिनराई विजयन के घर पर आप भीड़ कैसे मार सकते हैं। मुनीश हमारे साथ में बने हुए हैं। मुनीश, तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं लेकिन जरा इसका बैकग्राउंड भी बताइए कि कौन सा ऐसा मामला है जहां पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी, कहां तक इसके लिंक जुड़े हुए हैं।
12: जी देखिए, अगर पूरे मामले की बात करें तो कोचिन मिनरल नाम की एक कंपनी है जिसके ऊपर पहले एक FIR दर्ज की थी और उसी FIR के बिना पर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। जब केरला में चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। पिनराई विजयन और उनकी बेटी दोनों के ही नाम सामने आए थे। पूरा जो मामला है वो 1,10,00,000 रुपए के लेन देन का मामला है जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। इसमें पहले भी ईडी ने कार्रवाई की हुई, लेकिन आज जो हिमांशु चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी ईडी की कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो वहां की जो लोकल पुलिस होती है, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनको ये जानकारी दी जाती है कि हम यहाँ पर छापेमारी करेंगे और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि उनको जरा भी इल्म नहीं था कि इस तरीके से वहां पर भीड़ उभरेगी, और जो कि तस्वीरों में दिख रहा है हिमांशु और जो अधिकारियों से मेरी वहां पर बातचीत हो पाई है उनका यही कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि कई अधिकारी जो है उनको ये डर लग रहा था कि कहीं आज उनकी जान न चली जाए। पत्थरों से, ईंट से जो गाड़ियां हैं उसको टारगेट किया गया, उसके शीशे फूट गए, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें जो ईडी के अधिकारी हैं वहां से निकलने में तो कामयाब हो गए लेकिन छापेमारी की ये कार्रवाई ईडी अभी भी पूरा नहीं कर पाई है और आगे हो सकता है।
1: लेकिन मुनीश, एक चुनौती ये भी है क्योंकि ये बताया जा रहा था, आप ही ने बताया था कि 10 ठिकानों पर छापे हो रहे हैं, उनकी बेटी के घर पर भी ईडी की रेड। अब एक जगह इस तरह की हालात है तो हो सकता है कि बाकी जगहों पर भी जो ईडी के अधिकारी हैं उनको बहुत परेशानी हो, तो वहां पर भी सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
12: जी बिल्कुल, केरलम के अलग अलग हिस्सों के 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई होने के बाद में दिल्ली के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने केरलम में जो अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे उनको हिदायत दे दी है कि आप लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, और साथ साथ जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज होती हैं स्टेट में उनको भी सूचना दे दी गई है कि जहां पर अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है उस जगह पर सुरक्षा को और बढ़ा दी जाए। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरी झड़प के दौरान में भीड़ जिस तरीके से उग्र हुई थी वहां की जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के भी कुछ जो जवान थे वो कहीं ना कहीं उनको भी चोट आई है, जो ईडी के अधिकारी हैं उनको भी चोट आने की खबर है, और अब जो ईडी के अधिकारी हैं कम से कम जो पिनराई विजयन का घर पे जो छापेमारी चल रही थी उस छापेमारी को बीच में ही छोड़कर उन्हें निकलना पड़ा है, और अब जो बाकी के ठिकाने हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ताकि इस तरह की घटना वहां पर ना हो पाए। हिमांशु आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो सकता है कि अगर भीड़ कहीं और जगह पे उग्र होती है तो ईडी के अधिकारियों को वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई को बंद करके बाहर निकलना पड़ा।
1: और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है मनीष, आपने तो बताया, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, क्योंकि गुस्सा वो आक्रोश बहुत तेजी के साथ बढ़ा, गाड़ियों को तोड़ दिया, पत्थर फेंकेगा, और यहाँ पर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनकी चोट यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। केरल के पूर्व CM है पिनराई विजयन, उनकी बेटी और आसपास के जो ठिकाने हैं 10 जगहों पर ये रेड चल रही है, लेकिन अभी सवाल है ईडी के अधिकारियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
13: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
15: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
18: It's college football time. College basketball feels
17: Pardon
18: like
17: my take.
19: The Rams catching the Commanders.
17: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste.

0: केरल में पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर ईडी की रेड में हंगामा। सीपीएम समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को घेरा, गाड़ियां तोड़ी, जबरदस्त प्रदर्शन। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डी के शिव कुमार बन सकते हैं नए सीएम। सूत्रों से खबर, आलाकमान के कहने पर इस्तीफा दे सकते हैं कल सिद्धरमैया। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को दी क्लीन चिट, बीजेपी बोली हार पर विपक्षी एजेंडे की हवा निकल गई। थाने से मुंबई तक बकरे की कुर्बानी पर घमासान छिड़ा, कोर्ट जाएंगे घाटकोपर की हाउसिंग सोसाइटी के मुस्लिम रेजिडेंट, हिंदुओं के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता। अटविशा के पति को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई, भोपाल पुलिस के केस डायरी देखकर भड़के एजेंसी के अधिकारी, 2:30 बजे सासगिरी बाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से, और केरल से ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तिरुवनंतपुरम में जबरदस्त हंगामा हुआ है। ईडी की टीम, सीपीएम के कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं और उसके बाद से वहां खूब बवाल होता है, गाड़ी तोड़ दी जाती है। तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईडी जो कि एक सेंट्रल जांच एजेंसी है, वो एजेंसी सीपीएम कार्यकर्ता उस एजेंसी को घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के ठिकानों पर रेड डालने के लिए ईडी की टीम पहुंची होती है। आरोप भी है केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन पर, उनके घर पर जब ईडी की टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए, और फिर विजयन के समर्थक ईडी के अधिकारियों को उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं, रोकते हैं, पुलिस को कड़ी मशक्कत करके ईडी के अधिकारियों को बचाकर निकालना पड़ता है। केस बहुत गंभीर है, मनी लॉन्ड्रिंग के बेहद गंभीर आरोप है, और ईडी की टीम इसी मामले में कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी, बिना काम के करोड़ों के भुगतान के बेहद गंभीर आरोप है। आरोप एक निजी कंपनी को सीएमआरएल ने, यानी कि विजयन की बेटी की कंपनी को, बिना किसी वास्तविक सेवा, बिना किसी काम के कथित तौर पर करोड़ों का भुगतान कर दिया। अब आपने दो तस्वीरें देखी, केरल में बिल्कुल नई सरकार बनी है, और उसके बाद ये समर्थकों का हुजूम देखिए, ये गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और ये सब सीपीएम समर्थक माने जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। यहां पर तो खुद पी विजयन को आगे आकर अपने समर्थकों से आह्वान करना चाहिए कि जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आप बिल्कुल ईडी को, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनसे दूर रहें, उनको अपना काम करने दें। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हुआ, यहां समर्थक जुटे थे और पहले से अनुमान था कि ऐसा प्रदर्शन हो सकता है, और ऐसा प्रदर्शन हुआ है। ये तिरुवनंतपुरम की हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जब एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी गाड़ियों को कुछ हिस्से से तोड़ा गया। ऐसा नहीं था कि पुलिस बल मौजूद नहीं था, पुलिस बल मौजूद था वहां पर, उसके बावजूद भी ये हिंसा हुए है। हमारे साथ संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, अनुमान था, ईडी की टीम पहुंची थी, हमें पुलिस भी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ियां तोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए, और जो ईडी की टीम है वो कोर्ट के आदेश के बाद, ईडी की टीम ने आज ये सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस तरह से जो पी विजयन के समर्थक हैं वो ईडी की टीम की गाड़ियों पर बकायदा अटैक करके उसके तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद अब जो ईडी के वरिष्ठतम सूत्र हैं उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से अटैक हुआ है, ईडी के अफसर जो ऑन ड्यूटी पर थे, अपना काम कर रहे थे, और उसी दौरान जो केरलम के जो पूर्व सीएम है पी विजयन, उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, और साफ इसमें दिखाई दे रहा कि किस तरह से गाड़ी को घेर कर, जिसमें ईडी के अधिकारी बैठे थे, उसमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। तो उसके बाद अब जो ईडी की टीम है वो इस मामले में एक एफआईआर भी,
0: ईडी आप बता रहे हैं कि एफआईआर कर सकते हैं। हम देखा, ये पत्थरों से मारा जा रहा है, ईंटों से गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, इस मामले में आप बता रहे कि जो है कार्रवाई करने की तैयारी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है कि कैसी हैं ये स्थितियां उत्पन्न हुई, क्या सुनियोजित प्लानिंग के तहत ये लोग आए थे।
1: बिल्कुल, देखिए, और जो कम से कम जो तस्वीर दिख रही है उसमें तो यही लग रहा है कि जिस तरह से सुबह से छापेमारी चल रही थी, उसके बाद ईडी की टीम की ये छापेमारी चल रही थी, और बकायदा इस मामले में एक ऑर्डर भी आया था इस केस को लेकर ईडी की टीम के पास, उसके बाद केस दर्ज करने के बाद ये छापेमारी शुरू हुई, और कोई भी अधिकारी ऑन ड्यूटी अपना काम करता है तो इस तरह से अटैक करना वो गलत है।
0: बिल्कुल गलत है, अगर आप अपने नेता को पसंद करते हैं तो आप उनके दोष मुक्त हो जाने तक, मतलब आंख मूंद कर आप किसी के कहने पर उन पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही, तो अब टीम पर ही हमला कर देंगे, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अनुचित और इन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पहले अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, छापेमारी के दौरान बवाल, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। समर्थकों ने इस दौरान ईडी की गाड़ी पर पत्थर फेंके, बाल बाल बचे अधिकारी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। समर्थकों के बवाल के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है, ईडी दर्ज करवाएगी एफआईआर। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, आरोप है कि कंपनी ने बिना जो है कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी काम नहीं किया। ईडी की कार्रवाई के बाद से केरल की राजनीति में हलचल, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए हमला बोला। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया, कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। अदालत ने माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है। सीजेआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कराने का अधिकार था और इसे करने के लिए किसी भी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में ही फैसला देते हुए कहा कि इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में सहायता मिली। कोर्ट ने संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लातूर का डॉक्टर भी शामिल। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर शिरूरे ने 3 छात्रों को केमिस्ट्री का पेपर का जो प्रश्न थे वो दिलाने में भूमिका निभाई थी और इनमें एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी है। जांच में सामने आया कि प्रश्न आरोपी पीवी कुलकर्णी से हासिल किए थे और जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच अभी समय चल रही है। दूसरा आरोपी पुणे स्थित मेडिकल अकादमी की फिजिक्स फैकल्टी से जुड़ा है। आरोपी है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से फिजिक्स के प्रश्न हासिल किए थे। अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सदी देश भर में 49 जगहों पर छापेमारी भी हुई। बीकानेर में गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल सुरक्षा बैठक, सीमा से 15 किलोमीटर अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश। डीएम को मिले बड़े अधिकारी, फर्जी कंपनीज और म्यूल अकाउंट पर भी कार्रवाई होगी, नकली आधार कार्ड और संदिग्ध फंडिंग की भी जांच के निर्देश। सीबीएसई रिजल्ट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले कि गलती नहीं सोची समझी साजिश। राहुल गांधी ने परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, तत्काल स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की मांग। छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमत और ईंधन संकट को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर लगातार 5वें दिन भी जारी है, जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक जंगल के इलाकों में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों का सामना करने के लिए एक और सेना की टुकड़ी भेजी गई है। डीके शिव कुमार केपीसीसी पार्टी अध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा, सतीश जारकीहोली पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के बाद से सिद्धरामैया इस्तीफा देने के लिए राजी है और वो मुख्यमंत्री पद से कल दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक मैराथन मीटिंग के बाद हाईकमान ने सिद्धरामैया को सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया, सिद्धरामैया ने हालांकि इससे इनकार कर दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों के बीच में कल सीएम सिद्धरामैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल रहे पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही है वो सिर्फ अटकलें, इनमें कोई सच्चाई नहीं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूरी चर्चा सिर्फ आने वाले राज्यसभा चुनावों और कर्नाटक के काउंसिल चुनावों पर केंद्रित थी। सीएम पद को लेकर मचे हलचल के बीच में सिद्धरमैया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप है। देश में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन। अमित शाह ने कमेटी के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल हैक होने की खबरों को खारिज किया, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हैक किया गया पोर्टल केवल एक टेस्टिंग साइट थी। सीबीएसई ने यह भी कहा कि वास्तविक मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित था और इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई। मांगी बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव। मैनेजमेंट कंपनी में होने अब तीन नए चेहरे। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर में रखरखाव को लेकर निर्देशित किया गया। हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों के चयन में अभी अधिकारियों की मनमानी नहीं चले गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को भी बड़ा आदेश। मंदिर के आसपास के इलाकों में विकास डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का ऑर्डर। धामी सरकार का बड़ा फैसला, रानीखेत खेल मैदान में ईद की नमाज की अनुमति रद्द। सीएम धामी के निर्देश पर डीएसए महासचिव ने अनुमति निरस्त कर दी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर 105 करोड़ की लागत से बनेगा नया हॉस्टल। पीड़ित परिवारों ने सरकार के फैसले का किया विरोध, कहा कि स्मारक स्थल के रूप में सम्मानपूर्वक इसे रखा जाए। विषम मौत मामले में समर को एम्स मेडिकल के लिए पुलिस लेकर निकले और कोर्ट में किया जाएगा पेश, जिसके बाद से सीबीआई कस्टडी में लेगी। विषम मौत मामला एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि 12 से 20 मई तक सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनीज को लिखा गया पत्र। जयपुर के मानसरोवर में अनु मीणा सुसाइड केस में जांच तेज, पति फरार है, घर सील कर सीसीटीवी डीवीआर जब्त। एसीपी आदित्य काकड़े ने जानकारी दी है। बकरीद को लेकर लखनऊ पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसीपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक की है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी का आदेश। डीसीपी ने ईदगाह मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश दिया। धर्म गुरुओं से लगातार संवाद बनाए रखने का भी निर्देश। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा चाक चौबंद। एडीजी के नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन के साथ ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में कुर्बानी पर विवाद हुआ। मुस्लिम निवासी बोले कि 27 साल से कर रहे हैं, अब बीएमसी और कोर्ट जाएंगे। रांची में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का जबरदस्त विरोध। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बार फिर से देश का एक सबसे गर्म स्थान रहा। 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। गंभीर लू की श्रेणी में रखा गया है 47 डिग्री से ज्यादा का तापमान। बांदा के अलावा प्रदेश के 5 और जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार। राजस्थान में भी लू का प्रकोप जारी। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर फलोदी बने राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान, जबकि जैसलमेर 45.6 डिग्री तो कोटा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर रिकॉर्ड। हरियाणा और पंजाब में भी भीषण गर्मी से हाहाकार, सिरसा में 46 डिग्री टेम्परेचर। दोनों ही पड़ोसी राज्यों में जबरदस्त गर्मी। पिछले कुछ दिनों में लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा, रोहतक में 45.6 डिग्री, भिवानी में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज। दक्षिण भारत में भी सूरज की तपेश। हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के उपाय किए गए। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में लगे भीषण आग, राहत बचाव के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रात में तैनात किया। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश है। जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खास बैम्बी बकेट ऑपरेशन का हिस्सा। चारधाम यात्रा के बीच में उत्तरकाशी के जंगल भी धधक, वन्य जीव और पक्षियों का और वन्य संपदा का अस्तित्व संकट में है। सोलन के जंगलों में फिर से धधकी आग, सेना एयरफोर्स और दमकल विभाग की टीम राहत में जुटी है। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में भीषण गर्मी बढ़ने से लपटें भड़की। दिल्ली फायरिंग मामले में नया सीसीटीवी। अमर कॉलोनी में गोली मारने के बाद से आरोपी तीन लड़के भागते हुए नजर आए। ओडिशा के कालाहांडी में पड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत। लखनऊ में बड़ा हादसा, दूसरी मंजिल से फेंका गया मलबे का बोरा, राहगीर के सिर पर जा गिरा, मौके पर मौत। चुरू में बड़ी कार्रवाई, प्याज की बोरियों में छिपा कर ले जाया जा रहा था 2.5 करोड़ का डोडा पोस्ट, अब जब्त। वाशी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कॉम्प्लेक्स का डेकोरेशन गिरा, घटना सीसीटीवी में कैद। पटियाला में ब्लू ड्रम में युवती का शव बरामद, पुलिस कर रही जांच। सहारनपुर के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, 4 दुकानें जलकर खाक। लखनऊ में शादी के 6 महीने के बाद महिला ने लगाई फांसी, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रथा नकारो। झांसी के प्राचीन करौंदी मंदिर में चोरी, इस घटना सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, मंदिर में घुसा ट्रक, रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 लोगों की मौत। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में सनसनी 10 दिनों से डॉक्टर पति की लाश के साथ कमरे में रह रही थी पत्नी। सुल्तानपुर में डायल 112 पुलिस टीम पर हमला, बीच बचाव करने के लिए गई पुलिस के साथ धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ के गोरेला में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार में से दहशत फैली। संभल के बाघ भर तीर्थ जमीन से 40 साल पुराना कब्जा हटाया गया, प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। राजकोट में पोते निदाता की हत्या करके बनाए एक्सीडेंट की एक कहानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग में खाना नहीं बना पाने पर सगे बेटे ने दिव्यांग मां को डंडे से पीट पीट कर मार डाला, आरोपी बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में खेत की जमीन अचानक धस गई, ग्रामीणों में से दहशत है। झांसी में जयमाला के बाद से बवाल, 5 लाख की डिमांड, दुल्हा पक्ष पर मारपीट का भी आरोप है, दुल्हन ने शादी तोड़ दी। भोपाल में आईपीएस अफसर की बेटी ने लगाई फांसी, घर में मिला 11वीं की छात्रा का शव, जांच कर रही पुलिस। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रही मां और 6 महीने के बेटे की मौत हो गई। अकोला में छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने चप्पलों से कर दी पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। सूरत में पत्नी ने हत्या करके फरार हुआ पति, अब दिल्ली से गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया ही हत्या की वजह बनाया बताया जा रहा है। आईपीएल में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होगी हैदराबाद और राजस्थान की टीम। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो का मैच है। आईपीएल की फाइनल के रेस से बाहर होंगे आज आने वाले

0: सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वरुण धवन सारा फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनते चुनते गाना रिलीज, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म। रितेश देशमुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, 24 दिनों में 101 करोड़ 40 लाख नेट कलेक्शन रहा। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में शानदार कमाई की, 67 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1800 से ज्यादा की कमाई। सामंथा रुद्रप्रभु की फिल्म माँ एंटी बंगाराम का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन। अमेरिकी मीडिया और विपक्षी डेमोक्रेट्स पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, ट्रुथ पर फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स और चीन वाला स्ट्रीट जनरल लिखकर फर्जी बताया। चीन ने ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कोशिशें तेज करने की जरूरत बताई, विदेश मंत्री वांग यी ने शामिल पक्षों की ओर से युद्ध विराम समझौते के सम्मान की बात कही। हज में शामिल होने सऊदी अरब पहुंचे ईरानी तीर्थयात्रियों की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, मक्का में अमेरिका और इसराइल पर हमले के भी आरोप। इसराइली सेना ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमलों का वीडियो किया जा रहे हिजबुल्ला ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की ओर से लेबनान पर 120 से ज्यादा हवाई हमले हुए। मंगलवार रात गाजा में एक रिहायशी इमारत को इसराइल ने बनाया निशाना। इसराइली हमले में हमास के नए सशस्त्र विंग प्रमुख मोहम्मद ओहेद पर हमले का दावा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तमाम सवालों को, तमाम अटकलों को एक झटके में खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार भी है।
2: जिस विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष आग बबूला हो रहा था, उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रहा था, उस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है। एसआईआर वैध और संवैधानिक है, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है, एसआईआर का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, नागरिकता खत्म होना नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसआईआर की प्रक्रिया पर किस हद तक जाकर मुहर लगाई है, ये आप आज तक संवाददाता संजय शर्मा से समझिए।
3: इस पर उठाए गए सारे सवाल बेबुनियाद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं मिली है। जिन 4 मुख्य आधार स्तंभों पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की है, जिसमें एक है कि निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम किया है क्या, और इसमें क्या इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर जोर दिया है क्या, क्या फॉर्म भरमाने की प्रक्रिया सही थी। इन तमाम 4 मुद्दों पर विचार करके कोर्ट ने पाया कि ये चार जो सवाल उठाए गए थे मुख्य सवाल, वो सवाल अपने आप में ध्वस्त हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि निर्वाचन आयोग ने जो भी किया अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर किया।
2: सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। ये फैसला चुनाव आयोग के हौसले बुलंद करने वाले हैं। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया, जिसे विजय संदेश भी माना जा सकता है।
4: भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
2: अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ और स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद एसआईआर पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे या सियासत थम जाएगी? ऐसा होता दिख नहीं रहा
5: कि बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
6: इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये दायित्व हर राजनीतिक दल पे है, सत्ताधारी भी विपक्ष भी, और विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। अभी
2: राजनीति अपने लिए गुंजाइश तलाशती रहती है, लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
0: अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
1: हिंट, बड़े आराम से
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
6: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
7: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

जहां सीपीएम समर्थकों ने ईडी अधिकारी को घेरा, तोड़ी गाड़ियां, जबरदस्त प्रदर्शन। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए सीएम, सूत्रों की खबर। आलाकमान के कहने पर कल

पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 2031 तक 5 बरस के लिए 25,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी। राशन दुकानों को मिलेगी मदद। थाने से मुंबई तक बकरे की कुर्बानी पर छिड़ा घमासान। कोर्ट जाएंगे घाट कोपर की हाउसिंग सोसाइटी के मुस्लिम रेजिडेंट्स। हिंदुओं के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता। सीबीआई लीड त्रिशा संदिग्ध मौत मामले में समर्थ की कस्टडी। एमपी पुलिस की 7 दिन की कस्टडी में था आरोपी। सास गिरिबाला की जमानत रद्द करने पर सुनवाई।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। शुरुआत करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पर भारी हंगामा हुआ है। यहां पर ईडी की टीम सीपीएम कार्यकर्ताओं को हमला सीपीएम कार्यकर्ताओं पर ईडी की टीम पर हमला हुआ है। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। विजयन के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ईडी के अधिकारियों को बचाकर वहां से बाहर निकाला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही थी। जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है पिनराई विजयन, उनके समर्थकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि ईडी वहां पर रेड डालने पहुंची थी और उनकी टीम पर इस तरीके से हमला उनके समर्थकों ने किया है। नारेबाजी भी की गई तोड़फोड़ के बाद, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। भारी बवाल काफी देर तक वहां चलता रहा, दो तस्वीरों से साफ हो रहा है। छापेमारी की इस कार्रवाई में बाधा बनने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने की है, ईडी टीम पर हमला किया है, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, पुलिस वालों को घायल होना पड़ा है। तो ऐसे में स्थिति बेहद तनावपूर्ण वहां पर। के पूर्व सीएम की बेटी के घर पे भी ईडी से जुड़ी छापेमारी हुई थी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, 1 करोड़ से ऊपर की धांधली की आशंका है। और अब आपको दिखाते हैं बकरीद पर बवाल।

0: कल बकरीद है, उससे पहले इसे लेकर कई राज्यों में तनाव बढ़ गया है, कहीं टकराव की स्थिति है तो कहीं भारी सुरक्षा इंतजाम कर तमाम आशंकाओं को टालने की कोशिश है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के अलग अलग शहरों में सड़क पर नमाज और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी रोकने को लेकर कई जिलों की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वहीं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कुर्बानी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुंबई के डिंडोशी, घाटकोपर और कुछ अन्य हिस्सों में बीजेपी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया है। बकरीद से पहले यूपी में सरकार सख्त है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार ने पहले ही बता दिया कि नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई तय है। सरकार ने बता दिया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। सीएम के आदेश के बाद यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों में खास चौकसी बरती जा रही है।
1: योगी सरकार का फरमान है, कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई। सड़कों पर नमाज अदा की तो होगा एक्शन। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी दी गई तो नहीं बचेंगे दोषी। बकरीद से पहले ही यूपी सरकार ने सख्त फरमान दे दिया। इसके बीच यूपी में जबरदस्त तैयारी है, तमाम जिलों में नमाज और कुर्बानी के आयोजनों की कसरत की जा रही है। लखनऊ पुलिस का ये फ्लैग मार्च उसी तैयारियों का हिस्सा है। लखनऊ, नखास और राजा बाजार चौकड़िया इलाके में भारी संख्या में पुलिस वाले मार्च करते दिखे। यूपी सरकार की सख्ती है, लिहाजा प्रशासन फुल अलर्ट मोड में है। लखनऊ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बकरीद से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। लखनऊ पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नियमित पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी को और मजबूत करने पर जोर है। साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तैयारियों की इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने ईदगाह, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए।
2: आप यहाँ पर कोई आदेश हो बताइए, आप बिना आदेश आप पूजा नहीं रोक सकते।
1: लखनऊ पुलिस की ये तैयारी बैठक उस वक्त हुई है जब मलिहाबाद इलाके में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो गया। मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर हुई। हिंदू संगठन के लोग 26 मई को वहां हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।
3: पर देखिए, हिंदू संगठन पहुंचा है पूजा करने के लिए और थाली लेकर आया है अपने साथ में पूजा की, और उन्होंने अड़े हुए हैं कि हम आज बड़ा मंगल है, यहां पर हम पूजा करेंगे हनुमान की और हनुमान चालीसा करेंगे।
1: तनाव बढ़ा तो कसमंडी किला मस्जिद विवाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। बकरीद के दिन विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंसा फांसी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो दूसरा इसे मकबरा।
4: मकामी लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है।
1: ऐसे तनाव को देखते हुए बकरीद से एक दिन पहले यूपी पुलिस की सांसें फूल रही हैं।
5: बड़ा पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहां पहुंचे तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात किए गए हैं।
1: सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी की एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आई। मुजफ्फरनगर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। पुलिस दस्ता सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा है, साथ ही ईदगाह का मुआयना भी कर रहा है। मुजफ्फरनगर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और कानून तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की और उनका सहयोग मांगा।
6: सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से समय समय पे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शहर के जितने संवेदनशील पॉइंट है उस पर जाके फुट पेट्रोलिंग करते हैं और पूरी फोर्स को लेके आते हैं। साथ में शासन के द्वारा जो है बहुत सारे नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग होती है, उनकी भी ट्रायल होता है सर। साथ उनमें जो सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके कई सारे हम लोग को सहयोग मिलता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है।
1: संबल में भी कुछ ऐसी ही तैयारी है, वहाँ पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएसी और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से वहाँ पुलिस बल अलर्ट पर है।
7: बकरीद को लेकर संभल का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, जबकि संभल में पूरी तरह से बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ा सुरक्षा खाका तैयार किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है, और इसी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर के बाद से जो पूरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील बनी रहती है, ऐसे में उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को जो है कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसके लिए आप यहां देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद जो रखी जा रही है। और
1: 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के जख्म आज भी संभल में ताजा है, लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है। पुलिस ने पूरे संभल को पार जोन 18 सेक्टर में बांट दिया है। 3 कंपनी आरआरएफ और पीएसी के अलावा कई थानों के पुलिस फोर्स की तैनाती का फैसला किया है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। यूपी पुलिस ने बकरीद को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि कोई तनाव न बढ़ पाए। संभल से अभिनव माथुर और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वही यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। पुराने लखनऊ में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुर्बानी ना हो इसे लेकर भी प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बकरीद पर बड़ा इमामबाड़ा के पास देखिए आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
5: तो जो मस्जिद है वहां पर नमाज होती, लेकिन जब विवाद बढ़ा, पासी समाज के लोग और हिंदू संगठन यहां पहुंचे, तो उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहां आपको 4 से 5 जवान नजर आएंगे और एक पीएसी की जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये पूरा रास्ता है, सामने की तरफ दिखाएं तो आपको एक बस दिखाई पड़ेगी जो कि पीएसी बल यानी कि सर्वोत्तम बल लिखा है बस पर, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर रास्ता जो आवागमन है वो बाधित ना हो और दिक्कतें ना हो, इस वजह से यहाँ पर ये मुस्तैदी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की दृष्टि है, पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है, बढ़ाई गई है। आपको मैं इधर भी लेकर आऊँगा तो यहाँ भी आप देखेंगे तो तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार तैनात हैं, कुछ यहाँ पर हैं कुछ उस छोर पर हैं। तो पुलिसकर्मी जो हैं वो दिन हो दोपहर से, मैं भरी दोपहर ही है, तेज़ गर्मी है, इस गर्मी में भी यहाँ पर आपके लिहाज से ये जगह काफ़ी अहम हो जाती है।
0: उधर यूपी के बलरामपुर में भी बकरीद को लेकर तैयारियां तेज है, वहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
8: उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्यौहार है, अलग अलग जिलों में इसकी तैयारियां की गई हैं। पुलिस फोर्स को नाकेबंदी के लिए हर जिले में तैयार किया गया है। इस समय बलरामपुर जिले में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार है, और कहीं भी किसी तरीके की कोई स्थिति ना पैदा हो उसके लिए भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियों का आवागमन है उसको भी रोक के डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि कल की जो तैयारियां होंगी उसमें जो काफी लोग आने वाले हैं उनको एक दिशा में भेजा जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर पुलिस फोर्स को अलग से निर्देश भी मिले हैं कि वो किस तरीके से इस पूरी जो बकरीद का त्यौहार है उसको पूरी तरीके से संपन्न कराएगी, और इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ उमेश सिंह जी मौजूद है। उमेश जी, किस तरीके से जागरूकता और तैयारियां हैं आप लोगों की?
9: वैसे तो हम लोगों का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, मृत्यु दर को न्यून करने के लिए प्रतिदिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कल बकरीद का त्यौहार है, शहर में ई रिक्शा का वन वे भी रहेगा और यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहेगी।
0: वहीं दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बकरीद को लेकर सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। संदेश साफ था कि सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो लेकिन किसी दूसरे का अपमान ना हो, लिहाजा उन्होंने कानून तोड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। योगी ने इस बयान को लेकर अब सियासत तेज है।
10: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
1: योगी सरकार की चेतावनी है, मजहब के नाम पर कानून तोड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार के उसी फरमान पर अमल करने के लिए पुलिस फोर्स ग्राउंड पर है। चौबीस मई को लखनऊ में सीएम योगी की बैठक हुई। उस बैठक में अधिकारियों को सीएम ने कई अहम आदेश दिए। पहला ये कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा ये कि सभी धार्मिक आयोजन निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। तीसरा आदेश ये कि सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और चौथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर है। आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उधर आगरा देहात से बीजेपी के सांसद की अपनी दलील है, वो भी सुनिए।
11: बार किया गया, वैसे तो कोई बकरे की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके अगर धर्म में है, ठीक है आप मना रहे हैं, लेकिन सड़क पर थोड़ी काटोगे, सड़क पर थोड़ी नमाज करोगे। आप जाइए, आप अपना शिफ्टों में नमाज करिए, संख्या आपकी ज्यादा है। मैं तो चांदनी चौक में इनके परिवारों में गया हूं, मैंने वहां देखा शिफ्टों में सोते हो, जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ा रखी है भाई आपने। मैंने तो कई घरों को देख रखा है कि उन घरों में शिफ्टों में सोने का काम करते हैं, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे। तो शिफ्टों में जो सो सकते हो, एक घर में 30 आदमी, 40 आदमी कैपेसिटी है, 5 लोगों की सो रहे हैं 50 आदमी, तो शिफ्टों में सोते हो तो शिफ्टों में नमाज अदा करिए, किसने मना किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा निर्णय लिया है योगी जी ने, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।
1: यूपी सरकार के फरमान को लेकर यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। सहारनपुर में नाराज मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले को सियासी स्टंट करार दिया।
12: ये सब राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि नमाज तो पिछली बार भी लोगों ने सड़कों पे नहीं पढ़ी। अगर ईदगाह सारी जंगलों की तरफ है, जगह खाली रहती, आदमी पढ़ लेता था। अब सरकार ने पाबंदी लगा दी, कोई बात नहीं पढ़ते।
1: सरकारी फरमान को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जब भी चुनाव सामने आता है तब बीजेपी ऐसे मुद्दों को हवा देकर विवाद भड़काती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में नफरत और धार्मिक मुद्दों को इसलिए उछाला जा रहा है ताकि जनता का ध्यान आर्थिक हालात से हटाया जा सके।
13: देश के अंदर जो आर्थिक भूचाल आया हुआ है, उस आर्थिक भूचाल से निमटने के लिए ये सरकार गंभीर नहीं है और नित नए शगुफे छोड़ करके नफरत की बुनियाद पर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है।
14: ये सारे मुद्दे केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है।
1: बकरीद पर सरकारी आदेशों को लेकर यूपी का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सहारनपुर से राहुल कुमार, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, सहारनपुर से अनिल कुमार, भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी बकरीद से पहले तनाव है। पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र में तो कई जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद पड़ गया है।
15: मुंबई के डिंडोशी इलाके में ये मैरीगोल्ड को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जहां बकरों की कुर्बानी की तैयारी थी, लेकिन इसकी खबर लगते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। लोगों ने कुर्बानी का विरोध किया है।
16: यहां पे बाजू के सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए तैयारी हो चुकी है।
17: कौन सी बिल्डिंग?
16: ये आजाद बिल्डिंग है और वहीं पे जो आपने देखा होगा कि शेड बांधे बकरे भी है, लेकिन हम यहाँ पे स्थानीय नागरिक जो है और मैं यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि खुलेआम बकरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। आप हम जैसे बाकी के त्योहार मनाते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, वैसे भी उन्होंने भी करना चाहिए।
15: घाटकोपर में भी बवाल हुआ है। वहाँ आज सुबह एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विवाद हो गया। कुर्बानी के लिए बीएमसी ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में मामला तूल पकड़ा तो बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की बात कही।
17: अरे पार्थ भट्टा, कुर्बानी जरूर होगी, होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बत्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी।
15: एक दिन पहले ही किरीट सोमैया और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने बकरीद के दौरान हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी रोकने की मांग की। ऐसी सियासत के बीच मुंबई के मीरा रोड इलाके में भी तनाव बढ़ गया था। रविवार को दिन भर चले हंगामे के बाद रात में भी सोसाइटी परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान एक युवक पर ब्लेड से हमला किया गया। पुलिस ने उस हमले की शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार पहले ही बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश जारी कर चुकी है। तो बंगाल की शुभेंदु सरकार ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। साथ ही बकरीद पर पहले से तय दो छुट्टियों को कम कर एक दिन सिर्फ 28 मई को छुट्टी करने का ऐलान किया। असम की हिमंता सरकार भी अन्य बीजेपी शासित सरकारों के सुर में सुर मिला रही है।
18: काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गो माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। होगा बकरीद होगा। जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
15: कि उधर उत्तराखंड के नैनीताल में भी बकरीद की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त है। नैनीताल फ्लैट्स ग्राउंड में 28 मई को ईद की नमाज अदा करने के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अंजुमन इस्लामिया को चिट्ठी भेजकर अनुमति रद्द करने की जानकारी दी। डीएसए महासचिव ने कहा है कि फ्लैट्स मैदान में किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी है और ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। आपको बता दें कि नैनीताल के ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में कई साल से ईद की नमाज अदा होती आ रही है। हर बार इसकी अनुमति डीएसए प्रबंधन ही देता रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस साल भी परमिशन दे दी गई थी लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबरें असरदार है, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई,
3: देखिए ऐसा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, क्या मोदी जी की सरकार में कोई नई नवेली प्रक्रिया है क्या, कोई नई नवेली योजना है क्या? ये भारत में लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली एसआईआर की प्रक्रिया है और एसआईआर के जरिए जो है वो जो वैध नागरिक है और मतदाता है उनकी सुरक्षा होती है और जो अवैध नागरिक और मतदाता है उनकी समीक्षा होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे एसआईआर को लेकर के जो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, एक भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने की कोशिश की और कहीं न कहीं समाज में के एक हिस्से को ये सांप्रदायिक संदेश देने की कोशिश की कि भैया ऐसा एसआईआर होगा तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, एसआईआर होगा तो तुम जो है वो भारत से निकाल दिए जाओगे। ये लगातार ये तो हिस्ट्री शीटर हो गए हैं ये लोग। इस मामले में आप देखोगे सीए में, उसमें भी यही तरह इसी तरह का इन्होंने जो है वो एक कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की।
2: सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही है, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर के सवाल उठा रही हैं वो रुके?
3: मैं तो मानता हूँ चोर चोरी से जाएगा, सीना चोरी से नहीं जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आप देखिएगा अभी जो है वो बिहार के चुनाव में ये चारों अनिश्चित हुए, इसी एसआईआर का मुद्दा लेकर घूम रहे थे। जो है वो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा। लेकिन अभी भी ये जो है वो अपनी जो इनकी रिवाज और मिजाज है, इनकी जो फितरत है, इनकी जो करतूत है, उससे बाहर नहीं आएंगे। अभी भी इसको जो है वो नए रंग रूप में जो है वो ढाल करके, और चाहे कोर्ट कुछ कहे और चाहे जनता कुछ कहे, चाहे जनादेश कुछ कहे, लेकिन इनका तो उद्देश्य अभी चलेगा, देखिएगा।
2: शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर ईडी रेड को लेकर जबरदस्त हंगामा। सीपीएम समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों को घेरा, तोड़ी गाड़ियां, जबरदस्त प्रदर्शन। कर्नाटक में बदलेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, आलाकमान के कहने पर कल इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, विपक्ष ने की थी चयन समिति के पास भेजने की मांग। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम बना तीसरा राज्य। पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी।

0: समर्थ की कस्टडी, मध्य प्रदेश पुलिस की 7 दिन की हिरासत में था आरोपी, सास गिरिवाला सिंह की जमानत रद्द करने पर सुनवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
3: चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान, अमेरिका का हंटर और पालतू आतंकियों का खौफ। ट्रंप की शर्त ठुकराते ही सरेआम फटकार। ट्रंप के करीबी सेनेटर बोले, खुद एक मुसीबत है पाकिस्तान। याद दिलाई दगाबाजी, ईरान के विमानों को दी थी पना। इसराइल से दोस्ती की बात पर कांपा पाकिस्तान। लश्कर के घरेलू सांपों ने उठाया फन। आतंकी सैफुल्ला कसूरी ने खुले मंच से उगला इसराइल के खिलाफ जहर।
4: इंशाल्लाह ये उम्मत-ए-मुसलमान हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे।
3: आतंकी की हुक्मरानों को खुली धमकी, इसराइल को कबूल करने वाले तबाह हो जाएंगे।
4: जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
3: ईद के दिन जिहाद के नारे लगाकर लश्कर ने उड़ाई पाकिस्तानी सरकार की नींद। बाहर महाशक्ति का चाबुक और अंदर आतंकियों की बगावत। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं गौरव सावंत। रणभूमि में सबसे पहले हम बात करेंगे उस आतंकी मुल्क पाकिस्तान की जो अब फंसता जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी असल औकात अमेरिका के साथ साथ उसके पाले आतंकवादी भी अब दिखा रहे हैं। पाकिस्तान घिरता जा रहा है, पिट रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। दरअसल अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो सुलह कराने का शांति का महाप्रस्ताव आया है, आपको याद होगा पाकिस्तान बड़ा मसीहा बन रहा था। पाकिस्तान यह कह रहा था कि हम सुलह करा रहे हैं। अब पाकिस्तान के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से संबंध सुधारने का और अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का उन्होंने प्रस्ताव, या अगर डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कहें तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया है, अब पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई अरब और अन्य इस्लामिक देश, जिसमें तुर्की भी शामिल है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, उनको एक तरह से यह आदेश दिया है, एक फरमान जारी किया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, इसराइल को मान्यता दें, वहां पर अपना दूतावास खोलें, उसके साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाएं और अपने संबंधों को सामान्य करें। और ये सभी जो इस्लामिक देश हैं ये इसराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ये सुनकर पाकिस्तान अब कांप रहा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, दोनों ही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह मध्य पूर्व में शांति बहाली की ऐतिहासिक पहल है और पहली शर्त है। और फिर पाकिस्तान तो उस शांति का ब्रोकर बना हुआ था, दलाली कर रहा था। अब कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, पाकिस्तान अब अपना मुंह काला करा बैठा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो बेहद करीबी अमेरिका के सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने तो पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान से पूछा है कि इसराइल को लेकर पाकिस्तान का जो ताजा रुख है, रवैया है, वो क्या है। हालांकि वो पाकिस्तान को खुद एक बड़ी समस्या, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, लिखित में कह चुके हैं। यह भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल देश नहीं है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जब वो मध्यस्थता करने की बात कर रहा था तो वो तटस्थ होकर मध्यस्थता नहीं कर रहा था, वो दलाली कर रहा था ईरान की। वो इसराइल का पुराना दुश्मन है और युद्ध के दौरान ईरान के लड़ाकू विमानों को, टोही विमानों को, मालवाहक विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पनाह दे चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी हैं, सोचिए एक पिता को कितना बुरा लगता है जब उसका अपना ही बेटा उसे बुरा भला कहे, बुरा लगता है, संस्कार तो है नहीं। अब पाकिस्तान का पाला पोसा लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी सैफुल्ला कसूरी, उसने अपने ही हुक्मरानों को धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो बर्बाद कर दिए जाएंगे। सोचिए एक बेटा अपने बाप को कह रहा है तुमको बर्बाद कर दूंगा, यही पाकिस्तान के पाले आतंकी पाकिस्तान को कह रहे हैं। वो इसराइल के खिलाफ भी जहर उगल रहा है और हम आपको एक विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा ने इसराइल से हाथ मिलाने की संभावना पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों को तबाह कर देने की, बर्बाद कर देने की धमकी दे दी है। लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी ने पाकिस्तान में बकरीद की नमाज के मौके पर यह धमकी दी कि जो भी इसराइल को कबूल करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। सोचिए एक आतंकी संगठन जिसको पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वही अपने बाप को यानी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को खुली धमकी देते हुए कह रहा है कि इसराइल के यहूदी पाकिस्तान को मंजूर नहीं, जो भी इसराइल के साथ अच्छे संबंधों को कबूल करेगा उसे मार दिया जाएगा। यही नहीं, उसने पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को भी इस्लाम की पेशकदमी यानी मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला कदम बढ़ाया। तो साथ ही साथ ये भी कहा कि इसराइल को एटम बम से उड़ा देना चाहिए, बकायदा ये धमकी दी। सैफुल्ला कसूरी ने कहा कि अगर सऊदी अरब समझौते से पहले पाकिस्तान और इसराइल की दूरी 400 किलोमीटर थी तो अब इसराइल को तबाह करने वाले पाकिस्तानी हथियार यानी एटम बम, उनकी दूरी तो महज 400 किलोमीटर रह गई है। देखिए पाकिस्तान में एक आतंकवादी, और ये चोरी छिपे नहीं कह रहे, खुले मंच पर न केवल इसराइल के खिलाफ जहर उगल रहा है बल्कि अपने ही बाप को, अपने ही हुक्मरानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वैसे इनके इतिहास में ऐसा होता भी रहा है, आप औरंगजेब का भी उदाहरण दे चुके हैं कि कोई अपने भाई को मार देता है तो कोई अपने बाप को जेल में डाल देता है। यही अब पाकिस्तान के आतंकवादी अमेरिका को भी कह रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को भी।
5: इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मते मुसलमा, हमारा ईमान है ये किसी तौर पर भी बदमाश दुनिया के सबसे बड़े
0: गुंडे
5: इसराइल को कभी
0: तस्लीम
5: नहीं करेंगे।
0: सुना आपने शब्दावली सुनी कि चाहे वो हुक्मरान हो वो हलाक हो जाएगा। यह है पाकिस्तान की हकीकत जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शर्त रखते ही सामने आ गई। अब सुनिए जिस इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, उन्हीं के देश इसराइल को लश्कर का आतंकी तबाह करने की धमकी भी दे रहा है। वो अब यह कह रहा है कि सऊदी अरब से जो रक्षा समझौता हुआ है यह इस्लाम की पेशकदमी है, यानी इस्लामी जिहाद की एक एक उनके लिए एक नया मोर्चा है। सुनिए सैफुल्ला कसूरी का इसराइल पर यह जहर बुझा बयान।
5: अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, गुज़श्ता दो माह पहले जब अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे, इसका माना क्या था?
4: इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था, आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुवत टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसायल के साथ इसराइल के से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है।
0: तो सोचिए, लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से मिसाइल चलानी होती तो 4000 किलोमीटर दूर वार करना होता। अब क्योंकि उनका सऊदी अरब के साथ एक करार हो गया है, रक्षा करार, तो अब अगर मिसाइल चलाएंगे तो वो सऊदी अरब की धरती से इसराइल पर मिसाइल चलाएंगे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर। आपको अब हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं कि असल में जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है उसको इसराइल पर हमले का एक जरिया बता रहे हैं। और यह अब हम आपको विस्तार से मानचित्र पर दिखाते हैं। इस नक्शे पर आप ध्यान से देखिए, कहां है पाकिस्तान की राजधानी, ये देखिए, ये इस्लामाबाद है। अगर आप इस्लामाबाद भी नहीं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बाद नीचे बलूचिस्तान का इलाका देखें, तो दावा इनका यह है कि करीब पहले 400 किलोमीटर दूर 4000 किलोमीटर दूर वार करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी, क्योंकि अब इनके सैनिक, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी मिसाइल अलग अलग भागों में है सऊदी अरब में, और खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान के जो जहां से खतरा है ईरान की तरफ से, ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख रहे हैं, एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, तो कह रहे हैं कि यहां से भी अगर हमको वार करना पड़े तो वो दूरी घटकर उनके मुताबिक सिर्फ 400 किलोमीटर रह जाती है। हालांकि ये दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, लेकिन आप जानते हैं आतंकवादी कितने कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए 400 और 1400 में ज्यादा फर्क होता भी नहीं है। इस्लामाबाद से जो रियाद की लगभग 3530 किलोमीटर की दूरी है, रियाद से तेल अवीव की दूरी वो लगभग 1395 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाती है। तो अब आप इस पूरे नक्शे को देखिए, पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि उसने जो एटम बम बनाया है वो इस्लामी बम है, इस्लामिक बम है, वो पूरे उम्मा की सुरक्षा के लिए है। और किससे सुरक्षा? अमरीका से, यहूदियों से यानी इसराइल से और भारत से, ये उसका दावा है। ये नहीं जानता कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा भारत में हैं, वो भारतीय हैं, और वो भारत को इंडिया फर्स्ट मानते हैं, वो उम्मा फर्स्ट नहीं मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की साजिश लगातार यही रही है कि वो इस्लामिक उम्मा का एक बम बनाए और दुनिया को धमकी दे और खुद लीडर के तौर पर, हालांकि कंगाल है, दो वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं है, भ्रष्ट है, लेकिन इस्लामिक बम के वो बूते पर वो चाहता है कि सऊदी अरब भी उसको सम्मान दे और बाकी इस्लामिक देश भी उसे सम्मान दे। और ये बात कभी पाकिस्तान की सेना कहती है, कभी पाकिस्तान के नेता कहते हैं, कभी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कहती है, और अब एक सैफुल्ला कसूरी जैसा आतंकवादी कह रहा है। हालांकि हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूथी हो, इन सबका सहस्त्र देख लिया गया है। ये जान ले कि इसराइल खतरा होने से पहले इसराइल उस खतरे को खत्म कर देता है, फिर चाहे वो खतरा ईरान में हो या फिर पाकिस्तान में। इसराइल की नजर इस वक्त इस बयान पर जरूर होगी। और याद रखिएगा, लश्कर ए तैयबा ने 26/11 के आतंकी हमले में यहूदियों को मारा था मुंबई में, और लगातार इसराइल कह रहा है उसका बदला भी सही समय आने पर लिया जाएगा। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान बरसों से आतंकवाद फैला रहा है, वही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद जो कभी वो यूके में फैलाता है, कभी यूरोप में, कभी अमरीका में, और निशाना उसका यहूदी रहते हैं। 2011 में ही उन्होंने कहा था कि उनका मिशन परमाणु हथियार को आतंकियों के या आतंकी शासन के हाथ में आने से पहले रोकना है। यह बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। उन्होंने इस खतरे के तौर पर ईरान के अलावा पाकिस्तान का नाम लिया था, क्योंकि इसराइल को इस बात का डर है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो कभी भी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है। और अब लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी की धमकी, और एक बार फिर यह सच्चाई है कि ये जो लश्कर और जैश जैसे आतंकी हैं, ये यहूदियों को निशाना बनाना चाहते हैं, इसराइल को निशाना बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये हथियार उनके पास आ जाए, क्योंकि खुद पेट पे अपने बांध लेंगे बम और फिर फट जाएंगे। पाकिस्तान के एटम बम का आतंकवादियों के हाथ में जाने का जो खतरा है वो बरकरार है। हम आपको आगे बढ़ने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का 2011 का वो बयान सुनवाते हैं और आज के हालत में 2026 में ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, सैफुल्ला कसूरी और पाकिस्तान के लीडर्स की बात सुनकर आप खुद अंदाजा लगाइए।
6: I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan, or more specifically, a Taliban takeover of Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost seven decades.
0: तो आपने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुना और इसी वजह से अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है, असलियत दिखाई है और उसकी औकात याद दिलाई है। उसके आतंकी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से शाहबाज शरीफ की सरकार ने और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जैसे ही इनकार किया तो अमेरिका ने सरेआम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका के बेहद रसूखदार रिपब्लिकन सेनेटर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच दलाल या ब्रोकर की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं है बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस्लामाबाद पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि पाकिस्तान चुपके से अपने एयरबेस पर ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पनाह दे रहा है। अमेरिका ने दो टूक लहजे में साफ किया कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की जो नफरत है और जो दुश्मनी है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस दो हजार
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
3: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
14: इन एसोसिएशन विद
15: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
14: हिंट, बड़े आराम से।
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
17: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
18: Vimal, bolo zubaan kesri.
19: 20 साल से India Today Media Institute देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
20: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव। Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
21: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
22: In association with
23: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
24: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
21: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
22: In association with
23: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
24: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

ईडी की रेड पर बवाल, लेफ्ट समर्थकों ने जांच एजेंसी की गाड़ी पर किया हमला, विजयन की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, विपक्ष ने की थी चयन समिति के पास भेजने की मांग, उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम बना तीसरा राज्य।

क्वार्टर में समर्थकों के साथ बैठक। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए 25,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर एआई से निगरानी।

0: हाईकोर्ट में मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत।
2: लेबनन से गाजा तक कोहराम, दहल उठा मिडल ईस्ट। इसराइल की 120 एयर स्ट्राइक मलबे में तब्दील लेबनन। हमास का नया मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह ढेर। सिर्फ 11 दिन में हमास के कमांडर का काम तमाम। सीज फायर हुआ तार तार, नेतन्याहू का आर पार का वार। सात अक्टूबर के मास्टरमाइंड को इसराइल ने ढूंढ कर मारा। बमबारी से कांपा लेबनन, गाजा पट्टी में भारी कोहराम।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। ईरान के मोर्चे पर खामोशी हुई तो इसराइल ने लेबनान से लेकर गाजा पट्टी तक वो भीषण बमबारी की, वो कोहराम मचाया कि लेबनान में संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ा दी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला और हमास को पूरी तरह से कुचलने का सीधा और अंतिम आदेश इसराइल की सेनाओं को इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कांस के साथ दे दिया। अब हम आपको एक तरफ लेबनान की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पिछले कुछ हफ्तों की सबसे विनाशकारी और सबसे भारी बमबारी देखी गई है। इसराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में टायर नाम का एक शहर है, टायर में, नबीतया में, बेका वैली में, कई इलाकों में एक के बाद भीषण बमबारी की, 120 से ज्यादा खतरनाक एयर स्ट्राइक्स की और इन हमलों से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बकायदा एक विज्ञप्ति जारी की और उसमें कहा कि इस भीषण बमबारी में कम से कम 31 बेगुनाह लोगों की भी मौत हो गई है। उनका हिजबुल्ला से कोई लेना देना नहीं था, इसमें मासूम बच्चे भी हैं और महिलाएं भी शामिल हैं, दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसा उनका दावा है। इसराइल ने लेबनान के कई इलाकों में जबरन निकासी के आदेश भी लिखित में जारी कर दिए हैं और यह कहा है कि अब उनके जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं उन्हें कुछ और इलाकों में तेज किया जाएगा और धारदार बनाया जाएगा। लेबनान को दहला देने के साथ साथ इसराइल ने गाजा पट्टी में भी हमास की कमर तोड़ने के लिए एक बार फिर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है कि इसराइल की सेना ने गाजा सिटी में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और हमास के नए मिलिट्री विंग के जो चीफ है मोहम्मद ओदेह उसे मार गिराया है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद ओदेह को महज एक हफ्ते पहले ही हमास के सैन्य विंग की कमान सौंप दी गई थी, लेकिन इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका यह कहना है कि जो भी नया हमास का लीडर बनेगा उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। जैसे ही पता चलेगा यह नया लीडर है, नया आदेश आए उससे पहले वो उसे ढेर कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके अलावा गाजा में हुई ताजा इजरायली बमबारी में 7 और लोगों के मारे जाने की खबर भी इस समय सामने आई है। वैसे लेबनान की अगर पहले हम आपको बात बताएं तो लेबनान में मंगलवार को जो बमबारी हुई है वो अब तक की सबसे भीषण और सबसे खूनी बमबारी है। इसे सबसे खूनी दिन के तौर पर अभी दर्ज किया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंगलवार को इसराइल की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल समय बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए इसराइल पर दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में नरसंहार की सीरीज चलाने का, केवल एक नरसंहार नहीं, नरसंहार की सीरीज चलाने का सीधा और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सबसे हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी हमले में मारे गए जो लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मासूम बच्चे मारे गए। महिलाएं मारी गई हैं, ऐसा दावा लेबनान ने किया है। और आंकड़ों की अगर बात करें तो लेबनान में बुर्ज अल शामली इलाके में इजरायली बमबारी में सबसे ज्यादा तबाही की खबर इस समय सामने आ रही है। अकेले इसी इलाके में 14 लोगों की जान चली गई, इसमें 2 मासूम बच्चे हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं, और इसी इलाके में 16 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, बच पाएंगे या नहीं मालूम नहीं। अच्छा, ये जो 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें 5 बच्चे हैं, 6 महिलाएं हैं, जिनका हिजबुल्ला से कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद यह लेबनान के लिए सबसे घातक और सबसे काला दिन आज ये साबित हुआ है। मिडल ईस्ट में पूरे के पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर एक बड़े युद्ध की सुगबुगाहट अब तेज हो गई। ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं ये इजरायली एयर स्ट्राइक्स की है, एक तरफ बेका वैली और दूसरी तरफ टायर का इलाका। और अब तक केवल यह कहा जा रहा था कि कुछ इलाके जो हैं दक्षिणी लेबनान के उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है या राजधानी बेरूत के दक्षिण के इलाके में, लेकिन अब दाहिए से कहीं आगे इसराइल के ऑपरेशंस निकल गए हैं। इसराइल ने लिखित में आदेश जारी किया है और कई और इलाकों को खाली कर देने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। रेडियो पर, मोबाइल फोन पर पर्चे बंटवाकर, हवा से पर्चे गिरवाकर उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इन इलाकों को छोड़ दें, वहां पर अब ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, पहले एयर स्ट्राइक्स। और डर अब इस बात का है कि एयर स्ट्राइक्स के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशंस और तेज कर दिए जाएंगे। लेबनान में इजरायली हमलों के बीच अब हिजबुल्ला ने भी एक बहुत बड़ा और विध्वंसक पलटवार करने का दावा किया है। हिजबुल्ला ने एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को हिलाने का दावा किया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का एक घातक अवाबीन एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन दक्षिणी लेबनान के बिन जबील इलाके में एक इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्ला का एक सुइसाइड ड्रोन है, एफपीवी ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन यानी ड्रोन में कैमरा लगा रहता है और वो लाइव तस्वीरें भेजता रहता है, और जो कमांडर है वो सुरक्षित इलाके में बैठकर इसी ड्रोन में विस्फोटक भी लगे रहते हैं। इजरायली गाड़ी की तरफ वो बढ़ता है और ठीक उसी पल सामने से आकर इजरायल के सैनिक वो गाड़ी के नीचे कूद जाते हैं। सैनिकों के कूदते ही आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखेगा, ये वीडियो गेम नहीं है, ये एफपीवी ड्रोन है। ये ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन इजरायली गाड़ी से टकराता है, एक जोरदार धमाका होता है, इजरायली सैनिक तो बच गए लेकिन गाड़ी के परखच्चे हो गए। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी छापेमारी और हवाई हमलों को बेहद तेज कर दिया है। सीमा पर तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां इसराइल ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है, वहीं हिजबुल्ला अब एफपीवी ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से इजरायली सेना पर पलटवार करने का दावा कर रहा है। साफ है कि जो अप्रैल का सीज फायर था उसके बाद अब दोनों ही तरफ से ये जो जंग है ये बेहद खतरनाक और घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो जो हिजबुल्ला के सुइसाइड ड्रोन है इसराइल की सेना को ये काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेबनान में इसराइल के अब तक 23 सैनिकों की मौत हो भी चुकी है। लेबनान में जमीनी जंग लड़ रहे जो ज्यादातर इसराइली सैनिक हैं उनकी मौत हिजबुल्ला के इसी एफपीवी ड्रोन हमलों की वजह से हुई है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन इसराइली सैनिकों को ढूंढ कर उन पर हमले करते हैं। इन हमलों को ड्रोन कैमरे में बकायदा कैद किया जाता है। लाइव ये तस्वीरें जो ड्रोन कमांडर है वो देखता है। इन ड्रोन्स में विस्फोटक लगे होते हैं और जैसे ही उसने बख्तरबंद गाड़ी देखी उस गाड़ी से जाकर भिड़ गया और जबरदस्त धमाका हुआ। हिजबुल्ला इनका इस्तेमाल न केवल इसराइल के सैनिकों को मारने के लिए बल्कि प्रोपेगेंडा के लिए भी कर रहा है। ऐसे ड्रोन हमलों में इसराइल के 23 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं और इनमें कुछ तो युवा कमांडर भी है। और इसी के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का आदेश दे दिया है।

0: और हिजबुल्ला के आत्मघाती ड्रोन हमलों से इसराइल के भीतर भी इस समय खलबली है। बाकायदा एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में बेहद आक्रामक और विवादित रणनीति पर अब चर्चा शुरू हो गई है। इसराइल के जो कट्टरपंथी वहां के जो वित्त मंत्री हैं बेजालेल स्मोटरिच, उन्होंने स्मोटरिच ने हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक बेहद विवादित हल सुझाया है। कैबिनेट मीटिंग में इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुलेआम मांग की है कि हिजबुल्ला के हर एक ड्रोन हमले के बदले लेबनान की राजधानी बेरूत में 10 बहुमंजिला इमारतों को गिरा देना चाहिए। उनका तर्क यह है कि जब तक हिजबुल्ला को इस तरह के महाविनाश का डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक इसराइल के सैनिकों पर सटीक हमले होते रहेंगे और हिजबुल्ला पर लेबनान में दबाव नहीं बनेगा। उनका मानना यह भी है कि ईंट का जवाब पत्थर देने का वक्त आ चुका है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल इस सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया है, इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन कैबिनेट के भीतर इस तरह की मांग उठने का मतलब क्या है? इसराइल का जो नेतृत्व है उस पर अब अंदरूनी दबाव एक बड़े ऑपरेशन के लिए और ज्यादा बढ़ गया। तो लेबनान के खिलाफ तो ऑपरेशंस हो ही रहे हैं, उसके अलावा बीती रात इसराइल ने दक्षिणी इसराइल से सटे गाजा पट्टी में भी एक जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। खबर इस समय आ रही है गाजा मोर्चे से कि इसराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेट और आईडीएफ यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब तक के सबसे बड़े और सफल ऑपरेशन को सीज फायर के बाद उसे अंजाम दिया है। इसराइल ने हमास के नए सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद ओदेह को एक भीषण हवाई हमले में सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इसराइल काट्स, उन्होंने खुद इस बात की औपचारिक पुष्टि की और कहा कि 7 अक्टूबर के गुनाहगारों में से एक और सबसे बड़े टारगेट को अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वर्ष 1974 में गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में जन्मा मोहम्मद ओदे हमास का कोई मामूली लड़ाका नहीं था। वो साल 1987 से पहले इंतिफादा के वक्त से ही हमास से जुड़ा हुआ था। वर्ष 2000 में वो हमास के सबसे खतरनाक सैन्य विंग अल कस्मा ब्रिगेड, जो उनकी ब्रिगेड है, उस कसम ब्रिगेड में शामिल हो गया था। मोहम्मद ओदे लंबे समय तक अल कसम ब्रिगेड का इंटेलिजेंस चीफ था, कसम ब्रिगेड का सैन्य खुफिया प्रमुख रह चुका है। इसराइल का मानना यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला उसका जो खाका है उसे तैयार करने में और इंटेलिजेंस इनपुट्स जुटाने में मोहम्मद ओदे का शातिर दिमाग शामिल था। इस हमले का उसे एक मुख्य आर्किटेक्ट उसके रूप में देखा जा रहा था। गाजा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारियों के मुताबिक इस भीषण धमाके में ओदे के साथ उसकी पत्नी और उसके बेटे भी मारे गए। 7 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सिर्फ 11 दिनों में हमास के 2 बड़े कमांडर अब तक मार दिए गए हैं और अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद ओदे को हमास का कमांडर बने महज 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन हुए थे, लेकिन इजरायली खुफिया तंत्र को उसको संभलने का और सत्ता संभालने का मौका ही नहीं दिया। उनको जैसे ही पता चला कि वो गाजा सिटी के रिमाल इलाके में है तो एक एयर स्ट्राइक हुई। उनके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी कि इस समय वो कहां मौजूद होगा और वहीं पर एक सटीक एयर स्ट्राइक हुई और उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। जो पूर्व कमांडर था इजलदीन अल हद्दाद, उसे 15 मई 2026 को इजरायली हमलों में मार दिया गया था। 18 मई 2026 को ओदे को अल कासिम ब्रिगेड का नया कमांडर नियुक्त किया गया था और गाजा में जो हमास का प्रमुख है उसके तौर पर, नए प्रमुख के तौर पर उसे नियुक्त किया गया था। तो सोचिए महज 8 दिन हुए थे और महज 8 दिन वो इस पद पर रहा, लेकिन अब उसकी लीला समाप्त। अब इसराइल का कहना है जो भी नया कमांडर बनेगा उसे नया कमांडर बनने से पहले, सत्ता संभालने से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। ईरान के साथ चल रहे महायुद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और डेमोक्रेटिक पार्टी पर एक अब तक का सबसे तीखा और सबसे बड़ा हमला बोला है। दरअसल कतर में ईरान के साथ सीजफायर पर बातचीत चल रही है, डील की बात हो रही है, और इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हताशा और बौखलाहट जाहिर करते हुए एक बेहद विस्फोटक पोस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने क्लासिक ट्रंप अंदाज में गरजते हुए कहा है कि ईरान पूरी तरह से बिना शर्तों के आत्मसमर्पण कर दे। अगर ईरान की पूरी नेवी समुद्र में डूब चुकी है, उसकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, ईरान के सैनिक सफेद झंडा लहराते नजर आ रहे हैं, आई सरेंडर चिल्ला रहे हैं, तब भी अमेरिका का जो बिकाऊ और फेक न्यूज मीडिया है और जो अमेरिका के विपक्ष के नेता हैं, वो अमेरिका की जीत उनको नहीं दिखती, बल्कि ईरान को वो से शानदार जीत ईरान की घोषित कर देते हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पूरी तरह से होश खो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं और देश का मनोबल गिरा रहे हैं। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए एक हमला किया तो ईरान का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ईरान ने इसे सीजफायर का घोर उल्लंघन बताया है और कहा है कि उसे भी अब जवाबी कार्रवाई करने का न केवल अधिकार है, बल्कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-35 विमान को भी पीछे खदेड़ने का दावा किया। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wake up.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: CBSE students right now and their parents are anxious. They've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM-based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.
9: Got से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
10: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
11: अब क्या ढूंढ सकते हैं
10: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

केरलम के पूर्व सीएम के घर ईडी के रेड पर बवाल। लेफ्ट समर्थकों ने जांच एजेंसी की गाड़ी पर किया हमला। विजयन की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। एमपी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जुटी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सीबीएसई नतीजों में हेराफेरी का राहुल गांधी ने लगाया आरोप। न्यायिक जांच और एसआईटी के तत्काल गठन की मांग। दिल्ली में

0: हाई कोर्ट में मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की? क्या समूचा विपक्ष पिछले एक साल से चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठा रहा था? क्या घुसपैठिए वोटर्स के बचाव में विपक्ष ने SIR विरोध की सियासत शुरू की थी? यह तमाम सवाल आज विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को SIR करने का संवैधानिक हक भी है और वैधानिक भी, यानी कानूनी अधिकार भी उनका शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि देश का मतदाता कौन होगा यह चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा और इसके लिए वो नागरिकता का भी फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों को भी जायज बताया है, जिससे कि वोटर्स की पहचान साबित की जा सके। मतलब विपक्ष की ओर से जो सवाल अदालत के सामने उठाए गए थे उनमें एक भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने जायज नहीं माना है। हाँ, यह जरूर कहा है कि अगर वोटर लिस्ट के नाम कट गया तो मतलब यह साबित नहीं होता कि उसकी नागरिकता चली गई। नागरिकता पर फैसला सक्षम प्राधिकार ही करेगा। दूसरी तरफ विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि अब तक जिनके नाम कट गए हैं, जिनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर एक जुडिशियल एडजुडिकेशन में डाल दिए गए थे, उनके साथ हो रही नाइंसाफी का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। तृणमूल कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है कि यह फैसला तो सिर्फ बिहार के SIR को लेकर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बंगाल चुनाव के दौरान ही 27 लाख वोटर्स के नाम फंसे होने और 19 ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं होने पाने के मसले पर कह चुका है कि अगर डेली बेसिस पर दिक्कतें हो रही है तो मतदाता हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद, इस फैसले के बाद, क्या विपक्ष वोट चोरी और SIR का मुद्दा छोड़ देगा, क्योंकि अब 30 मई से देश के बाकी प्रदेशों में भी SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो तमाम सवाल जवाब विपक्ष के खाते में बच गए हैं और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि SIR करके चुनाव आयोग देश के गरीब, दलित, पिछड़ों, मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया उसका लब्बो लुआब यही है कि SIR कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए।
2: हमने जो PIL फाइल किया था उसमें मांग किया था SIR रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, SIR हर 5 साल में होते रहना चाहिए। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो SIR हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहां पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए।
1: वैसे तो चुनाव आयोग के SIR को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई NGO, नेताओं, संगठनों समेत 20 अर्जियां SIR के खिलाफ डाली गयी, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि RPA एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह NRC तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि SIR करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि SIR के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब, दलित, मुस्लिम, प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है।
3: बिहार के বলেছেন আপ প্রসিডিউরাল জাজ সেফগার্ড আছে, সেই সেফগার্ডটা ঠিক আছে। যদি কারোর নাম নন সিটিজেন হিসেবে ডিলিট হয় তাহলে ইলেকশন কমিশনের কোন এখতিয়ার নেই, তা সে সিটিজেন কি নন সিটিজেন।
1: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाती है, तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
5: अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है।
1: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत यह है कि इस एसआईआर में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं, जिनमें यूपी में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था, लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था, जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं।
6: उन लाखों में से सिर्फ 1,000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा, मेरी चिंता उस बात से।
1: हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: तो सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसी बात को लेकर है कि जो पूरी प्रोसेस एसआईआर की चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी उसका पूरा अधिकार संवैधानिक भी और वैधानिक भी चुनाव आयोग को है। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हां वो डॉक्यूमेंट्स सही है। और उससे भी बड़ी बात, आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है अगर उनके नागरिकता पर शक है तो चुनाव आयोग को वो डेटा आगे की कार्रवाई के लिए दे देना चाहिए और 4 हफ्ते में उसकी सुनवाई भी शुरू होनी चाहिए। तो अलग अलग मुद्दे इससे उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या वो धराशाही हो गए पूरी तरीके से, इस पर चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, थोड़ी देर में स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस से भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि आप तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि यह फैसला सिर्फ बिहार को लेकर आया हुआ है, तो बंगाल को लेकर वो क्या करेंगे वो भी पूछना जरूरी है। और अश्विनी उपाध्याय यहां पर नजर आ रहे हैं, वो खुद एक इस याचिकाकर्ताओं में इस एसआईआर की प्रक्रिया के साथ में वो वहां पर अदालत के भीतर खड़े थे और उन्होंने कई बार अलग अलग डिबेट्स में भी एसआईआर की प्रक्रिया का पूरा पुरजोर समर्थन भी किया था। थोड़े से स्माइल उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरीके से उनके हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और इस बार विपक्ष पर सबसे ज्यादा सवाल होंगे सुलेमान खान जी, क्योंकि पहला सवाल हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की है, बीजेपी का जो आरोप था क्या वो सही साबित होता है? दूसरा सवाल, क्या समूचा विपक्ष पिछले एक साल से चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठा रहा था क्या? क्योंकि हमने देखा कि संसद का अधिवेशन हो वहां पर भी प्लेकार्ड्स लेकर विपक्ष खड़ा हुआ था, बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली गई थी, बंगाल में भी उसको लेकर काफी बवाल था, तो क्या यह बेवजह था? तीसरा सवाल, क्या घुसपैठिए और अवैध वोटर्स के बचाव में विपक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहा था? यह भी बीजेपी बार बार आरोप लगाई थी कि एसआईआर का विरोध क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज की स्थिति में कहता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, स्वतंत्रता से चुनाव कराने हैं, तो एसआईआर की प्रक्रिया यानी वोटर लिस्ट को साफ सफाई करना यह जरूरी है और इसीलिए एसआईआर होना भी जरूरी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट आज कह चुका है। तो आखिरकार यह विरोध क्यों था? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत सुलेमान जी आपसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि आज सवाल सारे विपक्ष को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया एक तरीके से। जो भी आरोप आप लगा रहे थे वो सारे आरोप भी मैं रखूंगा, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया वो भी रखूंगा, लेकिन पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहिए क्योंकि आप विपक्ष कह रहा है कि अब तो हमने सुना कि योगेंद्र यादव वहां पर कह रहे हैं कि अब तो सरकार तय करेगी कि वोटर कौन होगा करके, वोटर्स तय नहीं करेंगे सरकार कौन होगी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अधिकार है संवैधानिक भी और वैधानिक भी, तो ये कैसे हो सकता है?
7: जोशी जी, तीन आपने सवाल पूछे हैं और मुझ पे ही आपका सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करना उसको बदनाम करना नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका अधिकार देता है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे मुल्क का। तो अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज है या बेईमानी कर रही है या अनबायस्ड नहीं है या इक्वालिटी के साथ अपना प्रोसेस नहीं कर रही है, तो ये बदनामी नहीं है। आप जजमेंट पढ़िए, मैं भी पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया है रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टीज या स्टेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीट किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन में, उनकी वजह से जो गैप्स थे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में, मसलन आधार कार्ड को कहते थे हम नहीं मानेंगे उसे प्रूफ ऑफ आपका रेसिडेंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि हम आधार कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगेंगे, 12-14 जो दस्तावेज 11-12 दिए थे उससे नहीं मानेंगे वो, क्योंकि सारे जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्टेट्स जो इम्प्लीटेड थी अपोजिशन की, उन्होंने इंसिस्टेंस किया और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो आधार कार्ड को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते थे और कई जगह गैप्स थे जिसको उन एक्टिविस्ट की वजह से, उन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जिसमें कांग्रेस पार्टी की पिटिशन भी शामिल थी, तो जो एक तरह से देखा जाए आर्बिट्रेली बुलडोज करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिटीजंस के, उसको कांग्रेस पार्टी ने और इन्हीं पिटिशनर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे काफी हद तक बचाने की कोशिश करी और बचा भी पाए।
0: पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है सुलेमान जी, पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लेकिन आप फिर भी 5% उसमें जो बूंदे बची है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं।
7: सर आप सवाल का जवाब सुनिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना, बदनाम करना नहीं होता है, इस बात को जहन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट्स को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज भी गलत हो सकती है, सिटीजंस भी गलत हो सकते हैं, क्वेश्चन करना ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, समझ लें उनके ताज में वो हीरा है, उसको मत रोकिए। सेकेंड, आप जो कह रहे हैं घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए पकड़े हैं, बीजेपी गवर्नमेंट 12 साल से है, बॉर्डर सिक्योरिटी उनके पास है, वो तो 2006 से 14 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने, यूपीए 1 ने और 2 ने 50-55 हजार लोगों को बाहर भेजा था बांग्लादेशियों को, वो रिकॉर्ड है होम मिनिस्ट्री का। और 2016 से और 2022 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी आरएसएस गवर्नमेंट ने कितने 1,000-1,500 बांग्लादेशियों को या घुसपैठियों को पकड़ा है। तो आप सिर्फ बातें करते हैं बीजेपी के लोग, काम कोई नहीं करते। और तीसरी बात,
0: सवाल ये नहीं है सुलेमान जी, तो आपके सवाल इस बात को लेकर है कि आपने पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। और ये बात तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है, भले वो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उस पर उनके फैसले पर भी सवाल पूछने का सभी को अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर ना शहजाद पूनावाला को कोई आपत्ति होगी, ना अश्विनी उपाध्याय जी को कोई आपत्ति होगी, ना किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
7: लेकिन सुलेमान जी एक मिनट, इसे ऐसे भी एनालाइज करिए, आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बीजेपी डिसाइड करेगी कौन वोटर बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्शन, हम तो कहते हैं इस बात को क्योंकि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पावर्स और लास्ट
0: सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि सरकार इस बारे में फैसला लेगी कि कौन सिटीजन है कि नहीं है सिटीजन।
7: नहीं,
0: मैं आपको सारे मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद मैं शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा कि अभी भी आपको लगता है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दा सही है कि सवाल तो पूछा जा सकता है।
7: कभी भी इलेक्शन कमीशन की पावर्स पे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था प्रोसेस पे और इंटेंट पे, नियत पे और प्रोसेस पे क्वेश्चन था। हम ये नहीं कहते थे कि आर्टिकल 324 में पावर्स।
0: अभी आप जरा मेरी बात सुन लीजिएगा,
7: की बात होती है और
0: सुलेमान जी अभी आप मेरी बात सुन लीजिएगा, आप जरा जजमेंट भी सुन लीजिएगा और जो बहस वहां पर हुई है ना, जो जजमेंट है ना, वो भी एक बार जरा पढ़ लीजिएगा। जरा एक बार हम दिखाई देते हैं 10 मिनट,
7: शायद
0: थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा क्योंकि ना जरा वो सारी चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। सुलेमान जी आप जरा जजमेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें यह भी लिखा है कि आपको अगर प्रोसेस को लेकर शिकायत है तो आपको वो प्रोसेस का मुद्दा जरा ज्यादा ठीक तरीके से रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया है। वो कानूनी पहलुओं पर आपको रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जरा एक बार सुन लेते हैं, 10 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला दावा, ईसीआर को व्यापक एसआईआर का हक नहीं है, दावा किया गया था पिटिशंस में, अदालत ने कहा है कि ईसीआर को अधिकार है। दूसरा दावा, एसआईआर के बहाने नागरिकता तय कर रहा है ईसीआर, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है। लिस्ट के वोटर को नागरिक माना जाएगा, इस पर भी अदालत ने कहा है नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर है, सज्ञापन की प्रक्रिया सही है। पांचवा दावा, एसआईआर के कारण लाखों लोगों का मताधिकार छीनेगा, नोटिस सुनवाई समय दिया जाएगा, यह भी अदालत वहां पर कह रहा है। छठा दावा, एसआईआर में आरपी एक्ट, एक बार फिर छठा दावा दिखाइएगा, जरा एक बार दिखाना पड़ेगा, जरा ठीक से लोगों तक यह बात पहुंचे कि कौन से दावे किए गए थे वोटर्स के। पहला दावा, ईसीआई को व्यापक एसआईआर का हक नहीं है, ईसीआई को एसआईआर का संवैधानिक वैधानिक हक है। दूसरा दावा, एसआईआर के बहाने नागरिकता तय कर रहा है ईसीआई, सीमित उद्देश्य से नागरिकता की जांच संभव है, यह भी कहा है। लिस्ट के वोटर को नागरिक माना जाएगा, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है, सिर्फ लिस्ट में नाम है इसके लिए वोटर नहीं है, नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर, सज्ञापन की प्रक्रिया है दस्तावेज और उसी के जरिए हो सकता है। एसआईआर के कारण लाखों लोगों का मताधिकार छीनेगा लेकिन सुनवाई अपील के नाम वहां पर मौजूद है। एसआईआर आरपी एक्ट के चुनाव नियमों का उल्लंघन है, किसी नियम अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 11 दस्तावेजों वाले नियम मनमाने थे लेकिन दस्तावेजों के नियम सही थे, अदालत कह रहा है। वोटर्स के नाम काटने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला है, यह भी कहा है। ईसीआई किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता, नागरिकता का फैसला सक्षम प्राधिकरण करेगा। और 8 अंतिम दावा, एसआईआर का स्वरूप असंतुलित दाम काटने वाला है, जो 10वां दावा है वो भी अदालत ने खारिज कर दिया है। शहजाद पूनावाला, क्यों आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है।
8: सबसे पहले तो सत्यमेव जयते साहिल भाई, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर काम करने का काम किया था, आज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपने बता दिया है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तो बात अच्छी है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था सवाल के ऊपर नहीं हो सकती। याद है एक समय ऐसा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, और हमारे भाई अश्विनी जी बैठे हैं बताएंगे, इमरजेंसी के पीक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट लाकर, किस प्रकार 42 अमेंडमेंट लाकर प्रधानमंत्री को क्वेश्चन के बाहर, जुडिशियल रिव्यू के बाहर करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जहां तक सवाल है संवैधानिक संस्थाओं पर, सवाल उठाना और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर बोलना, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र से आप और मैं दोनों हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला हमने एटम बॉम्ब फोड़ा है, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो रिग्ड था। हरियाणा में कोई एक सबूत प्रमाण नहीं दे पाए, वहां पर कुमारी शैलजा ने बोला कि देखिए हुड्डा जी की वजह से हम चुनाव हारे, परंतु हरियाणा को लेकर उन्होंने झूठ बोला। आलंद को लेकर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला 6000 वोट डिलीट हो गए हैं, शाम आते आते बोला कि आलंद में एक भी वोट डिलीट नहीं हुआ है। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, साहिल जी प्लीज इनको थोड़ा आपकी डिबेट का तरीका और रूल समझा दीजिए। साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी, साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी,
0: आप बोल रहे थे
8: साहिल मैं आपके इंटरवेंशन को ठीक
0: कर, बोलने का मौका मिलेगा वरना बहस ऐसे ही चलती रहेगी, जरा उनको अपनी बात खत्म करने
7: दीजिए। कमीशन नहीं दे पाई,
0: देखिए सुलेमान जी प्लीज आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट होना जरूरी है, प्लीज उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको बोलने का मौका
8: मिलेगा।
7: जो लोग सिटीजन भी नहीं थे।
0: सुलेमान जी प्लीज,
8: साहिल जी मैं आपके चैनल से एक्सपेक्ट करूंगा,
0: उनको बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं।
8: मेरी पार्टी और मैं और मेरे करोड़ों,
0: शहजाद जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए बोलिए।
8: साहिल जी हम लोग, साहिल जी डिबेट में फेयरनेस की अपेक्षा मेरे से है, मैं भी करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं अपना पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं, प्लीज सर। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब ये एसआईआर एक्टिविटी हुई तो जब बंगाल में और असम में इन्होंने सवाल खड़े किए, वहीं केरलम और तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, वहां पर एक सवाल नहीं उठाया। उल्टा कांग्रेस के विधायक है मैथ्यू के, उन्होंने बोला कि एसआईआर एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई, इसकी वजह से लेफ्ट के द्वारा बनाए गए फेक वोटर्स काटे गए, हम एसआईआर का समर्थन करते। सुनिए,
9: प्रोसेस आई मीन आल्सो रिमूव्ड लॉट मेनी फेक वोटर्स व्हिच आई मीन इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी।
8: तो मतलब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब चुनाव आयोग ठीक, तब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब जुडिशियरी ठीक, जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब एसआईआर ठीक, अन्यथा एसआईआर खराब, अन्यथा ईवीएम खराब, अन्यथा चुनाव आयोग खराब। मैं पूछा जाता हूं, पहले ये बोलते थे ईवीएम, साहिल जी याद है जब हम लोग एक दो साल पहले डिबेट करते थे हर डिबेट में ईवीएम का रोना रोते थे, ईवीएम अब बिल्कुल बंद कर दिया है। 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला है ईवीएम पर, और यहां तक कि उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने भी बोला कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब ईवीएम से बदलकर एसआईआर पर आ गए, वोटर लिस्ट पर आ गए। जब एसआईआर केरलम में होता है तो वो बिल्कुल चमत्कार, एसआईआर बंगाल में होता है तो बिल्कुल गुनेगार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसा है कांग्रेस पार्टी का। जब सीईओ वेस्ट बंगाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया तब इन्होंने बोला देखो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, और केरलम में उसी सीईओ केरलम को उन्होंने अपने सीएम का सेक्रेटरी बनाया तब वो चमत्कार होता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ईवीएम जो है तेलंगाना में ठीक है, केरलम में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है।

0: में
1: मैं
0: ठीक है, झारखंड में ठीक है,
1: आपको
0: महाराष्ट्र में खराब है,
1: इनका जवाब
0: हरियाणा
1: दे
0: में
1: दे रहा हूं
0: खराब
1: मैं।
0: है, दिल्ली
1: हाँ
0: में
1: मैं बता
0: खराब
1: रहा हूँ
0: है,
1: क्यों है खराब।
0: यही
1: ये
0: डबल
1: बड़ा
0: स्टैंडर्ड
1: दिलचस्प
0: दिया है
1: सवाल है
0: जिसकी वजह से,
2: शहजाद ने, एक
0: जिसकी
2: सवाल बड़ा
0: वजह से
2: एक
0: हम
2: एक
0: जवाब तो
2: सवाल बड़ा
0: सुनो।
2: सटीक उठाया
1: आप
2: उन्होंने।
1: केरला में
2: नहीं सुलेमान जी,
1: फाइल दी
2: एक
1: एक
2: सवाल
1: एक
2: उन्होंने सही उठाया
1: सेंटेंस
2: हुआ
1: में,
2: है, उसका
1: आप
2: जवाब तो आपको देना होगा।
1: केरला में
2: सुलेमान जी
1: एफआईआर
2: एक
1: करा
2: मिनट,
1: के। हाँ
2: सुलेमान जी एक
1: जी
2: मिनट, सुलेमान जी एक मिनट, सुलेमान जी एक मिनट। दो सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं, एक तो ये कि ये बात तो सही है ना कि केरल के भीतर जब एसआईआर होता है तब आप उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा है कि वहां पर एसआईआर हो रहा है, जो फेक वोटर से वो बाहर निकल कर जा रहा है। और उसके बाद बंगाल के भीतर जब वहां के सीईओ को मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनको चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, तब भी सवाल उठता है कि देखिए बीजेपी और चुनाव आयोग एक जैसे ही है। लेकिन वही चीज आप भी तो केरल में करते हैं, तब तो आपको लगता है कि ये फेयर है, ये तो आपका अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है।
1: देखिए, केरला में भी अगर एसआईआर करा के और वोटर्स डिलीशन करके और फेक वोटर्स इंक्लूड करा के चुनाव जीत लेते तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं है केरला में। बंगाल में बेसिस था आपका, 77 एमएलए आप ले आए थे पिछली बार, आपके 16-17 एमपी थे। वहां बेईमानी करना, वहां इलेक्शन को हाईजैक करना आपके लिए आसान था। और साहिल जोशी जी, आपको नहीं मालूम, मैं जिस जिले से आता हूं, रामपुर यूपी से, मैंने तो अपनी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन को डकैतों का काम करते हुए देखा है। 5 दिसंबर 2022 को 37 रामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाय इलेक्शन में, जहां मैं वोटर हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने पुलिस को मार मार के, वोटर्स को मार मार के वोट नहीं डालने दिया, पूरा इलेक्शन लूट डाला, पूरा मैंडेट पे डाका डलते हुए देखा मैंने। रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर यूपी का 5 दिसंबर 2022 का बाय इलेक्शन टेस्ट ग्राउंड था, वो रेप्लिकेट हुआ कुंदरकी में, संबल में,
2: सुलेमान
1: और
2: जी,
1: अब वो बंगाल में रेप्लिकेट हुआ। और मेरी बात लिख लीजिए, चाहे एसआईआर के थ्रू, चाहे पुलिस और फौज के थ्रू, इसी तरह से बीजेपी और आरएसएस डेमोक्रेसी को
2: सुलेमान जी
1: कुचलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल
2: आप अभी
1: डेमोक्रेसी को
2: टॉपिक
1: खत्म
2: शिफ्ट
1: कर
2: कर
1: देंगे।
2: रहे हैं,
1: जो बात मैंने
2: आप
1: देखी अपनी आंखों
2: टॉपिक
1: से,
2: शिफ्ट कर रहे
1: कैसा
2: हैं।
1: इलेक्शन कमीशन ने
2: आज
1: डाका
2: का
1: डाला
2: पूरा
1: चुनाव में,
2: डिबेट का
1: वो कैसे
2: टॉपिक
1: भूल जाऊंगा
2: एसआईआर
1: मैं।
2: के मुद्दे पर है। आपने जब
1: मैं तो
2: सवाल
1: आपको
2: उठाए तब उस
1: डेमोक्रेसी
2: बात
1: की
2: को लेकर हमने
1: पारदर्शिता
2: पूरी
1: बता रहा हूं,
2: डिबेट उस पर की थी।
1: क्योंकि क्योंकि क्योंकि
2: नहीं
1: शहजाद
2: सुलेमान जी, आप
1: ईवीएम
2: जरा
1: की
2: सुन
1: बात कर रहे
2: लीजिएगा,
1: थे, हम आज भी कहते हैं
2: आपने
1: ईवीएम
2: जो
1: नहीं होने
2: पांच सवाल
1: चाहिए,
2: उठाए
1: हम तो
2: थे
1: आज भी कह
2: और
1: रहे हैं
2: सिर्फ
1: ईवीएम
2: आपकी
1: नहीं होने
2: पार्टी नहीं
1: चाहिए।
2: थी, विपक्ष के तमाम लोग उसमें शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी केसी वेणुगोपाल उस याचिकाकर्ताओं में शामिल थे,
1: हाँ,
2: राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ
1: एक
2: से
1: आप
2: सुप्रिया
1: सिटीजन
2: सुले
1: की पे
2: उसमें
1: बात
2: शामिल
1: कह रहे
2: थी,
1: थे,
2: महुआ
1: मैं आपको
2: मोइत्रा तृणमूल
1: एक
2: कांग्रेस के
1: पैराग्राफ,
2: तरफ से शामिल थी, डीएमके उसमें शामिल थी,
1: एक
2: समाजवादी पार्टी उसमें
1: पैराग्राफ,
2: शामिल थी,
1: हाँ
2: राष्ट्रीय
1: मैं
2: जनता
1: कह रहा
2: दल
1: हूं,
2: उसमें शामिल था।
1: मैं तो अभी
2: आपने
1: कह रहा
2: जो
1: हूं
2: सवाल
1: आपसे,
2: उठाए थे वो आज
1: एक
2: सारे के
1: एक
2: सारे सवालों
1: अरे
2: का
1: सर, मेरी
2: जवाब
1: सुन तो
2: सुप्रीम
1: लिए
2: कोर्ट के
1: आप,
2: आदेश
1: बोले
2: के
1: तो मेरे,
2: बाद
1: मैं सुन
2: इस
1: तो लिए
2: मामले में आ चुका
1: एक,
2: है, तो
1: अरे
2: मुझे
1: सुन तो
2: आपको
1: लिए
2: सवाल यही
1: बहुत,
2: पूछना है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, क्या आपको लगता है वो गलत था? सुप्रीम कोर्ट के
1: बिल्कुल
2: इस
1: सही
2: फैसले
1: था,
2: के बाद अब
1: बिल्कुल सही
2: आपका
1: था।
2: और विपक्ष का रवैया क्या होगा? ये सवाल
1: अरे मैं,
2: सबसे बड़े रहता है।
1: आप अगर मेरी एक बात सुन लेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहले तो आप सिटीजनशिप की बात गलत कह रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 171 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप तय नहीं करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। पैरा 171 पढ़ लेना, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूं, 7-8 लाइनों
2: नहीं
1: का
2: हम
1: है,
2: गलत
1: टाइम
2: नहीं कह
1: वेस्ट
2: रहे
1: होगा
2: सर, आप देख
1: आपका।
2: लीजिएगा, मैंने सही कहा है।
1: पैरा 171
2: उसी
1: में पढ़
2: जजमेंट
1: लीजिए।
2: में उन्होंने कहा
1: अरे
2: है
1: सर,
2: कि
1: आप
2: ईसीआई
1: सुनते तो
2: कैन
1: नहीं, आपके
2: कंडक्ट
1: साथ प्रॉब्लम
2: लिमिटेड
1: यह है,
2: स्क्रूटिनी फॉर
1: आप तो
2: इलेक्टोरल
1: पूछते सुनते नहीं है,
2: पर्पजेस,
1: आप सुनते क्यों नहीं है
2: लिमिटेड
1: अपोजिशन को,
2: स्क्रूटिनी
1: बोले
2: फॉर
1: चले जाते
2: इलेक्टोरल
1: हो आप तो।
2: पर्पजेस, ये भी
1: सर
2: उसमें
1: सुना
2: कहा
1: तो
2: गया है।
1: करिए।
2: मैंने मैंने हमने ऐसा नहीं कहा कि इसका मतलब यह कि वो सिटीजन नहीं रहा है, आप जरा एक बार देख लीजिएगा, आप मुझे
1: अरे सर
2: मिसकोट
1: सुन
2: मत
1: तो
2: करिएगा
1: लिए, मैं ही
2: प्लीज।
1: कह रहा हूं कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 171 में, क्यों नहीं
2: लिमिटेड
1: अपोजिशन को,
2: स्क्रूटिनी
1: बोले
2: फॉर
1: चले जाते
2: इलेक्टोरल
1: हो आप तो।
2: पर्पजेस, ये भी
1: सर
2: उसमें
1: सुना
2: कहा
1: तो
2: गया है।
1: करिए।
2: मैंने मैंने हमने ऐसा नहीं कहा कि इसका मतलब यह कि वो सिटीजन नहीं रहा है, आप जरा एक बार देख लीजिएगा, आप मुझे
1: अरे सर
2: मिसकोट
1: सुन
2: मत
1: तो
2: करिएगा
1: लिए, मैं ही
2: प्लीज।
1: कह रहा हूं कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 171 में कि सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है, मैंडेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, वो होम मिनिस्ट्री है, जो भी है। तो सबसे पहले, और जो आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ने गलती करी, पैरा 97 से 101 बॉस आप पढ़ लेना, और ये देख लेना कि कांग्रेस का और विपक्षी दलों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या नियत थी इस इलेक्शन कमीशन की इसके साथ। पैरा 97 मार्क करें, 97 से 101, पैरा 97, द रिकॉर्ड रिवील्स दैट द प्रोसेस एज इनिशियली डिजाइंड डिड रेज लेजिटिमेट कंसर्न्स रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस। However, it is equally evident that these concerns was addressed through a series of judicial interventions, which progressively infused the process with safeguards. वो intervention इसलिए हुए क्योंकि हमने intervene किया। Para 98, for instance, insofar as documentation regime was concerned, the initial grievance of the petitioner centered around the exclusion of वाइडली हेल्ड आधार

0: आर कार्ड्स दिस कंसर्न्स वर डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय दिस कोर्ट
1: उसी में सुलेमान जी
0: 101 पढ़िए, ये हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी और
1: अपोजिशन पार्टी जरा सबको रुकूंगा, योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
0: इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज
1: नहीं नहीं सुलेमान जी एक मिनट जरा, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। योगेंद्र जी आपका वीडियो स्टेटमेंट मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने डाला है
2: जी।
1: ऐसा लगता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले को लेकर आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो, और अभी आप कह रहे हैं कि सरकार तय करेगी एक तरीके से कि मतदाता कौन होगा, ये सरकार तय करेगी, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो तो चुनाव आयोग का अधिकार है, विद इन इट्स राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक तरीके से किया हुआ, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसमें और चुनाव आयोग के पास वो अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या गलत थी, इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सबसे पहले।
2: शुक्रिया साहिल भाई, मैं हैरान तो नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने में ऐसा है कि स्पष्ट कोई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है सब बढ़िया है, उसका अधिकार भी है, जिस तरीके अधिकार इस्तेमाल किया है वो भी सही है, सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज पे एक पे की मोहर लगा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हैरान तो नहीं हूं क्योंकि पिछले कई महीनों से किस इस तरह से जा रहा था, खासतौर पर जब दूसरा बयान का शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद तो बिल्कुल स्पष्ट था कि केस तो तय हो चुका है, अब केवल एक लिखित जजमेंट आना बाकी है। लेकिन परेशान और परेशान इसलिए नहीं हूं कि मेरा भी केस था, मैं लिटिगेंट था, मुझसे काफी बड़े लोग लिटिगेंट थे, और आप कोर्ट में जाते आप पक्ष में जाते हैं कोई विपक्ष में जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट से असहमति भी हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब नहीं कोर्ट के आप खिलाफ बोले, लेकिन आज जो है बहुत बहुत बड़ी घटना हुई, और वो ये कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है कि अब वोटर सरकार को नहीं चुनेगा, अब सरकार वोटर को चुनेगी, या बिल्कुल सादे शब्दों में कहूं आज परिस्थिति में इस जजमेंट का परिणाम कि अब बीजेपी चुनेगी कि इस देश में कौन वोट कर सकता है कौन नहीं, चुनाव के जज आ गया है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाती है, सरकार अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन चुनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, और आज के निर्णय के हिसाब से चुनाव आयोग अपने तरीके से कोई भी SIR कर सकता है, ये होने का मतलब ये होगा कि अब बीजेपी अपने मन से करेगी, ये इसका परिणाम है। मैं किन किन चीजों से सहमत हूँ देखिए, बहुत
1: एक बड़ी बात इस फैसले में ये भी लिखी गई है कि आपका नाम पहले वाले वोटर लिस्ट में था उसके बावजूद भी उस पर सवाल उठा सकता है चुनाव आयोग, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं तब भी चुनाव आयोग इस बारे में सवाल उठा सकता है, और इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी वोटर को यह आशंका है कि गलत तरीके से मेरा नाम काटा गया है तो उसके पास भले सारे ऑप्शंस है कि वो जाकर अपनी सुनवाई करा सकता है, यानी प्रोसेस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्कुल सही है जो चुनाव आयोग कर रहा है और वो उनका अधिकार है, तो उसमें क्या गलत है
2: जी, मैंने कहा चुनाव आयोग
1: क्यों आपको लगता है कि बीजेपी तय कर रहा है
2: जी, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकार को भी मान्यता दे दी है, SIR के आदेश को भी मान्यता दी है, और SIR को जिस तरीके से लागू किया है उसको भी मान्यता दे दी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहने की कोई कमी नहीं है। जो चीज मुझे परेशान करती है दो तीन चीज मैं गिरा देता हूँ, पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सुई के छेद में से एक हाथ निकाल दिया है, वो कैसे कि देश में नियम ये था कि अगर आप वोटर लिस्ट का रिवीजन करेंगे तो उसमें 21A 21B के तहत सामान्य प्रावधान इस तरीके से करेंगे, चुनाव आयोग ने उनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं एक 21C भी है जिस किसी विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक छोटे से टुकड़े में वो अपने तरीके से वोटर लिस्ट बनवा सकता है, तो अभी में बना सकता है, इसका मतलब 843 में बना सकता है, इसका मतलब है चुनाव आयोग ने आज तक जो बनाए हैं उसका पालन करने की उसे जरूरत नहीं, ये सुई के छेद में से हाथी कैसे निकल गया समझ नहीं आता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा
1: तो अभी क्या करना चाहिए, आपको लगता है कि अब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है, अगर इसी तरीके SIR तो अभी होगा, आपने कहा है कि चुनाव आयोग को अधिकार पूरी तरीके से दिया गया है, तब आगे क्या करेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में संशोधन होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।
2: वोटर लिस्ट में संशोधन होगा ये तो इस देश का नियम है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग अपने मनमानी से वोटर लिस्ट में अप्रक्रिया से संशोधन कर सकता है, जितने लाख काट सके वो काट दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी है, उसको लेकर
1: ठीक
2: आज क्या होगा देखिए। चुनाव सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम तो होगा इस देश में, जाहिर उसका कोई संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आज का जजमेंट बिल्कुल वैसा है जैसा कि एडीआर का जजमेंट इमरजेंसी के दौरान दिया गया था। इमरजेंसी दिया गया वो जजमेंट इस देश में न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के प्राण देने का अधिकार सरकार को दे दिया था और कहा था इसके बारे में कोर्ट में किस भी नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र का प्राण
1: की तारीख में यही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि शायद नेटवर्क की कोई समस्या है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप जिक्र कर रहे हैं जो इमरजेंसी के वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसको लेकर। शहजाद इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। शहजाद
3: साहिल जी देखिए, मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं साहिल जी आपके साथ भी डिबेट में, पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक फैसला दिया है, उसको चैलेंज करने के लिए टीवी पर मंच दिया जाता है उस योगेंद्र यादव को जो एक समय पर ईवीएम पे सवाल उठाते थे, ईवीएम पर 41 वर्डिक्स आए, फिर महाराष्ट्र पे सवाल उठाते थे, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाए, फिर बिहार में आपको याद होगा मैं आपके साथ डिबेट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत डिलीशन का एक एफिडेविट दे दो तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, इनके पास एक सच्चा एफिडेविट जो गलत वोट कटा था उसका नहीं था, ड्रामा करने लगे कोर्ट में कि देखो हम इसको ले आए उसको ले आए, पर एफिडेविट ठीक से नहीं दे पाए। आज वो योगेंद्र यादव जो राजदीप के शो में बैठ के हरियाणा में हवा चल रही है सुनामी चल रही है ये प्रिडिक्शन कांग्रेस के पक्ष में कर रहे थे, जो एडवाइजर है खड़गे जी के, उनको आप इस प्रकार का मंच देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, नवीन चावला जब थे इलेक्शन कमिश्नर, तब इलेक्शन कमिशन कॉम्प्रोमाइज था क्या?
1: क्यों नहीं दे सकते? एमएस गिल के नहीं, वो भी याचिका करता है, आपको भी मंच दिया हुआ है, अश्विनी उपाध्याय जी को भी मंच दिया हुआ है, क्यों नहीं दे सकते?
3: मैं बता रहा हूं,
1: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना मान लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मंच नहीं दे सकते, ये गलत है।
3: मैं बता रहा हूँ,
1: जल्दी
3: बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए, बताने दीजिए, बता रहा हूँ साहिल जी, एक सेकंड योगेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, साहिल जी मुझे बताने दीजिए, अभी बीच में इंटरवेंशन मत करवाइए, साहिल जी मुझे बताने दीजिए,
1: एक मिनट आप इस तरीके से मत बोलिए,
3: मुझे बताने दीजिए,
1: ऐसे मत करिए प्लीज, आपकी बात सुनिए, उन्होंने भी जवाब देने दीजिएगा, नहीं तो आपने बताया ना, आपने बताया ना, मेरा उनका जवाब भी सुन लीजिए ना
3: चैनल, अरे मुझे बोलने का मौका था,
1: आपके बीच में नहीं बोला, आपने बहुत
3: मेरी बात क्या हुई,
1: कितनी देर बात करेंगे, आपने बोला मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझ पर सवाल उठाया तो मैं आपको
3: इंटरवीन किया,
1: आपने मुझ पर सवाल उठाया ना कि कैसे मंच दिया करके,
3: आपने इंटरवीन किया
1: तो क्यों नहीं करूंगा,
3: देख रहा है
1: आप मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे कि आपने उनको मंच क्यों दिया तो मैं आपको पूछूंगा ना,
3: आप मेरी बात
1: क्यों नहीं पूछूंगा मैं उनको,
3: अभी तक मेरी बात हो जाती,
1: क्यों नहीं पूछूंगा आपको,
3: अभी तक मेरी बात हो जाती,
1: ऐसे ठीक नहीं है
3: साहिल जी, 20 सेकंड लेकर बात कर दूंगा,
1: जल्दी बोलिए,
3: 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर, मुझे बोलने दीजिए,
1: 20 सेकंड
3: बस, 20 सेकंड साहिल जी,
1: थैंक यू
3: बहुत मेहरबानी साहिल जी, हमारी संविधानिक व्यवस्था में जब कोई संविधानिक सवाल पैदा होता है और उसका अगर निराकरण नहीं हो पाता है तो हम सभी लोग अपनी कलेक्टिव आस्था सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए एक निर्णय दे दिया तो हम सभी लोग मानते हैं, चाहे ये पक्ष का फैसला हो या वो पक्ष का, सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे। आज योगेंद्र यादव उस व्यवस्था को पलट रहे हैं, क्या आज तक इसका प्रतिभाग होना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम पर फैसला स्वीकारते हैं ये, या ईवीएम के खिलाफ क्या प्रूफ दिया इन्होंने? बिहार का एक एफिडेविट नहीं दे पाए गलत वोट कटने का, एक
1: ठीक है,
3: वन सिंगल,
1: योगेंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलो,
3: योगेंद्र जी में नागरिक बनती है,
1: ठीक है, आपने बोल
3: वोटर का अधिकार मिलता है,
1: शहजाद जी प्लीज अभी उनको भी जवाब देने दीजिएगा, बाकी लोग भी बचे हुए हैं यहाँ पर, चलिए योगेंद्र जी।
2: एक तो भाई मैं इसीलिए आप कि यहाँ बातचीत नहीं होती, केवल व्यक्ति कितना अच्छा लगता है, कौन सा जन है मैं नहीं जानता, इनको पूरा वक्त दीजिए, मुझसे लोगों को ऐसे शो से रखा कीजिए, इनको कीचड़ में खेलने दिए, मैं इस कीचड़ में खेलने में बिल्कुल असमर्थ, खेल मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत खराब इस कीचड़ वाले खेल का। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो ये है कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अरुण जेटली, ये क्यों सुप्रीम के एडीएम जबलपुर के फैसले को शर्मनाक बताया करते थे, क्यों कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम फैसला था और वो तो रद्द हुआ जाके 5 साल पहले, 5 साल पहले तक वो तो देश का कानून था, वो ऐसा किया करते थे। मैं समझता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो इस गलत
1: थोड़ी समस्या, आपकी आवाज आवाज कट कर आ रही है, इसकी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है हमारे पास, लेकिन आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई सारे फैसलों पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय आपने योगेंद्र यादव जी को भी सुना, आप भी एक वन ऑफ द पिटिशनर है, आपने भी इस पर
2: माफी चाहूंगा।
1: ठीक, अश्विनी उपाध्याय जी, ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, जहां जिस तरीके से हम इस पूरे डिबेट को देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ निकल कर आती है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई रोक टोक नहीं हो पाएगी। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यह भी सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर जिनके नाम कटे हुए हैं उनके बारे में 4 हफ्ते के भीतर यह भी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए कि क्या वो नागरिक है कि नहीं है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दिया जाए। तो अभी यह मौका नहीं रहेगा यह कहने का कि बस उनके नाम कट रहे हैं कि जिनका नाम, और यह भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ नाम कटा इसका मतलब यह नहीं है कि वो नागरिक नहीं है, यानी वो भी जो एक बात बताई जाती है बार बार प्रचार किया जाता है वो भी प्रचार नहीं चल पाएगा।
3: देखिए साहिल जी, मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था और मैंने पूरे राज्यवार आंकड़े दिए थे और उस समय कहा था 2017 में कि भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, टोटल 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, और मेरी पीएल आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए वो आंकड़े गलत है। दूसरा, एसआईआर पे टोटल 22 पीआईएल फाइल हुई थी, एक पीआईएल थी कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, थे वो मैंने फाइल किया था। 21 पीआईएल आई थी इसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई 1:21 था, योगेंद्र भाई भी उसी में थे, टीएमसी के सांसद थे, आरजेडी के सांसद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद थे, और भी बहुत सारे नेता और सोशल एक्टिविस्ट थे। बहुत सीधी सी बात है, वोटर लिस्ट में नाम नाम के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 18 साल का होना चाहिए, तीसरा इसी एरिया में रहना चाहिए, और वोटर लिस्ट बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्शन कमीशन ने 3 चीज चेक करेगा, करेगा ये भारत का नागरिक है कि नहीं है, 18 साल का हुआ कि नहीं हुआ, और उस एरिया में रहता है कि नहीं रहता। इसलिए बहुत कॉमन सेंस है, इसमें इतनी ज्यादा संवैधानिक व्याख्या की जरूरत ही नहीं। समस्या क्या है, समस्या ये है, ये 1946 में जो फॉरनर एक्ट बना ये इतना घटिया सड़ा हुआ एक्ट था जो 2025 में बदला गया, इसके कारण पूरे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, कुकी सब आते चले गए, आते चले गए। उसके बाद जो समस्या हुई आधार एक्ट से हुई, ये आधार एक्ट ये कहता है कि जो आदमी 6 महीने भारत में रह ले वो आधार बनवा सकता है, और आधार बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए, कोई पार्सल लिख के दे दे, कोई प्रधान लिख के दे दे, या वो एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के कह दे कि मैं इस एरिया में।
1: आधार कार्ड तो वैसे भी नागरिकता का प्रमाण होता नहीं है,
3: हाँ,
1: सिर्फ लेकिन पहचान का प्रमाण है,
3: पहचान का प्रमाण, यस एग्जैक्टली हमारा यही आर्ग्यूमेंट था। लेकिन होता क्या है कि आधार बनवाना सबसे आसान है साहिल जी, और जैसे ही आधार बनता है वो पूरा विंडो खोल देता है, एक आधार बनवा लिया, आधार दिखा के राशन कार्ड बनवा लिया, जब 2 डॉक्यूमेंट होगा तो 2 से 3 बनवा लिया।
1: आपके नेता कह रहे हैं कि ये फैसला तो बिहार के मामले में है, क्या बंगाल के लिए अलग से पिटीशन होगा अभी, क्योंकि बंगाल के भीतर भी एसआईआर हो चुका है, या मुद्दा अभी छोड़ देंगे आप?
3: नहीं, मुझे लगता है,
4: देखिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट
1: मूड में है,
4: नहीं देखिए देखिए ये जो एसआईआर जो हुआ है ना, ये साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग हुई है। चुनाव में 27 लाख लोगों के पश्चिम बंगाल में नाम काट दिए गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। अगर ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इन्होंने 1,33,00,000 लोगों का नाम काट दिया था। उसके बाद में जो नाम जुड़े हैं उसमें से अभी तक आप देखिए लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, और अभी भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास में, और ये डिले टाइमिंग पर इफेक्ट आप सवाल था, प्रक्रिया पर सवाल था। एसआईआर पहले भी हुआ है, एसआईआर की टाइमिंग और प्रक्रिया और इस हड़बड़ी में कितने लोग मरे, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती है उसके ऊपर में। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश की जनता के जो वोटर अधिकार है, ये जो संवैधानिक पदों की बात कर रहे थे मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संवैधानिक पदों के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ। 20 तारीख को दिनेश चंदेल को ईडी गिरफ्तार करती है,
1: लेकिन
4: और
1: उसके
4: 30 तारीख को छोड़ देती है, नहीं नहीं संवैधानिक पद पर,
1: लेकिन उसके बावजूद
3: साहिल जी
1: इस सारे चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है।
3: हाँ।
1: सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सुन लीजिएगा, अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, उसका सारे सारे चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ही दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है, किसी भी तरीके से प्रक्रिया पर सवाल जो उठाए गए थे वो प्रक्रिया के सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है आज की स्थिति में।
4: किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10,000 वोटरों के नाम करते
3: अगर ये एसआईआर की,
1: अरे यार बीजेपी जा रहा था
3: 5 साल में होना चाहिए, मैंने इसीलिए पीएल फाइल किया था
1: और 5 साल में होने चाहिए।
3: हर 5 साल,
1: हर 5 साल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर 5 साल में एसआईआर की प्रक्रिया होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। टाइमलाइन डालने की कोशिश चल रही है। माना जा रहा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसकी डिबेट कम से कम खत्म होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो खत्म होगी। भाई दूसरी तरफ बंगाल के भीतर जो 27 लाख वोटर्स की ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई चल रही थी, सिर्फ 6,000 दावे अब तक चेक किए जा चुके हैं, उसमें से 4,000 लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट पर डाल दिया गया, वो वोट नहीं डाल पाए थे बंगाल के भीतर। लेकिन एसआईआर की डिबेट कम से कम क्या अब खत्म होगी, इस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी बाकी राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
10: बस 2000
11: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा
12: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
13: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग। क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
14: इन एसोसिएशन विद
15: समकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
14: हिंट बड़े आराम से
15: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
14: विमल बोलो जुबां केसरी।
16: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
17: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को AI से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
18: पटना में लगभग 4000 CCTV कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए AI को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
17: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे RJD तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
19: इस तरह का बयान दे करके हरा गमछा हो नीला गमछा हो इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
17: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को AI ने बताया है गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण पटना आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
11: और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग के SIR को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई NGO नेताओं संगठनों समेत 20 अर्जियां SIR के खिलाफ डाली गई, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि RP एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह NRC तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि SIR करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि SIR के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब दलित मुस्लिम प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में SIR कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर BJP जहां कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाती है, तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत ये है कि इस SIR में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं। जिनमें यूपी में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ, उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था, लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था, उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था, जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से SIR को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

ये इसराइल के बेत शेमेश का इलाका है। चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारत के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच में बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी। इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्स्टून ने भी हमें बताई। ईरान के साथ 39 दिन की जंग में आसमान में फूटते पटाखों और ईरानी जमीन पर बरसते बारूद की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन इजरायल की धरती ने भी कम जख्म नहीं झेले हैं। इजरायल में आज दुश्मन के हमलों की दहशत ऐसी है कि जिन बच्चों की खाने खेलने पढ़ने लिखने की उम्र है उन्हें डर दहशत और जान बचाने की जुगत के गुर सिखाने में वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ईरानी मिसाइलें भले थमी हुई हैं लेकिन हिजबुल्ला के हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है। हमारी संवाददाता ने इजरायली सुरक्षा बलों के उप प्रवक्ता बेन कोहेन से पूछा कि आम नागरिकों की मौत तो गाजा और लेबनान में भी हो रही है, उनका क्या कहना था सुनिए। इसराइल का कहना है कि लेबनान की सरहद के आसपास रहने वाले इजरायली नागरिकों को जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। अगर लेबनान शांति वार्ता आगे बढ़ाना चाहता है तो सीमावर्ती इलाकों के विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिसे हिजबुल्ला रोक रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: से कल इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, एमपी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जुटी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। नीट पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी, दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया फैसला, अब तक 13 की हो चुकी है गिरफ्तारी। और सीबीआई ने लीट पेशा संदिग्ध मौत के मामले में समर्थ की कस्टडी, एमपी पुलिस की 7 दिन की हिरासत में था आरोपी, सास गिरिबाला की जमानत रद्द करने की हाईकोर्ट में मांग।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कभी 2 रुपए कर दिया, 1 रुपए कर दिया, 2 रुपए कर दिया, ये हमारे ट्रेड के लिए बहुत खतरनाक है।
1: जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, 1-2 गाड़ी वाले हैं, वो खत्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से।
2: बहुत डाउन पोजीशन में जा रहे ट्रक का काम जो भी है ट्रांसपोर्टर का।
3: देखिए पॉकेट तो ढीला हो ही रहा है आम आदमी का, दिन पर दिन हो रहा है।
4: ये तो अपने घर का चीज नहीं है, वो तो ऊपर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है।
5: किसको पर पड़ेगा, गरीब पर पड़ना पड़ेगा, बड़ा लोग तो पैसा है बढ़ा लेगा।
6: बहुत असर पड़ेगा, कमा नहीं सकेंगे।
7: और कंट्रियों के मुकाबले में फिर भी यहाँ सस्ता ही है।
8: स्थिति ये है कि अब यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, दर्जनों पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बंद हैं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये विशेष एपिसोड इसलिए क्योंकि युद्ध की वजह से, जिस तरह की स्थिति हम मिडल ईस्ट के युद्ध की वजह से देख रहे हैं पूरे विश्व में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के सामने ये है कि धीरे धीरे पहले कीमतें बढ़ाई गई, आम आदमी तक मार पहुंच रही है, माल ढुलाई बढ़ेगा, उसकी वजह से अगर आने वाले वक्त में महंगाई दर में भी हम जबरदस्त इजाफा देखें तो ये अचरज की बात नहीं होगी। खुदरा महंगाई दर 3.4 के आसपास जरूर है लेकिन 8.3 पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गया। चैलेंज बड़ा है। रुपया अगर आप देखिए तो डॉलर के मुकाबले वो भी जिस तरह से गिर रहा है, टूट रहा है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोविड जैसे हालात हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद हमारे 12 साल का काम खत्म हो जाएगा जो हमने 12 साल में प्रोग्रेस किया था, और ऐसा पीएम ने पहले कभी नहीं कहा था किसी भी स्थिति में, तो यह भारत के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री को गद्दार कहा है तमाम मुद्दों पर, तो वो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप पर कैसी मार और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत के क्या मायने। प्रदीप भंडारी राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ माधव आनंद महासचिव आरएलएम के जुड़ रहे हैं और अश्विनी महाजन जी शास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इधर आलोक शर्मा जी के साथ आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और अखिल स्वामी जी अर्थशास्त्री के तौर पर, ताकि आप समझ पाए कि इस वक्त पे हमें क्या करना है। भाई इस पूरी लड़ाई और इधर उधर की जो हाई पिच डिबेट होती है उसमें ये लोग नहीं बताते कि हमें अब क्या करना है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया का संकट कैसे भारत में रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर चुका है, उसके गवाह हैं ये ट्रक वाले। ये है चंडीगढ़। यहाँ का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देश भर में माल ढुलाई करने वाले करीब 4,000 ट्रकों पर नियंत्रण रखता है। 2 हफ्तों के भीतर 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर इनके कारोबार पर पड़ा है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये तो मानता है कि वैश्विक हालात की वजह से तेल के दाम बढ़ने तय थे, लेकिन एसोसिएशन का सबसे बड़ा एतराज ये है कि किस्तों में बढ़ाए जा रहे दाम उन पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो तेल की तरह किस्तों में माल भाड़ा बढ़ा नहीं सकते, लिहाजा उनका घाटा ज्यादा बड़ा है।
1: जो हमारे पे टोल टैक्सेस का, बाकी कॉस्ट ऑपरेशंस का काफ़ी प्रभाव रहा है हमारे पे, जो हमारे मार्जिन ऑलरेडी बिल्कुल कम है, ना के बराबर हैं। अब तेल जो बड़ा है उससे हमारे बिल्कुल मार्जिन में 1% भी हम उसको जो इंक्रीज इन डीजल प्राइसेस है, वी आर जस्ट नॉट एबल टू इवन ऑब्जॉर्व 1% ऑफ दैट इंक्रीज। सो जितना भी इंक्रीज हुआ है ये सारा हमको बिल्कुल कस्टमर्स पे, ट्रेडर्स पे, हमारे जो पार्टी हैं क्लाइंट उन पर पास ऑन करना पड़ेगा अगर हमको ट्रेड को चलाना है, एग्जिस्ट करना है। अगर नहीं किसी तरह इंक्रीज होता है कोई इकोनॉमी के कारण, स्लो होने के कारण, तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल में होता है।
0: पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी के दामों में भी अब तक 4 बार बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को सीएनजी 2 रुपए महंगी हुई थी, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए और 26 मई को 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़े। सीएनजी के दाम बढ़ने का असर आम मध्यम वर्ग से लेकर ऑटो चालकों और छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा पड़ा है।
2: बड़े लोग हैं उनको तो हम कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं हम पे तो काफी फर्क पड़ा है। जो गाड़ी हम चला रहे थे दिन में 70 किलोमीटर, अब 40-50 ही चला रहे हैं।
3: 400 रुपए का सीएनजी का बढ़ता है, अब 500 का हो जाएगा, इसमें कहाँ से होएगा इतना लोग, ये भी देखो आप।
4: भैया संभावना बढ़ना चाहिए किराया भी, क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ से बचत होगी।
0: एक और पेट्रोल डीजल सीएनजी की बड़ी कीमतें जेब में आग लगा रही हैं, तो दूसरी ओर इस मसले पर सियासत की गर्मी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गर्मी से बचने की हिदायत क्या दी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाबी हमला कर दिया। खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, गर्मी तो झेल लेंगे पर बीजेपी प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं, अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए मोदी जी। कल ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बैलगाड़ी की सवारी कर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की थी। उधर गुजरात के नवसारी में यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैसे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बड़ी होने के बावजूद सामान्य तौर पर किल्लत की खबरें नहीं है, तेल कंपनियां भी पर्याप्त सप्लाई का भरोसा दे रही हैं। हालांकि भारत नेपाल बॉर्डर पर कुछ पेट्रोल पंप तेल किल्लत का हवाला देकर बंद दिखे।
5: इस समय हम मौजूद हैं बलरामपुर जिले में, जो बलरामपुर जिले का ये पचपड़वा एरिया है जहां पर ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप अभी टेम्परेरी तौर पर बंद किया गया है। इसकी वजह है कि यहां पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है। जहां पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहां की स्थिति ये है कि लोग धूप में लाइन लगाए हुए हैं काफी घंटों से, और अभी भी उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत हो रही है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, क्या है?
6: हाँ, सब बंद है, पिछपड़वा के साइड इधर सब बंद ही है, केवल यही चालू है।
5: तो आप लोगों को परेशानी कितनी हो रही है?
6: बहुत परेशानी हो रही है,
5: बड़ी दिक्कत
7: तो हो रही है।
5: सभी से आए हैं तो पेट्रोल उधर नहीं मिल रहा है? कितनी देर से होगा इंतजार कर रहा है?
8: हाँ, घंटा हो गया।
0: तेल संकट ने लगभग हर क्षेत्र पर असर डाला है। महंगे तेल की वजह से एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कम करने के बाद जून से अगस्त तक के लिए चुनिंदा घरेलू रूट्स पर भी उड़ानें घटाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 15-20% घरेलू उड़ानें कम की जा सकती है। जाहिर तौर पर वैश्विक संकट का असर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया के संकट पर बुधवार को एक हाई लेवल बैठक हुई। सरकार मौजूदा परिस्थितियों में बचत को ही सबसे बड़ा मंत्र बता रही है। आज तक ब्यूरो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल आप ही से है प्रदीप भंडारी जी। अब सवाल यह है कि मुश्किल स्थिति तो आ गई है, वजह युद्ध हो कुछ भी हो, लेकिन क्या हमने तैयारी में या फिर जो कटौतियां करनी थी ऑस्टेरिटी मेजर्स उसमें देरी कर दी, ये प्रश्न आज भी उतना ही बड़ा बना हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, आपके पास क्या काउंटर मेजर है, आपका रोड मैप क्या है, देश को बताइए।
9: देखिए अंजना जी, मैं रोड मैप बताऊं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं, आज काफी व्यथित हूं कि देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्ट सपोर्ट ऑन पाकिस्तानी टेरर, इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी, सीआईए से पैसा लेने वाली कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, कोई उनके पास कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं। और राहुल ने पहले कहा था वो इंडियन स्टेट को लड़ना चाहते हैं, आज स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रो पाक फोर्सेज और एंटी इंडिया एलिमेंट्स में। अब मैं आ जाता हूं तथ्यों पर। अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूं, ग्लोबली अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, एवरेज मेरे पास पूरा डेटा है, हर कंट्री में इन्फ्लेशन 25% से 22% के बीच में बढ़ा है, कोई भी मेजर इकोनॉमी। अभी आईएमएफ की चीफ ने कहा है कि इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स को हैंडल करने का काम भारत का है। 80 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, 5% हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, 88 बिलियन डॉलर के एफडीआई है, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है, और हिंदुस्तान टॉप मोस्ट इक्वल सोसाइटीज में एज पर वर्ल्ड बैंक जीनी कोफिशिएंट में। समस्या जरूर ग्लोबली है, परंतु हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर हम सबको कुछ ना कुछ कट की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अगर हम करेंगे तो हम जैसे कोविड काल को हमने पास किया था, हम इस काल को भी पास करेंगे, भले वो सप्लाई साइड हो गया या डिमांड साइड हो गया।
0: चलिए जवाब दीजिए आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब ये भी एक सच्चाई है ना कि 800-900 किलो टन सोना भारतीय खरीद लेते हैं एक साल में, तो अगर इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स की जरूरत है, ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है।
10: नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही कि सब कुछ ईरान युद्ध की वजह से, असली दिक्कत इस बात को लेकर है। लेकिन एक बात में सहमति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एक बात में सहमत है कि देश पे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, इसमें तो दोनों आदमी सहमत हैं। अब ये क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, आपका जो एफआईआई है, जो जिसे कहते हैं आपकी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 5 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए बाहर गया, आप कह सकते हैं ईरान युद्ध की वजह से हुआ। लेकिन अगर आप डेटा उठा के देख लें, 2025 में 1,66,000 करोड़ क्यों गया, 2022 में 1,30,000 करोड़ क्यों बाहर गया, 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर क्यों गया। इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आउटफ्लो का बढ़ रहा था लगातार, और ईरान वार ने उसमें दिक्कत पैदा कर दी। अब दूसरी बात, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 3.54 करोड़ का है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.98% का है। सवाल क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस वक्त 7,750 बिलियन डॉलर का 17% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई पड़ी उसमें, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है बल्कि नीचे जा रहा है, 4.442 बिलियन डॉलर। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में इंबैलेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। अगर आप दो छोटे छोटे उदाहरण में आपको दे देता हूं, आपका जो गोल्ड इंपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट 82% की गति से बढ़ा है अप्रैल के महीने में, 82%।
0: तो गोल्ड का खान कहां से बना ले इंडिया में,
10: क्यों खरीद रहे लोग? अब इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना,
0: खरीद रहे हैं लोग।
10: इसलिए मैं क्योंकि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड तो दो कारणों से खरीदा जाता है, एक तो इसलिए कि भाई हम ज्वेलरी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती तो लोगों को लगता है जब हमारी दिक्कत पैदा होगी, आर्थिक संकट होगा, तो गोल्ड होगा जो उनको बचाएगा। ये स्थिति जब आपने पैदा की है,
0: ठीक है, ये इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का विश्वास नहीं रहा, उनको लगा कि भाई सोना ही हमको सुरक्षित रहेगा भविष्य के लिए, तब खरीद में बढ़ोतरी।
9: देखिए, पहली बात तो आशुतोष जी ने कहा कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, गलत है। एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर क्रॉस हो चुके हैं और पिछले महीने के कंपेरिजन में 4% बढ़े। दूसरा, इन्होंने कहा कि गोल्ड स्पेसिफिक हिंदुस्तान की चीज नहीं है, ग्लोबली गोल्ड की डिमांड पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है, हर कंट्री के अंदर हाईएस्ट है, ये हर सेंट्रल बैंक के अंदर जो गोल्ड है वो 80% से ऑन एन एवरेज किया है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं है। जरूर इंडिया की इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप ये मैप से समझ सकते हैं, पहले हमारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिति थी, ये देश का इलेक्ट्रिसिटी मैप था जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे नहीं पहुंचाए। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे पहुंच चुकी है, तो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, जैसे जो गोल्ड एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, उसको अगर हम कम करें तो एसेंशियल इंपोर्ट जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। पर बड़ी बात क्या, मैं वापस से कहूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अंजना जी 2% से कम है, यूपीए के समय 6% था, ट्विन डेफिसिट की बात करी थी, फिस्कल डेफिसिट 5-5.5% है, यूपीए के समय 10-15% के बीच में था, पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद करने की बात कर रहे थे। मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि ये क्राइसिस अगर आगे भी चलता है, हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स झेलने की स्टेबिलिटी है, साथ में ये जरूर है कि अगर ग्लोबली समस्या होगी तो भारत में भी आएगी।
0: चालाकी करते हैं ना, कभी देखिए 90 पैसे बढ़ा दिया, इसमें आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, फिर कभी 3 रुपए बढ़ा दिया, ये क्या तरीका बढ़ाने का? इसमें
9: 2022 से लेके 26 के बीच में एक भी बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। यूपीए ने ऑन एन एवरेज 154% से दाम बढ़ाए, हमने उसका आधा भी नहीं बढ़ाया। हम तो चाह ही रहे कि कम से कम बढ़े, जिससे कि हम आम आदमी पे उसकी लीस्ट इंपैक्ट दे सके। इसका तो आपको और आशुतोष जी को स्वागत करना चाहिए। ये मैं
0: छोटा सा जवाब फिर अखिल जी का,
10: थोड़ा जवाब उन्होंने लंबा दिया, थोड़ा सा
0: अच्छा जल्दी
10: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हमारे देश के अंदर। हाँ। लेकिन जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब हम कितने परसेंट इंपोर्ट करते थे? 80%। अगर हमने मेजर्स लिए होते तो 90% नहीं बढ़ता, ये फेलियर है। फेलियर क्यों है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा साफ तौर पर कहता है कि क्रूड ऑयल लगातार 6 महीने श्रिंक किया है, उसका प्रोडक्शन श्रिंक किया है, और पिछले महीने -5.2%। नेचुरल गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है लगातार 20वें महीने प्रोडक्शन में 5% का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट श्रिंक किया है पिछले 6 महीने में, 11 महीने में 6 महीने,
0: ठीक है।
10: अब फर्टिलाइजर तेल, अब आप सोचिए
0: मैन्युफैक्चरिंग में आपकी घटी है,
10: 10 सेकंड, जब सबको सबको मालूम है कि भाई कार को लेकर गाड़ियों को लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन न केवल तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए बल्कि उसके कुछ ऑल्टरनेट मेजर्स भी करने चाहिए। आपने क्यों नहीं किए,
0: क्या किया आपने, जल्दी बताइए।
9: बहुत अच्छी इन्होंने बात करी। ये रहा मेरे पास में डेटा, इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन पहले जो था, जो नॉन फॉसिल फ्यूल हमारा 10% भी नहीं था, आज 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अपनी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को मीट कर रहे हैं। तो हम जाना चाहते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्रूड की बात आ रहा है, उसकी डिमांड हम 30% तक करें, हम आज की तारीख में 50% तक पहुंचे, तो हम लॉन्ग टर्म मेजर। इन्होंने बोला ऑयल के रिस्पेक्ट में क्या किया, 0 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे, आज की स्थिति के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक्सकवेशन लार्जर केजी बेसिन में भी हमने शुरू कर दिया है और आगे भी शुरू किया। 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी नॉर्डिक कंट्रीज में गए, यूएई में गए, यूएई के साथ हमने लॉन्ग टर्म डील करी है जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है, एलपीजी के रिजर्व्स हैं, वो भी बढ़ सके। तो हम तो स्टेप्स ले ही रहे, पर ये हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि भारत आज 6-7% पे ग्रो कर रहा है, तो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक गोल्ड को हमें कम करना होगा।
7: मैं मान लेता हूं प्रदीप जी जो भी बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, हर फ्रंट में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-08 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था, अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था पूरा वर्ल्ड हिल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी गरीब लोगों के हाथ में। देखिए एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का पिछले 12 साल में इन लोगों ने ऐसा ध्वस्त किया है। ये जीडीपी की बात करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, सारे के सारे बड़े पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं, आप सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर सड़क पे आ गए हैं, लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम आपने डबल कर दिए हैं, आप सारा का सारा देशभक्ति का पाठ गरीबों को पढ़ा रहे हैं।
0: अभी 5 किलो राशन तो ये देते हैं,
7: 5 किलो अनाज का अनाज की कीमत होती है 150 रुपए, 150 रुपए महीने आप देते हैं, और जीएसटी में और पावर बिल में हर जगह आप पैसा उसे लूट रहे हैं।
0: आलोक जी, गरीब आदमी को,
7: गरीब आदमी का पैसा, क्योंकि गरीब की परचेसिंग पावर आपने छीन ली है। देखिए एक बार बंगाल के अंदर एक अकाल आया था, खुद खाद्य भंडार भरे हुए थे, लोग भूखे मरे थे, कारण ये थी लोगों का परचेजिंग पावर नहीं थी। आपने पिछले 12 साल में बड़े बड़े, और एक जो आप सोने की बात कर रही थी, देखिए सोना कौन खरीद रहा है, ये हम जैसे मध्यम वर्ग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेंगे, 80 करोड़ लोग वो खरीदेंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, ये खरीद रहे हैं। बड़ा मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी से कहती हैं, ये मोदी जी से कहलवाने की क्या जरूरत थी, मैं ही टन दो टन सोना हर महीने खरीदती हूँ, नहीं खरीदूंगी। ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग सोना बेच रहे हैं, हम लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं, हमारे घरों के अंदर 12,000 रुपए में नोएडा के वर्कर, जो बेचारे वर्कर 12,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे थे, सड़क पे आए थे,
9: उनका जीवन कैसे। अखिल जी आपने कहा कि भारत के अंदर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, भारत में कंजम्पशन कम हो रहा है, सुनिए डेटा, मैं इनको फैक्ट चेक करूंगा, भारत के अंदर कंजम्पशन 60% बढ़ा है, दुगना हुआ है। 2013 में भारत के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन $1 trillion का था, अब यह बढ़कर $2.1 trillion का हो चुका है, 7.2% से ग्रो हुआ है। तो यह पूंजीपति का कंजम्पशन नहीं है, गरीब मिडियम वर्ग का है।

0: दे देता हूँ, इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं।
1: झूठ,
0: एक शब्द नहीं बोलते हैं लोग,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी
1: पैसा लिया है
0: वापस क्या? मैं बीच में नहीं बोला,
1: मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बोलूंगा।
0: मछली बाजार मत बनाओ यार, पूरे देश का मछली बाजार बना दिया
1: आप लोग, समझे?
0: आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला
1: प्रधानमंत्री जी को।
2: शांत रहिए
1: आप, शांत रहिए आलोक जी,
0: आपके टाइम का आप जवाब दीजिए।
1: असली गद्दार आप लोग हैं,
0: आप लोग अपने समय
1: के रात तक गद्दारी करते हैं, नेहरू से लेके इंदिरा तक,
0: ठीक है? आज तक आप, हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो
1: गए ऊपर से नीचे से बेल पे भार हो गया।
0: फिर पीछे मत बोलो भाई, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24, उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते, 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया, विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया, अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई, एक का उद्घाटन करने जा रहे थे उसमें भी आग लग गई, और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2,00,000 करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की, ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं है, अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला, इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भुखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चेताएंगे,
1: ये इनकी मंशा है।
0: देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला, जो मैंने बोला है देश के प्रधानमंत्री ने बोला,
1: चार दिन बोला है
0: देश के प्रधानमंत्री ने, कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं, शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1-2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे, क्या एग्रीकल्चर फार्मर करेगा?
2: मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी।
1: 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, गद्दार कांग्रेस, 70 सालों में
0: एक व्यक्ति को बता दो जिसको,
1: अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा
0: 50 सालों
1: में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी, नेहरू इंदिरा राजीव ने जाकर ऐसा बंटा दान कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी। नेहरू, राजीव, इंदिरा, मनमोहन, सोनिया ने ऐसा बंटा दान कर दिया कि देश में 15% इन्फ्लेशन कर दिया। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा इनको घबरा के कि देश में नेपाल जैसे हालात क्यों नहीं हो रहे। ये चाहे कि देश का लोग आपका अहंकार आपको ऐसा ले डूबेगा, 99 रुपया बनाए, देश की जनता आपको
0: 199 रुपया
1: बनाएगी।
0: अरे अच्छा,
1: हो गया, जलन क्यों हो रही है कि इटली के साथ ट्रेड डील हो रही है? राहुल जाके जॉर्ज सोरोस करें, ये दिक्कत है।
3: जलन जलन
1: राहुल जॉर्ज सोरोस दिक्कत है। आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए।
0: जलन पूरे देश
1: का, आप खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए।
0: मेलोडी मिली नहीं,
3: जलन तो सुना।
1: इतना क्यों जलते हो? प्रधानमंत्री जी को 35 लोगों का मिले, नेहरू राजीव को 0 मिले, इसलिए दिक्कत है ना।
3: जलन तो स्वाभाविक होगा, विपक्ष में बैठे हैं तो जलन होने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आज आज आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अंजना जी, मैं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखता हूं और रखना भी चाहिए। जो प्रश्न पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब जो है ना, एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और तथ्यों के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता है। और आज जो पूरी दुनिया जिस स्थिति में है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, सबको पता है कि कोविड की महामारी हो या वैश्विक जैसे युद्ध की स्थिति अभी जो बनी हुई है, या सप्लाई चेन संकट है, या आर्थिक अस्थिरता है, इन सब ने यह चीज तो साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वैसे देश संकट के समय ज्यादा प्रभावित

0: होते हैं, और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत अस्थिरता, विश्वास और विकास तीनों को बनाए रखा है, और उसका पूरा श्रेय मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें भी आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यही भारत 2014 से पहले, आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। सारे अर्थशास्त्री बैठो, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था, फ्रेजाइल फाइव। आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में, जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री जी की जो है सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था, यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है, यही भारत यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था, और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन आपके तरफ प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं, चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हमने और आपने अंतर है, आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौती पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जान लीजिए, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। आप लोग विपक्ष में है, आप लोग अदरगल बातें करते रहिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले भारत जो कहता था संभावना के लिए जाना जाता था, भारत आज भारत उपलब्धियों के लिए जाना जाता
1: है।
2: इटली के साथ दिक्कत है, $20 billion का ट्रेड पहुंचने वाला है। अब मेलोडी करेंगे, अब सोरोस करो, अब सोरोस करो, हम मेलोडी करके $20 billion पहुंचाएंगे। पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कराए जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए, शर्म आनी चाहिए।
1: अश्विनी जी
3: इलेक्ट्रीफिकेशन के आंकड़ों पे आप
2: 28
3: सुने ना,
2: इलेक्ट्रीफिकेशन 70 सालों में किया,
3: आपने कहा हमने 13,500 करोड़ को इलेक्ट्रीफाई किया, सारा साल
2: मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने बोला
3: मोदी जी ने
2: घर तक का है,
3: मोदी जी ने लाइव फिर से कहा, सुनिए
2: हर घर तक,
3: अरे सुनो ना भाई, 7 लाख गांव थे इसमें, हमने 12,500 गांव को एक साल में दिया,
2: झूठ
3: आप फिर जो,
2: अरे कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने गांव को
3: कैलकुलेट कर लो,
2: हमने 11 साल में
3: कैलकुलेट कर लो,
2: मैं कैलकुलेट कर रहा हूं,
3: बिल्कुल कैलकुलेट कर लो, शांति से बैठ के कैलकुलेट कर लो,
1: बिल्कुल कैलकुलेट, एक सेकंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। अश्विनी जी, 3 बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चैलेंज तो है, इससे कोई इनकार करे आंखें बंद कर ले, ये उसकी उसका शौक है। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ऐसे बढ़ रही है तो असर उसका दिखेगा ही, माल ढुलाई और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है, अब ऐसे में भारत के सामने क्या स्थिति है, क्या रोडमैप है?
4: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस राजनीति से बाहर आना चाहिए, ये राष्ट्रीय संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट है, और इस प्रकार की मैं अभी सुन रहा था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है, अगर मान लिया मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए, विदेश यात्राओं को रोकना चाहिए, सोने की खरीद कम करनी चाहिए,
3: वर्क फ्रॉम होम करना, याद आया मोदी जी को,
4: बीच में मत बोलिए,
3: पहले चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व
2: वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दो, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करोगे, हाँ है ना, वन नेशन यही एक्सपोज हो गया,
3: लाइए ना,
2: नहीं नहीं करो, चलो राहुल गांधी से समर्थन करा दो, 24 घंटे में करा दो समर्थन, का मैं नहीं है
3: 12 साल
2: से नहीं, इनको नहीं गुम हो जाएंगे
3: 12 साल,
2: चलिए ऑफिशियली जाके कहिए राहुल से, आपने कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली ट्वीट करवाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में, यह सच्चाई है,
3: यही
2: झूठ मत बोलिए, यही है
3: सरकार आपकी करेगा विपक्ष,
2: भैया सर्वसम्मति से ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्या बात कर रहे हैं, अपनी तेलंगाना कर्नाटक ऑलरेडी सबमिट हो गई है,
3: कहां है,
1: चलिए एक बार अगर मुमकिन हो तो मुझे इन दोनों के साथ दिखा दीजिए। आज हल्ला बोल के इस एपिसोड में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, प्रवक्ता ही ये बोल रहे हैं लेकिन ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इसी के साथ मेरे शो में ही आलोक शर्मा जी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए, क्योंकि उससे भी कीमतें घटेंगी। पता है 15% 20% तो वही घट जाएगा, हम जो हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं। दोनों पर सहमति बनी है, अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या होता है और अब देखते हैं उस कमिटी में क्या होता है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया गया है। अश्विनी जी अब आप बात बोलिए और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं संरक्षण दूं। बोले
4: जी आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद।
1: बोलिए
4: कि आप आज
5: को संरक्षण
4: आज आज
2: केरला में आपने दूध के दाम 4 रुपए से बढ़ा दिया, ये आपकी सच्चाई है। सबसे ज्यादा दूध के दाम केरला में बढ़ा है, सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल में कांग्रेस की सरकारें लगा रही है।
5: पाकिस्तान को ही पूछ लू, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा अभी
1: आपने बोल दिया नहीं बोला सर, गलत कोट कर रहे हैं, जब भी आप जैसे चीनी में चोरी चोरी छिपके जाओगे, तब भी पाकिस्तानी के साथ चोरी चोरी छिपके जाओगे, तब भी पाकिस्तानी हमला करेंगे। ये आफत मैंने ही बोल ली थी, आप लोगों को यहाँ बुला लिया था। आपको आज मैं पक्का टॉफी खिलाऊंगी, इटली वाली नहीं है वो, इंडिया की है। गलत मत बोलिए। अश्विनी जी प्लीज लेट हिम स्पीक,
4: प्रदीप जी मुझे लगता है कि मैं प्रदीप जी से तो को आदेश दे सकता हूँ कि आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। तो मेरा ये कहना है कि सामने सामने अर्थशास्त्र का विषय है और यहाँ राजनीति हो रही है, तो इसको इसको हमें ये करना चाहिए कि सब सभी राजनीतिक दल एक बार बैठे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और कम से कम एक भाषा बोले।
5: नहीं तो कौन बुलाएगा ऑल पार्टी मीटिंग, अभी तक क्यों नहीं बुलाई? इसका उत्तर है आपके पास?
2: देश नहीं चलाएंगे, याद रखना, ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री चलाते हैं और देश के लोकतंत्र, देश की जनता चलाते हैं। और एक ओबीसी समाज, ओबीसी समाज का आपने अपमान किया है, ओबीसी सरकार, ईबीसी सरकार के नीतीश कुमार जी का अपमान किया है, देश देख रहा है। 100 साल तक बिहार में सत्ता में नहीं आओगे, आपने ईबीसी का अपमान किया है।
5: मैंने देश देख रहा है, मैंने इनके युवराज का अपमान किया, जिससे
2: कौन देखेगा? ये नहीं रहेंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे।
4: प्रदीप जी
5: मैंने उस युवराज का भी अपमान किया है, जिसका पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है।
1: हमने प्रदीप जी युवराज क्यों बोल रहे हैं? अपने वाले को भी युवराज मान रहे हैं क्या?
5: युवराज उसने शुरू किया,
1: तो अपने वाले को मत बोलिए ना सर।
2: हम तो कभी भी कार्यक्रम,
1: आप नाम लीजिए ना, आप मत बोलिए युवराज, मत बोलिए
5: देश के युवराज।
4: हमने प्रदीप जी को कहा है चुप रहने के लिए और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि देखिए या तो तरीके से
5: मोदी जी से निवेदन क्यों नहीं करते? मुझे थोड़ी बुला लिया
1: ऑल पार्टी मीटिंग।
5: आप मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, आज ही लिखिए, यहीं बैठ के मैं कागज में देता हूँ।
4: आप मुझे, मुझे आपके कागज की जरूरत नहीं, आप एक बार बोलने तो दीजिए। आप बोलते रहेंगे क्या?
5: बोलिए बोलिए,
4: मतलब ये क्या तरीका है?
5: बताइए ना,
4: दिस इज नॉट वे, नो वे। तो मेरा ये निवेदन है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय समस्या तो है ही, और प्रधानमंत्री ने भी एक जनता से अपील की है, वो भी मैंने कहा। तो मेरा ये कहना है कि सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में विचार करना चाहिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि आप इसको कंजम्पशन को कम करिए, ये करिए, तो अगर रुपया बचेगा तो मोदी जी का रुपया है क्या?
5: सभी को जनता करेगी तो सरकार, तो इसलिए सरकार के दो कदम बताइए पिछले 2 महीने में जो ऐसा लगता हो कि इस वजह से ये डॉलर हमारा बचेगा, 2 कदम बताइए मुझे।
4: देखिए
5: सरकार जो कदम
4: उठाए, जो सरकार कर सकती है वो कर रही है।
5: दो कदम बताइए ना,
2: सरकार कुछ नहीं कर रही है।
5: मैं बताता हूँ,
1: केवल दो कदम बताइए,
2: सरकार कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, वही राहुल गांधी सरकार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ कर रहे हैं।
6: 30,000 मैट्रिक टन एलपीजी प्रोडक्शन था, एक क्राइसिस शुरू होने के पहले 50,000 मैट्रिक टन क्रॉस हो चुका है। यूनाइटेड
0: स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% पेट्रोल के दाम बढ़े, 40% बढ़े, भारत में 3% बढ़े, ये सरकार कर रही है। अगर कांग्रेस होती तो कहती 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो, कांग्रेस होती तो कहती आइसक्रीम जो है वो मत खाओ। यही है आपको इलॉजिकल देश की जनता कहती है, तभी 12 साल से यहाँ बैठे हो और आने वाले 25 साल भी बैठोगे। ये सच्चाई है, एक एक सत्य कर रहा है। 12.5 तो रिजाइन कर दो तेलंगाना से, रिजाइन करो तेलंगाना से, रिजाइन करो केरला से, केरला ने कंप्लीट किया। ओ केसी वेणुगोपाल जी धन्यवाद, क्यों केरला से रिजाइन करो ना, क्यों केरला से रिजाइन करो। आलोक शर्मा एक काम करो, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, आलोक जी एक राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, बोलो केरला से रिजाइन कर
1: लिया।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिचौलिया संस्कृति और इस तरह भ्रष्टाचार पे जो चोट पहुंचाया है, और डीबीटी के सर एक मिनट, डीबीटी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों जो है लोगों के, गरीब लोगों के खाते पहुंचाने का काम किया, असली प्रॉब्लम यहाँ इन लोगों को लगता है।
6: सवाल पूछूंगा, मेरा सवाल यह है कि ये नोट जो है ये 97 के पार क्यों जा रहा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो इसका जवाब
0: देखिए। देखिए ग्लोबल क्राइसिस तो मैंने पहले कहा चुनौती है,
6: अरे ग्लोबल क्राइसिस तो अभी हुई भाई,
0: तो बोल रहे हैं चुनौतियां हैं, सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है, सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है, बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है।
1: मैं जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि एक सेकंड प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इकोनॉमिक्स पर है नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा अभी दुरुस्त दिख रहा है, इतना कम नहीं हुआ है अभी, वो 690 अरब डॉलर के आसपास है, क्यों रुपया गिर रहा है, इसकी वजह क्या है?
0: देखिए बहुत सारे इसमें इश्यूज होते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की उन्होंने बात की, और अभी जो वैश्विक स्थिति है जब हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है,
5: जब रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदीनॉमिक्स में रुपया गिर रहा है और एक्सपोर्ट भी गिर रहा है।
0: देखिए कंप्लीटली झूठ, ये सार्वजनिक रूप से सप्लाई चेन, अर्चना जी सप्लाई चेन संकट को समझने की आवश्यकता, सप्लाई चेन संकट को जब समझेंगे तो भारत चाह के भी बहुत सारे जगह पे माल नहीं पहुंचा पा रहा है। सप्लाई चेन संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सप्लाई चेन संकट पूरे विश्व के लिए है, और सप्लाई चेन संकट जो है आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो
6: माधव जी आपको मालूम, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 1.5 साल पहले, जिसपे सवाल पूछा गया था कि आपकी आय बढ़ रही है या घट रही है, 65% लोगों ने कहा था कि आय बढ़ नहीं रही है। ये इंडिया टुडे का सर्वे है, ये क्यों ऐसा हो रहा, लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं, 97 पे आपका रुपया जा रहा है, सब कुछ चंगा है, अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर भयानक स्थिति हुई, कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं, तो कोविड के पहले के क्वार्टर में जनवरी से मार्च के बीच में 2020 आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23 समथिंग लाइक माइनस पे था, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइनस पे था।
1: काउंटर पॉइंट आपके लिए भी है, जैसे उनसे मैंने पूछा, भाई एक सेकंड, काउंटर पॉइंट ये है कि सुनिए, बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है, रूबल, नहीं नहीं एक सेकंड, रूबल देखिए 4 रुपए के,
6: अंजना जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में, क्यों? कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी -27% भारत की गई थी, क्यों गई थी?
5: अंजना जी बहुत गंभीर विषय है ये, जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है सब चंगा सी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा, आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए, इसका पूरा नुकसान होगा, जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा, डॉलर बाहर चला जाएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं।
7: अंजना जी ये समझना बहुत आवश्यक है, कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक करती हैं, जिसको जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट में फायदा हो। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उनका करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है, हमारा करेंसी का वीक होना हमारा ये लोन हम जो नए ले रहे हैं पुराने लोन को वापस लेने के लिए रहे हैं, हम डेट ट्रैप में हैं, हम डेट ट्रैप में हैं।
4: देखिए भारत डेट ट्रैप में नहीं है, इतनी बात समझ लेनी चाहिए।
7: मैं लिखित दे सकता हूँ, आप कर सकता हूँ।
4: देखिए अगर बीच में बोलेंगे तो
5: बताइए ना, डेट ट्रैप पे कैसे नहीं आप बताइए,
4: आप
5: यही बात
4: आपको मालूम है क्या?
5: बताइए,
4: आप भी ऊंचा बोल सकते हैं क्या?
5: बताइए ना भाई, डेट ट्रैप में कैसे?
4: देखिए जब हमारा जब आपने छोड़ा था ना, तो उस समय 62% था जीडीपी जेड डेट, और आज की डेट में 56% है। जब जीडीपी के डेप के अरे आपको मालूम नहीं है कुछ, आपको मालूम नहीं है, चुप रहिए। फिर
5: सर्वे 2025 का पढ़ लीजिए,
4: मुझे भी बोलना आता है,
5: पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही है।
4: हाँ, अगर
5: मैक्रो इकोनॉमिक्स
4: अगर पढ़ा होगा ना, 56% है आज,
7: पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं है।
4: अरे कार की बात, अगर अगर आपकी डिग्री, इसका मतलब
5: सारे हाईवे बैंकों के पास डिग्री है, सारे के सारे हाईवे।
4: मैं कुछ कह नहीं सकता,
5: जहां एक टोल था वहां 6-6 टोल है। मैं आपकी
4: डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट,
5: दिल्ली से
1: 6
5: टोल है।
1: अरे मत कीजिए आलोक जी, बहुत ज्यादा
5: दिल्ली बॉम्बे
0: झगड़ा करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग झगड़ा कर लेंगे, उसे इकोनॉमी तो मेरी आधी हो जाएगी। लेकिन मैं हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा, हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा कि 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, देशहित में निर्णय लिए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपीलें की हैं उस 7 अपीलों को अगर हम लोग अक्षरशः पालन करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर, विकास और विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था में बना रहेगा।
2: आशुतोष जी ने इंडिया टुडे की सर्वे की बात बोली, इंडिया टुडे के सर्वे को वापस से कोट करता हूं, वही सर्वे कहता है कि 48.88% लोग सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट से खुश है, आधा इन्होंने कॉमा लगाया था। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कोई डेट ट्रैप नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 गुना ज्यादा है यूपीए के समय से, ये झूठ बोला। चाइना $2 trillion इंपोर्ट करता है, हम $900 billion इंपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना को इंपोर्ट नहीं, झूठ बोलते हैं। सच्ची बात यह है, दुनिया के अंदर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, भारत में लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं।
1: चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आज मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी, मैंने सबको यहाँ बुला लिया था, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे सर आप पैनलिस्ट हैं, आप कैसी बात करते हैं, अच्छा नहीं शोभा देता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते। हिंट
3: बड़े आराम से।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
8: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
9: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
10: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: विमल, बोलो जुबा केसरी।
7: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर, हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn has the music.
6: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
7: TuneIn Poolside has the music I love.
6: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
5: let's go.
6: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: और म्यूचुअल फंड्स है
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं। चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया। 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो। ये उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाकिमपुर चेक पोस्ट है। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार अपने 3D फॉर्मूले यानी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट पर बेहद सख्त है। इसी के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पर वापस बांग्लादेश जाने के लिए ऐसी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
12: और यहाँ आप देख सकते हैं कि हकीमपुर, ये वही हकीमपुर है जहाँ साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी तो अब लोग यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पहुंचे थे, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए। एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहाँ पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाए।
3: अच्छा,
12: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते हैं कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी।
9: दमदम थकतम ও ক্যান্সারের রোগী তো তাই হসপিটালে চিকিৎসা করতে এসেছিলাম।
11: बंगाल में घुसपैठ के संदिग्धों में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि घुसपैठ अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसपैठ के खिलाफ सख्ती सिर्फ बंगाल में नहीं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर वाले राज्यों का दौरा करने का फैसला किया है। मंगलवार को अमित शाह राजस्थान के सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे, यानी घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह के नए मिशन का आगाज हो चुका है। घुसपैठ पर मोदी सरकार की यह सख्ती बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा का वो एजेंडा है जिसे वो राम मंदिर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सफलता के बाद लागू कर रही है। यही वो मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी का हिंदुत्व चुनावों में बेहद मजबूत नजर आता है। वैसे तो विपक्ष आज भी सरकार के सामने आई चुनौतियों के बीच अपना राजनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। मसलन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से देश पर आई आर्थिक चुनौतियों को विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर गिना रहा है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में हुई बार बार बढ़ोतरी को विपक्ष ने स्लो पॉइजन तक कह दिया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सरकार को फ्लॉप करार दिया है, देश के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो गए हैं तो विपक्ष के हर सवाल का सीधा जवाब बीजेपी का विकास और हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व के इसी हाईवे पर विपक्ष से बीजेपी बहुत आगे निकल गई लगती है। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान अमेरिका में समझौते की जमीन तैयार, तेहरान मीडिया का दावा। एमओयू के ड्राफ्ट में हॉर्मुज के आसपास से सेना हटाने को तैयार ट्रंप। ईरानी नाकेबंदी भी होगी खत्म। कर्नाटक सीएम से कल इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली, विपक्ष की संवैधानिक हार। नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी। दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया फैसला, 13 की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एसआर पर तमाम सवालों को एक झटके में ही खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआर की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार है। अब इस फैसले पर सियासत उबल रही है।

0: एक तरफ दिल्ली का तापमान चढ़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस SIR पर विपक्ष आग बबूला हो रहा था, उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रहा था, उस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि SIR वैध और संवैधानिक है, SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है, SIR का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है, वोटर लिस्ट से नाम हटना, नागरिकता खत्म होना नहीं है।
1: निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम किया है क्या, और इसमें क्या इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर जोर दिया है क्या, क्या फॉर्म भरमाने की प्रक्रिया सही थी, इन तमाम चार मुद्दों पर विचार करके कोर्ट ने पाया कि ये चार जो सवाल उठाए गए थे मुख्य सवाल, वो सवाल अपने आप में ध्वस्त हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि निर्वाचन आयोग ने जो भी किया अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर किया।
0: सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। ये फैसला चुनाव आयोग के हौसले बुलंद करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया।
2: भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ और स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद SIR पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे या सियासत थम जाएगी? फिलहाल तो ऐसा होता दिखता नहीं।
3: हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
4: इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये दायित्व हर राजनीतिक दल पे है, सत्ताधारी भी विपक्ष भी, और विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता।
0: राजनीति अपने लिए गुंजाइश तलाशती रहती है, लेकिन SIR पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ता। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
5: SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
6: SIR कहने हक को इनकार कर रहा है। SIR जिस ढंग से की गई है उस पर लोगों का एतराज है, जिसका नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, उस पर एतराज लोगों को है।
7: तो सियासी उबाल सिर्फ SIR पर ही नहीं है, बल्कि बकरीद के त्योहार के पहले देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी में सरकार सख्त है, पहले बता दिया गया है कि नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई होगी, इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
0: सूबे की सामाजिक हवा खराब न हो, इसलिए लखनऊ पुलिस ये फ्लैग मार्च कर रही है। बकरीद से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। लखनऊ पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नियमित पैदल गश्त और पिकेट ड्यूटी को और मजबूत करने पर जोर है। ईदगाह, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस की ये तैयारी उस वक्त हुई है जब मलेहाबाद इलाके में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो गया।
8: हिंदू संगठनों ने यहाँ पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे, जिनका काम है कि ये जो बैरिकेड आप लगा देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इन बैरिकेड्स को फांद कर यहाँ से कोई उस विवादित स्थल या विवादित ढांचे तक ना जा पाए।
0: सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। साथ ही प्रशासन ईदगाह का मुआयना भी कर रहा है। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की है। संभल में भी कुछ ऐसी ही तैयारी है, यहाँ भी पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है।
9: आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर इस वक्त संभल में किस तरीके से एडिशनल एसपी और सीओ सहित जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त संभल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहा है।
0: सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है, उम्मीद कीजिए कि तप रहे यूपी में माहौल ठंडा रहेगा। आज तक ब्यूरो।
7: तो बकरीद को लेकर सिर्फ यूपी में ही गहमा गहमी नहीं है बल्कि महाराष्ट्र भी विवाद के घेरे में है। कुर्बानी को लेकर कल मीरा रोड में बवाल हुआ था और अब मुंबई के ही गोरेगांव में विवाद हुआ है। गोरेगांव ईस्ट में कुर्बानी के लिए बकरी रखने का लोगों ने विरोध किया।
10: गोरेगांव ईस्ट में एक जो बिल्डिंग है उसके कुछ बगल में ही एक टेंट बनाया गया है जिसमें बकरे रखे गए हैं बकरीद के लिए, लेकिन इनको काफी समस्या है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ के बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं उनसे संपर्क किया था। आइए उनसे जानते हैं क्या किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको।
11: जी सिर्फ हमारी इतनी विनती है, वो अपना जो त्यौहार है वो मनाए, इतना ही है कि वो अपना बकरी का कुर्बानी न दे बस इस एरिया में।
10: यहाँ पे बाजू के ही सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने शेड बीड बांधा है, वहाँ पे बकरे भी है, लेकिन मैं और हमारे जो पूरे रेसिडेंशियल एरिया है सभी लोग यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि खुलेआम नहीं कर सकते आप।
7: उधर कोलकाता में भी बकरीद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आने के बाद सख्त गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद इस बार कोलकाता में रेड रोड पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस वजह से वहां ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज की तैयारियां की जा रही हैं।
12: यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा। और इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस तरीके से पहले कभी भी ईद का नमाज नहीं पढ़ा गया है, लेकिन सरकार इस बार सत्ता में आने के बाद कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ था और उस विवाद के बावजूद मुस्लिम धर्म के कई सारे धर्मगुरुओं ने आम लोगों से भी आग्रह किया था कि सड़कों को बंद करके नमाज ना पढ़ी जाए और कुर्बानी खुले रास्ते के पास या खुले रास्ते के ऊपर ना की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अर्गो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, कोलकाता।
7: नई बकरीद में कुर्बानी पर बवाल के बीच भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने अनोखी पहल की है। हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल में कुर्बानी के लिए इको फ्रेंडली बकरे तैयार करवाए हैं। ये बकरे मिट्टी से बने हैं। एक बकरी की कीमत 1,000 रुपए।
13: इन मिट्टी के बकरों को बाकायदा बेचा भी जा रहा है और ये ऐसे कई सारे बकरे हैं जो इस कारखाने में बनाए गए थे हिंदू उत्सव समिति की तरफ से। पिछले साल भी हिंदू उत्सव समिति ने ऐसे मिट्टी के कई सारे बकरे जो हैं वो उपलब्ध कराए थे और इस बार भी कुर्बानी के लिए बकरे उपलब्ध हैं। इस पोस्टर के साथ फिलहाल इन बकरों को रखा गया है। क्या मकसद है इसके पीछे का, ये हम जानेंगे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इको फ्रेंडली बकरे आपने लिखा हुआ है इसमें, कुर्बानी हेतु उपलब्ध है, तो क्या सोच है इसके पीछे की?
14: परिवर्तन संसार का नियम है। इको फ्रेंडली जब होली हो सकती है पानी की बचत के लिए, सूखी होली के लिए, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है पर्यावरण की बचत के लिए, प्रदूषण ना हो इसके लिए फटाके मत फोड़िए, इको फ्रेंडली दुर्गा उत्सव हो सकता है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है जिसमें कि मट्टी के ही गणेश जी अपने घर में बनाइए और विसर्जन कर दीजिए। तो जब ये हो सकता है तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती?
7: ताजमहल परिसर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग ताजमहल के परिसर में भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
15: करते हुए लोग
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही हलचल का दौर है और फिलहाल जो सियासत चल रही है उसमें बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या टीएमसी के भीतर बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि पहले टीएमसी की सांसद काकुली घोष ने असंतोष जताया और टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पार्टी के 6 विधायकों के साथ वो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गई। उसके बाद टीएमसी के 100 पार्षदों ने एक के बाद एक इस्तीफा दिया। टीएमसी में फूट साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी में आना चाहते हैं, बस बीजेपी को दरवाजा खोलने की दरकार है।
15: आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 50-50 विधायक, 50-50 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं यार, 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा।
7: इसके साथ ही आपको बता दें कि नमाज को लेकर सियासत है और दूसरी ओर घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई के बीच घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी तादाद में घुसपैठिए वापस लौटने लगे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर हकीमपुर चेक पोस्ट कल से घुसपैठियों की वहां भीड़ जमा है जो वापस जाने के लिए तैयार है।
12: इस वक्त हम लोग हाकिमपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जो अब वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, अवैध तरीके से आए थे, वो लोग यहां पर भीड़ कर लगा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ये इनका जन्म खुलना में है, इनके माँ बाप यहां पर आ गए थे और इनको भी लेकर आए थे। यह बर्तन मांजने का काम करती थी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ इनके पास था, लेकिन एसआईआर में इनका नाम कट गया, इनके पूरे परिवार का नाम कट गया। तब इन्होंने अपने बांग्लादेश में जो रिलेटिव्स हैं उनसे संपर्क किया और अब ये लोग बांग्लादेश जाने के लिए जो हाकिमपुर बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, सामने जहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इनका सब ब्यौरा यहां पर लिया जा रहा है। कैमरामैन ओरघो के साथ अनुपम मिश्र, आज तक हाकिमपुर बॉर्डर, उत्तर 24 परगना।
7: वही घुसपैठियों में मचे इस हड़कंप की वजह है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्त चेतावनी।
16: कोई नया कानून नहीं है
15: जी,
16: अरे लोग चला जाना चाहिए, देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, फिनिशिंग देगा, ये दामाद है ये लोग।
15: सुरेंद्र
16: जल्दी भागो,
15: सुरेंद्र
16: मामला भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
7: वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपनी कुर्सी संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं जिसमें विजय पीएम मोदी को गुलदस्ता देते दिख रहे हैं। विजय ने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु की उन मांगों को लेकर बात की जो केंद्र सरकार के सामने काफी लंबे समय से पेंडिंग है। विजय तमिलनाडु के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दिल्ली आए हैं। खौफ का पर्याय बन चुका नीला ड्रम एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार पंजाब के पटियाला में एक लड़की की लाश नीले ड्रम में पाई गई। लड़की के हाथ में बने 2 टैटू की मदद से पुलिस लड़की के हथियारों तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है।
17: पटियाला के अर्बन स्टेट इलाके में मिले इस नीले ड्रम को गौर से देखिए, इसमें एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की की उम्र 15 से 20 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि लड़की के एक हाथ पर नेहा नाम का टैटू बना था जबकि दूसरे हाथ पर दिल के निशान वाला टैटू था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मर्डर केस की जांच कर रही है।
18: ड्रम विचों एक लड़की दी लाश मिली है जिदी अजे शनाख्त नहीं हो सकी, उदे प्रवासी जापदी है जिदी 15 से 20 साल उम्र जापदी है, उदी खब्बी बांह ते नेहा इंग्लिश विच नेहा दा टैटू छपिया होया और सज्जी बांह ते एन ए दिल दा टैटू छपिया होया।
17: डीसीडब्ल्यू पोल के पास कूड़े के ढेर पर नीले रंग के ड्रम में लड़की की डेड बॉडी की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। पटियाला पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने नीले ड्रम के पास से सबूत इकट्ठा किए और उसे जांच के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी के मुताबिक लड़की के चेहरे पर हल्की चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस इन निशानों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कई थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगालनी शुरू कर दी है, जिससे लड़की के बैकग्राउंड का पता लगाया जा सके। मुनीश कौशल, पटियाला, आज तक।
7: बात युद्ध की, गाजा से लेबनान तक इजराइल ने कहर बरपा रखा है, लेकिन उस इजराइल का क्या हाल है जिस पर एक तरफ ईरानी मिसाइल्स की बौछार हो रही है तो दूसरी तरफ से हिजबुल्ला के रॉकेट हमले कर रहे हैं। उस इजराइल की जमीन पर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा मौजूद है, उन्होंने इजराइल के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
19: ये इसराइल का बेट शमेश का इलाका है, चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारतों के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी।
20: मैं इस वक्त इसराइल के बीच शमाश इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां 1 मार्च को ईरान से आने वाली मिसाइल ने इसे निशाना बनाया और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए और इस तरह के अलग अलग अटैक्स इसराइल के अलग अलग इलाकों में हुए 40 दिन के दौरान। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए और तमाम लोगों की मौत भी हुई। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये एक रिहायशी इमारत थी, इसमें जब ये हमला हुआ तो बच्चों की एक पार्टी चल रही थी। एक 13 साल का बच्चा जो मरने वालों में से सबसे कम उम्र का था और एक 76 साल के जो एल्डर पर्सन थे उनकी भी यहां पर मौत हुई। और ये सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था, यहां पर एक सिनेगॉग था यानी कि एक धार्मिक महत्व की जगह जहां पर ज्यूज आते हैं, प्रेयर्स करते हैं।
19: इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्स्टून ने भी हमें बताई।
20: सो वी सी हियर दिस रबल, दिस वाज द इरानियन क्लस्टर मिसाइल यू सी।
21: यह ईरानी आतंकी शासन द्वारा हमारे नागरिक समुदायों पर सीधा हमला था। आप सभी का यहाँ आकर इसे अपनी आंखों से देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, आप एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच हैं और ये वही तरीका था जो हमने ईरान के आतंकी शासन द्वारा रोजाना देखा।
19: तस्वीरें बताती है कि युद्ध किस तरह से हरे भरे शहर को खंडहर में बदल देता है। शिवानी शर्मा, इजराइल, आज तक।
7: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 141 अंक टूटकर 75,867 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी हल्की कमजोरी देखी गई, ये करीब 7 अंक फिसलकर 23,907 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में दबाव के बीच रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे टूटकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 682 रुपए टूटकर 157,040 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी प्रति किलो 4,640 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 261,710 रुपए पर बंद हुई। आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है, लेकिन इस मुकाबले में सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर है।
17: वैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोकना होगा सबसे बड़ा इम्तिहान।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
5: बस 2000
6: स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
7: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: आगे आगे, अरे उधर उधर किधर? करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: विक्रम, एक हिंट तो देते। हिंट?
15: बड़े आराम से।
17: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
18: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
19: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
21: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर।

0: ये इसराइल के बेट शेमेश का इलाका है। चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारत के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच में बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी। इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्स्टून ने भी हमें बताई। ईरान के साथ 39 दिन की जंग में आसमान में फूटते पटाखों और ईरानी जमीन पर बरसते बारूद की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन इजरायल की धरती ने भी कम जख्म नहीं झेले हैं। इजरायल में आज दुश्मन के हमलों की दहशत ऐसी है कि जिन बच्चों की खाने खेलने पढ़ने लिखने की उम्र है उन्हें डर दहशत और जान बचाने की जुगत के गुर सिखाने में वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ईरानी मिसाइलें भले थमी हुई हैं लेकिन हिजबुल्ला के हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ है। हमारी संवाददाता ने इजरायली सुरक्षा बलों के उप प्रवक्ता बेन कोहेन से पूछा कि आम नागरिकों की मौत तो गाजा और लेबनान में भी हो रही है, उनका क्या कहना था सुनिए। इसराइल का कहना है कि लेबनान की सरहद के आसपास रहने वाले इजरायली नागरिकों को जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। अगर लेबनान शांति वार्ता आगे बढ़ाना चाहता है तो सीमावर्ती इलाकों के विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिसे हिजबुल्ला रोक रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM-based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.
2: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
3: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें SIR से वोट काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
4: अब क्या ढूंढ सकते हैं
3: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान अमेरिका में समझौते की जमीन तैयार। तेहरान मीडिया का दावा, एमओयू के ड्राफ्ट में हॉर्मुज के आसपास से सेना हटाने को तैयार। ट्रंप, ईरानी नाकेबंदी भी होगी खत्म। कर्नाटक सीएम से कल इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। डीके शिव कुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से हमारा रहा संकल्प। एसआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। नीट पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी। 2 की 10 जून तक न्यायिक हिरासत। अब तक 13 की हो चुकी है गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं नेहा बाथम। आज विशेष बात आसमान पर तापमान की। पूरा नॉर्थ इंडिया इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मॉनसून लेट हो रहा है। पहले ये उम्मीद थी कि केरल में मॉनसून 26 मई तक आ जाएगा, लेकिन अब मौसम विभाग कह रहा है कि 2 जून के बाद ही केरल के तट पर मॉनसून टकराएगा। कुछ इलाकों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल यही है कि कब तक ये गर्मी यूं ही झुलसाएगी या आगे कोई राहत नजर आ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट।

0: कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत? कब होगी प्री मॉनसून की बारिश? कब तक उत्तर भारत के शहरों में पारा 45 के पार रहे? कुछ राहत मिलेगी? हर किसी का यही सवाल है कि बस अब बहुत हो गया। गर्मी में तो लोग झुलस गए हैं, पूरी तरह से तड़प रहे हैं। भीषण गर्मी में शहरों की बत्ती गुल है, कई जगहों पर घंटों की बिजली कटौती हो रही है। कई शहरों में भीषण पानी का संकट है, पानी आ ही नहीं रहा। इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस भीषण लू और गर्मी से राहत कब मिलेगी। क्योंकि अभी भी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में 98 हिंदुस्तान के हैं। AQI.in के अनुसार सबसे गर्म शहर राजस्थान का श्रीगंगानगर है। 100 में से सिर्फ 2 शहर ईरान के हैं। बाकी भारत के 98 शहरों में तापमान 44 से 49 डिग्री तक बना हुआ है। यूपी का बांदा भी दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में लगातार शामिल है। यहाँ तो रात का तापमान भी नीचे नहीं आ रहा। रिक्शा चलाने वालों ने भी गर्म हवाओं से बचने के लिए हेलमेट पहन लिया है।
1: और भारत देश में हमारा सबसे बांदा गर्म है। जिला बांदा में इतनी तक कड़ाके की गर्मी पड़ रही, जहाँ 48-49 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। हम गरीबों को सर छुपाने के लिए कोई चीज बची नहीं है, और घर में भी रहेंगे तो कुछ खा ना पाएंगे, बच्चे परिवार ना पाल पाएंगे, और इसलिए रिक्शा चलाना मेरे लिए अनिवार्य। मैं एक पैर से दिव्यांग भी हूँ, इसलिए ना तो 1000 पेंशन हो तो अपना पेट भर नहीं सकता। और कड़ाके की धूप में जब मैं निकलता हूँ तो मेरे मुंह में एकदम लाल चपेटे जैसे पड़ रहे, मुंह एकदम गर्म हो जाता है, जैसे उल्टियाँ कई बार हो चुकी है, मुझे बीमार भी हो चुका, फिर भी मुझे रिक्शा चलाने की मजबूरी है। इसलिए मैं आज हेलमेट लगा के निकला हूँ, इसलिए ये धूप जो भी लगती है, हवाएं चलती है, इससे बचाव हो सके।
0: लखनऊ में तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रशासन की तरफ से ऐसा ग्रीन शेड बना दिया गया है, हरा कपड़ा लगा है, ताकि रेड लाइट में खड़े लोग गर्मी में झुलसने से बच जाएं। इस पर बाकायदा पानी का छिड़काव भी हो रहा है,
2: क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है। यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं, तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है, तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं, इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं, इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा।
0: इस भीषण गर्मी में लोग कब तक झुलसते रहेंगे? कब उन्हें राहत मिलेगी? हर किसी का यही सवाल है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी आई है। खबर यह है कि कल से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार कल से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो हिमालयी राज्यों को हिट करेगा, और उससे इन राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश से तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी आएगी। इसके साथ ही इन पहाड़ी राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।
3: जहाँ तक गर्मी की बात है, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी की स्थिति लगातार चल रही थी, इसमें हम देखेंगे कि जो हीटवेव कंडीशंस हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही थी। अभी हमारा अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। तो जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख यानी कल के बाद से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29-30-31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। 29 मई को भी उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं, बारिश और आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 मई को उत्तराखंड के कई जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बहुत से तटीय राज्यों में प्री मानसून बारिश की भी संभावना है।
4: राज्यों की बात करें तो प्री मानसूनी बारिश जो होती है वो जरूर देखी जा रही है, क्योंकि दक्षिणी छोर पे जो है 26 मई को मानसून जो है वो दस्तक देना था, हालांकि अभी तक दस्तक नहीं दिया है, लेकिन प्री मानसून बारिश जो है चाहे केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम में बात करी जाए तो इस पूरे पूर्वोत्तर भारत में या फिर दक्षिण छोर पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जो है जारी किया गया है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और इन सब की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कल जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसके बाद तापमान एक बार कम जाएंगे और लोगों को इस गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है।
0: इस प्री मानसून बारिश की इस वक्त पूरे उत्तर भारत को सख्त जरूरत है। पहाड़ों पर भी बारिश हो गई तो उससे राहत पूरे नॉर्थ इंडिया को मिलेगी। मौसम विभाग बता ही रहा है कि जिन राज्यों में इस वक्त लू चल रही है वहां 8 से 10 डिग्री तक तापमान कम रहेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के शहरों में तो अब तालाब और झीलों तक का पानी इस गर्मी की वजह से सूख चुका है।
5: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी प्रचंड गर्मी इस समय है, पारा 45 डिग्री के पार है और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का स्तर भी था वो भी अपने लेवल से 5 से 6 फीट कम नजर आपको आएगा। और ये जो मिट्टी के निशान पत्थरों पर हैं तो ये पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 से 20 दिनों में पूरा 45 डिग्री के पार तापमान रहा है और पूरा हीट वेव रही है उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा में, तो उसका असर आप देखिए कि हर चीज़ पर है। लोगों का व्यवसाय हो, लोगों का कामकार हो और प्राकृतिक तौर पर भी आप देखिए कि जो जल स्रोत हैं या जिस तरीके से हीट वेव है उसका असर पूरे तरीके से है। इस समय पंजाब के बठिंडा में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है 45 डिग्री और हरियाणा का सिरसा ऐसा शहर है जो 46 डिग्री पारे के साथ सबसे हीटेड शहर है। और आप देखिए कि ये सुखना लेक पर जो चहल पहल होती थी, हरा भरा रहता था और आवाजाही रहती थी, लोग यहाँ पर आते थे, तो वो भी अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस समय धूप में सुबह के वक्त भी निकलना पसंद नहीं कर रहे। अगर
0: आज तक ब्यूरो,
4: भीषण गर्मी में बिजली का संकट तो है ही, शहरों और ग्रामीण इलाकों में पानी का भी भीषण संकट है और इस जल संकट से कोई शहर अछूता नहीं है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या प्रदेशों की, जल संकट लगभग हर जगह है और गर्मी में तो और ज्यादा हो जाता है।

0: दिल्ली में पानी का संकट तो है ही, कई कॉलोनियों में पानी ही नहीं आ रहा। इस भीषण गर्मी में बड़ा जल संकट पैदा हो गया है। लेकिन दिल्ली के गुलमोहर पार्क में नाले जैसे पानी की सप्लाई हो रही, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार भी हो गए। दिल्ली का गुलमोहर पार्क सबसे ज्यादा पॉश इलाकों की लिस्ट में आता है। यहाँ बड़े और अमीर लोग रहते हैं और उन्हें भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। पानी से सीवर की बदबू आ रही।
1: देश की राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन सामान्य इलाकों को छोड़िए, वो इलाके जहां लखपति करोड़पति रहते हैं, सबसे महंगे इलाकों में से एक गुलमोहर पार्क में पानी गंदा आ रहा है। अब हम जिन इलाकों में आए हैं, बंगलों में, आप सोचिए कि ये जो पानी है ये पीने के पानी का टैंक है, लेकिन ये पानी पूरा काला है। काली पानी की सप्लाई, इसमें बदबू है, जिसके चलते बहुत लोगों को यहाँ बीमारियां हुई हैं, रैशेस हुई हैं और पेट से जुड़ी, लिवर से जुड़ी दूसरी बीमारियां। तो अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, टैंक में पानी भर गया है, इसको खाली करवा के अब इसके बाहर निकलवा रहे हैं, ताकि जब जल बोर्ड की साफ पानी आएगी, सप्लाई आएगी, तब इन टैंक को भरा जाएगा। आप सोचिए कि गर्मी बढ़ी, पानी की किल्लत शुरू हुई, दूसरे इलाकों में बिजली की किल्लत है, दिल्ली में पानी की कमी है, और जहां पानी आ रहा है वो भी ऐसे इलाकों में, सोचिए कि इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, महंगा इलाका है, इस पानी में बदबू है। और ये पिछले 5-6 दिनों से गुलमोहर पार जैसे प्रतिष्ठित इलाकों में, उन इलाकों में जहां संपन्न लोग रहते हैं, धनाढ्य तबका रहता है, वहां भी इस तरह का गंदा पानी आ रहा है। दैट्स लिटरली लुक द बैड स्मेल।
2: जो है अब जो है 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा खराब हालत है।
1: तो स्मेल रैशेस,
2: स्मेल रैशेस तो नहीं, यूज ही नहीं कर रहा, यूज करना बंद कर दिया ये पानी हमने,
1: इसकी वजह से तबीयत वगैरह भी बिगड़ी लोगों।
2: हाँ, मेरे को डायरिया खुद हुआ हुआ है, तो 3 दिन से तो मैं बीमार बैठा हूँ।
1: आप लोग कम क्लीनिंग कर रहे हैं?
3: हाँ जी, जीडी वाटर कंसल्ट से हूँ मैं।
1: अच्छा।
3: और ये पंचशील, गुलमोहर पार्क, डिफेंस कॉलोनी जैसे पौष इलाकों में पानी की यही दिक्कत आ रही है।
1: आपको रोज कितने टैंक क्लीन करने जाना पड़ रहा है?
3: हमारी कम से कम 20 टीमें हैं, और हमारा डेली का कम से कम 40 से 45 कॉल हो रही है, 40 से 45 घरों में जा रहे हैं, वहाँ पे ज्यादातर यही दिक्कत आ रही है।
0: बाहर हमें दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी मिले, जो इस गंदे पानी की लाइन को ठीक कर रहे थे। जल बोर्ड इस गंदे पानी का ठीकरा कॉलोनी में निर्माण और पीडब्ल्यूडी पर फोड़ रहा है।
4: मल्टीपल जो इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन है वो लीकेज मिले थे हमें बैक लेन में सबके, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने ढूंढा, सारे ठीक किए, सारे रिपेयर किए, और जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें भी काफ़ी जगह ये मिला है कि जो लेबर के लिए टॉयलेट बने हैं वो पानी की लाइनों के ऊपर ही बने थे सारे, वो भी तोड़वाएं, सारे हटवाएं, जो जो अंदर के, अंदर का सारा सिस्टम ठीक कर दिया। आप बाहर आए, बाहर हमें पता लगा है कि यहाँ पे ये ड्रेन जा रहा है, ये ड्रेन में पानी खड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, और हमारी लाइन भी यहीं से जा रही है, तो हो सकता है यहीं से मिक्सिंग हो रही हो और वो ड्रेन में पानी है, इसलिए भी लीकेज का पता नहीं लग पा रहा, तो हम ड्रेन को पानी निकालने लग रहे हैं आज।
1: कितने दिन हो गए लगभग इस तरह की सिचुएशन?
4: ये अब 4-5 दिनों से ज्यादा आया दिक्कत।
0: शहर चाहे देश की राजधानी हो या फिर उत्तर प्रदेश का महोबा, पानी के हालात हर जगह एक जैसे। बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के बीच महोबा का कबरई कस्बा पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। करीब 10 से ज्यादा मोहल्लों में पेयजल संकट इतना विकराल हो चुका है कि पानी का टैंकर आते ही पानी लेने के लिए जंग जैसे हालात बन जाते हैं, लोग पानी लूटते नजर आते हैं। जैसे ही नगर पालिका का 4,500 लीटर का टैंकर किसी मोहल्ले में दाखिल होता है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। महज 5 से 7 मिनट में पूरा टैंकर खाली हो जाता है, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि फिर भी कई लोग खाली हाथ रह जाते हैं। यहाँ करीब 10 मोहल्ले हैं जिनकी लगभग आबादी 35,000 है, और ये मोहल्ले इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं।
5: पानी का समस्या तो है कई साल से, तो का कारण भैया नहीं मिल रहा हुआ है।
6: हाँ, कहाँ से ले आ रहे
5: हैं? कहाँ से नहीं ले आ रहे हैं, हैंड पाइप से कब मिलता है कब नहीं मिलता।
7: नालन का पानी आवे और न गंदा पानी नालन का आवे, तो सफाई भी नहीं होती है।
8: सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है, किंतु नगर पंचायत द्वारा, ईओ साहब द्वारा निरंतर टैंकरों के माध्यम से जो है कस्बे वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, और प्रयास किया जा रहा है कि किसी को पानी की समस्या ना हो।
0: शहरी
9: ट्रेन छोड़ने से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, कुछ और खबरों के साथ देखते रहिए आज तक।

0: favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
1: I'm in the game. I should have joined with this G23.
0: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn.
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
3: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि एफआईआर करके चुनाव आयोग देश के गरीब दलित पिछड़ों मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया उसका लब्बो लुआब यही है कि एफआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग के एफआईआर को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई एनजीओ नेताओं संगठनों समेत 20 अर्जियां एफआईआर के खिलाफ डाली गई, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरपी एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह एनआरसी तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि एफआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब दलित मुस्लिम प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में एफआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाती है, तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत ये है कि इस एफआईआर में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं, जिनमें यूपी में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था, लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से एफआईआर को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

0: संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: ईरान अमेरिका में समझौते की जमीन तैयार, तेहरान मीडिया का दावा, एमओयू के ड्राफ्ट में हॉर्मूज के आसपास से सेना हटाने को तैयार ट्रंप, ईरानी नाकाबंदी भी होगी खत्म। कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया, सूत्रों के अनुसार राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, अमित शाह बोले बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला, कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन, नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। 22 लाख छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, पेपर लीक वाला उनका जख्म भरा नहीं था, तभी उनमें से लाखों छात्र समेत 17 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी, वो देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड के हाथों हुई कॉपी जांच की धांधली के दर्द से परेशान है। लेकिन जवाबदेह कौन है, सब पर सब मौन है। हर परिवार से जुड़ी इस खबर से खबरदार करेंगे, लेकिन साथ ही आज आपको दिखाएंगे बंगाल में बकरीद पर कल क्या क्या बदला हुआ दिखने वाला है। कल क्या गाय की कुर्बानी बंगाल में होगी, क्या नमाज का रास्ता तक बदल जाने वाला है। कभी नारा लगा था हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बकरीद से पहले मुंबई में यह दावा किया जाने लगा कि बकरे रिहायशी सोसाइटी में बांटकर हिंदुओं को ताकत दिखाने की कोशिश होने वाली है, और तब खबरदार करता सवाल है कि सोसाइटी में कुर्बानी जिद है या अधिकार है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्यों योगी राज में हर रोज हुए 5 एनकाउंटर को लेकर जाति वाली राजनीति छिड़ गई है। क्यों यूपी में एनकाउंटर में मारे जाने वालों में कौन यादव, कौन राजभर, कौन बिंद, कौन ब्राह्मण, कौन ठाकुर देखा जा रहा है। देश की आज की सबसे बड़ी खबर, एसआईआर सही है, विपक्ष का दावा गलत है, सुप्रीम कोर्ट से आई इस खबर ने क्या विपक्ष के सबसे बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है, विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बंगाल की खबर। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बकरीद पर पहले जैसी कई चीजें नहीं होंगी। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला हुआ पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं। वहां से वो पूरे राज्य के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिया करती थी। इसी दौरान वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करके एक मुश्त मिलने वाले मुस्लिम वोट बैंक को भरोसा दिलाती थी। लेकिन शुभेंदु सरकार बनने के बाद बंगाल पूरी तरह बदल गया है। अब कोलकाता की रेड रोड पर ईद की सामूहिक नमाज नहीं होगी, उसकी जगह बदल दी गई है। बकरीद पर ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट के दावे गूंज रहे हैं। एसआईआर पर उनके बनाए गए नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसने एसआईआर को सही ठहराया। घुसपैठिए भी शुभेंदु सरकार बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस बार की बकरीद पर देश एक बदला हुआ बंगाल देख रहा है।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको कौन को ईद मुबारक कहने जाऊंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया, भैया आया भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
5: कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक वकील की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि पिछले साल ईद कार्यक्रम में दिए गए कथित बयान से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं,
6: जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दैट टाइम थी वाज चीफ मिनिस्टर थी, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी, तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का ईद के दिन। उस टाइम पे शी वॉज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के शहरी का के दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो उस जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होता है भारतीय न्याय संहिता में, ये दंडनीय अपराध है, वो अपराध का सजा आपको मिलना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रायल भी फेस करना है, आपको बेल भी लेना है और आपको इसका सजा भी पाना है, वहां तक मैं जाऊंगी।
5: पश्चिम बंगाल में इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठिए सकते में हैं, वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को कह रहे हैं। इसका असर यह है कि बांग्लादेश से लगती सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए पहुंच रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर है। शुभेंदु सरकार सीधे डिपोर्ट की नीति पर काम कर रही है। इसके लिए ममता सरकार में जो बारात घर थे उनमें आज बांग्लादेशी घुसपैठिए रखे जा रहे हैं। ममता सरकार में जो होटल थे वहां पर बंगाल में घुस आए घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा गया है।
7: भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
8: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
9: आमी শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে।
8: শুভেন্দু অধিকারী 9 মই কো পশ্চিম বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী বনতে হ্যাঁ। মই কা মহিনা অভি পুরা নহীঁ হুয়া। শুভেন্দু কে কুরসি সম্ভালনে কে 20 দিন কে ভিতর হি পশ্চিম বঙ্গাল মে ঘুসপ্যাঠিয়ে বাংলাদেশ জানে কে লিয়ে হাকিমপুর বর্ডার কি তরফ ভাগ রহে হ্যায়।
10: দামাল হ্যায় শুভেন্দু
8: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
11: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
12: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही चल जा रहे हैं।
11: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
12: कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
11: आप रहने वाले कहाँ के हो?
12: हम लोग बंगाल का है।
11: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश के, बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
12: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
11: कब आए थे?
12: हो गया 2-3 साल हो गया।
8: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
11: कैसे आए थे?
12: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
11: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
12: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा।
11: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
12: नहीं,
11: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
12: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
11: जी, क्या काम करते थे?
12: हम बाइक मैकेनिक है।
8: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
13: বন্ধু বান্ধবের সাথে পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে। আধার কার্ড? হ্যাঁ,
14: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে। আমাদের আমার কাগজ ছিল না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
5: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो कैसे भारत में आए। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद पहुंच रहे हैं।
8: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
10: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा जो साधारण लोगों का जनता और सिटीजन को नागरिक को मिलना था वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
8: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
15: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
16: यहाँ पर ऑन सिक्स और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ऑन 63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतर साथी है, वहाँ पर 53 शिविर है, वहाँ पर 52।
8: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
17: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन, बीडीओ, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
18: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
8: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
5: और अब एक सवाल कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी में भी होगा आम आदमी पार्टी जैसा खेल? क्या बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद और 50 विधायक जाने वाले हैं? इसे लेकर बीजेपी नेता ने बड़ा दावा किया है।
19: आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व तो एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 50,000 विधायक अपना विधानसभा में आए नहीं, यार 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा।
20: भी अपना नाम बढ़ाने के लिए बयान दिया है, मेरे पास ऐसा कोई खबर भी नहीं है, सबूत भी नहीं है। दो एक आदमी इधर उधर जा सकता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सब लोग चले जाएंगे इसी बात नहीं है।
5: और अब कल बकरीद से पहले महाराष्ट्र में सोसाइटी में होते कुर्बानी विवाद से खबरदार करते हैं, जहां बीजेपी नेता सोसाइटी में शेड बनाकर बकरों की कुर्बानी की तैयारी से पहले विरोध कर रहे हैं, बकरे हटवा रहे हैं। वहीं मुस्लिम नागरिकों का आरोप है कि बीएमसी से इजाजत मिलने के बावजूद बीजेपी के नेता जानबूझकर रोक लगवा रहे हैं।
21: मुंबई से सटे ठाणे का मीरा रोड, बकरीद से पहले तनाव इतना कि बकरे की कुर्बानी सोसाइटी के भीतर करने के विरोध में प्रदर्शनकारी सुअर ले आए, तो पुलिस कर्मी को वो सुअर छुड़ाकर भागना पड़ा ताकि माहौल और खराब ना हो। एक जगह हालात सुधरे नहीं, दूसरी जगह तनावपूर्ण हो गए। मुंबई का गोरेगांव इलाका, 12 से ज्यादा बकरे कुर्बानी के लिए सोसाइटी में किनारे शेड बनाकर रखे गए, तो बीजेपी पार्षद ने विरोध शुरू कर दिया।
22: बकरों की कुर्बानी हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे, कि खुलेआम होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
21: इसके बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में बकरीद से पहले कुर्बानी पर तीसरा विवाद आया। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी देने का विरोध करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर हालत ये, बीजेपी के विधायक भड़काऊ बयान तक देने लगे।

0: हो रहा है वो हो गया, लेकिन लास्ट ईयर से हमें हमने करने नहीं दिया और इस साल भी हम करने नहीं देंगे।
1: लेकिन वजह क्या है, क्या रेजिडेंट्स बाकी रेजिडेंट्स को क्या आपत्ति?
0: बाकी देखिए कैसे है कि धार्मिक भावना आप कीजिए ना त्योहार, लेकिन बाकी के लोगों को परेशान करके नहीं।
2: बकरे रखे थे उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए, मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं।
3: 27 साल से यहीं पे दी जाती थी, अभी इस साल मुश्किल है।
1: सर ऐसा क्या वजह हो गया कि
3: ये लोगों ने धमाल किया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम जो कानून करेगा वही बोल।
1: परमिशन के बाद ही कुर्बान
3: था फिर भी कैंसिल किया, परमिशन हमारा था बकरे का काटने का फिर भी कल शाम को कैंसिल कर दिया।
1: यहाँ पर जितने बकरे हैं वो निकाल लिए जाएंगे यहाँ से, हालांकि जो यहाँ के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं उनका यही कहना है कि वो उनको यही सही नहीं लगता, बहुत वर्षों से तकरीबन 27 सालों से वो यहाँ पर कुर्बानी देते आए हैं।
4: इसी तरह घाटकोपर की सोसाइटी में एक शेड लगाकर बकरे की कुर्बानी मुस्लिम नागरिक देने की तैयारी बकरीद पर करने लगे, विरोध हुआ, पुलिस पहुंची, बीजेपी नेता किरीट सोमैया नारे लगाते आ गए।
5: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुट गई है। आज संभल से काशी तक, मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाला है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
6: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
4: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
7: ये सामने
4: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
8: जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है।
4: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके, खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जाती है।
9: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
10: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
4: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
11: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
4: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
12: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
4: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
13: जितने हमारे धर्मस्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में

0: संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
1: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
2: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
1: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
3: तब से यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
4: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक आरोपी हो। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर का आंकड़ा है, और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा।
5: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देकर के इनकाउंट करवाती है।
6: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
5: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
6: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
5: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा।
6: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
1: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है, तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं। आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
7: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है, बीजेपी वाले जातवाद कर रहे हैं, जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
1: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में 3 लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
5: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
1: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है, और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
5: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के एनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
1: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है, तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
8: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
4: तो उत्तर प्रदेश में क्या वाकई जाति देखकर एनकाउंटर होता है? कभी मुस्लिम आरोपी बताकर यह आरोप लगता है, कभी पिछड़े दलित का नाम लेकर यह आरोप लगता है, लेकिन हर बार ये आरोप सियासी ही साबित होते आए। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक मुठभेड़ में मारे गए 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम थे, 120 हिंदू और 2 सिख। यानी ज्यादातर मुस्लिम वाला नैरेटिव 2023 तक के डेटा में टिकता नहीं है। जाति वर भी देखें तो 2017 से 2023 के बीच जो आंकड़े मौजूद हैं उनमें जो अपराधी मुठभेड़ में मारे गए उनमें 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुजर, 14 यादव, 13 दलित, 3 एसटी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य हैं। मतलब इनमें भी कोई एक जाति के आधार पर आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी एनकाउंटर सियासत जाति गिनती है।
1: योगी सरकार के 9 साल में पुलिस ने 289 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। 34,253 अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस एनकाउंटर में 11,834 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और मुठभेड़ में 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन जो योगी सरकार का कानून व्यवस्था को संभालने को लेकर सबसे बड़ा हथियार है, यानी बुलडोजर और एनकाउंटर, उन दोनों में चुन चुन कर पीडीए को निशाना बनाने का आरोप अखिलेश पहले भी लगाते रहे, अब फिर से लगाने लगे हैं।
5: 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी घटनाओं में, उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं।
1: यूपी सरकार का ही डेटा कहता है कि योगी राज में हर 12वें दिन एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया है। योगी राज में हर दिन 3 बदमाश पैर में गोली खाकर जख्मी होकर पकड़े गए, तो योगी सरकार के कार्यकाल में हर दिन 10 बदमाश एनकाउंटर में ही पकड़े गए हैं। लेकिन इसी एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल के जवाब में मजबूत कानून व्यवस्था का आईना मुख्यमंत्री दिखाते हैं।
8: याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे।
1: योगी सरकार जब बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर से माफिया राज को खत्म करने के साथ अपराध पर लगाम को ताकत मानती है, तब इसी साल जनवरी में एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर जजों खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने तब कहा था कि अक्सर पुलिस की गोली आरोपियों के पैर में लगती है, यह एनकाउंटर एक तरह से रूटीन बन गए हैं।
9: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं, अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
1: लेकिन जब कोर्ट से सवाल आया और जब विपक्ष सवाल करता है दोनों को लेकर,
9: अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
1: लेकिन जब कोर्ट से सवाल आया और जब विपक्ष सवाल करता है दोनों को लेकर मुख्यमंत्री साफ साफ बयान देकर ये बता चुके हैं कि उनके निर्देश पुलिस को लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं।
10: बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी, अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे।
4: और अब बात उस मामले की जिसने आज देश के हर आम आदमी को झकझोर दिया। पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा है कि जब आज आरोपियों का नाचते गाते वीडियो वायरल हुआ तो आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार कानून के रखवालों से सवाल करने लगा।
1: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में 2 बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
11: बहुत बड़ा कोई या कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा का सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है, जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
1: 2 साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में 2 युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी, जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे ये मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा।
11: किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
1: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का त्रिशा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्रिशा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
4: पुणे पोर्शे केस में कारोबारी पिता जो आरोपी हैं, वो भले ही वीडियो को पुराना बताएं, लेकिन उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि लोगों का गुस्सा उन्हें लेकर क्यों फूट रहा है, क्यों पीड़ित परिवार इसे कानून का माखौल उड़ाना बता रहा है। इसकी कदम कदम पर आरोपी नाबालिग बेटे को बचाने के लिए कोशिश है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आरोपी नशे की हालत में नहीं था, जबकि पब और कार के सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे थे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने चौंकाया तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी जांच के दायरे में आ गए। शराब की पुष्टि नहीं हो सकी, इससे संदेह पैदा हो गया। दोबारा ब्लड रिपोर्ट आने पर शराब की पुष्टि हुई। बाद में पता चला था कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अनोखी सजा ने लोगों का ध्यान खींचा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। आरोपी को केवल 14 घंटे में जमानत मिली तो सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये हादसा इतना गंभीर नहीं लगा कि जमानत न दी जा सके। घटनास्थल पर गए थे 2 अफसर भी, तब सवालों में घिरे जब कंट्रोल रूम को उन्होंने इस मामले की जानकारी नहीं दी। मामले में शुरू से ही पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगता रहा। संबंधित पुलिस अफसर आरोपी नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भी लेकर नहीं गए। इस मामले को रफा दफा करने का आरोप वडगांव शहरी के विधायक सुनील टिंगरे पर भी लगा था, जो सुबह सुबह यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। आरोप लगा कि उन्होंने नाबालिग के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें आरोपी नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल का करीबी माना जाता है। सवाल उठे कि विशाल अग्रवाल ने उन्हें थाने भेजा था। इसके बाद आरोपी परिवार को लेकर दावा हुआ कि उन्होंने ड्राइवर पर दबाव डाला ताकि ड्राइवर अपराध अपने ऊपर ले ले, ताकि ये दिखाया जा सके कि नाबालिग आरोपी कार नहीं चला रहा था। इस तरह कदम कदम पर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई ताकि एक रसूखदार कारोबारी अपने नाबालिग बेटे को बचा सके। यही वजह है कि जब आज आरोपी बिल्डर का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
6: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, वेफरलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
5: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
6: डायरेक्टर The taste of success.
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: आगे आगे
10: अरे उधर
9: उधर गया।
10: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
14: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर,
15: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
16: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
17: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
19: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: आगे आगे
10: अरे उधर
9: उधर गया।
10: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: आगे आगे
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
8: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
9: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
10: नहीं,
9: और म्यूचुअल फंड्स है
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
13: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
12: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
1: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
17: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि देश में अवैध रूप से घुसे ये घुसपैठिए कैसे देश के संसाधन और आपका हक निगल रहे हैं, ये सीधे आपकी थाली, आपके बच्चे के स्कूल की सीट, अस्पताल में बेड तक छीन रहे हैं, आपके खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए संसाधनों पर ये डाका डाल रहे हैं, ये सरहद पार से आते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और दीमक की तरह आपके और आपके परिवार के हक को चाटने लगते हैं। आज हम आंकड़ों के साथ इस कड़वे सच को उजागर करेंगे कि कैसे ये अवैध घुसपैठ केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आपके घर के बजट, आपकी नौकरी, आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य पर सीधा हमला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या वक्फ बोर्ड के पास देश में असीमित जमीन होने से भारत का आम मुसलमान खुश होता है, या फिर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर राजनीतिक दल केवल अपना वोट बैंक सहेजते हैं। आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि केरलम के मुनम्बम में सैकड़ों परिवारों ने जो जमीन अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी, सरकार बदलते ही वक्फ बोर्ड ने उसे डिजिटल पोर्टल पर अपना बता दिया। सेना से भी दोगुनी जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड से आज हम पूछना चाहते हैं कि लाखों एकड़ के साम्राज्य से देश के कितने गरीब मुसलमानों की गरीबी दूर हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या एक छोटा सा द्वीप भारत जैसे विशाल देश को पछाड़ सकता है। सोशल मीडिया पर एक खबर को लेकर चर्चा है कि ताइवान का स्टॉक मार्केट भारत से आगे निकल गया है और कुछ लोग इसे भारत की नाकामी साबित करने में जुट गए हैं, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर आंकड़ों की आड़ में आधा अधूरा सच परोसा जा रहा है। आज हम इसके पीछे की पूरी हकीकत आपको बताएंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शर्त ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और बेबस कर दिया। ट्रंप का मुस्लिम देशों से साफ कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड मानो और इसराइल को देश के रूप में स्वीकार करो। अब सवाल यह है कि कट्टरता को पालने वाला पाकिस्तान अपनी आवाम और कौम का साथ देगा या ट्रंप के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन आज शुरुआत सिर्फ विश्लेषण से नहीं करेंगे, आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि घुसपैठियों का मुद्दा क्यों आपसे, आपके परिवार से और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तस्वीर दिखाते हैं आपको एक। ये तस्वीर राशिद अली सिद्दीकी नाम के व्यक्ति की है जिसे बेंगलुरु पुलिस ने अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी का कारण यह था कि ये एक पाकिस्तानी नागरिक था जो छिपकर पहले बांग्लादेश पहुंचा और फिर बांग्लादेश में इसने आयशा हनीफ नाम की एक महिला से शादी की। इसके बाद 2014 में ये दोनों अपने परिवार के साथ ममता बनर्जी के राज में घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंच गए। 2014 से 2018 के बीच ये 4 सालों तक बिना किसी परेशानी के देश की राजधानी दिल्ली में रहे। दिल्ली में इन लोगों ने न केवल नौकरी की बल्कि यहां इन्होंने फर्जी दस्तावेजों की मदद से असली आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया और ये सारे दस्तावेज भारत में आने से के सिर्फ 1 साल में बन गए थे और ये लोग यहां हिंदू बनकर रह रहे थे। इनमें पाकिस्तानी नागरिक राशिद अली सिद्दीकी शंकर शर्मा बन गया था, उसकी बांग्लादेशी पत्नी आयशा हनीफ आशा शर्मा बन गई थी, उसके पिता मोहम्मद हनीफ राम बाबू शर्मा बन गए थे, माँ रुबीना रानी शर्मा बन गई थी और उसके दोनों बच्चों का भी भारत का आधार कार्ड बन गया था। ये आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के एक पते पर बनवाया गया था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 के बाद ये पूरा परिवार दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया, वहां केटरिंग का एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस इतना चला कि ये पूरा परिवार एक विला में रहने लगा और आपके संसाधनों को चोरी छिपे दीमक की तरह चाटने लगा। हैरानी की बात यह है कि 10 साल गुजर गए और इनके बारे में कभी किसी को कोई भनक नहीं लगी। और ये तो केवल एक कहानी है, ऐसे न जाने कितने परिवार, कितने लोग हैं जो बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करके भारत में आए और आपके संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए। और यहां बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इस घुसपैठ की समस्या पर ज्यादा गौर भी नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि यह मामला राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जाता है और कुछ सोचते हैं कि 145 करोड़ की आबादी में कुछ घुसपैठियों के होने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे फर्क पड़ता है और यह फर्क इतना गंभीर और चिंताजनक है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिला न मिले, अस्पताल में इलाज के लिए बेड न मिले, कहीं सफर करने के लिए बस और ट्रेन में सीट न मिले, नौकरी न मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले और आपके हक पर ऐसे लोग डाका डालकर बैठ जाएं जो घुसपैठ करके दूसरे देशों से आए, जो घुसपैठिए हैं, जिनका इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी ये फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवाकर आपके हक को लूटने लगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे? हमने आपको पहले भी बताया था कि 145 करोड़ की आबादी वाले भारत में संसाधन सीमित नहीं है, और विश्वास न हो तो ये आंकड़े देखिए। आज भारत में 2,00,000 लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1,00,000 लोगों पर 900 सीटों की केवल एक यात्री ट्रेन है, लगभग 1 करोड़ लोगों पर केवल एक एयरपोर्ट है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की केवल एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, 18,00,000 लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है, और मरने के बाद भी हमारे देश में शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भीड़ लगी है, क्योंकि 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। और इसीलिए सोचिए, जब संसाधन इतने सीमित हो तो क्या हम एक भी घुसपैठियों को अपने देश में बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या, दुनिया का कोई भी देश अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए लोगों को अपने यहां के संसाधनों पर कब्जा नहीं करने दे सकता? लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक हमारे देश में घुसपैठियों का मेहमानों की तरह स्वागत हुआ है। यह न सिर्फ हमारे देश में चोरों की तरह दाखिल हुए, बल्कि इन लोगों ने यहां आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवा लिए, और यह बातें केवल कागजी और किताबी नहीं है। जिस महिला की तस्वीर आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 6 साल पहले बांग्लादेश से नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई, और इस घुसपैठ के लिए उसने केवल 3,000 रुपए खर्च किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में इसने केवल 2,000 रुपए खर्च करके अपना आधार कार्ड बनवा लिया, और इस आधार कार्ड के सहारे कोलकाता के कई घरों में काम किया। और हैरानी की बात यह है कि इसी आधार कार्ड पर इस महिला का कोलकाता में पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। अब आप मुर्शिदाबाद पर आइए, जहां कुछ महीने पहले 7 लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आए और यहां से केरलम में नौकरी करने के लिए चले गए, और वहां इन्हें आसानी से नौकरी मिल गई। अब यह हुआ भी तब जब हाल ही में सरकार की रिपोर्ट यह बता रही थी कि केरलम में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हो गई है, यानी केरलम में वही हो रहा था जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। वहां बांग्लादेश से आए ये घुसपैठिए भारत के लोगों की नौकरियों पर कब्जा करके बैठ गए थे, लेकिन हाल ही में जब ये बकरीद मनाने के लिए मुर्शिदाबाद वापस लौटे तो शुभेंदु अधिकारी के सख्त निर्देशों पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर 24 परगना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां सैकड़ों परिवार बांग्लादेश जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे, और ममता बनर्जी की सरकार में इन्होंने अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिया था। लेकिन अब जब नई सरकार घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर्स में डालने के लिए कह रही है, तब ये लोग बांग्लादेश वापस लौटना चाहते हैं। हम मानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी की दुश्मनी राजनीतिक है, लेकिन क्या यहां यह नहीं सोचा जाएगा कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब वहां इन घुसपैठियों में यह डर और दहशत क्यों नहीं था? क्यों उस वक्त इन घुसपैठियों के लिए अलग अलग सिंडिकेट काम कर रहे थे, और कैसे ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से पूरे भारत में फैले? यहां यह भी देखिए कि घुसपैठिए कैसे आपके संसाधनों को आपसे चुरा लेते हैं, और इसी देश में उनके लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। 2016 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि फर्जी आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से 3.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शन हासिल किए हैं, जबकि 1.6 करोड़ लोगों का राशन कार्ड फर्जी निकला है। केरल की पूर्व सरकार ने बताया था कि उसने 2014 से 2021 के बीच 1,63,000 फर्जी आधार कार्ड को डेटाबेस से हटाया है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि उसने सही आधार कार्ड की जांच करके सरकार के 8,000 करोड़ रुपए बचाए। इनमें बहुत सारा पैसा ऐसा था जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पहचान पत्र वाले लोगों को जा रहा था। सोचिए, हमारे देश में एक तरफ यह कहा जाता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ इसी देश में सबसे ज्यादा फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज बनवाए जाते हैं। और यह घोटालेबाजी भी इस स्तर पर होती है कि पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, ये सारे दस्तावेज केवल पहचान बताने के लिए। हालांकि अगर आप सरकार के नियम कानून को देखेंगे तो उनमें कहीं भी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज अनिवार्य नहीं किया है और इसी का फायदा घुसपैठियों द्वारा उठाया जाता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या का कोई भी सटीक और आधिकारिक आंकड़ा नहीं। 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि हकीकत में घुसपैठिए और ज्यादा हो सकते हैं। दिसंबर 2017 में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्हें म्यांमार की सरकार अपना नागरिक नहीं मानती और ये कहती है कि ये सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से घुसपैठ करके म्यांमार में आए थे। अब पिछले कुछ सालों में जब इसी विवाद को लेकर म्यांमार में इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई तो ये पहले बांग्लादेश आ गए और जब बांग्लादेश में इन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिली तो ये पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके भारत में आ गए। और इनकी संख्या 40,000 से ज्यादा तो खुद सरकार मानती है, लेकिन हकीकत में इनकी संख्या भी लाखों में बताई जाती है। सोचने वाली बात यह है कि घुसपैठियों का मुद्दा हमारे देश में इतना बड़ा और गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोर्ट में केस लड़े जाते हैं, घुसपैठियों के मुद्दे को भी मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है और ये हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ एक प्रपंच है। लेकिन हम पूछते हैं कि जो घुसपैठिए देश के संसाधनों को खोखला कर सकते हैं, क्या उनके बचाव में ऐसी किसी भी तरह की राजनीति होनी चाहिए? आप बीजेपी के विरोध कीजिए, लेकिन इस विरोध के लिए घुसपैठियों के मुद्दे को ही बेबुनियाद बता दिया जाएगा। हकीकत में तो इस मुद्दे के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है और इसके कारण जो स्थिति बनती है उसे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ पाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त तस्वीरें और तकदीरें दोनों बड़ी तेजी से बदल रही हैं। नॉर्थ 24 परगना के जंगलों से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों और साउथ 24 परगना के मुहानों तक सीमा पर एक अजीब सी छटपटाहट और भारी हलचल है। बरसों से अवैध रूप से रह रहे लोगों की भारी भीड़ अचानक बॉर्डर पर उमड़ पड़ी है। जो कल तक छिपने के ठिकाने ढूंढ रहे थे वो आज किसी भी तरह सरहद पार भागने की फिराक में है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर सीमावर्ती गांवों से लेकर शहरों के रिहायशी इलाकों तक सुरक्षा बलों की तगड़ी धरपकड़ ने खलबली मचा दी है। जो लोग सालों से इस मुल्क में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे, जो झूठ की बुनियाद पर स्थानीय लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, अब उनके बहानों के मुखौटों की परतें उतरने लगी हैं। कोलकाता से सटे कस्बों और पश्चिम बंगाल के रिहायशी इलाकों में सालों से एक ऐसा शातिर सिंडिकेट फल फूल रहा था जहां अपनी असली पहचान को रफा दफा करना चंद मिनटों का खेल था। नॉर्थ 24 परगना का बसीरहाट सब डिवीजन और यहां का ये हाकिमपुर चेक पोस्ट इस वक्त यहां के हालात हैरान भी करते हैं और परेशान भी। सीमा से सटे इन इलाकों में अचानक इंसानी कदमों की आहट असाधारण रूप से बढ़ गई है। कटीले तारों के साए में पुरुषों और महिलाओं का हुजूम जमा है। ये वो लोग हैं जो अब तक बंगाल के अलग अलग कोनों में रच बस चुके थे, लेकिन अब कानून का फंदा कसता देख वापस भागने की कश्मकश में यहाँ सरेंडर जैसे हालात में खड़े हैं। सीमा पर मची इस खलबली ने स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। बीते कल ही सीमा पर डटी इस भीड़ के एक बड़े हिस्से को घेर कर जांच के लिए ले जाया गया, तो वहीं आज तड़के से ही दर्जनों लोग कड़ाके की धूप और अनिश्चितता के बीच वापस जाने के इंतजार में सीमा पर पलके बिछाए बैठे हैं।
2: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही चल जा रहे हैं। मेला चल रहा है मतलब
3: कैसा? कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं। बांग्लादेश से आए थे।
2: कब आए थे?
3: हो गया 2-3 साल हो गया।
2: कैसे आए थे?
3: वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था यहाँ, हम लोग हावड़ा जिला।
2: हावड़ा
3: जी,
2: क्या काम करते थे?
3: हम बाइक मैकेनिक है।
1: सरहद पर अगर भगदड़ है तो देश के अंदरूनी इलाकों में घुसपैठियों में डर का साया है। संदिग्धों को दबोचने का सिलसिला जारी है। साउथ 24 परगना के बरुईपुर और कैनिंग वेस्ट इलाकों से जब संदिग्धों को उठाया गया तो पूछताछ में चौंकाने वाले राज खुले। खुलासा हुआ कि ये लोग बिना फेंसिंग वाली नदी की सीमाओं का फायदा उठाकर एजेंट्स की उंगली थामकर जल मार्ग से भारत में दाखिल हुए थे। फिक्र की बात ये है कि घुसपैठ के फौरन बाद ये लोग स्थानीय सिंडिकेट के जरिए नकली भारतीय दस्तावेज तैयार करवाते और फिर देश के बड़े महानगरों की भीड़ में मजदूर या घरेलू सहायक बनकर ऐसे खो जाते थे कि इन्हें ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा हो जाता। ऐसा ही एक मुकम्मल भंडाफोड़ मुर्शिदाबाद के जलंगी में हुआ, जहां रिहायशी बस्तियों से कई संदिग्ध दबोचे गए। ये वो लोग हैं जो देश के दूसरे राज्यों से होते हुए अब वापस भागने की फिराक में यहां इकट्ठा हुए थे।
4: এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র নেই, তাহলে আমরা থাকবো কি করে? ওই রাস্তায় মালটাল কুড়িয়ে খেতাম। যখন ঢুকেছিলাম মানে দালাল দিয়ে ঢুকেছিলাম আর কি, তারা আমাদের কাছে 800-900 টাকা করে নিয়েছিল, নিয়ে পার করে দিয়েছিল। গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, শুধু এটাই না, গভর্নমেন্ট যে গভর্নমেন্টে আসুক তার প্রত্যেকের কথা বাংলাদেশ থাকবে না, তাহলে আমরা কেন আপনাদের আর বিরক্ত করব? আমাদের উচিত আমাদের জায়গায় আমাদের পৌঁছানো, আপনাদের বিরক্ত না করে। আমরা এখানে এসেছি 2 বছর।
1: दरअसल इस पूरे मर्ज की असली जड़ है नदी और मैदानों की खुली सीमा, लेकिन अब इस कमजोरी को हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी हो चुकी है। जिन इलाकों में अब तक कटीले तार नहीं थे, वहां युद्ध स्तर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार से लेकर मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज तक मौसम की बेरुखी और मुश्किल हालात के बावजूद कटीले तारों को गाड़ने का काम जारी है। सीमावर्ती गांवों में सीमेंट, लोहे के पिलर और कंस्ट्रक्शन का सामान पहुंच रहा है। साफ है, सालों से चल रहा झूठ का ये तिलिस्म अब टूट रहा है। महज कुछ हजार रुपयों के दम पर देश की नागरिकता का स्वांग रचने वाले और पहचान की आड़ में छिपे बैठे लोग अब कानून के शिकंजे में हैं। खुली सरहदों पर कटीले तारों की बाढ़ और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बलों की नजर इस बात का सीधा ऐलान है कि छलावे और घुसपैठ की ये जिंदगी अब और ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आज तक ब्यूरो।
0: विपक्ष घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी का मुद्दा मानता है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो घुसपैठ के खिलाफ काफी गंभीर है और घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो एक साल के अंदर ये पता लगाएगी कि घुसपैठियों के कारण देश में कहां कहां जनसंख्या की संरचना में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा ये समिति इस बदलाव से निपटने के सुझाव भी देगी और ये भी बताएगी कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का एक परमानेंट ऑपरेशनल सिस्टम कैसे हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आपके राज्य, शहर और इलाकों में कहां कहां बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपे हैं और इन्हें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और ये मिशन उस योजना के तहत चलाया जाएगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब वो घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करेंगे और इसके तहत सीमावर्ती इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और भारत के अलग अलग हिस्सों और राज्यों में घुसपैठियों की पहले पहचान की जाएगी, बाद में उन्हें या तो उनके देश भेज दिया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
5: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: घुसपैठियों से ही एक और मुद्दा जुड़ा है और वो है SIR का, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इसमें तीन बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करता है तो ये असंवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया संचालित करने का पूर्ण अधिकार है। चुनाव आयोग मतदाता सूची में वोटर्स का नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला केवल चुनावी उद्देश्य तक सीमित रहेगा। यानी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि घुसपैठिए भी भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो चुनाव आयोग ऐसे लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कह सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इसीलिए हटाए गए क्योंकि उनकी नागरिकता संदिग्ध थी, ऐसे सभी लोगों के नाम 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। अब यह तो रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन यहां उन नेताओं की बात करना भी जरूरी है जिन्होंने SIR को फ्रॉड बताया था। TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी ने SIR को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पिछड़े

को ऐसा करने से नहीं रोका। आज जब आप मुनम्बम की पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में एक नहीं बल्कि ऐसे कई मुनम्बम हैं, जहां पीढ़ियों से रह रहे लोगों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया हुआ है और ये परिवार वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। मुनम्बम का ये इलाका एर्नाकुलम जिले में वाइपन द्वीप के उत्तरी हिस्से में है, जहां दो गांवों में कुल 604 परिवार रहते हैं। इनमें करीब 400 परिवार ईसाई धर्म के हैं और बाकी परिवार हिंदू धर्म के। अब ये सभी मछुआरों के परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इस जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा किया है। 1900 से पहले भी इनके पूर्वज इसी जमीन पर रहते थे और तब इस जमीन का मालिकाना हक त्रावणकोर राजघराने के पास हुआ करता था। साल 1902 में पहली बार इस राजघराने ने इस जमीन को एक मुस्लिम कारोबारी को लीज पर दिया। उसका नाम था अब्दुल सत्तार मूसा सैद। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जमीन लीज पर दी गई थी, जिसे 1948 में अब्दुल सत्तार की मौत के बाद उनके दामाद मोहम्मद सिद्दीकी सैद ने अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया। यही नहीं, बाद में उन्होंने ये जमीन कोझिकोड के फारूक कॉलेज को सौंप दी। इसके लिए दावा किया जाता है कि एक वक्फ डीड कराई गई। वक्फ डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसके जरिए किसी संपत्ति को इस्लामी कानून के तहत हमेशा के लिए धार्मिक या सामाजिक कल्याण के कामों के लिए समर्पित करा दिया जाता है, और दावा है कि इस मामले में भी यही हुआ। तब हुआ जब इस जमीन पर रहने वाले लोगों से कोई बात ही नहीं की गई। अब जब कॉलेज प्रबंधन और इस जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच विवाद बढ़ने लगा तो दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर समझौता किया। इस समझौते के तहत कोझिकोड के फारूक कॉलेज ने यह जमीन उस वक्त के बाजार भाव पर इन परिवारों को बेच दी, यानी इन परिवारों ने यह जमीन अपनी जमा पूंजी देकर कॉलेज प्रबंधन से खरीदी। और इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने अपने दस्तावेजों में बताया था कि यह जमीन उसे गिफ्ट डीड में मिली। अब यहां से यह कहानी पूरी तरह साफ थी। हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि वक्फ बोर्ड जिस दस्तावेज को वक्फ डीड बताता है वो गिफ्ट डीड ही लगती है, जिससे वक्फ बोर्ड का दावा इस जमीन पर मजबूत नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसे मामले इतनी जल्दी कहां सुलझते हैं, उनके लिए तो वोट बैंक का एक अच्छा खासा मंच सजाकर तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है, और यहां भी यही हुआ है। 2008 में V.S. अच्युतानंद के नेतृत्व वाली लेफ्ट सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया और इस आयोग ने यह जमीन वक्फ बोर्ड की बता दी। इसके बाद 69 साल बाद वक्फ बोर्ड ने अचानक इस जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया और केरलम के राजस्व विभाग से यह कहा कि वो इस जमीन पर रहने वाले लोगों से टैक्स न ले। अब इस फैसले से मुनम्बम के लोग बेहाल हो गए। वो न तो अपनी ही जमीन पर बैंक से लोन ले सकते थे और न ही ये जमीन बेच सकते थे। उनसे उनका मालिकाना हक रातों रात छीन लिया गया। और यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जताई। कड़े शब्दों में यह पूछा कि उसने 69 साल बाद अचानक इस जमीन को वक्फ संपत्ति कैसे घोषित किया। हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्ति के वक्फ डीड वाले दावे पर भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन वक्फ बोर्ड पर इसका कभी कोई असर नहीं दिखा। और आज जब केरलम में सरकार बदली तो सरकार बदलते ही वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को फिर से वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया और यह कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है। और यह भी तब हुआ जब यह मामला अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट का इस पर फैसला आना अभी बाकी है। पिछले हफ्ते जब मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों और मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया था, तब इस पर कई नेताओं ने आक्रोश दिखाया था। ये कहा था कि सरकार इस जमीन को इसीलिए खाली करा रही है क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करती है। इससे पहले जब दिल्ली में भी तुर्कमान गेट के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया था, तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी कहा था। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जब रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जे को हटा रहा था, तब भी उसे मामले में स्थानीय मुसलमानों का समर्थन किया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने खुद इस अवैध कब्जे के खिलाफ रेलवे की कार्रवाई को रोक दिया था। और सोचिए, ये सारे मामले

वो थे जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था। आज हमारा सवाल ये है कि जब सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को बचाने के लिए इतनी आवाजें उठ सकती हैं, तो फिर मुनम्बम के जिस मामले में जमीन ही इन परिवारों ने खरीदी है, वहां कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का विरोध हो रहा है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, लेकिन जिस जमीन को सैकड़ों परिवारों ने खुद खरीदा और फिर भी इस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही? यहां इस सवाल को जवाब भी जरूर ढूंढना चाहिए कि जब क्या जब कोई जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है तो इससे देश का मुसलमान खुश होता है। ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि वक्फ की जमीन इसीलिए बनाई गई थी ताकि मुसलमानों का इससे भला हो, लेकिन हमारे देश में कितने मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का लाभ मिला? माना जाता है कि वक्फ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से ये कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहते हैं, और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे। ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था, और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की थी, और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी यही था। वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद हुई थी। लेकिन हम अपने देश के मुसलमानों से पूछते हैं कि आप में से कितने मुसलमानों की गरीबी वक्फ संपत्ति से दूर हुई? भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार आज पूरे देश में वक्फ बोर्ड 38 लाख एकड़ जमीन पर दावा करता है। यह जमीन 15,000 वर्ग किलोमीटर होती है, जिसमें दिल्ली जैसे 10 शहर समा सकते हैं। और यही नहीं, हमारी सेनाओं के पास इस देश में 18 लाख एकड़ जमीन है, जिसका मतलब यह होता है कि वक्फ के पास हमारी सेनाओं से भी 20 लाख एकड़ जमीन ज्यादा है। लेकिन सोचिए, इस जमीन का हमारे देश के मुसलमानों को क्या क्या लाभ मिला, और फिर भी क्यों यह माना जाता है कि वक्फ की संपत्ति से भारत के मुसलमान खुश होते हैं? आगे बढ़ते हैं और आपको पिछले साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ की तस्वीरें याद दिलाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। उस वक्त विशाल भीड़ की इन तस्वीरों को देखकर किसी ने यह कहा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, किसी ने यह कहा था कि कुंभ तो फालतू है, यह आस्था नहीं बल्कि एक इवेंट है, ऐसा कहा था। अब हमारे ही देश में महाकुंभ को लेकर इतना कुछ हुआ कि कई बार मन में यह सवाल आता है कि क्या लोगों की आस्था को राजनीति से परे और दूर नहीं रखा जा सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक धार्मिक आयोजन पर राजनीतिक छींटाकशी न हो? तो इसका जवाब आज मक्का से आया है। सऊदी अरब के मक्का में दुनिया भर से आए 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम श्रद्धालुओं ने हज यात्रा शुरू कर दी, और विशाल भीड़ की इन तस्वीरों को देखकर कोई यह नहीं कह रहा कि इसकी जरूरत क्या है और क्या इससे गरीबी दूर होगी। काबा में हज की यात्रा के लिए जुटी लाखों लोगों की भीड़ बता रही है कि धार्मिक आयोजनों और लोगों की आस्था को भी राजनीति से परे और दूर रखा जा सकता है, और हम चाहेंगे कि मक्का में चल रही हज यात्रा से हमारे देश के नेता सबक लें और अगली बार अगर कुंभ जैसी किसी धार्मिक आयोजन का संचालन हो तो उसे राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखा जाए।

0: अब आपको ये बताते हैं कि किसी भी खबर में और उसके नैरेटिव में कितना बड़ा अंतर होता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस हफ्ते ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट ने भारत के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। ताइवान स्टॉक मार्केट के टोटल वैल्यूएशन में भारत से आगे निकलकर पांचवें पायदान पर आ गया। अब ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज 4.95 trillion dollar का है, जबकि छठे पायदान पर भारत का स्टॉक एक्सचेंज 4.92 trillion dollar का है। आम भाषा में कहें तो ताइवान के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका कुल बाजार मूल्य भारत की लिस्टेड कंपनियों से ज्यादा है। और ये बात इसीलिए भी अहम है क्योंकि ताइवान क्षेत्रफल और आबादी के मामले में बहुत छोटा सा देश है। भारत आबादी के मामले में ताइवान से 64 गुना बड़ा है। भारत में 145 करोड़ लगभग रहते हैं और ताइवान में केवल 2.30 crore लोग रहते हैं। इसी तरह भारत एक छोटा सा देश है। भारत आबादी के मामले में ताइवान से 64 गुना बड़ा है। भारत में 145 करोड़ लगभग रहते हैं और ताइवान में केवल 2.30 crore लोग रहते हैं। इसी तरह भारत क्षेत्रफल के मामले में ताइवान से एक छोटा सा देश है। भारत आबादी के मामले में ताइवान से 64 गुना बड़ा है। भारत में 145 करोड़ लगभग रहते हैं और ताइवान में केवल 2.30 crore लोग रहते हैं। इसी तरह भारत क्षेत्रफल के मामले में ताइवान से 91 गुना बड़ा है और ताइवान का आकार हमारे केरलम राज्य से भी छोटा है। अब यह खबर बड़ी तो है और इस मामले में भारत से चूक कहां हुई इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका आधा अधूरा विश्लेषण कर रहे हैं और अपने नैरेटिव से इस खबर का असली मतलब बदल दे रहे हैं। यानी ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार ने भारत की इतनी बुरी हालत कर दी कि अब ताइवान भी आगे निकल रहा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे आंकड़े और तथ्य लेकर आए हैं जो शायद इन लोगों को असहज भी करेंगे और थोड़ा परेशान भी करेंगे। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी तब भारत और ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य लगभग बराबर था। 2014 में जब यूपीए सरकार का शासन खत्म हुआ तब भी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत का स्टॉक एक्सचेंज 1.5 trillion dollar का था और ताइवान का 1.1 trillion dollar का था। इसके बाद मोदी सरकार में यह अंतर तेजी से बढ़ा और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य ने ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक ग्राफ हम आपको दिखाते हैं जहां 2020 के कोविड काल के बाद हम ताइवान से बहुत आगे निकल गए थे, इतना आगे कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार में लिस्टेड कंपनियों का मूल्य कई गुना तेजी से बढ़ा और ताइवान काफी पीछे खिसक गया। लेकिन फिर आया साल 2025 जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और इस हफ्ते इसने भारत को पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ने से सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ी और सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ने से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स नई ऊंचाइयां छूने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में अकेले इस कंपनी की 42% हिस्सेदारी है। यानी अगर इस कंपनी के शेयर्स के भाव चढ़ेंगे तो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा और यहां यही हुआ। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट में ताइवान की मोनोपोली है। दुनिया की 72% सेमीकंडक्टर चिप्स यही कंपनी निर्यात करती है जिसकी ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में लगभग आधी हिस्सेदारी है। अब आप खुद सोचिए अगर एआई के कारण सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ेगी और इससे लगभग आधी हिस्सेदारी रखने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स चढ़ेंगे तो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज आगे क्यों नहीं निकलेगा। पिछले 5 साल में अकेले इस कंपनी के शेयर्स में 290% का उछाल आया, पिछले 1 साल में 138% का उछाल आया और केवल इस साल 2026 में अब तक इस कंपनी के शेयर्स में 45% का उछाल आ चुका है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो फायदा ताइवान ने लिया वो फायदा भारत ने क्यों नहीं लिया, उन्हें भी कुछ जानकारी होनी चाहिए इस पूरे मामले में। ताइवान ने कोई रातों रात सेमीकंडक्टर चिप्स में अपनी मोनोपोली नहीं बनाई। ताइवान की जिस कंपनी के कारण उसका स्टॉक एक्सचेंज भारत से आगे निकला उसकी शुरुआत साल 1987 में हुई थी। ये वो दौर था जब हमारा देश और उस वक्त की सरकारें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। यूपीए सरकार में 2007 में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगाने का सुझाव आया, जिस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसके बाद 2011 में यूपीए की सरकार ने इसके लिए कमिटी बनाई, जिसे इस प्लांट के लिए दायर हुए आवेदनों में से कुछ को चुनना था। इसके दो साल बाद दो आवेदन चुने गए, लेकिन जमीन पर कभी कोई सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट नहीं लगा। यह भी तब हुआ जब 2013 में $7 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स आयात कर रहे थे हम, और हमें तो ताइवान की तरह यहां प्लांट और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। अब आज जब इन्हीं चिप्स के दम पर 1987 में कंपनी बनाने वाला ताइवान भारत के स्टॉक एक्सचेंज से आगे निकल गया, तो सब कह रहे हैं कि यह कैसे हो गया। इस देश में पहला सेमीकंडक्टर चिप्स का मिशन मोदी सरकार में दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। आज हमारे देश में विदेशी कंपनियों के निवेश और सरकार के सहयोग से 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स बन रहे हैं। इसीलिए भारत के स्टॉक एक्सचेंज का ताइवान से पिछड़ना गंभीर है, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हम पुरानी सरकारों में बाजार बने रह गए, और जहां ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 1987 में बना ली थी, वही हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला प्लांट लगने में ही कई सालों का इंतजार करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी एक शर्त से पाकिस्तान को धर्म संकट में डाल दिया है। अब हम इस बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा धर्म संकट है जिसको हटाने के लिए पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति, धार्मिक कट्टरता और पासपोर्ट सब बदलना होगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके भस्मासुर यानी उसके आतंकी गृह युद्ध शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में शांति का पैरोकार बन रहे पाकिस्तान ने खुद को ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ सूट बूट पहनकर अमेरिका और ईरान के नेताओं के साथ बातचीत के टेबल पर बैठते थे। पाकिस्तानियों को लगता था उनका देश कोई ऐसा महान देश है जो दुनिया में शांति लाने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह के नाम पर पाकिस्तान जैसे कुछ इस्लामिक देशों के आगे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की शर्त रख दी। इस शर्त के जरिए सभी मुस्लिम देशों को इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देनी होगी, दुश्मनी भुलानी होगी। इस शर्त से सबसे ज्यादा खलबली मची है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती, यह बात सोचना खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए भी नामुमकिन है। इस्लामिक कट्टरता से घिरा पाकिस्तान इसराइल से कितनी नफरत करता है, यह उसके पासपोर्ट तक पर झलकता है। पाकिस्तान इसराइल को देश नहीं मानता है। पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी नफरत की निशानी को छापा हुआ है। पासपोर्ट पर लिखा है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के हर देश के लिए वैध है। इसका मतलब यह भी है कि इसराइल में पाकिस्तान का कोई दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास जैसी व्यवस्था भी नहीं है। बात सिर्फ पासपोर्ट की भी नहीं, पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी वो खुद को एक इस्लामिक देश के तौर पर घोषित करता है, और इस्लामिक देशों की यहूदी देश इसराइल से पुरानी दुश्मनी है। पाकिस्तान और इसराइल में दुश्मनी दो देशों में के खराब संबंधों की वजह से नहीं है, बल्कि यह धार्मिक भिन्नता की वजह से। इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान खुद की छवि इस्लामिक हित चाहने वाले देश के तौर पर बनाता है, और इसी छवि को बनाए रखने के लिए वो फिलिस्तीन के हितों की बात करके इसराइल का विरोध करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी संगठन और कट्टरपंथी भी धार्मिक कारणों से इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, और पाकिस्तान सरकार उनसे भिड़ना नहीं चाहती। उनके दबाव में ही इसराइल से दुश्मनी पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की शर्त मानना पाकिस्तान सरकार के लिए धधकते ज्वालामुखी पर बैठने जैसा होगा। इसमें तबाह होने की संभावना 100% है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड की शर्त रखकर पाकिस्तान पर बड़ा दबाव बना दिया है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने या न होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के मंत्री इसमें शामिल न होने की बात अलग अलग मीडिया हाउसेस को बताते रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2025 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान के रुख के बारे में पूछा गया। उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात कही थी और इसे अपनी निजी राय बताया था। दरअसल उन्हें भी नहीं पता था कि अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, वो क्या फैसला लेंगे।
1: साहब जो है उनकी दिल के बड़ी करीब चीज है और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने।
2: मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता।
1: हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से?
2: वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है, हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।
0: पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड वो जिन्न है जिसके निकलते ही तूफान खड़ा हो जाता है। पिछले साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से भी यही सवाल पूछा गया था। इशाक डार ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल न होने की बात कही थी और पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव न करने का दावा किया था।
3: कैटेगरी रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
4: नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ इज़राइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन एट कंट्रीज ताकि हम वहां खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें।
0: मजेदार बात यह है कि अब्राहम अकॉर्ड को लेकर किसी पाकिस्तानी की ओर से आधिकारिक स्टेटमेंट भी इस तरह से दिए जाते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान कहना क्या चाहता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की खबर उड़ी थी। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को एक देश और जेरूसलम को उसकी राजधानी बनते देखना चाहता है। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से हां या ना में कभी नहीं बताया कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अब्राहम अकॉर्ड में वो शामिल होगा या नहीं होगा। इसीलिए जब भी अमेरिका मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या इसराइल को मान्यता देकर दुश्मनी भुलाने की अपील करता है तो सबसे पहले पाकिस्तान में बवाल मचता है। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ।

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: मैं करता हूँ ना,
5: मैं करूँगा।
6: ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
6: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
6: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
10: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
11: एक हिंट तो देते।
12: विक्रम!
11: हिंट
10: बड़े आराम से।
13: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
14: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
13: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
16: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
15: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
17: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: The software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
3: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
2: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
4: In association with
5: Samakool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Vimal, bolo zuba kesri.

जिस विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष आग बबूला हो रहा था, उसकी वैधता पर सवाल उठा रहा था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रहा था, उस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, SIR वैध और संवैधानिक है। SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है। SIR का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, नागरिकता खत्म होना नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने SIR की प्रक्रिया पर किस हद तक जाकर मुहर लगाई है, ये आप आज तक संवाददाता संजय शर्मा से समझिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। ये फैसला चुनाव आयोग के हौसले बुलंद करने वाले हैं। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया, जिसे विजय संदेश भी माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ और स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद SIR पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे या सियासत थम जाएगी? ऐसा होता दिख नहीं रहा। राजनीति अपने लिए गुंजाइश तलाशती रहती है, लेकिन SIR पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार।

राहुल गांधी के आरोप को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला, कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी। ईरान अमेरिका में समझौते की जमीन तैयार, ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से अपनी सेना, तेहरान खत्म करेगा नाकेबंदी। ईरान के सरकारी मीडिया ने एमओयू के ड्राफ्ट का दिया हवाला।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज की हमारी सबसे बड़ी दस्तक कल की बकरीद से जुड़ी हुई है। बकरीद यानी कि इंसानियत, भाईचारे और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का पर्व, जहां कुर्बानी से मतलब अपने स्वार्थ को छोड़ना है, अच्छाई को अपनाना है। उसी बकरीद पर वर्षों से गौवंश की कुर्बानी बंगाल में चलती रही, वो गौवंश जिसे हमारे देश में गौ माता कहकर पूजा जाता रहा है। लेकिन अब की बार बंगाल में गौरक्षा का वो पुराना नियम फिर से स्थापित किया गया, जहां कुर्बानी होगी लेकिन निर्ममता से गौवंश की नहीं। वो बंगाल जहां कल बकरीद की नमाज का भी मैदान नया होगा, इस तरह से सड़क पर बकरीद की नमाज कल बंगाल में नहीं होगी। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर हमारा देश एक बदला हुआ बंगाल देखेगा, जिस बंगाल में कई सारी चीजें पहली बार होंगी और सड़क पर बकरीद की नमाज भी नहीं होगी। उसके लिए अलग से दिया गया है मुसलमानों को एक मैदान।

0: माने उनका अब सम्मान भी नहीं करेंगे। कोर्ट आज भी हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा, सब मसाजिदें जा रही है लेकिन हम फिर भी कोर्ट के ऊपर में देख रहे हैं कि अब इससे इंसाफ टपकेगा, अब टपकेगा, अब टपकेगा इंसाफ, लेकिन टपक वकर नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा।
1: देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम नागरिक, क्या बहुतों को ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा, जो इस वक्त अलग अलग राज्यों में सरकारों और अदालतों के फैसलों को लेकर शंका में डूबे हैं। कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: मैं सबको फोन चाहूंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया, भैया भैया
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार सच रहे,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान सच रहे, बंगाल सच रहे, आप जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा, यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया, रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
5: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, तो इसमें से कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
3: बंगाल में हिंदुत्व का विस्तार जब इस चुनाव में हुआ तो याद करिए नारा क्या लगा, गौ माता कटने नहीं देंगे, हिंदू को बटने नहीं देंगे। चुनाव जीत गए तो शपथ लेने के 4 दिन के भीतर शुभेंदु ने ऐसा निर्णय लिया जिसका असर तुरंत दिखने लगा। लेकिन क्या बंगाल के मुसलमान नागरिक उनके इस निर्णय से सहमत हैं?
6: क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या?
7: कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी।
8: इस सरकार में वो नहीं होगा क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं।
9: ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे।
10: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
11: गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए।
9: गाय के मतलब क्या है, ये गाय आखिर कहाँ जाए ये भी पूछिए।
1: ईद उल अज़हा जो मुख्य रूप से पैगंबर इब्राहिम की तरफ से अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। त्याग और समर्पण का वही त्योहार भारत में हर साल राजनीति की दोधारी तलवार की धार पर ला दिया जाता है, जहां अपने फायदे और दूसरे के नुकसान की चाहत के बीच राजनीति में सामाजिक शांति और सौहार्द की कीमत लग जाती है। इस वक्त बकरीद से पहले सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर लगी, जहां ममता राज का एक फैसला पलट दिया गया तो दूसरे की सुस्ती शुभेंदु सरकार ने दूर की। ममता राज में बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ था, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने इसे 1 दिन का कर दिया। ऐसे ही बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को लेकर दशकों पुराने नियम जिस पर ममता राज में धूल पड़ती रही उसे झाड़ पोछ कर अब लागू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि गोवंश की कुर्बानी नहीं हो सकती, दूसरा कहता है कि गाय की कुर्बानी 1400 साल से हो रही है तो होगी, तीसरा पक्ष कहता है ठीक है जो सरकार कहती है मानेंगे, चौथा पक्ष इस बार नियम में छूट चाहता है ताकि पशुपालकों को नुकसान ना हो, पांचवा पक्ष बार बार मुस्लिमों के लिए पाबंदी पर सवाल उठाता है और छठा पक्ष कहता है इतनी ही चिंता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दे देते। इस तरह 6 नजरियों में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर रस्साकशी चलने लगी, पर सबसे जरूरी है आम मुस्लिम नागरिकों का नजरिया समझना।
12: हमारे हुकूमत जो बात बोल रही है कुर्बानी के सिलसिले में, हम लोग हुकूमत का बात को मान के चलेंगे। सारा मुसलमान, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो हुकूमत कर रही है आपको उसका बात मानना होगा। तो हमारी हुकूमत जो हम लोगों को हुक्म देगी, हम लोग इंशाल्लाह हुकूमत का बात को मानते हुए अपने तमाम धर्म का पालन करेंगे हम लोग, ठीक है जी। ऐसा कोई काम नहीं करेगा मुसलमान हिंदुस्तान का जिससे हमारे हुकूमत को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को या हमारे अमन को खतरा पहुंचे।
1: पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम जो बकरीद पर पहले कुर्बानी के तौर पर गोवंश का इस्तेमाल करते आए, वो अब की बंगाल में सख्त हुए नियम कायदे के बीच ये कहते हैं कि सरकार ने गाय की कुर्बानी रोकी है तो नियम माना जाएगा।
13: गाय को हम लोगों ने जो है तर्क कर दिया, वो गौ माता को जो है आप लोग जो है घर में रखें, उनको बढ़िया से जो है पूजे, और हम जो है उसका ऑप्शन जो है हमारे पास खस्सी है, हम खस्सी कुर्बानी कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौम हमारा जो है इस पर मुतमईन है और जो है बिल्कुल इत्मीनान रखे हुए हैं हम जो है, और कोई भी बात जो है अवहेलना नहीं करेंगे। जो बोल दिया है सरकार ने, हम उस पर जो है 100% जो है मान करके चलेंगे।
14: सरकार जहां तक मसला कुर्बानी का, तो वो जो है हम लोग कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ में है और उसका ऑप्शन भी रखा है। इस्लाम में, दुनिया में इस्लाम में हर चीज सहूलियत बहुत तरीके से दिया। आपने कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आप सब सहूलत हमारे लिए करके रखा है। ये नहीं करना तो ऐसे करना है।
1: आपको सुनकर हो सकता है कि लगे मुस्लिम नागरिक तो एकदम फैसले पर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर तक बात करने पर भीतर की नाराजगी जाहिर होने लगती है। शायद मुस्लिम नागरिकों को ये लगता है कि रह रहकर चुनकर उनके खिलाफ पाबंदी लगाई जा रही है।
0: सरकार ने सोचा था मुसलमान रास्ते पर आएंगे गाय के लिए, सरकार ने सोचा था रास्ते पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम लोग रास्ते वास्ते पे नहीं आने वाले। उल्टी पड़ गई सद तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, तदबीरें सब सरकार की उल्टी पड़ चुकी हैं। हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सबसे ज्यादा एहतराम अगर करता है कोर्ट का, आइन का, संविधान का, तो उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत करता है।
15: अगर कुर्बानी की बात आई तो कुर्बानी में हमारे अल्लाह ताला ने ये अवसर रखा है कि बड़े जानवर की कुर्बानी देना है, जायज समझते हैं, तो उसका ऑप्शन खस्सी के तौर पर यहाँ भारत सरकार में ये तैयार है और हम लोग देते भी हैं बड़े पैमाने पर, और ये चीज जारी भी रहेगा, हुकूमत के तरफ से भी आया। लेकिन ये चीज है कि हमारे लिए पाबंदी रहे और हुकूमत कह रहे हैं कि स्पॉट करे, तो ये चीज नहीं होगा। हम कम खाते हैं और स्पॉट ज्यादा होता है।
0: अब कल को बोल देंगे कि आप दाढ़ी काट दीजिए, हम काट देंगे। कल को बोल दे मुसलमान कपड़ा नहीं पहनेगा, हम नंगे घूमेंगे। हम लोग सरकार का बहुत एहतराम करते हैं भाई, हम लोग को एहतराम कर लेने दीजिए। सरकार के बारे में हम लोगों से मत पूछिए।
1: अब ये बयान सुनकर ऐसा कुछ लोगों को लगेगा कि क्या किसी तरह की ज्यादती की जा रही है, क्या गोवंश की कुर्बानी पर नियम सख्त करके गलत किया जा रहा है। तो यहाँ समझ लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध से जुड़ी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 21 मई को कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु की कुर्बानी पूरी तरह बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
8: हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं।
1: अब सवाल है कि जिस कुर्बानी से तौबा करते खुद मुस्लिम नागरिक नजर आते हैं, क्या उस पर केवल राजनीति की वजह से ज्यादा हल्ला मचा है?
12: आज जो माहौल पैदा हो रहा है सियासत के अलावा कुछ नहीं है।
3: भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गौ हत्या पर रोक लगाना, बीजेपी की स्थापना यानी कि 1980 के समय से ही बीजेपी के वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे का एक मुख्य हिस्सा रहा है, जिसे अब की बार बंगाल में लागू करा गया। तो गाय बेचकर ही घर चलाने वाले छूट मांगने लगे, लेकिन शुभेंदु सरकार ने उस गाय को लेकर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू धर्म में जिस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की मान्यताएं हैं, उसे कटने नहीं दिया।
16: এই বাংলার 100 কোটি মানে এই ভারতবর্ষে 100 কোটির বেশি হিন্দু, পশ্চিম বাংলায় সেই সংখ্যা 7 কোটির বেশি, তারা খুব কষ্ট পেতেন মনেতে, কাউকে বলতে পারতেন না। আইনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে হিন্দু সমাজকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এটা করা হতো। আইন আছে, সেই আইনকে আমরা সবার সামনে রেখেছি, 4 ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাকে প্রচার করেছি, আর সবাই যাতে আইন মানেন আমরা আবেদন করেছি, আমি বৈঠক করেছি, এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিএমদেরকে যে পুরোপুরি যাতে আইন মানা হয়। হত্যা করা আমাদের সংবিধান মানা করেনি, কিন্তু কন্ডিশন দিয়েছে।
17: क्या पश्चिम बंगाल में ममता राज में बकरीद पर वही कानून सुस्त कर दिया जाता रहा जिससे गोवंश की कुर्बानी को बकरीद पर होने से पहले भी रोका जा सकता था। 2018 में अवैध स्लॉटर हाउस को रोकने के एक मामले में ममता सरकार ने तब कोर्ट में ये कहकर गायों की कुर्बानी रोकने से दावा है पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास लोगों की कमी है। 2026 में भी जब बकरीद पर शुभेंदु सरकार ममता राज के कानून का ही पालन कराने लगती है तो ममता के विधायक और सांसद उस पर रोक लगाने हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन अदालत भी गाय की कुर्बानी रोक देती है।
18: মহিলারা যারা এদের সাথে যুক্ত, তারা নিজের সোনা বন্ধক রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে লোন নিয়ে, বন্ধন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা এটা করেছে। তাই এই এত কম টাইমের মধ্যে এই নোটিফিকেশনটা এক আমাদের গ্রামীণ যেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটার মধ্যে ঘা লাগছে।
17: पश्चिम बंगाल में जैसे ही इस बार गोवंश की कुर्बानी को लेकर पहले ढीले चलते रहे कानून को सख्त किया गया, दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में ऐसे ही बाजार में आज तक संवाददाता राही हल्दर पहुंचे, जहां कभी बकरीद से पहले हर साल हजारों की तादाद में गोवंश खरीदे बेचे जाते थे, वहां अब उंगलियों पर गिनती लायक गोवंश ही बिकता नजर आया, वो भी केवल वही जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट बन पाया, मतलब जो गोवंश कानूनन बिकने लायक था। इसकी वजह से दावा है गोवंश बेचकर कमाने वाले बंगाल में परेशान हो गए।
19: अभी मुश्किल में पड़े हैं बहुत सारे गायों के जो व्यापारी है वो व्यापारी। हम अभी जहां पर खड़े हैं वो है एक गाय का हाट। यहां पर ही जो दूसरे टाइम था, जो पिछले साल भी बकरीद के पहले यहां का बहुत ही तादारों में गायों का व्यापार होता है था, लेकिन इस साल पूरा इन लोगों का जो व्यापार है ये व्यापार एकदम बंद होने की कगार में खड़ा हुआ है।
20: कस्टमर नहीं आ रहा है, कहाँ से माल बेचेगा, दुकानदार भूसी नहीं दे रहा है, बिचाली नहीं दे रहा है, लाख लाख टका देना है हम लोग का, लोग जोन बाड़ी आ रहा है कैसे देगा, हम लोग बोलता है माल बिका नहीं है कैसे देगा हम लोग, वो लोग जोर कर रहा है बंधन के लोन में लोग आ रहा है, सूद का लोन लोग आ रहा है कैसे देगा हम लोग।
17: ये हाल पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक इलाके में ही नहीं बल्कि हर जगह है। जैसे हावड़ा में बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार के फैसले का सच जानने पहुंचे तो बबलू खान जैसे पशु विक्रेता अपना दुखड़ा बताने लगे।
21: इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे, हम इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, माने आपका सूद पे पैसा लिए हैं, बीवी का जेवर बंधक है और भी लोन वगैरह लिए हैं, हमारा तो लास्ट पोजीशन ये हो जाएगा कि अगर हमारा जानवर नहीं निकलेगा सर तो हमको या तो फांसी लगाना होगा और नहीं तो 20 खा के मरना होगा।
17: सवाल है कि आखिर बकरीद पर कुर्बानी के लिए गाय क्यों पालना, कुर्बानी के लिए गाय के कारोबार के लिए इतना लोन क्यों लिया गया, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरु ही मानते हैं कि गाय की कुर्बानी देना सही नहीं।
22: मानो से ये बात कहते हैं कि ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं, भैंस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को जबह करने के परमिशन दी गई है उनको करना चाहिए, समझ गए। इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
4: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर उधर,
13: करेक्ट करेक्ट।
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
17: कैसा लगा मेरा स्टंट?
18: विक्रम, एक हिंट तो देते।
19: विक्रम!
18: हिंट।
17: बड़े आराम से।
20: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
21: AU!
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
13: गंगा के तट पर बसा शहर समेटे संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान, जहां उद्योग की ताकत भी है और राजनीति की गूंज भी। क्रांति की विरासत से लेकर आधुनिक विकास तक जहां गूंजेगी विकसित यूपी की ऐतिहासिक बैठक। विकसित यूपी बैठक कानपुर, सिर्फ यूपी तक पर।

मुजफ्फरनगर में फ्लैग मार्च, संभल में सुरक्षा बलों का मोर्चा, दिल्ली में भी सुरक्षा चक्रव्यूह। बकरीद से एक दिन पहले यूपी पुलिस की सांसें फूल रही हैं। सवाल सुरक्षा इंतजाम का है और यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर खुद फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहनों की पूरी तैनाती है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर रखी जा रही है। पुलिस दस्ता सड़कों पर मार्च कर रहा है तो ईदगाह का मुआयना कर रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की, उनका सहयोग मांगा। संभल में भी पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। कल बकरीद है और संभल का माहौल संभला रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी और सीओ की अगुवाई में पीएससी और आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दरअसल 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा का जख्म आज भी संभल में ताजा है, लिहाजा संभल पुलिस बकरीद के मौके पर शहर की अमन शांति को लेकर बेहद सतर्क है। संभल में सतर्कता दिख रही है तो लखनऊ के मलिहाबाद में बकरीद से ठीक पहले नया बवाल शुरू हो चुका है। मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर है। हिंदू संगठन के लोग कल वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे मकबरा। योगी सरकार ने बकरीद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक का फरमान जारी किया है। इस फरमान के बाद जहां हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं, वहीं विपक्ष की भौहें भी तन गई हैं। मजहब कोई भी हो, हर त्योहार अमन शांति का संदेश देता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नमाज और कुर्बानी को लेकर जो कुछ विवाद चल रहा है उसकी छाया कल बकरीद पर ना पड़े। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।

0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा देश भगवा छवि हिंदू और हिंदुत्व की सीधी बात करते रहे और तब बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, सड़क पर नमाज पढ़ना छोड़ दो, प्यार से समझ लो, संघर्ष से भी हम समझा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज तो मुस्लिम समुदाय ने पढ़ना बहुत पहले ही योगी राज में छोड़ दिया था और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर जानकार ये कहते हैं कि इसके पीछे हिंदुत्व के सहारे 2027 के शुभ लाभ का ढंग छिपा हुआ है, वो जीत उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं।
1: बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है।
2: 30% मुस्लिम वोट वाले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के धराशायी होने के बाद बीजेपी ने यह तय करने की कोशिश की कि सिर्फ मुस्लिम वोट से ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। अब अगर बीजेपी 19-20% मुस्लिम मतदाता वाले उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की कहानी 2027 में दोहराती तो फिर देश भर में यह संदेश साफ हो जाता है कि कथित तुष्टिकरण की राजनीति में कहीं भी कोई दम नहीं बचा। सवाल है कि क्या इसीलिए रणनीति के तहत यूपी में नमाज बनाम विकास की बहस छेड़ी जाती है?
3: जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अकलियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहां पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती, तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो उसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है।
2: बकरीद के चांद को तलाशते मुस्लिम धर्मगुरु और नागरिक और 28 मई को आने वाली बकरीद पर सड़क पर नमाज की इजाजत मांगते अलीगढ़ की रसलगंज मस्जिद मुफ्ती को लगता है कि सड़क पर नमाज न पढ़ने देने की इजाजत देकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन भेदभाव करता है और तब सवाल आता है कि सड़क पर नमाज के धर्म संकट पर ही क्या 2027 की सियासत सधेगी? सवाल की वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि सड़क चलने के लिए है, तमाशा बनने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में किया जाए, संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो, प्यार से मानेंगे ठीक बात, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, संवाद से मानेंगे तो संवाद, नहीं तो संघर्ष देख लेंगे। क्या इसी के साथ मुख्यमंत्री वो कायदा बताने लगे हैं जिसका रिश्ता 2027 की सियासी फायदे से जुड़ा है?
4: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
2: असल में बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कई मस्जिदों के मौलवी प्रशासन से एक निश्चित वक्त के लिए नमाज सड़क पर करने देने की इजाजत मांगते रहे।
3: हमारी जो ईद की नमाज है वो साल में 2 मरतबा आती है, मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाजें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा। अब ईद उल अजहा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है, जिन जगहों पे भी नमाज होती है मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहाँ पे इजाज़त दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाज़त देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाज़त दीजिए।
2: लेकिन मुस्लिमों की इसी मांग पर मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि संख्या ज्यादा है तो या तो शिफ्ट में नमाज मस्जिद में की जाए या फिर संख्या नियंत्रित की जाए।
4: लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हो, अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
2: ये वो बाउंसर थी जिसको मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की तरफ फेंका मकसद ये कि अगर अखिलेश इस पर खेलते हैं तो उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण वाला खेल खेलने का दांव चला जाए और अगली यॉर्कर मारी जाए। अखिलेश यादव ने न डक किया न पुल किया, संभल कर खेलना चाहा।
5: देखिए ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
2: अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि बीजेपी की तरफ से जब कहीं मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर सवाल या बयान आता है तो वो कैसे रिएक्ट करें। यही वजह है कि अखिलेश मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की मुख्यमंत्री के ऐलान पर हनुमान जयंती से बात शुरू करके संविधान, गंगा जमुनी तहजीब सब कुछ ले आते हैं।
6: हनुमान जयंती हनुमान जी को याद करते हैं मंगल के दिन, के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं जहाँ जहाँ होकर के आया हूँ, कई जगह भंडारे हमें और बड़ी संख्या में लोगों को जुड़ते हुए देखा है। अभी डॉक्टर लोगों का भंडारा था, उसमें शामिल हुआ मैं, यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी उसमें शामिल हो रहा हूँ। यही हमारे समाज की मिली जुली संस्कृति, यही गंगा जमुनी संस्कृति, यही भाईचारा, यही पहचान और अनेकता में एकता, यही हमारा लोकतंत्र और यही हमें संविधान बताता है कि हमें हर एक के प्रति प्रेम, हर एक के प्रति दया और हर एक के प्रति अपनापन रखना है। इसी से हमारा समाज, देश मजबूत होगा।
2: पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुस्लिमों का एक मुश्त वोट पाने वाली टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने हिंदू वोट का ध्रुवीकरण किया, उसने अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजाई है। ये वजह है कि नमाज वाले मामले में अखिलेश खुलकर मुस्लिमों के पक्ष में बोलने से बचते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट को लगता है कि ये मुद्दा अखिलेश यादव के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि अखिलेश की चुप्पी ओवैसी जैसे नेताओं को अल्पसंख्यक वोट को इस्तेमाल करने का आरोप लगाने का मौका देगी।
0: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुट गई है। आज संभल से काशी तक, मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स ने किया, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि बकरीद पर कोई माहौल बिगाड़ने की सोचे भी नहीं।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
4: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
2: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
7: ये
2: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
8: जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के तेजी नहीं है।
2: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके, खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जाती है।
9: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
7: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
10: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
11: यहाँ पे जितने भी धर्म गुरु हैं सबके साथ एक संयुक्त बैठक सभी अधिकारियों की जा चुकी है और सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहाँ पे संख्या ज़्यादा है नमाजियों की वहाँ पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए और कोई भी जो कटान होगा पशुओं का वो अपने निर्धारित स्थल पर होगा, घरों के अंदर होगा, खुले में कहीं पर भी नहीं किया जाएगा और जो भी उसका कचरा रहेगा उसके लिए व्यवस्था पूरी कराई गई है, उसी को निर्धारित रूप से पालन किया जाए।
9: आज एक कौन कौन सी फोर्स के साथ आप लोग सड़कों पर हैं?
11: देखिए यहाँ पे आरआरएफ है, पीएसी है, सिविल पुलिस है, साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरा है उससे निगरानी करते हुए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
10: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
12: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो पीएसी का बल है उसको भी हम लोगों ने व्यवस्थापन उसका किया है ड्रोन्स के माध्यम से, और हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जनपद में उनके माध्यम से हम लोग इस दौरान जो है सतर्क दृष्टि जो है वो बनाए रखेंगे। इस संबंध में जनपदीय स्तर पर डीएम सर और एसपी सर के द्वारा शांति समिति की बैठक जो है वो की गई है और थाना स्तर पे भी जो ये शांति समिति की बैठक विभिन्न थानों में वो कर ली गई है और आवश्यक निर्देश जन सामान्य को वो दे दिए गए हैं कि जो भी ये त्यौहार है वो जो मानक हैं उनके अनुसार ही मनाएं, कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो, और इस संबंध में हम लोगों को जो है उम्मीद है कि जन सामान्य से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और ये जो पर्व है वो सकुशल संपन्न हो।
0: और अब कल बकरीद से पहले महाराष्ट्र में सोसाइटी में होते कुर्बानी विवाद पर हम आपको जानकारी दे दें, जहां बीजेपी के नेता सोसाइटी में शेड बनाकर बकरों की कुर्बानी की तैयारी से पहले विरोध कर रहे हैं, बकरे वहां से हटवा रहे हैं। वहीं मुस्लिम नागरिकों का आरोप है कि बीएमसी से अनुमति मिलने के बाद भी बीजेपी के नेता जानबूझकर हमें रोक रहे हैं।
10: मुंबई से सटे ठाणे का मीरा रोड, बकरीद से पहले तनाव इतना कि बकरे की कुर्बानी सोसाइटी के भीतर करने के विरोध में प्रदर्शनकारी सुअर ले आए तो पुलिसकर्मी को वो सुअर छुड़ाकर भागना पड़ा ताकि माहौल और खराब ना हो। एक जगह हालात सुधरे नहीं, दूसरी जगह तनावपूर्ण हो गए। मुंबई का गोरेगांव इलाका, 12 से ज्यादा बकरे कुर्बानी के लिए सोसाइटी में किनारे शेड बनाकर रखे गए तो बीजेपी पार्षद ने विरोध शुरू कर दिया।
13: वो शेड बांध के आप खाना खाइए, कवाली गाइए, भाई बहनों से मिलिए, लेकिन इस तरह बकरों की कुर्बानी हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे कि खुलेआम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये।
10: इसके बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में बकरीद से पहले कुर्बानी पर तीसरा विवाद आया। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी देने का विरोध करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर हालत ये, बीजेपी के विधायक भड़काऊ बयान तक देने लगे।
14: अगर लातों के भूत पातों से नहीं मानते तो फिर बकरी का जवाब सुअर से दिया जाए।
10: अगर कोई मुस्लिम नागरिक खुले में बकरे की कुर्बानी नियम विरुद्ध करता है तो जितना गलत है उससे कहीं ज्यादा गलत है एक चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा माहौल बिगाड़ने वाला बयान देना। सवाल है, क्या वाकई महाराष्ट्र में नियम टूट रहा है या फिर केवल बकरीद के नाम पर सियासत बीजेपी के चंद नेता चमकाने लगे? आज तक संवाददाता विद्या गोरेगांव सोसाइटी पहुंचती है। यहां शेड चारों तरफ से ढककर कुछ बकरे सोसाइटी में रहने वाले एक विंग के 40 मुस्लिम परिवारों ने रखा, लेकिन क्या ये सब कुछ बिना इजाजत है? क्या ये गलत है जिसका विरोध बीजेपी की पार्षद करने लगी?
15: परमिशन पूरा लीगली जो हमारा फॉर्मेट है वो तरीके से हम अपना ये परमिशन ले लेते हैं, लेकिन इधर के कॉर्पोरेटर है प्रीति साटम करके जो हर बार हमारा ये परमिशन कैंसिल करवाती है। बीएमसी हमको परमिशन ले रही है, मतलब उसको हर फॉर्मेट पता है, हमारे पास जितने भी रूल्स रेगुलेशन हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे परमिशन नहीं होगा तो हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, हम लोगों को ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। पिछले बार भी हम यहाँ नहीं कर पाए थे, हम परेशान हुए थे, जाके हम लोग को परमिशन नहीं था कि हम लोग को तीसरे दिन करना पड़ा।
13: वो शेड में खाना खाइए, कवाली गाइए, आप सभी बांधवों से मिलिए, लेकिन ये काम हम होने नहीं देंगे।
16: लेकिन पहले भी तो हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हो रहा होगा, तो इस साल समस्या क्यों ज्यादा हो रही
13: है? लास्ट ईयर भी इतने सालों से हो रहा है, वो हो गया, लेकिन लास्ट ईयर से हमने करने नहीं दिया और इस साल भी हम करने नहीं देंगे।
16: लेकिन वजह क्या है, क्या रेजिडेंट्स बाकी रेजिडेंट्स को क्या आपत्ति?
13: बाकी देखिए कैसे है कि धार्मिक भावना आप कीजिए ना त्योहार, लेकिन बाकी के लोगों को परेशान करके नहीं।
10: इसी तरह घाट कोपर की सोसाइटी में एक शेड लगाकर बकरे की कुर्बानी मुस्लिम नागरिक देने की तैयारी बकरीद पर करने लगे। विरोध हुआ, पुलिस पहुंची, बीजेपी नेता किरीट सोमैया नारे लगाते आ गए।
17: 21 बकरे रखे थे, उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए। मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ए विंग में परमिशन ने, बी में नहीं, डी में नहीं, आई में, यहां कुर्बानी नहीं होगी। एक बहुत स्पष्ट बात है, अगर गलत फहमी ने कुछ गलत कागजात किसी ने दिए होंगे, कुर्बानी नहीं होगी। मुंबई शहर में मालिका महापालिका में सभी उचित जगहों पर कुर्बानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोगों को पुलिस ने बताया, महापालिका ने बताया, मैंने भी कहा है आपकी धार्मिक विधि है, जरूर कुर्बानी की जगह महापालिका उनको देगी, वहाँ कुर्बानी हो, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है।
18: 27 साल से यहीं पे दी जाती थी, अभी इस साल मुश्किल है।
16: सर ऐसा क्या वजह हो गया कि
18: ये लोगों ने धमाल किया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम जो कानून करेगा वही बोल।
16: परमिशन के बाद ही कुर्बानी
18: था, फिर भी कैंसिल किया। परमिशन हमारा था बकरे का काटने का, फिर भी कल शाम को कैंसिल कर दिया।
16: यहाँ पर जितने बकरे हैं वो निकाल लिए जाएंगे यहाँ से, हालांकि जो यहाँ के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं उनका यही कहना है कि वो उनको यही सही नहीं लगता। बहुत बरसों से, तकरीबन 27 सालों से वो यहाँ पर कुर्बानी देते आए हैं।
0: दर्शक में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
22: टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, व्हाट मैटर्स इज वेदर योर स्किल्स कैन कीप अप। At WGU, we partner with industry leaders to design degrees that go deeper than the latest buzzword. Long before AI made headlines, we were integrating AI-driven skills into our programs. With flat-rate tuition, flexible pacing, and built-in certifications, WGU helps you graduate with skills employers trust and a degree that lasts. Learn more at wgu.edu.
23: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
25: Something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible.

0: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इन दिनों भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला देश में सबसे गर्म स्थान है, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर समेत कई शहर 45 डिग्री के पार रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी गर्मी का कहर जारी है। ब्रह्मपुरी में तापमान 46.6 डिग्री और चंद्रपुर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी लू की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी कम नहीं है। दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में भी मौसम ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिन तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव का असर बना रहेगा। हालांकि 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अभी के लिए सावधानी ही इस प्रचंड गर्मी से बचाव है।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सिद्धरमैया सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, डीके शिव कुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, अमित शाह बोले बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला, का कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन, नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी। और ईरान अमेरिका में समझौते की जमीन तैयार, ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना, तेहरान खत्म करेगा नाकेबंदी, ईरान की सरकारी मीडिया ने एमओयू के ड्राफ्ट का दिया हवाला।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तमिलनाडु में 10 साल की एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस वारदात को लेकर पूरे तमिलनाडु में लोग गुस्से में थे, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे। बाद में पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार करती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है।
2: पहले इस तस्वीर को देखिए, लोगों की भीड़ के बीच एक माँ बिलख बिलख कर रो रही है। इस माँ की 10 साल की इसकी पूरी दुनिया, यानी 10 साल की इसकी मासूम बेटी को किसी वहशी ने जानवरों की तरह नोचा, खसोटा और फिर उसे मार डाला। अपनी लाडली की उसी मौत की खबर के बाद इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब इस दूसरी तस्वीर को देखें, मेज सजी हुई है, मेज के ऊपर दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग न्यूज चैनल के माइक रखे। मेज की दूसरी तरफ तमिलनाडु के 3-3 सीनियर आईपीएस अफसर बैठे हैं। बीच में जो पुलिस अफसर बैठी है वो बाकी दोनों अफसरों से सीनियर है, नाम है आरवी राम्या भारती, ये वेस्ट जोन की आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल है। मेज की दूसरी तरफ इस वक्त इस हॉल में दर्जनों रिपोर्टर बैठे हैं। चूंकि हर कैमरे का रुख इन 3 सीनियर आईपीएस अफसरों की तरफ है, लिहाजा रिपोर्टर की तस्वीर आपको दिखाई नहीं देगी। अब जाहिर है, जब 3-3 सीनियर आईपीएस अफसर एक साथ मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े और गंभीर केस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जरा रुकिए, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले इन तीनों की हंसी, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट और फिर सिर पकड़कर इनके हंसने का अंदाज दिखाते हैं। देखिए ये तीनों किस किस अंदाज में हंस रहे हैं। दो मौके तो ऐसे आते हैं जब हंसते हंसते आईजी मैडम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कैमरा ऑन है, माइक मेज पर और रिपोर्टर तैयार। तभी हंसते हंसते सबसे पहले शायद आईजी मैडम को एहसास होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी है। अब वो अपनी हंसी रोकती है, वर्दी को थोड़ा ठीक करती है, कंधे पर लगे फीते को सेट करती है और अचानक अब तीनों आईपीएस अफसर सीरियस हो जाते हैं। हंसी, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट और ठहाकों के बीच अब तीनों आईपीएस अफसर मीडिया से मुखातिब होकर ये बताते हैं कि आज वो तीनों यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है के इलाके में 10 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर उसे मार डाला गया और हमने इस केस को सुलझा लिया। एक 10 साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस पर बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-3 सीनियर अफसरों की बेहयाई भरी हंसी और ठहाकों के बीच आपको फिर से वापस ले चलूं। उससे पहले एक तीसरी तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ। नई नई बनी तमिलनाडु सरकार की ये नई नई इंडस्ट्री मिनिस्टर है, नाम है एस कीर्थाना। उसी 10 साल की मासूम बच्ची के रेप और मर्डर केस के बारे में जब मंत्री जी से एक रिपोर्टर ने बेहद गंभीरता से सवाल पूछा, तो एक महिला होने के बावजूद सवाल सुनने के बाद जवाब देते हुए ये भी अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाए। हद इन लोगों की संवेदनहीनता की। असल में कहानी ये है कि कोयंबटूर के करीब सुलूर में चौथी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की एक बच्ची 21 मई को घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन बच्ची नहीं मिली। दो दिन बाद 23 मई को घर से कुछ ही दूरी पर उसी बच्ची की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ रेप भी किया गया। ये खबर फैलते ही इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए। इस बच्ची के रेप और मर्डर की गूंज चेन्नई तक जा पहुंची। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय ने ये ऐलान कर रखा है कि वो अपने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेन्नई तक खबर पहुंचने के बाद आनन फानन में टीम बनाई गई और फिर उसी इलाके के दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मामला मीडिया में सुर्खियों में था लिहाजा इलाके की आईजी मैडम के साथ दो और सीनियर आईपीएस अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बच्ची के रेपिस्ट और कातिल को गिरफ्तार करने की खबर देनी थी। ये उसी वक्त की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। अब चूंकि बैकग्राउंड की कहानी आप सुन चुके हैं लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें अब कहीं ज्यादा मार्मिकता के साथ आप महसूस कर पाएंगे। एन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आईजी मैडम के दाएं और बाएं बैठे दोनों सीनियर आईपीएस अफसर अपने मोबाइल से खेलते नजर आ रहे। पता नहीं मोबाइल में वो कोई रील देख रहे हैं या जोक पढ़ रहे हैं। लेकिन मैडम के दाहिनी तरफ बैठे अफसर मैडम से कुछ कहते हैं और यहीं से मैडम की हंसी का दौरा शुरू होता है। पहले तो वो सिर्फ मुस्कुराती हैं, फिर धीरे धीरे इस कदर हंसने लगती हैं कि आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। एक दो मौके ऐसे भी आए जब बेहतरीन तालमेल के साथ तीनों ही एक साथ एक ही लय में हंसते हैं। अब जरा सोचिए इन्हीं ठहाकों के फौरन बाद इन तीनों को 10 साल की उस मासूम बच्ची के साथ हुई ज्यादती की कहानी सुनानी थी। जब चेन्नई में मुख्यमंत्री 10 साल की उस मासूम बच्ची के साथ हुई ज्यादती की कहानी सुनानी थी। इन पुलिस अफसरों की ये बेशर्म मुस्कुराहट सोशल मीडिया पर तैरते हुए जब चेन्नई में मुख्यमंत्री के मोबाइल तक पहुंची और जब पता चला कि इनकी इस हंसी ने कईयों को रुला दिया है तब मुख्यमंत्री ने फौरन एक्शन लिया। प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक। ट्विशा की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई की टीम ने तूफानी अंदाज में अपनी जांच शुरू कर दी है। हाईटेक मशीनों और कैमरों के साथ सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन ट्विशा के ससुराल पहुंची। सीबीआई की टीम उस छत पर भी पहुंची जहां 12 मई को ट्विशा की मौत हुई थी। भोपाल में मौजूद ये उसी घर की छत है जिस छत पर 12 मई को ट्विशा की लाश मिली थी। इस वक्त इस छत पर आपको कई लोग नजर आ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सीबीआई की टीम है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ट्विशा केस की जल्द से जल्द जांच करने के आदेश के बाद सीबीआई ने भोपाल पुलिस से ये केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच हाथ में लेते ही सीबीआई की टीम पहले दो दिनों में ही ट्विशा के ससुराल के दो चक्कर काट चुकी है। सीबीआई की टीम इस वक्त उस छत पर उस वारदात को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिस छत पर ट्विशा के फंदा लगाने की बात उनके पति और जज रही सास ने कही थी।
3: समर्थ के घर पर सीबीआई पहुंची है रिक्रिएशन के लिए और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे आज तक पर उस जगह की जहां पर तुषार ने फांसी लगाई थी, जहां पर सीबीआई की टीम, आप देखिए सामने सीबीआई की टीम रिक्रिएशन कर रही है और सीबीआई के तमाम अधिकारी आपको छत पर दिख जाएंगे। हम आपको बताएं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है। समर्थ के घर के ठीक ऊपर की तस्वीरें हैं छत की, यही वो जगह है जहां पर तुषार ने फांसी लगाई थी कथित तौर पर और आज सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था उसे देखने के लिए। और सीबीआई जो हाईटेक मशीनें हैं उसको साथ में लेकर के इस पूरी जगह का मुआयना कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये छत पर लोकल पुलिस जो है वो भी मौजूद है, साथ ही में जो सीबीआई है वो भी यहाँ बैठी हुई है, एसीपी रजनीश कश्यप जो एसआईटी के प्रमुख हैं वो भी इस छत पे आपको दिख जाएंगे, और सामने अगर आप देखें तो सीबीआई के अधिकारी हैं जो लगातार इस जगह को रिक्रिएट कर रहे हैं, सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। और ये जो दो अधिकारी आपको दिख रहे हैं यही वो जगह है, ठीक है इसी जगह पे वो जिमनास्ट का बेल्ट था टंगा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि तुषार ने फांसी लगाई थी, और आप देखिए वो लगातार उस जगह की फोटो उतार, ये जो दो अधिकारी आपको दिख रहे हैं यही वो जगह है ठीक है इसी जगह पे वो जिमनास्ट का बेल्ट था टंगा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि तुषार ने फांसी लगाई थी, और आप देखिए वो लगातार उस जगह की फोटो उतार रहे हैं, मैपिंग हो रही है और हर एक उपलब्ध जो सबूत है उसकी जांच यहां पर सीबीआई की टीम कर रही है। आपको बताएं कि तकरीबन दो घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब सीबीआई की टीम छत पर जाकर के और समर्थ के साथ घर पे पहुंची और फिर यहां पे तफ्तीश शुरू की। ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उसी छत की है जहां पर सीबीआई के अफसर मौजूद हैं लोकल पुलिस के साथ, और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उस रात तुषा के साथ क्या कुछ हुआ वो पता लगाया जा सके। सबूत जो भी पुलिस को मिलेंगे सीबीआई को सौंपे गए हैं, अब सीबीआई नए सिरे से क्योंकि तफ्तीश कर रही है तो सीबीआई को क्या कुछ मिलता है और कितना इससे साबित हो सकता है कि तुषा की मौत क्या हत्या थी या फिर आत्महत्या थी, ये काफी हद तक सीबीआई की इस जांच पर निर्भर करेगा।
4: छत पर जाने से पहले सीबीआई की टीम ने घर के आसपास की भी जांच की। सीबीआई की टीम बाकायदा 3D कैमरा और दूसरे साजो सामान के साथ यहां पहुंची थी।
3: नई तकनीक के जरिए सीबीआई समर्थ के घर पर जांच कर रही है और एक मशीन लेकर के सीबीआई पहुंची है। ये आप देखिए ये एक 3D डिवाइस है जिसको लेकर के पहुंची है सीबीआई, और 360 डिग्री व्यू जो है वो इसके जरिए समर्थ के घर का तैयार किया जा रहा है। यानी एक तरीके से 3D नक्शा जो 360 डिग्री एंगल से बना हो इस मशीन के जरिए यहां पे तैयार किया जा रहा है, जो सीबीआई ने यहां लाकर के गेट के ठीक सामने रखी है फिलहाल, और उसे एक तरीके से जो पूरा 3D नक्शा है समर्थ के घर का बाहर से और अंदर हर तरफ से देखा जा रहा है। ये एक तरीके से जो मशीन आप देख रहे हैं ये एक हाई स्पीड अल्ट्रा पोर्टेबल टेरिस्ट्रियल 3D लेजर स्कैनर है जिसके जरिए जो सीबीआई है वो एक सर्वे कर रही है और डिजिटल एक नक्शा तैयार किया जा रहा है समर्थ के घर का, जहां पर 12 मई की रात जो तुषा है उसने कथित रूप से फांसी लगाई थी। तो सीबीआई की जांच का ये दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन सीबीआई जो है वो इस नए तकनीक के जरिए एक बार फिर से समर्थ के घर के अंदर और बाहर का नक्शा तैयार कर रही है, और इस तरीके से पुलिस ने एक दीवार बना दी है ताकि जो मशीन की लेंथ है, मशीन को जिस चीज का नक्शा बनाना है पत्रकार उस लेंथ में ना आ जाए, और इसीलिए फिलहाल इस तरीके से दीवार बना करके इस मशीन के जरिए समर्थ और गिरिबाला सिंह के घर का नक्शा यहां पर सीबीआई की तरफ से तैयार किया जा रहा है।
4: यह गिरिबाला सिंह का घर है और ये उसी घर के छत की तस्वीर है जिस छत पर 12 मई की रात तुषा की मौत हुई थी। इस छत और यहां रखे सामान को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर तुषा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलास्टिक का वो फंदा भी नजर आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी फंदे से तुषा ने खुदकुशी की थी। छत से नीचे रबड़ जैसे दिखने वाले रिंग के दो टायर आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। इन दोनों ही रिंग के साथ इलास्टिक की दो रस्सियां भी अब भी लटकी हुई है। बाईं तरफ की रस्सी बिल्कुल सीधी है और लगभग जमीन से टकरा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ की इलास्टिक की रस्सी सीधी नहीं बल्कि उसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि दाहिनी तरफ वाले रिंग से ही लटकती इलास्टिक की रस्सी का फंदा बना होगा। तस्वीर में छत पर या यूं कहें कि इस क्राइम सीन पर दो लोग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये भी साफ है कि ये तस्वीर रात के अंधेरे की नहीं बल्कि दिन के उजाले की है। अब रिपोर्ट के मुताबिक तुषा की मौत रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान हुई, पर कमाल देखिए रात को पुलिस छत पर इस क्राइम सीन पर पहुंची। जाहिर है पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया होगा कि किस फंदे से तुषा को घरवालों ने उतारा था, लेकिन पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, 12 घंटे निकल गए, फिर भी पुलिस को यह ख्याल ही नहीं आया कि जिस फंदे से ट्रिशा की मौत हुई है उस पर लिगेचर मार्क के अलावा उंगलियों के निशान और दूसरे कई सबूत हो सकते हैं। उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं। ट्रिशा की मौत के बाद 13 मई को कहीं जाकर पुलिस फंदे नुमा इस सबूत को अपने साथ ले जाती है। क्या यह अनजाने में हुई भोपाल पुलिस की गलती थी या जज रही गिरिवाला सिंह का खौफ? आप ही बताएं। 12 मई को ट्रिशा की मौत होती है, 13 मई को पोस्टमार्टम होता है, 14 मई को गिरिवाला सिंह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचती है, और कमाल ये कि कोर्ट पहुंचने के 24 घंटे के अंदर अंदर 15 मई को उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल जाती है। गिरिवाला सिंह अगर जज की कुर्सी पर न बैठी होती तो क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाता? क्या किसी आम इंसान को अग्रिम जमानत की इतनी जल्दी ऐसी सहूलियत मिल पाती? फिर जांच को लेकर लोगों की राय गलत कहां थी? हमारी छोड़ी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वकील और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तक गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अर्जी लगाते हैं उसमें भी उन्होंने ठीक यही बात कही है। जांच ढंग से नहीं होगी, ये राय कैसे गलत है, जबकि ट्रिशा की मौत के 15 दिन बाद भी जज रही सास से पुलिस पूछताछ तक नहीं कर पाई। गिरिवाला सिंह को अदालत ने अग्रिम जमानत दी है, यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, पर पूछताछ पर तो कोई रोक नहीं थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पिछले 15 दिनों में भोपाल पुलिस गिरिवाला सिंह से एक बार भी पूछताछ नहीं कर पाई? हालांकि इस मजबूरी के बारे में जब भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि पुलिस की तरफ से एक नहीं बल्कि 3-3 बार गिरिवाला सिंह के घर पर उन्हें पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस वालों के सामने हाजिर नहीं हुई, न ही वो जांच में सहयोग कर रही है। गिरिवाला सिंह को लेकर भोपाल पुलिस की ये मेहरबानी तब है जब इन्हीं गिरिवाला सिंह ने अपनी बहू ट्रिशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को उस ब्यूटी पार्लर से धोखे से सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए कुल 5 वकीलों को भेजा था, जिस ब्यूटी पार्लर में मौत से महज चंद घंटे पहले ट्रिशा गई थी। इतना ही नहीं, जज रही यही गिरिवाला सिंह 13 मई को ब्यूटी पार्लर में फोन कर बाकायदा ट्रिशा की जानकारी ले रही थी। सीसीटीवी की ये तस्वीर उसी 12 मई की शाम की है जिस 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस कुर्सी पर बैठी ये ट्रिशा ही जो इस वक्त हेड मसाज करा रही है।
5: मुझे पता चला जब गिरिवाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्रिशा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उनने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्रिशा कब आई और कब गई।
6: ये कब कॉल आया था आपके पास?
5: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्रिशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मुझसे मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्रिशा मैम ठीक तो है ना? तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है।
6: आपको भरोसा हुआ?
5: नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे
6: कौन लोग थे वो?
5: उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे।
6: अच्छा,
5: मतलब एडवोकेट वाले का, हाँ उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे, और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी? तो मैंने बोला दिखाया उनको, फिर उसके बाद उनने फुटेज ली।
4: बहू की मौत हो चुकी है, लाश उस वक्त भी भोपाल एम्स के मुर्दा घर में पड़ी थी, तब तक बेटा समर्थ फरार हो चुका था। अब ऐसी सूरत में गिरिवाला सिंह को आखिर उस ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज की क्या जरूरत पड़ गई, जिसे हासिल करने के लिए काले कोट में उन्होंने 5 लोगों को ब्यूटी पार्लर भेजा था। हालांकि इस बात को भी 12 दिन बीत चुके हैं, जज रही गिरवाला सिंह तुषा की मौत के अगले ही दिन ब्यूटी पार्लर से फुटेज मंगवा भी चुकी है, लेकिन कमाल भोपाल पुलिस जो अब तक पूछताछ के नाम पर ही सही एक बार भी इस ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई।
6: पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास? सीसीटीवी
5: नहीं, पुलिस तो नहीं आई
6: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई?
5: नहीं, कोई नहीं आया।
4: वो तो अब मीडिया की बदौलत भोपाल पुलिस तक इस ब्यूटी पार्लर की कहानी पहुंची, तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि गिरवाला सिंह पार्लर से सीसीटीवी फुटेज ले जा चुकी। इसी के बाद अब पुलिस जागी और कह रही है कि वो इसकी भी जांच करेगी।
7: नहीं, वो तो देखो जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीजों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
4: दरअसल 12 मई को टीशा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इसी ब्यूटी पार्लर में थी। यह ब्यूटी पार्लर भोपाल में टीशा के घर से बिल्कुल करीब है, इसलिए वो घर से पैदल ही यहाँ तक आई थी।
5: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
6: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
5: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
6: अच्छा, पास में ही घर है उनका?
5: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
6: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं।
6: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं?
5: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
4: ब्यूटी पार्लर से घर आने के बाद त्रिशा समर्थ के साथ कुछ देर पार्क में टहलती है, फिर घर में सभी के साथ खाना खाती है, इसके बाद कुछ देर टीवी देखती है और आखिर में रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान छत पर उसकी लाश मिलती है। मतलब दोपहर से शाम तक और शाम से रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। त्रिशा ने अपनी माँ से फोन पर बात भी की थी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि त्रिशा की मौत हो गई? बस इन्हीं आखिरी पलों की

0: हैं। और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं।
1: दिल्ली से अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The Tailgate Top 20.
4: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
3: The Tailgate Top 20.
5: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
4: Try to keep up.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: कर्नाटक सीएम से कल इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। का कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना, ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सीएम फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। फडणवीस ने कहा है कि हमारा समझौता लगभग तय हो चुका है, हमें नासिक या संभाजीनगर में से कोई एक सीट मिलनी चाहिए और एनसीपी ने पुणे सीट की मांग की है। मुश्किल परीक्षा का पेपर अब खत्म हो चुका है, अब बस टिक के निशान लगने बाकी हैं। बीजेपी ने 7 की जगह 12 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि शिवसेना 7 और एनसीपी 3 सीटें मांग रही है।
2: मी काल सांगितलं, पुन्हा सांगतो, उद्या पुन्हा विचारू नका। आमचं जवळपास अग्रीमेंट झालेलं आहे, फक्त शिवसेनेसोबत नाशिक आणि संभाजीनगर पैकी एक जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे। आणि एनसीपी ने आम्हाला पुण्याची जागा मागितलेली आहे, त्यामुळे या दोनच गोष्टींवर आमचं अडलं आहे, जे आम्ही सोडवून घेऊ। आता काही कठीण नाही, कठीण पेपर संपलाय, सोपा पेपर बाकी आहे, टिकमार्क करायचं आहे, टिकमार्क झाल्याबरोबर विषय संपतो।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, क्या माना जाए कि जिस रस्साकसी से दोनों ही पार्टियां जूझ रही थी और कहा जा रहा था कि काफी तनातनी है, इसीलिए मुलाकात अमित शाह से भी करनी पड़ी है, अब सॉल्व हो गया है मैटर?
3: जी देखिए, जो खींचतान महायुति में जिन सीटों को लेकर चल रही थी वो अभी भी कायम नजर आ रही है, क्योंकि इन्हीं 3 सीटों को लेकर शुरू से महायुति में जो है वो हर सहयोगी दल दावा करते नजर आ रहा है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे एग्जाम के वो उन्होंने सॉल्व कर लिए है, लेकिन ये 2 सीटें संभाजीनगर और उसके साथ पूना, इन 2 सीटों पर अभी भी सहमति होनी बाकी है। जब वो मुंबई लौटेंगे, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में बैठकर इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, लेकिन तब तक वहां पर उम्मीदवार कौन होगा, अपने पार्टी से जो लोग पोटेंशियल कैंडिडेट है जो वहां पे लड़ना चाहते हैं उनको कैसे मनाया जाएगा, इन सारी कसरतों के बाद ही ये तय होगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी हंगामा जारी है। महाराष्ट्र में मीरा रोड पर शुरू हुआ था हंगामा, मुंबई की कई हाउसिंग सोसाइटी तक अब यह पहुंच चुका है। कुछ सोसाइटीज में कुर्बानी की इजाजत खुद बीएमसी ने दी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद सोसाइटी से बकरे निकाले गए और अब उन्हें बूचड़खानों या फिर निश्चित की गई जगहों पर कुर्बानी देनी होगी। देखिए कैसे दिन भर सड़क पर कुर्बानी पर कोहराम और उसके बाद जय श्री राम का उद्घोष होता रहा।
4: पहले ठाणे के मीरा रोड इलाके की सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अब मुंबई की कई हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी पर कोहराम मचा है। घाटकोपर की सागर पार्क हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू लोगों ने कुर्बानी के खिलाफ आवाज बुलंद की तो पुलिस भी एक्टिव हो गई।
5: मैं एफ विंग है, उसमें मैं रहता हूँ। हमारे नीचे ही बकरा काटे जाते हैं।
6: अच्छा, हर साल कटते
5: हर एक साल कटते विदाउट इन्फॉर्मेशन। हम लोग कमेटी में भी है, हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं करते इन लोग कि भाई मैं बीएमसी में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पुलिस थाने में अप्लाई कर रहा हूँ। हम लोग चार दिन से इधर उधर ही घूम रहे हैं, ये बीएमसी में जाते हैं, ये इधर जाते हैं।
6: तो यहाँ पे लेकिन बकरे तो लाए गए हैं तब आप लोगों को नहीं पता चला?
5: तभी तो ये एक्शन लिया ना हम लोगों ने।
6: अच्छा, यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के घरों पर, उनके सांसारिक जीवन पे लग रहा है, जिसकी वजह से वो ये परेशान थे, इसकी वजह से इन्होंने बीएमसी से लेके काफी सारे लोगों से संपर्क किया। और अब जाके जैसे अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी आए थे और एक एश्योरेंस दिया गया है कि ये सारे बकरे यहाँ से निकाले जाएंगे। दरअसल अंदर ही सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पर परमिशन दी गई थी, बीएमसी की तरफ से परमिशन दी गई थी सर?
7: बीएमसी ने परमिशन दिया है लेकिन सोसाइटी का लेटर तो वहाँ पे गया है।
6: जब आप लोगों ने उसके बाद जब परमिशन दे दी,
7: क्योंकि ये देखो ये भी कमेटी मेंबर है, ये भी नायक सर भी है, सरदार जी भी कमेटी है, लेकिन इनको किसको बताया नहीं गया, उन्होंने अपने हिसाब से लेटर का मिस यूज करके परमिशन ली गई थी। जब बीएमसी को मालूम पड़ा तो उन्होंने वो परमिशन कैंसिल कर दी।
4: पुलिस और बीएमसी ने सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति रद्द की तो मुस्लिम पक्ष बोला वो 27 साल से यहाँ कुर्बानी दे रहे थे लेकिन अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
6: देखिए काफी सारे पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पे तैनात हैं, उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। लेकिन इस वक्त क्योंकि परमिशंस जो हैं वो अथॉरिटीज हायर ऑफिसर्स रहते हैं, वो कहीं और से दी जाती है और ज्यादातर वो बीएमसी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रहती है तो बीएमसी से भी परमिशन ली जाती है।
8: 27 साल से यहीं पे दी जाती थी, अभी इस साल मुश्किल है।
6: सर ऐसा क्या वजह हो गया कि
8: ये लोगों ने धमाल किया? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम जो कानून करेगा वही बोल।
6: परमिशन के बाद ही कुर्बान
8: था फिर भी कैंसिल किया, परमिशन हमारा था बकरे का काटने का फिर भी कल शाम को कैंसिल कर दिया।
6: अब क्या करेंगे आप लोग?
8: जा रहे बीएमसी में कोर्ट की तरफ मूव करेंगे।
6: तो इस वक्त आप लोग कोशिश यही है कि वापस आप लोग कर सके यहाँ?
9: हाँ, कल रात को सोल्यूशन भी ये था ना कि यहाँ पर डीसीपी साहब ने भी पहले आश्वासन दिया था कि 21 बकरी की आप स्लॉटरिंग कर सकते हो।
4: हिंदू समुदाय कह रहा है कि बकरीद में मुस्लिम समाज अपनी इबादत करे, रीति रिवाज का पालन करे, लेकिन अगर हमारे सामने बकरों की कुर्बानी दी जाएगी तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी।
6: इस वक्त हम मुंबई के घाटकोपर इलाके के सागर पार्क जो सोसाइटी है उसके ठीक बाहर है। यहाँ पर पिछले कई सालों से जो बकरीद की जो कुर्बानी है वो दी जाती थी, बकरे आते थे यहाँ पे कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन इस बार जैसा कि यहाँ पे जो बाकी सोसाइटीज के जैसे यहाँ पे हंगामा यहाँ इस बार भी शुरू हुआ। इनका यही कहना है कि यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि वो यहाँ पे अपोज कर सकते हैं कुर्बानी को, तो इसलिए इस बार वो अपोज कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने वीएचपी बजरंग दल से लेकर बीजेपी का तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को संपर्क किया और उसके बाद यहाँ उन्होंने कोशिश उनकी यही है कि इस तरह की जो कुर्बानी दी जाती है वो यहाँ इस बार नहीं दी जाए। अब थोड़ी देर पहले किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ आए थे, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पर जितने बकरे हैं वो निकाल लिए जाएंगे।
4: कोरेगांव ईस्ट इलाके में भी कुर्बानी के लिए बकरे रखने का लोगों ने खुलकर विरोध किया।
6: गोरेगांव ईस्ट में एक जो बिल्डिंग है उसके कुछ बगल में ही एक टेंट बनाया गया है जिसमें बकरे रखे गए हैं बकरीद के लिए, लेकिन इनको काफी समस्या है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ के बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं उनसे संपर्क किया था। आइए उनसे जानते हैं क्या किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको।
10: जी सिर्फ हमारी इतनी विनती है, वो अपना जो त्योहार है वो मना है, इतना ही है कि वो अपना बकरी का कुर्बानी न दे बस इस एरिया में।
6: तो ये कहाँ पे बांधा गया है?
11: यही हमारी जो बीविंग है इनके विंडोज खुलते ही हैं उनके उसी जगह पे जहाँ वो शेड है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेंच होता है सारा दिन वहाँ पे, बहुत वेजिटेरियंस है उनको नौशिया होता है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं विंडोज बंद करने के बावजूद भी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले तो ब्लड भी दिखता था बहता हुआ।
4: वही मुंबई के दिंडोशी इलाके में एक बिल्डिंग में टेंट बनाकर बकरे रखने की अनुमति बीएमसी ने दी थी, इसके विरोध में आसपास की बिल्डिंग के निवासियों ने प्रदर्शन किया जिसके बाद बीजेपी की स्थानीय पार्षद प्रीति साटम ने चेतावनी दी कि किसी भी हाल में सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं होने देंगे।
6: बीजेपी की कॉरपोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर प्रीति साटम इस वक्त आई हैं डिंडोशी इलाके में। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या वजह है बकरीद के ठीक एक दिन पहले आप यहाँ पर आए।
12: यहाँ पे बाजू के सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने के लिए तैयारी हो चुकी है।
6: कौन सी बिल्डिंग?
12: ये आजाद बिल्डिंग है और वहीं पे जो आपने देखा होगा कि शेड बांधे बकरे भी है, लेकिन हम यहाँ पे स्थानिक नागरिक जो है और मैं यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि खुलेआम बकरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। आप हम जैसे बाकी के त्योहार मनाते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, वैसे भी उन्होंने भी करना चाहिए।
4: बीजेपी के साथ हिंदू संगठनों ने बीएमसी प्रशासन पर नियमों के पालन में लापरवाही के आरोप लगाए। इस मामले में हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता किरिट सुमैया ने कहा कि अगर कोई धार्मिक माफियागिरी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
13: आपकी धार्मिक विधि है, जरूर कुर्बानी की जगह महापालिका उनको देगी, वहाँ कुर्बानी हो, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। कल मुझे मीरा रोड जाना पड़ा, उसके बाद में बकरे वहां तक भगाए गए। आज मुझे यहाँ आना पड़ा, उसके बाद में बकरे निकाले जा रहे हैं। तो मैं महापालिका आयुक्त और पुलिस आयुक्त से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप दोनों ने, आपकी जिम्मेदारी मुंबई के नागरिकों के ऊपर सौंपी है क्या? जो अधिकारी मस्ती कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
4: किरीट सुमैया के सामने बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया और सोसाइटी से बकरे हटाए जाने को हिंदुत्व की जीत बताया। कुछ सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय ने कुर्बानी के लिए बीएमसी की इजाजत की कॉपी दिखाई, जिससे हिंदू समाज के लोग भाग गए। वहीं मुस्लिम समाज के लोग इसलिए नाराज दिखे क्योंकि अब बीएमसी कह रही है कि कुर्बानी के लिए उन्हें पास के किसी बूचड़खाने में जाना होगा, लेकिन बूचड़खानों में सभी स्लॉट और जगह पहले से ही बुक हो चुकी है, इसलिए वहाँ और कुर्बानी बुक करना मुमकिन नहीं है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है और आज फिर सीबीआई ने महाराष्ट्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बच्चों का डॉक्टर है जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी। दूसरा आरोपी फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब यह है कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं?
14: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
15: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि मनोज शिरूरे, डॉक्टर मनोज शिरूरे जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए, उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में, और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं, उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज सिरूरे के ही रिश्तेदार हैं, उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं रसायन के, जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में, उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज सिरूरे का रोल, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
14: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
16: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरूरे जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था और तेजस हर्षद कुमार जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और बीसी में भेजा है, क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है, उसमें क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में इस ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था, और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
14: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई है और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की यूपी अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले हैं, और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे?
15: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी, मनीषा हवलदार, इन्हें इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे, भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे, उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी, और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज सिरूरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है, बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: Call call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
18: It's your boy,
17: just
18: Jay-Z.
17: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
19: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
20: What you got for me, Jack?
19: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: महाराष्ट्र में तेल संकट को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 52% का उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग यानी कि घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी है और किसानों को भरोसा दिलाया है कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

0: महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं।
1: असं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, जागतिक संकट आहे। जागतिक संकटामध्ये सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब झाले असताना आणि जगामध्ये अनेक देशांनी पेट्रोल डिझेलची इमर्जन्सी घोषित केलेली आहे, काही ठिकाणी दोन दोन दिवस लॉकडाऊन आहे, अशाही परिस्थितीत आपल्या इथे पेट्रोल डिझेल आपण देण्याचा प्रयत्न करतो।
0: सीएम फडणवीस का ये आदेश तब आया जब महाराष्ट्र के आंकड़ों से पता चला कि पेट्रोल की बिक्री में 23% और डीजल की मांग में 52% का अप्रत्याशित उछाल आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
1: ती कमर्शियल कड़े वळवली जाती आहे का याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने आज आम्ही आदेश दिलेले आहेत, कारण आपण समजू शकता 52% वाढ आणि त्याची आपूर्ती आपण करतो याचा अर्थ कुठेतरी याच्यामध्ये कोणीतरी साठेबाजी करताय आणि म्हणून ती साठेबाजी थांबवण्याचा प्रयत्न आमचा चाललेला आहे।
0: वही विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है, वो कह रहा है कि सरकार सिर्फ आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
2: आज इकोनॉमिक क्राइसिस, पेट्रोल डीजल का दिखाई है, आज उनका लड़ाई चल रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल पंप में नहीं मिल रहा है, वो निकल गई बात। डाइवर्जन टैक्टिक
3: दिल्ली में है।
2: अरे डाइवर्जन
3: टैक्टिक को लेकर
2: कोई नहीं, डाइवर्जन टैक्टिक्स है। आज महाराष्ट्र में ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पूरी डाइवर्जन टैक्टिक्स है। महाराष्ट्र के हर ईमानदार आदमी ने इनको इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए, उनको फंसाया जा रहा है।
4: नीट वाले मामले पर
2: बिल्कुल, ये नीट का भी मामला फटाफट डिसीजन ले लो। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगाई कितनी बढ़ी आज। अब घर जाके पूछिए आपकी माँ से, भाभी से, बीवी से, कितनी महंगाई बढ़ी है एक महीने के अंदर, क्यों उस पर कोई सरकार में कोई नहीं बोल रहा है।
0: इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने भी बीजेपी सरकार पर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बकरीद पर कुर्बानी के मुद्दे के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया।
5: ये अभी डीजल नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी कतार लगी है, पेट्रोल के और सारे पेट्रोल उत्पादन के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं, उसके साथ साथ देश की बेरोजगारी को लेकर तमाम किसानों की समस्या अभी अपने उरूज पे है, और ऐसे इसमें मूल मुद्दे जो है देश के उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये घिनौना पोलराइजेशन की काम और कोशिश कर रही है। झूठ बोलने की भी हद होती है, तो पेट्रोल पंप में जो लोग कतार लगा के खड़े हैं, लंबी लाइन जो लगी है, ये क्या नाटक है या लोग धूप में शोक से वहां धूप में जा रहे हैं? तो बताते समय जो एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पद पे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, और वो जिम्मेदारी के साथ उनका ना तो बर्ताव है, ना करनी है, ना कथनी है, और ऐसे इसमें हम जो टिप्पणी करते हैं वस्तु धारातल की जो जानकारी उसको लेकर, तो उसपे इतना एतराज करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं।
0: अब सवाल है कि क्या वाकई जमाखोर आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और क्या कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वाकई तेल का संकट है जिसे सरकार स्वीकारना नहीं चाहती।
6: ये तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सिर्फ जनता की जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहे, बल्कि इससे राज्य की राजनीति भी गर्मा रही है। जहां एक तरफ सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहां दूसरी तरफ विपक्ष इसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि इस राजनीतिक खींचतान में कतार में खड़े उस जनता को कब राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली, विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी, व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज इस्तीफा दे सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया या डी के शिव कुमार बन सकते हैं नए सीएम। सूत्रों से खबर, शुक्रवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक, शनिवार को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। समान नागरिक संहिता विधेयक बोले गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही है हमारा संकल्प। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला, का कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे विजय, प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट करके तस्वीरें शेयर की। सूत्रों से खबर, विजय ने प्रधानमंत्री से उन मांगों पर बात की है जो केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग है। पीएम से मुलाकात के बाद विजय पहुंचे तमिलनाडु हाउस, कई और राजनीतिक लोगों से कर सकते हैं मुलाकात। नीट पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी, पुणे से हुई है गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब तक 13 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, छापेमारी के दौरान बवाल, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। समर्थकों ने इस दौरान ईडी की गाड़ी पर भी फेंके थे पत्थर, बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। समर्थकों के बवाल पर एक्शन की तैयारी में थी ईडी, दर्ज करवाएगी एफआईआर। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, आरोप है कि कंपनी ने भुगतान को लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में भी हलचल तेज हुई, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए हमला बोला। देहरादून में पार्किंग विवाद, आपस में मारपीट करती हुई नजर आई महिलाएं, वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद में देवगिरी एक्सप्रेस को से मिला हवाला का पैसा, 1,22,00,000 रुपए बरामद किए गए। इंदौर में पुलिस की कार्रवाई, आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 8 की गिरफ्तारी। अहमदाबाद में डीएसपी पर आरोप है जमीन विवाद में 5 राउंड फायरिंग की है। पुरुलिया में अस्पताल परिसर में चला था बुलडोजर, कई अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया। विशाखी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला किया, रिजर्व जांच एजेंसी ने की है जमानत रद्द करने की मांग। विशाख के पति आरोपी समर्थ को सीबीआई ने लिया हिरासत में, 3 घंटे तक समर्थ से पूछताछ की गई। समर्थ और गिरिबाला के साथ सीबीआई ने किया सीन रिक्रिएट। ऋषा की मौत के मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा गया था पत्र। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले सूबे में बढ़ा है अपराध। ईरान और अमेरिका में जंग खत्म करने को लेकर प्रस्ताव तैयार, तेहरान मीडिया का दावा, एमओयू ने ड्राफ्ट में हॉर्मुज के आसपास से सेना हटाने को ट्रंप तैयार। ईरान में इंटरनेट बहाल होने के बाद लोगों में नजर आई खुशी की लहर, सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। गजा सिटी में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, हमास में नए सेना कमांडर मोहम्मद ओहेद धीर, पत्नी और बेटे भी हमले में मारे गए। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना का बड़ा हमला, कथित ड्रग्स नाव पर बमबारी में एक ही मौत हुई, 2 लोगों को बचाया गया। रूस बेलारूस बॉर्डर पर ड्रोन इंटरसेप्टर टीमें तैनात करेगा नेटो देश लातविया, ये टीमें 10 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम। सिंगापुर के विदेश मंत्री प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, दोनों ही देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। स्पेन के पीएम पेट्रो सांचेज के वेटिकन सिटी में पोपलियो से मुलाकात हुई, दोनों ही के बीच दुनिया में चल रही जंग और प्रवासियों के मुद्दे पर बातचीत। स्पेन की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर पुलिस की रेड, वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पुलिस ने रेड की। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का कहर, दोनों ही देशों में अब तक 220 से ज्यादा की मौत हुई है, 900 से ज्यादा लोग संक्रमित। युद्ध के साए के बीच सऊदी अरब में मक्का में हज यात्रा, मक्का में 15,00,000 से ज्यादा मुस्लिम श्रद्धालुओं ने लगाई काबा की परिक्रमा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि देश में अवैध रूप से घुसे ये घुसपैठिए कैसे देश के संसाधन और आपका हक निकल रहे हैं, ये सीधे आपकी थाली, आपके बच्चे के स्कूल की सीट, अस्पताल में बेड तक छीन रहे हैं, आपके खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए संसाधनों पर ये डाका डाल रहे हैं, ये सरहद पार से आते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और दीमक की तरह आपके और आपके परिवार के हक को चाटने लगते हैं। आज हम आंकड़ों के साथ इस कड़वे सच को उजागर करेंगे कि कैसे ये अवैध घुसपैठ केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आपके घर के बजट, आपकी नौकरी, आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य पर सीधा हमला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या वक्फ बोर्ड के पास देश में असीमित जमीन होने से भारत का आम मुसलमान खुश होता है, या फिर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर राजनीतिक दल केवल अपना वोट बैंक सहेजते हैं। आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि केरलम के मुनम्बम में सैकड़ों परिवारों ने जो जमीन अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी, सरकार बदलते ही वक्फ बोर्ड ने उसे डिजिटल पोर्टल पर अपना बता दिया। सेना से भी दोगुनी जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड से आज हम पूछना चाहते हैं कि लाखों एकड़ के साम्राज्य से देश के कितने गरीब मुसलमानों की गरीबी दूर हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या एक छोटा सा द्वीप भारत जैसे विशाल देश को पछाड़ सकता है। सोशल मीडिया पर एक खबर को लेकर चर्चा है कि ताइवान का स्टॉक मार्केट भारत से आगे निकल गया है और कुछ लोग इसे भारत की नाकामी साबित करने में जुट गए हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर आंकड़ों की आड़ में आधा अधूरा सच परोसा जा रहा है। आज हम इसके पीछे की पूरी हकीकत आपको बताएंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शर्त ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और बेबस कर दिया। ट्रंप का मुस्लिम देशों से साफ कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड मानो और इसराइल को देश के रूप में स्वीकार करो। अब सवाल यह है कि कट्टरता को पालने वाला पाकिस्तान अपनी आवाम और कौम का साथ देगा या ट्रंप के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन आज शुरुआत सिर्फ विश्लेषण से नहीं करेंगे, आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि घुसपैठियों का मुद्दा क्यों आपसे, आपके परिवार से और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तस्वीर दिखाते हैं आपको एक। ये तस्वीर राशिद अली सिद्दीकी नाम के व्यक्ति की है, जिसे बेंगलुरु पुलिस ने अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी का कारण ये था कि ये एक पाकिस्तानी नागरिक था जो छिपकर पहले बांग्लादेश पहुंचा और फिर बांग्लादेश में इसने आयशा हनीफ नाम की एक महिला से शादी की। इसके बाद 2014 में ये दोनों अपने परिवार के साथ ममता बनर्जी के राज में घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंच गए। 2014 से 2018 के बीच ये चार सालों तक बिना किसी परेशानी के देश की राजधानी दिल्ली में रहे। दिल्ली में इन लोगों ने न केवल नौकरी की, बल्कि यहां इन्होंने फर्जी दस्तावेजों की मदद से असली आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया। और ये सारे दस्तावेज भारत में आने से के सिर्फ एक साल में बन गए थे और ये लोग यहां हिंदू बनकर रह रहे थे। इनमें पाकिस्तानी नागरिक राशिद अली सिद्दीकी शंकर शर्मा बन गया था, उसकी बांग्लादेशी पत्नी आयशा हनीफ आशा शर्मा बन गई थी, उसके पिता मोहम्मद हनीफ राम बाबू शर्मा बन गए थे, माँ रुबीना रानी शर्मा बन गई थी और उसके दोनों बच्चों का भी भारत का आधार कार्ड बन गया था। ये आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के एक पते पर बनवाया गया था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 के बाद ये पूरा परिवार दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया, वहां केटरिंग का एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस इतना चला कि ये पूरा परिवार एक विला में रहने लगा और आपके संसाधनों को चोरी छिपे दीमक की तरह चाटने लगा। हैरानी की बात यह है कि 10 साल गुजर गए और इनके बारे में कभी किसी को कोई भनक नहीं लगी। और ये तो केवल एक कहानी है, ऐसे न जाने कितने परिवार, कितने लोग हैं जो बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करके भारत में आए और आपके संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए। और यहां बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इस घुसपैठ की समस्या पर ज्यादा गौर भी नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि यह मामला राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जाता है और कुछ सोचते हैं कि 145 करोड़ की आबादी में कुछ घुसपैठियों के होने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे फर्क पड़ता है और यह फर्क इतना गंभीर और चिंताजनक है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिला न मिले, अस्पताल में इलाज के लिए बेड न मिले, कहीं सफर करने के लिए बस और ट्रेन में सीट न मिले, नौकरी न मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले और आपके हक पर ऐसे लोग डाका डालकर बैठ जाएं जो घुसपैठ करके दूसरे देशों से आए, जो घुसपैठिए हैं, जिनका इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी ये फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवाकर आपके हक को लूटने लगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे? हमने आपको पहले भी बताया था कि 145 करोड़ की आबादी वाले भारत में संसाधन सीमित नहीं है, और विश्वास न हो तो ये आंकड़े देखिए। आज भारत में 2,00,000 लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1,00,000 लोगों पर 900 सीटों की केवल एक यात्री ट्रेन है, लगभग 1 करोड़ लोगों पर केवल एक एयरपोर्ट है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की केवल एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, 18,00,000 लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है, और मरने के बाद भी हमारे देश में शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भीड़ लगी है, क्योंकि 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। और इसीलिए सोचिए, जब संसाधन इतने सीमित हो तो क्या हम एक भी घुसपैठियों को अपने देश में बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या, दुनिया का कोई भी देश अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए लोगों को अपने यहां के संसाधनों पर कब्जा नहीं करने दे सकता? लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक हमारे देश में घुसपैठियों का मेहमानों की तरह स्वागत हुआ है। यह न सिर्फ हमारे देश में चोरों की तरह दाखिल हुए, बल्कि इन लोगों ने यहां आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवा लिए, और यह बातें केवल कागजी और किताबी नहीं है। जिस महिला की तस्वीर आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 6 साल पहले बांग्लादेश से नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई, और इस घुसपैठ के लिए उसने केवल 3,000 रुपए खर्च किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में इसने केवल 2,000 रुपए खर्च करके अपना आधार कार्ड बनवा लिया, और इस आधार कार्ड के सहारे कोलकाता के कई घरों में काम किया। और हैरानी की बात यह है कि इसी आधार कार्ड पर इस महिला का कोलकाता में पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। अब आप मुर्शिदाबाद पर आइए, जहां कुछ महीने पहले 7 लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आए और यहां से केरलम में नौकरी करने के लिए चले गए, और वहां इन्हें आसानी से नौकरी मिल गई। अब यह हुआ भी तब जब हाल ही में सरकार की रिपोर्ट यह बता रही थी कि केरलम में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हो गई है, यानी केरलम में वही हो रहा था जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। वहां बांग्लादेश से आए ये घुसपैठिए भारत के लोगों की नौकरियों पर कब्जा करके बैठ गए थे, लेकिन हाल ही में जब ये बकरीद मनाने के लिए मुर्शिदाबाद वापस लौटे तो शुभेंदु अधिकारी के सख्त निर्देशों पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर 24 परगना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां सैकड़ों परिवार बांग्लादेश जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे, और ममता बनर्जी की सरकार में इन्होंने अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिया था। लेकिन अब जब नई सरकार घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर्स में डालने के लिए कह रही है, तब ये लोग बांग्लादेश वापस लौटना चाहते हैं। हम मानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी की दुश्मनी राजनीतिक है, लेकिन क्या यहां यह नहीं सोचा जाएगा कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब वहां इन घुसपैठियों में यह डर और दहशत क्यों नहीं था? क्यों उस वक्त इन घुसपैठियों के लिए अलग अलग सिंडिकेट काम कर रहे थे, और कैसे ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से पूरे भारत में फैले? यहां यह भी देखिए कि घुसपैठिए कैसे आपके संसाधनों को आपसे चुरा लेते हैं, और इसी देश में उनके लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। 2016 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि फर्जी आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से 3.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शन हासिल किए हैं, जबकि 1.6 करोड़ लोगों का राशन कार्ड फर्जी निकला है। केरल की पूर्व सरकार ने बताया था कि उसने 2014 से 2021 के बीच 1,63,000 फर्जी आधार कार्ड को डेटाबेस से हटाया है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि उसने सही आधार कार्ड की जांच करके सरकार के 8,000 करोड़ रुपए बचाए। इनमें बहुत सारा पैसा ऐसा था जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पहचान पत्र वाले लोगों को जा रहा था। सोचिए, हमारे देश में एक तरफ यह कहा जाता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ इसी देश में सबसे ज्यादा फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज बनवाए जाते हैं। और यह घोटालेबाजी भी इस स्तर पर होती है कि पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, ये सारे दस्तावेज केवल पहचान बताने के लिए। हालांकि अगर आप सरकार के नियम कानून को देखेंगे तो उनमें कहीं भी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज अनिवार्य नहीं किया है और इसी का फायदा घुसपैठियों द्वारा उठाया जाता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या का कोई भी सटीक और आधिकारिक आंकड़ा नहीं। 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि हकीकत में घुसपैठिए और ज्यादा हो सकते हैं। दिसंबर 2017 में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्हें म्यांमार की सरकार अपना नागरिक नहीं मानती और ये कहती है कि ये सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से घुसपैठ करके म्यांमार में आए थे। अब पिछले कुछ सालों में जब इसी विवाद को लेकर म्यांमार में इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई तो ये पहले बांग्लादेश आ गए और जब बांग्लादेश में इन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिली तो ये पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके भारत में आ गए। और इनकी संख्या 40,000 से ज्यादा तो खुद सरकार मानती है, लेकिन हकीकत में इनकी संख्या भी लाखों में बताई जाती है। सोचने वाली बात यह है कि घुसपैठियों का मुद्दा हमारे देश में इतना बड़ा और गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोर्ट में केस लड़े जाते हैं, घुसपैठियों के मुद्दे को भी मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है और ये हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ एक प्रपंच है। लेकिन हम पूछते हैं कि जो घुसपैठिए देश के संसाधनों को खोखला कर सकते हैं, क्या उनके बचाव में ऐसी किसी भी तरह की राजनीति होनी चाहिए? आप बीजेपी के विरोध कीजिए, लेकिन इस विरोध के लिए घुसपैठियों के मुद्दे को ही बेबुनियाद बता दिया जाएगा। हकीकत में तो इस मुद्दे के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है और इसके कारण जो स्थिति बनती है उसे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ पाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त तस्वीरें और तकदीरें दोनों बड़ी तेजी से बदल रही हैं। नॉर्थ 24 परगना के जंगलों से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों और साउथ 24 परगना के मुहानों तक सीमा पर एक अजीब सी छटपटाहट और भारी हलचल है। बरसों से अवैध रूप से रह रहे लोगों की भारी भीड़ अचानक बॉर्डर पर उमड़ पड़ी है। जो कल तक छिपने के ठिकाने ढूंढ रहे थे वो आज किसी भी तरह सरहद पार भागने की फिराक में है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर सीमावर्ती गांवों से लेकर शहरों के रिहायशी इलाकों तक सुरक्षा बलों की तगड़ी धरपकड़ ने खलबली मचा दी है। जो लोग सालों से इस मुल्क में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे, जो झूठ की बुनियाद पर स्थानीय लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, अब उनके बहानों के मुखौटों की परतें उतरने लगी हैं। कोलकाता से सटे कस्बों और पश्चिम बंगाल के रिहायशी इलाकों में सालों से एक ऐसा शातिर सिंडिकेट फल फूल रहा था जहां अपनी असली पहचान को रफा दफा करना चंद मिनटों का खेल था। नॉर्थ 24 परगना का बसीरहाट सब डिवीजन और यहां का ये हाकिमपुर चेक पोस्ट इस वक्त यहां के हालात हैरान भी करते हैं और परेशान भी। सीमा से सटे इन इलाकों में अचानक इंसानी कदमों की आहट असाधारण रूप से बढ़ गई है। कटीले तारों के साए में पुरुषों और महिलाओं का हुजूम जमा है। ये वो लोग हैं जो अब तक बंगाल के अलग अलग कोनों में रच बस चुके थे, लेकिन अब कानून का फंदा कसता देख वापस भागने की कश्मकश में यहाँ सरेंडर जैसे हालात में खड़े हैं। सीमा पर मची इस खलबली ने स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। बीते कल ही सीमा पर डटी इस भीड़ के एक बड़े हिस्से को घेर कर जांच के लिए ले जाया गया, तो वहीं आज तड़के से ही दर्जनों लोग कड़ाके की धूप और अनिश्चितता के बीच वापस जाने के इंतजार में सीमा पर पलके बिछाए बैठे हैं।
2: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही ले चल जा रहे हैं। मेला चल रहा है, मतलब
3: कैसा? कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं। बांग्लादेश से आए थे।
2: कब आए थे?
3: हो गया 2-3 साल हो गया।
2: कैसे आए थे?
3: वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था यहाँ, हम लोग हावड़ा जिला।
2: हावड़ा जिला
3: जी।
2: क्या काम करते थे?
3: हम बाइक मैकेनिक है।
1: सरहद पर अगर भगदड़ है तो देश के अंदरूनी इलाकों में घुसपैठियों में डर का साया है। संदिग्धों को दबोचने का सिलसिला जारी है। साउथ 24 परगना के बरुईपुर और कैनिंग वेस्ट इलाकों से जब संदिग्धों को उठाया गया तो पूछताछ में चौंकाने वाले राज खुले। खुलासा हुआ कि ये लोग बिना फेंसिंग वाली नदी की सीमाओं का फायदा उठाकर एजेंट्स की उंगली थामकर जल मार्ग से भारत में दाखिल हुए थे।
4: পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে।
2: আইডি কার্ড মানে কি? আধার কার্ড
4: বা আধার কার্ড? হ্যাঁ,
5: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম।
2: হঠাৎ করে যাচ্ছেন?
5: হঠাৎ করে, এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে। আমাদের আমার কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
1: फिक्र की बात यह है कि घुसपैठ के फौरन बाद ये लोग स्थानीय सिंडिकेट के जरिए नकली भारतीय दस्तावेज तैयार करवाते और फिर देश के बड़े महानगरों की भीड़ में मजदूर या घरेलू सहायक बनकर ऐसे खो जाते थे कि इन्हें ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा हो जाता। ऐसा ही एक मुकम्मल भंडाफोड़ मुर्शिदाबाद के जलंगी में हुआ, जहां रिहायशी बस्तियों से कई संदिग्ध दबोचे गए। ये वो लोग हैं जो देश के दूसरे राज्यों से होते हुए अब वापस भागने की फिराक में यहां इकट्ठा हुए थे।
6: এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র নেই, তাহলে আমরা থাকবো কি করে? ওই রাস্তায় মালটাল কুড়িয়ে খেতাম। যখন ঢুকেছিলাম মানে দালাল দিয়ে ঢুকেছিলাম আর কি, তারা আমাদের কাছ থেকে 800-900 টাকা করে নিয়েছিল, নিয়ে পার করে দিয়েছিল। গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, শুধু এটাই না, গভর্নমেন্ট যে গভর্নমেন্টে আসুক তার প্রত্যেকের কথা বাংলাদেশ থাকবে না, তাহলে আমরা কেন আপনাদের আর বিরক্ত করব? আমাদের উচিত আমাদের জায়গায় আমাদের পৌঁছানো, আপনাদের বিরক্ত না করে। আমরা এখানে এসেছি 2 বছর।
1: দরাসল ইস পুরে মর্জ কি আসলি জড় হ্যায় নদী ওর ময়দানো কি খুলি সীমা, লেকিন আব ইস কমজোরি কো হমেশা কে লিয়ে দফন করনে কি তৈয়ারি হো চুকি হ্যায়। जिन इलाकों में अब तक कटीले तार नहीं थे, वहां युद्ध स्तर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार से लेकर मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज तक मौसम की बेरुखी और मुश्किल हालात के बावजूद कटीले तारों को गाड़ने का काम जारी है। सीमावर्ती गांवों में सीमेंट,

0: कैसे हो सकता है? सरल शब्दों में कहें तो आपके राज्य, शहर और इलाकों में कहां कहां बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपे हैं और इन्हें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और ये मिशन उस योजना के तहत चलाया जाएगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब वो घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करेंगे और इसके तहत सीमावर्ती इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और भारत के अलग अलग हिस्सों और राज्यों में घुसपैठियों की पहले पहचान की जाएगी, बाद में उन्हें या तो उनके देश भेज दिया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
1: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: घुसपैठियों से ही एक और मुद्दा जुड़ा है और वो है SIR का, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इसमें तीन बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करता है तो ये असंवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया संचालित करने का पूर्ण अधिकार है। चुनाव आयोग मतदाता सूची में वोटर्स का नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला केवल चुनावी उद्देश्य तक सीमित रहेगा। यानी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि घुसपैठिए भी भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो चुनाव आयोग ऐसे लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कह सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इसीलिए हटाए गए क्योंकि उनकी नागरिकता संदिग्ध थी, ऐसे सभी लोगों के नाम 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। अब यह तो रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन यहां उन नेताओं की बात करना भी जरूरी है जिन्होंने SIR को फ्रॉड बताया था। TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी ने SIR को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि यह पिछड़े, दलित और मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने की गहरी साजिश है। राहुल गांधी ने कहा था कि SIR वोट चोरी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग SIR नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा कर रहा है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR को फ्रॉड कहा था। अब ये वो बयान थे जिन्होंने देश के कई लोगों के मन में इस प्रक्रिया को लेकर संदेह और शक पैदा किया होगा। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को सही मान लिया है तो क्या ये नेता इस फैसले को सार्वजनिक मंच पर आकर स्वीकार करेंगे? और क्या अब ऐसा होगा जब किसी राज्य में वोटर लिस्ट का रिविजन होगा और वहां ये नहीं कहा जाएगा कि ये रिविजन बीजेपी को जिताने के लिए है? अब तक जिन राज्यों में वोटर लिस्ट को सुधारा गया है उनमें से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में बीजेपी जीती है, जबकि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलपति विजय की TVK पार्टी और केरलम में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कांग्रेस जीती वहां के SIR पर उसे कोई शक नहीं, लेकिन जिस बंगाल और असम में वो हारी वहां SIR पर खूब विवाद है और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यह राजनीतिक विवाद खत्म नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि क्या अगर कोई सरकार किसी जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दे तो इससे भारत का मुसलमान खुश होता है? और क्या

ये भी एक मुस्लिम तुष्टिकरण है। मुस्लिम तुष्टिकरण का मतलब होता है मुसलमानों को खुश करने या संतुष्ट करने के लिए विशेष रियायतें देना। और आज हमारे देश में घर घर इस अवधारणा से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन आज हम इस पर आपसे बात करने नहीं आए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड को जमीन देने से देश का मुसलमान खुश होता है? क्या उसे ये चीज सच में लुभाती है? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसी महीने केरलम में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। इसी के बाद वक्फ बोर्ड ने मुनम्बम की विवादित 404 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार के डिजिटल पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया। अब जब कोई जमीन इस पोर्टल पर दर्ज होती है तो उस जमीन पर वक्फ बोर्ड के कानूनी नियंत्रण का दावा मजबूत हो जाता है और वहां रहने वाले लोगों में यह चिंता उठने लगती है कि क्या इस जमीन को भी वक्फ बोर्ड उनसे छीन लेगा। इस मामले में भी मुनम्बम के लोगों को यही चिंता सता रही है। वो सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि केरलम में जैसे ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार का गठन हुआ, उसी के तुरंत बाद ये जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पर दर्ज क्यों कराई? ये भी तब हुआ जब मुख्यमंत्री वीडी सतीशन विपक्ष में रहते हुए ये कहते थे कि वो मुनम्बम के विवाद को 10 मिनट में सुलझा सकते हैं। इस पूरी घटना के बाद अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ही वक्फ बोर्ड को ऐसा करने से नहीं रोका? आज जब आप मुनम्बम की पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में एक नहीं बल्कि ऐसे कई मुनम्बम है जहां पीढ़ियों से रह रहे लोगों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया हुआ है और ये परिवार वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। मुनम्बम का ये इलाका एर्नाकुलम जिले में वाइपन द्वीप के उत्तरी हिस्से में है, जहां दो गांवों में कुल 604 परिवार रहते हैं। इनमें करीब 400 परिवार ईसाई धर्म के हैं और बाकी परिवार हिंदू धर्म के। अब ये सभी मछुआरों के परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इस जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा किया है। वर्ष 1900 से पहले भी इनके पूर्वज इसी जमीन पर रहते थे और तब इस जमीन का मालिकाना हक त्रावणकोर राजघराने के पास हुआ करता था। साल 1902 में पहली बार इस राजघराने ने इस जमीन को एक मुस्लिम कारोबारी को लीज पर दिया। उसका नाम था अब्दुल सत्तार मूसा सैत। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जमीन लीज पर दी गई थी, जिसे 1948 में अब्दुल सत्तार की मौत के बाद उनके दामाद मोहम्मद सिद्दीकी सैत ने अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया। यही नहीं, बाद में उन्होंने यह जमीन कोझिकोड के फारूक कॉलेज को सौंप दी। इसके लिए दावा किया जाता है कि एक वक्फ डीड कराई गई। वक्फ डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसके जरिए किसी संपत्ति को इस्लामी कानून के तहत हमेशा के लिए धार्मिक या सामाजिक कल्याण के कामों के लिए समर्पित करा दिया जाता है। और दावा है कि इस मामले में भी यही हुआ। तब हुआ जब इस जमीन पर रहने वाले लोगों से कोई बात ही नहीं की गई। अब जब कॉलेज प्रबंधन और इस जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच विवाद बढ़ने लगा तो दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर समझौता किया। इस समझौते के तहत कोझिकोड के फारूक कॉलेज ने यह जमीन उस वक्त के बाजार भाव पर इन परिवारों को बेच दी, यानी इन परिवारों ने यह जमीन अपनी जमा पूंजी देकर कॉलेज प्रबंधन से खरीदी। और इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने अपने दस्तावेजों में बताया था कि यह जमीन उसे गिफ्ट डीड में मिली। अब यहां से यह कहानी पूरी तरह साफ थी। हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि वक्फ बोर्ड जिस दस्तावेज को वक्फ डीड बताता है वो गिफ्ट डीड ही लगती है, जिससे वक्फ बोर्ड का दावा इस जमीन पर मजबूत नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसे मामले इतनी जल्दी कहां सुलझते हैं? उनके लिए तो वोट बैंक का एक अच्छा खासा मंच सजाकर तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है और यहां भी यही हुआ है। 2008 में V.S. अच्युतानंद के नेतृत्व वाली लेफ्ट सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया और इस आयोग ने ये जमीन वक्फ बोर्ड की बता दी। इसके बाद 69 साल बाद वक्फ बोर्ड ने अचानक इस जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया और केरलम के राजस्व विभाग से यह कहा कि वो इस जमीन पर रहने वाले लोगों से टैक्स न ले। अब इस फैसले से मुनम्बम के लोग बेहाल हो गए। वो न तो अपनी ही जमीन पर
बैंक से लोन ले सकते थे और न ही ये जमीन बेच सकते थे। उनसे उनका मालिकाना हक रातों रात छीन लिया गया। और यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जताई। कड़े शब्दों में यह पूछा कि उसने 69 साल बाद अचानक इस जमीन को वक्फ संपत्ति कैसे घोषित किया। हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्ति के वक्फ डीड वाले दावे पर भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन वक्फ बोर्ड पर इसका कभी कोई असर नहीं दिखा। और आज जब केरलम में सरकार बदली, तो सरकार बदलते ही वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को फिर से वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया और यह कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है। और यह भी तब हुआ जब यह मामला अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट का इस पर फैसला आना अभी बाकी है। पिछले हफ्ते जब मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों और मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया था, तब इस पर कई नेताओं ने आक्रोश दिखाया था। ये कहा था कि सरकार इस जमीन को इसीलिए खाली करा रही है क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करती है। इससे पहले जब दिल्ली में भी तुर्कमान गेट के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया था, तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी कहा था। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जब रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जे को हटा रहा था, तब भी उसे मामले में स्थानीय मुसलमानों का समर्थन किया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने खुद इस अवैध कब्जे के खिलाफ रेलवे की कार्रवाई को रोक दिया था। और सोचिए, ये सारे मामले वो थे जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था। आज हमारा सवाल यह है कि जब सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को बचाने के लिए इतनी आवाजें उठ सकती हैं, तो फिर मुनम्बम के जिस मामले में जमीन ही इन परिवारों ने खरीदी है, वहां कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का विरोध हो रहा है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, लेकिन जिस जमीन को सैकड़ों परिवारों ने खुद खरीदा और फिर भी इस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही? यहां इस सवाल को जवाब भी जरूर ढूंढना चाहिए कि जब कोई जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है तो इससे देश का मुसलमान खुश होता है। ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि वक्फ की जमीन इसीलिए बनाई गई थी ताकि मुसलमानों का इससे भला हो, लेकिन हमारे देश में कितने मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का लाभ मिला? माना जाता है कि वक्फ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से यह कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहते हैं, और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे। ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था, और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की थी। और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी यही था, वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी थी। लेकिन हम अपने देश के मुसलमानों से पूछते हैं कि आप में से कितने मुसलमानों की गरीबी वक्फ संपत्ति से दूर हुई? भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार आज पूरे देश में वक्फ बोर्ड 38 लाख एकड़ जमीन पर दावा करता है। यह जमीन 15,000 वर्ग किलोमीटर होती है, जिसमें दिल्ली जैसे 10 शहर समा सकते हैं। और यही नहीं, हमारी सेनाओं के पास इस देश में 18 लाख एकड़ जमीन है, जिसका मतलब यह होता है कि वक्फ के पास हमारी सेनाओं से भी 20 लाख एकड़ जमीन ज्यादा है। लेकिन सोचिए, इस जमीन का हमारे देश के मुसलमानों को क्या क्या लाभ मिला, और फिर भी क्यों यह माना जाता है कि वक्फ की संपत्ति से भारत के मुसलमान खुश होते हैं? आगे बढ़ते हैं और आपको पिछले साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ की तस्वीरें याद दिलाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। उस वक्त विशाल भीड़ की इन तस्वीरों को देखकर किसी ने यह कहा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, किसी ने यह कहा था कि कुंभ तो फालतू है, यह आस्था नहीं बल्कि एक इवेंट है, ऐसा कहा था। अब हमारे ही देश में महाकुंभ को लेकर इतना कुछ हुआ कि कई बार मन में यह सवाल आता है कि क्या लोगों की आस्था को राजनीति से परे और दूर नहीं रखा जा सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक धार्मिक आयोजन पर राजनीतिक छींटाकशी न हो? तो इसका जवाब आज मक्का से आया है। सऊदी अरब के मक्का में दुनिया भर से आए 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम श्रद्धालुओं ने हज यात्रा शुरू कर दी, और विशाल भीड़ की इन तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं कह रहा कि इसकी जरूरत क्या है और क्या इससे गरीबी दूर होगी।
काबा में हज की यात्रा के लिए जुटी लाखों लोगों की भीड़ बता रही है कि धार्मिक आयोजनों और लोगों की आस्था को भी राजनीति से परे और दूर रखा जा सकता है। और हम चाहेंगे कि मक्का में चल रही हज यात्रा से हमारे देश के नेता सबक लें और अगली बार अगर कुंभ जैसी किसी धार्मिक आयोजन का संचालन हो तो उसे राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखा जाए।

good.

0: अब आपको ये बताते हैं कि किसी भी खबर में और उसके नैरेटिव में कितना बड़ा अंतर होता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस हफ्ते ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट ने भारत के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। ताइवान स्टॉक मार्केट के टोटल वैल्यूएशन में भारत से आगे निकलकर पांचवें पायदान पर आ गया। अब ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज 4.95 trillion dollars का है, जबकि छठे पायदान पर भारत का स्टॉक एक्सचेंज 4.92 trillion dollars का है। आम भाषा में कहें तो ताइवान के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका कुल बाजार मूल्य भारत की लिस्टेड कंपनियों से ज्यादा है। और ये बात इसीलिए भी अहम है क्योंकि ताइवान क्षेत्रफल और आबादी के मामले में बहुत छोटा सा देश है। भारत आबादी के मामले में ताइवान से 64 गुना बड़ा है। भारत में 145 करोड़ लगभग रहते हैं और ताइवान में केवल 2 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। इसी तरह भारत क्षेत्रफल के मामले में ताइवान से 91 गुना बड़ा है और ताइवान का आकार हमारे केरलम राज्य से भी छोटा है। अब यह खबर बड़ी तो है और इस मामले में भारत से चूक कहां हुई इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका आधा अधूरा विश्लेषण कर रहे हैं और अपने नैरेटिव से इस खबर का असली मतलब बदल दे रहे हैं। यानी ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार ने भारत की इतनी बुरी हालत कर दी कि अब ताइवान भी आगे निकल रहा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे आंकड़े और तथ्य लेकर आए हैं जो शायद इन लोगों को असहज भी करेंगे और थोड़ा परेशान भी करेंगे। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी तब भारत और ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य लगभग बराबर था। 2014 में जब यूपीए सरकार का शासन खत्म हुआ तब भी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत का स्टॉक एक्सचेंज 1.5 ट्रिलियन डॉलर का था और ताइवान का 1.1 ट्रिलियन डॉलर का था। इसके बाद मोदी सरकार में यह अंतर तेजी से बढ़ा और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य ने ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक ग्राफ हम आपको दिखाते हैं जहां 2020 के कोविड काल के बाद हम ताइवान से बहुत आगे निकल गए थे, इतना आगे कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार में लिस्टेड कंपनियों का मूल्य कई गुना तेजी से बढ़ा और ताइवान काफी पीछे खिसक गया। लेकिन फिर आया साल 2025 जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और इस हफ्ते इसने भारत को पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ने से सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ी और सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ने से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स नई ऊंचाइयां छूने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में अकेले इस कंपनी की 42% हिस्सेदारी है। यानी अगर इस कंपनी के शेयर्स के भाव चढ़ेंगे तो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा और यहां यही हुआ। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट में ताइवान की मोनोपोली है। दुनिया की 72% सेमीकंडक्टर चिप्स यही कंपनी निर्यात करती है जिसकी ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज में लगभग आधी हिस्सेदारी है। अब आप खुद सोचिए अगर एआई के कारण सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ेगी और इससे लगभग आधी हिस्सेदारी रखने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स चढ़ेंगे तो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज आगे क्यों नहीं निकलेगा। पिछले 5 साल में अकेले इस कंपनी के शेयर्स में 290% का उछाल आया, पिछले 1 साल में 138% का उछाल आया और केवल इस साल 2026 में अब तक इस कंपनी के शेयर्स में 45% का उछाल आ चुका है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो फायदा ताइवान ने लिया वो फायदा भारत ने क्यों नहीं लिया, उन्हें भी कुछ जानकारी होनी चाहिए इस पूरे मामले में। ताइवान ने कोई रातों रात सेमीकंडक्टर चिप्स में अपनी मोनोपोली नहीं बनाई। ताइवान की जिस कंपनी के कारण उसका स्टॉक एक्सचेंज भारत से आगे निकला उसकी शुरुआत साल 1987 में हुई थी। ये वो दौर था जब हमारा देश और उस वक्त की सरकारें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। यूपीए सरकार में 2007 में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगाने का सुझाव आया जिस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसके बाद 2011 में यूपीए की सरकार ने इसके लिए कमिटी बनाई जिसे इस प्लांट के लिए दायर हुए आवेदनों में से कुछ को चुनना था। इसके 2 साल बाद 2 आवेदन चुने गए लेकिन जमीन पर कभी कोई सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट नहीं लगा। यह भी तब हुआ जब 2013 में $7 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स आयात कर रहे थे हम, और हमें तो ताइवान की तरह यहाँ प्लांट और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की यूपीएस सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। अब आज जब इन्हीं चिप्स के दम पर 1987 में कंपनी बनाने वाला ताइवान भारत के स्टॉक एक्सचेंज से आगे निकल गया, तो सब कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। इस देश में पहला सेमीकंडक्टर चिप्स का मिशन मोदी सरकार में दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। आज हमारे देश में विदेशी कंपनियों के निवेश और सरकार के सहयोग से 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स बन रहे हैं, इसीलिए भारत के स्टॉक एक्सचेंज का ताइवान से पिछड़ना गंभीर है। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हम पुरानी सरकारों में बाजार बने रह गए, और जहां ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 1987 में बना ली थी, वही हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला प्लांट लगने में ही कई सालों का इंतजार करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी एक शर्त से पाकिस्तान को धर्म संकट में डाल दिया है। अब हम इस बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा धर्म संकट है जिसको हटाने के लिए पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति, धार्मिक कट्टरता और पासपोर्ट सब बदलना होगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके भस्मासुर यानी उसके आतंकी गृह युद्ध शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में शांति का पैरोकार बन रहे पाकिस्तान ने खुद को ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ सूट बूट पहनकर अमेरिका और ईरान के नेताओं के साथ बातचीत के टेबल पर बैठते थे। पाकिस्तानियों को लगता था उनका देश कोई ऐसा महान देश है जो दुनिया में शांति लाने के प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह के नाम पर पाकिस्तान जैसे कुछ इस्लामिक देशों के आगे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की शर्त रख दी। इस शर्त के जरिए सभी मुस्लिम देशों को इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देनी होगी, दुश्मनी भुलानी होगी। इस शर्त से सबसे ज्यादा खलबली मची है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती, यह बात सोचना खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए भी नामुमकिन है। इस्लामिक कट्टरता से घिरा पाकिस्तान इसराइल से कितनी नफरत करता है यह उसके पासपोर्ट तक पर झलकता है। पाकिस्तान इसराइल को देश नहीं मानता है। पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी नफरत की निशानी को छापा हुआ है। पासपोर्ट पर लिखा है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के हर देश के लिए वैध है। इसका मतलब यह भी है कि इसराइल में पाकिस्तान का कोई दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास जैसी व्यवस्था भी नहीं है। बात सिर्फ पासपोर्ट की भी नहीं, पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी वो खुद को एक इस्लामिक देश के तौर पर घोषित करता है, और इस्लामिक देशों की यहूदी देश इसराइल से पुरानी दुश्मनी है। पाकिस्तान और इसराइल में दुश्मनी दो देशों में के खराब संबंधों की वजह से नहीं है, बल्कि यह धार्मिक भिन्नता की वजह से है। इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान खुद की छवि इस्लामिक हित चाहने वाले देश के तौर पर बनाता है, और इसी छवि को बनाए रखने के लिए वो फिलिस्तीन के हितों की बात करके इसराइल का विरोध करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी संगठन और कट्टरपंथी भी धार्मिक कारणों से इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, और पाकिस्तान सरकार उनसे भिड़ना नहीं चाहती। उनके दबाव में ही इसराइल से दुश्मनी पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की शर्त मानना पाकिस्तान सरकार के लिए धधकते ज्वालामुखी पर बैठने जैसा होगा। इसमें तबाह होने की संभावना 100% है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड की शर्त रखकर पाकिस्तान पर बड़ा दबाव बना दिया है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने या न होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के मंत्री इसमें शामिल न होने की बात अलग अलग मीडिया हाउसेस को बताते रहे। जैसे अक्टूबर 2025 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान के रुख के बारे में पूछा गया। उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात कही थी और इसे अपनी निजी राय बताया था। दरअसल उन्हें भी नहीं पता था कि अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, वो क्या फैसला लेंगे।
1: साहब जो है उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस एकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बने।
2: मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे एकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे, और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता?
1: हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से?
2: वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है, हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।
0: पाकिस्तान के लिए इब्राहिम अकॉर्ड वो जिन्न है जिसके निकलते ही तूफान खड़ा हो जाता है। पिछले साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से भी यही सवाल पूछा गया था। इशाक डार ने इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल न होने की बात कही थी और पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव न करने का दावा किया था।
3: हिस्टोरिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
4: नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी इज़राइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन एट कंट्रीज, ताकि हम वहां खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें।
0: मजेदार बात यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर किसी पाकिस्तानी की ओर से आधिकारिक स्टेटमेंट भी इस तरह से दिए जाते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान कहना क्या चाहता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की खबर उड़ी थी। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को एक देश और जेरूसलम को उसकी राजधानी बनते देखना चाहता है। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से हां या ना में कभी नहीं बताया कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इब्राहिम अकॉर्ड में वो शामिल होगा या नहीं होगा। इसीलिए जब भी अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए मुस्लिम देशों से इब्राहिम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या इसराइल को मान्यता देकर दुश्मनी भुलाने की अपील करता है तो सबसे पहले पाकिस्तान में बवाल मचता है। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी के लिए इतना।

0: शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रही।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ती
1: है। कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया, भैया
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपको शुभकामना दे, आपका पुण्य अक्षत रहे, हिंदुस्तान अक्षत रहे, बंगाल अक्षत रहे, आप जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा, यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आ पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
5: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी।
2: चल
3: अरे यार कौन निकाले
1: लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
6: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ। शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
8: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
9: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
10: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
9: झमेला चल रहा है मतलब क्या
10: सर? कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं।
9: आप रहने वाले कहाँ से हो?
10: हम लोग बंगाल का है।
9: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
10: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
9: कब आए थे?
10: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहाँ पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था।
11: हमें यहाँ इसलिए हमारे पे वस्त्र बना हुआ, वो लोग तो एक ना अनेक आगे तक सी।
12: आपना सामी?
11: सामी एक ना इससे 5 बच्चों आगे।
12: 5 बच्चों?
11: 5 बच्चों।
12: तो आपना सामी को था?
11: सामी एक ना आसे।
1: तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
9: कैसे आए थे?
10: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
9: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
10: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते है अब तुम अपना काम धाम करेगा।
9: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
10: नहीं,
9: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
10: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
9: जी। क्या काम करते थे?
10: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
3: আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে। আধার কার্ড? হ্যাঁ,
8: বললাম তো 8 বছর আগে 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে। আমাদের আমার কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে ওই বেনাপোল।
0: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही है।
13: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
14: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा जो साधारण लोगों का जनता और सिटीजन को नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
13: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
15: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पौथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
16: बांग्लादेश यहाँ पर ON 6 और एक दोनों कैंप चरघाट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ON 6-3 और दोनों तेसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बास्तोहारा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतरसाती है, वहाँ पर 93 शिविर है, वहाँ पर 52।
13: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
17: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन, BDO, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो OC है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
18: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, डिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
13: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: महाराष्ट्र में सोसाइटी में जहां बीजेपी नेता सोसाइटी में शेड बनाकर बंकरों और कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं और उसका विरोध जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, बकरे हटवा दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम नागरिकों का आरोप यह है कि बीएमसी से इजाजत मिलने के बावजूद बीजेपी के नेता जानबूझकर रोक लगवा रहे हैं।
13: मुंबई से सटे ठाणे का मीरा रोड, बकरीद से पहले तनाव इतना कि बकरे की कुर्बानी सोसाइटी के भीतर करने के विरोध में प्रदर्शनकारी सुअर ले आए तो पुलिस कर्मी को वो सुअर छुड़ाकर भागना पड़ा ताकि माहौल और खराब ना हो। एक जगह हालात सुधरे नहीं, दूसरी जगह तनावपूर्ण हो गए। मुंबई का गोरेगांव इलाका, 12 से ज्यादा बकरे कुर्बानी के लिए सोसाइटी में किनारे शेड बनाकर रखे गए तो बीजेपी पार्षद ने विरोध शुरू कर दिया।
19: बकरों की कुर्बानी हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे कि खुलेआम होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
13: इसके बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में बकरीद से पहले कुर्बानी पर तीसरा विवाद आया। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी देने का विरोध करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर हालत ये, बीजेपी के विधायक भड़काऊ बयान तक देने लगे।
20: अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर बकरी का जवाब सुअर से दिया जाए।
13: अगर कोई मुस्लिम नागरिक खुले में बकरे की कुर्बानी नियम विरुद्ध करता है तो जितना गलत है उससे कहीं ज्यादा गलत है एक चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा माहौल बिगाड़ने वाला बयान देना। सवाल है क्या वाकई महाराष्ट्र में नियम टूट रहा है या फिर केवल बकरीद के नाम पर सियासत बीजेपी के चंद नेता चमकाने लगे। आज तक संवाददाता विद्या गोरेगांव सोसाइटी पहुंचती है। यहां शेड चारों तरफ से ढककर कुछ बकरे सोसाइटी में रहने वाले एक विंग के 40 मुस्लिम परिवारों ने रखा, लेकिन क्या ये सब कुछ बिना इजाजत है? क्या ये गलत है जिसका विरोध बीजेपी की पार्षद करने लगी?
21: परमिशन पूरा लीगली जो हमारा फॉर्मेट है वो तरीके से हम अपना ये परमिशन ले लेते हैं, लेकिन इधर के कॉर्पोरेटर है प्रीति साटम करके जो हर बार हमारा ये परमिशन कैंसिल करवाती है। बीएमसी हमको परमिशन दे रही है, मतलब उसको हर फॉर्मेट पता है, हमारे पास जितने भी रूल्स रेगुलेशन हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे परमिशन नहीं होगा तो हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, हम लोगों को कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। पिछले बार भी हम यहाँ नहीं कर पाए थे, हम परेशान हुए थे, जाके हम लोग को परमिशन नहीं था इसलिए हम लोग को तीसरे दिन करना पड़ा।
19: वो शेड में खाना खाइए, कव्वाली गाइए, आप सभी बांधवों से मिलिए, लेकिन ये काम हम होने नहीं देंगे।
22: लेकिन पहले भी तो हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हो रहा होगा, तो इस साल समस्या क्यों ज्यादा हो रही है?
19: लास्ट ईयर भी इतने सालों से हो रहा है, वो हो गया, लेकिन लास्ट ईयर से हमने करने नहीं दिया और इस साल भी हम करने नहीं देंगे।
22: लेकिन वजह क्या है? क्या रेजिडेंट्स बाकी रेजिडेंट्स को क्या आपत्ति?
19: बाकी देखिए कैसे है कि धार्मिक भावना आप कीजिए ना त्योहार, लेकिन बाकी के लोगों को परेशान करके नहीं।
23: बकरे रखे थे उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए, मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं।
24: 27 साल से यहीं पे दी जाती थी, अभी इस साल मुश्किल है।
22: सर ऐसा क्या वजह हो गया कि
24: ये लोगों ने धमाल किया? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम जो कानून करेगा वही बोल।
22: परमिशन के बाद ही
24: था फिर भी कैंसिल किया, परमिशन हमारा था बकरे का काटने का, फिर भी कल शाम को कैंसिल कर दिया।
22: यहाँ पर जितने बकरे हैं वो निकाल लिए जाएंगे यहाँ से, हालांकि जो यहाँ के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं उनका यही कहना है कि वो उनको यही सही नहीं लगता, बहुत बरसों से तकरीबन 27 सालों से वो यहाँ पर कुर्बानी देते आए हैं।
13: इसी तरह घाटकोपर की सोसाइटी में एक शेड लगाकर बकरे की कुर्बानी मुस्लिम नागरिक देने की तैयारी बकरीद पर करने लगे, विरोध हुआ, पुलिस पहुंची, बीजेपी नेता किरीट सोमैया नारे लगाते आ गए।
0: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। संभल से लेकर काशी तक, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स कर रही है।
13: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
25: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
13: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
2: ये सामने चेतगंज से आए हैं।
13: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
4: जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है।
13: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके, खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
5: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
2: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
13: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
6: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
13: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
7: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
13: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
25: जितने हमारे धर्मस्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्व प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
13: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
26: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
13: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
27: तब से यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
0: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक आरोपी हों। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर्स का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
28: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार
1: जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है।
3: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
1: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
3: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
1: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा।
3: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
13: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुंचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
8: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है, जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
13: घटना इसी महीने की है, जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में तीन लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
1: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
13: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
1: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंट करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
13: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
9: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है। जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 52% तक उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग यानी कि घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी है और किसानों को भरोसा दिलाया है कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

0: माहिती आहे जागतिक संकट आहे. जागतिक संकटामध्ये सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब झाले असताना आणि जगामध्ये अनेक देशांनी पेट्रोल डिझेलची इमर्जन्सी घोषित केलेली आहे, काही ठिकाणी दोन दोन दिवस लॉकडाऊन आहे, अशाही परिस्थितीत आपल्या इथे पेट्रोल डिझेल आपण देण्याचा प्रयत्न करतो.
1: सीएम फडणवीस का ये आदेश तब आया जब महाराष्ट्र के आंकड़ों से पता चला कि पेट्रोल की बिक्री में 23% और डीजल की मांग में 52% का अप्रत्याशित उछाल आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी.
0: ती कमर्शियल कडे वळवली जाते आहे का याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीनं आज आम्ही आदेश दिलेले आहेत, कारण आपण समजू शकता 52% वाढ आणि त्याची आपूर्ती आपण करतो याचा अर्थ कुठेतरी याच्यामध्ये कोणीतरी साठेबाजी करताय आणि म्हणून ती साठेबाजी थांबवण्याचा प्रयत्न आमचा चाललेला आहे.
1: वही विपक्ष महायुती सरकार पर हमलावर है. वो कह रहा है कि सरकार सिर्फ आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है.
2: आज इकोनॉमिक क्राइसिस पेट्रोल डीजल का दिखाई है. आज उनका लड़ाई चल रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल पंप में नहीं मिल रहा है, वो निकल गई बात. डाइवर्जन टैक्टिक
3: दिल्ली में है.
2: अरे डाइवर्जन
3: को लेकर
2: कोई नहीं, डाइवर्जन टैक्टिक्स है. आज महाराष्ट्र में ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं. आप देख रहे हैं ना, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पूरी डाइवर्जन टैक्टिक्स है. महाराष्ट्र के हर ईमानदार आदमी ने इनको इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए, उनको फंसाया जा रहा है.
4: नीट वाले मामले पर
2: बिल्कुल, ये नीट का भी मामला फटफट डिसीजन ले रहे. आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगाई कितनी बढ़ी आज. अब घर जाके पूछिए आपकी माँ से, भाभी से, बीवी से, कितनी महंगाई बढ़ी है एक महीने के अंदर. क्यों उस पर कोई सरकार में कोई नहीं बोल रहा है.
1: इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने भी बीजेपी सरकार पर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बकरीद पर कुर्बानी के मुद्दे के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया.
5: ये अभी डीजल नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी कतार लगी है. पेट्रोल के और सारे पेट्रोल उत्पादन के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं. उसके साथ साथ देश की बेरोजगारी को लेकर तमाम किसानों की समस्या अभी अपने उरूज पे है. और ऐसे इसमें मूल मुद्दे जो है देश के, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये घिनौना पोलराइजेशन की काम और कोशिश कर रही है. झूठ बोलने की भी हद होती है. तो पेट्रोल पंप में जो लोग कतार लगा के खड़े हैं, लंबी लाइन जो लगी है, ये क्या नाटक है? या लोग धूप में शोक से वहां धूप में जा रहे हैं? तो बताते समय जो एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पद पे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए. और वो जिम्मेदारी के साथ उनका ना तो बर्ताव है, ना करनी है, ना कथनी है. और ऐसे इसमें हम जो टिप्पणी करते हैं वस्तु धारातल की जो जानकारी उसको लेकर, तो उसपे इतना ऐतराज करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं.
1: अब सवाल है कि क्या वाकई जमाखोर आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और क्या कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वाकई तेल का संकट है जिसे सरकार स्वीकारना नहीं चाहती.
6: ये तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सिर्फ जनता की जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहे, बल्कि इससे राज्य की राजनीति भी गर्मा रही है. जहां एक तरफ सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहां दूसरी तरफ विपक्ष इसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है. अब ये देखना जरूरी है कि इस राजनीतिक खींचतान में कतार में खड़े उस जनता को कब राहत मिल पाती है. कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक.
7: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.

0: से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको फोन को ईद की मुबारक कहने जाऊंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया
3: भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा चले,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान अच्छा चले, बंगाल अच्छा चले। आप जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी, इमाम को भी 3,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है, शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं, वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
9: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
9: कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ के हो?
9: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश के, बांग्लादेश से आए थे या यही क्यों वहाँ जा रहे
9: हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
9: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
9: वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
9: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम दम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
9: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
9: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: जी, क्या काम करते थे?
9: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिये बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
7: बांग्लादेश से गए थे, हमारा मैं आईडी कार्ड सभी आज से हमें इस जिला में खाने मैंने बंधु बांधव मैंने एक चाकर बंधु बांधवर साथ चाकर पाई ना एन देशे फिरते चाहिए आईडी कार्ड आज
10: बांग्लादेश
0: से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
11: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा जो साधारण लोगों का जनता और सिटीजन को नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
12: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
13: यहाँ पर ON6 और एक दोनों कैंप चरघाट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ON63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतोशाती है, वहाँ पर 53 शिविर है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
14: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
15: फिलहाल इसको जहां पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकलना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। संभल से लेकर काशी तक, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
16: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
1: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
17: ये सामने केतगंज से आए हैं।
1: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
18: जो ये अफवाहबाज है ये देश के तेजी नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई, ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके, खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
19: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
20: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
1: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
21: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की, वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
1: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
2: जनपद संबल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
1: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
4: जितने हमारे धर्म स्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
1: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
22: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
1: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
23: सबसे यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
0: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक आरोपी हों। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर्स का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है।
25: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
25: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
24: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा।
25: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
1: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
26: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है।
27: बीजेपी वाले जातवाद कर रहे हैं,
26: जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है। यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
1: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में 3 लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
3: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
1: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
3: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
1: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
5: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्ते बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं। मैं सबको फोन कॉल करके बोलती हूँ, ईद मुबारक कहने जाऊंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया,
3: भैया
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार सच रहे, हिंदुस्तान सच रहे, बंगाल सच रहे। आप जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी, इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है, शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं, वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
9: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
9: सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ के हो?
9: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
9: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
9: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
9: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
9: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम दम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
9: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
9: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: जी, क्या काम करते थे?
9: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिये बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
7: बांग्लादेश से हमारा आईडी आछे, আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে।
8: আইডি কার্ড মানে কি? আধার কার্ড?
7: আধার কার্ড, হ্যাঁ।
10: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম।
8: হঠাৎ
10: করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। আমার কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
0: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
11: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
12: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है, इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
13: यहाँ पर ON6 और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ON63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतरसाती है, वहाँ पर 93 शिविर है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
14: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
15: फिलहाल इसको जहां पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकलना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी है बच्चों का डॉक्टर, जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी, और जो दूसरा आरोपी है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब यह कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं?
16: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है, जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे, जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है, जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
17: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें, इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज शिरूरे जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए, उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में। और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं, उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं, उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं रसायन के, जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में, उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज शिरूरे का रोल, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
16: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरुरे जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था और तेजस हर्षद कुमार जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और बीसी में भेजा है, क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है, उसमें क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में इस ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
16: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की यूपी अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे?
17: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी मनीषा हवलदार, इन्हें इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज शिरुरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है, बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल डाला था, जिसे दोनों की मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा यह है कि जब आज आरोपियों को नाचते गाते देखा गया, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आम जनता का, आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है।
19: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में दो बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे, तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
20: बहुत बड़ा कोई या कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा का सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है, जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
19: दो साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में दो युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी, जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला।

0: गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे ये मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा।
1: किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
0: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का त्रिशा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्रिशा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो है। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है, जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है।

0: यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई। कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
1: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
2: किया, भैया
1: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा चलाए, हिंदुस्तान अच्छा चलाए, बंगाल अच्छा चलाए, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
0: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा, यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हज़ारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुँचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
0: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया, रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
3: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
4: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
0: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी।
2: यार कौन है,
0: लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
0: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते छिजे।
0: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
0: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकल कर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
9: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब
9: कैसा? कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ के हो?
9: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
9: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
9: हो गया 2-3 साल हो गया।
0: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहाँ पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
9: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
9: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
9: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
9: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: जी, क्या काम करते थे?
9: हम बाइक मैकेनिक है।
0: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
10: बांग्लादेश से हमारा मन आई डी
7: আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে। আধার কার্ড? হ্যাঁ,
10: বললাম তো 8 বছর আগে 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে। আমাদের আমার কাগজ ছিল না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
2: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही है।
0: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
11: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
12: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
13: यहाँ पर ON6 और दोनों कैंप चरघाट मिलन मंदिर स्कूल 83 है, ON63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड, ये पोतरसाती है, वहाँ पर 83 भी है, वहाँ पर 52।
0: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
14: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन, BDO, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो OC है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
15: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
0: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
2: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी है बच्चों का डॉक्टर जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी और जो दूसरा आरोपी है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब यह कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं?
16: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर हैं। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
17: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज शिरूरे जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए, उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में। और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं, उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं, उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं रसायन के, जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में, उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज शिरूरे का रोल, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
16: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरूरे जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था और तेजस हर्षद कुमार जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और पीसी में भेजा है क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है उसमें क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में इस ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
16: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की यूपी अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे?
17: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी मनीषा हवलदार, इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज शिरूरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है, बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
2: पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल डाला था, जिसे दोनों की मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा यह है कि जब आज आरोपियों को नाचते गाते देखा गया, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आम जनता का, आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है।
19: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में 2 बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे, तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
20: बहुत बड़ा कोई या कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा का सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है, जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
19: 2 साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में 2 युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी,
0: जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे यह मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा।
20: किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
0: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का त्रिशा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्रिशा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी, व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई। कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया
3: भैया, आया भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कुछ दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते छिजे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
9: इधर बहुत झमेला चल रहा है, इसलिए चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
9: सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ से हो?
9: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे?
9: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
9: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
9: हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
9: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते आप तुम अपना काम धाम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
9: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
9: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: जी, क्या काम करते थे?
9: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
7: बांग्लादेश से हमारे मैं आई डी कार्ड सभी आते हमें मैंने बंधु बान्धव मैंने एक चाकर बंधु बान्धवर साथ चाकरी पाई ना एन देशे फिरते आईडी कार्ड आज
0: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
10: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
11: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
12: यहाँ पर ऑन सिक्स और दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ऑन 63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतोशाती है, वहाँ पर 93 है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
13: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
14: फिलहाल इसको जहां पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, डिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी है बच्चों का डॉक्टर, जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी, और जो दूसरा आरोपी है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब यह कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं?
15: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है, जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे, जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है, जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
16: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें, इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि मनोज शिरूरे, डॉक्टर मनोज शिरूरे, जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए, उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में। और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं, उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं, उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं रसायन के, जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में, उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज शिरूरे का रोल, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
15: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
17: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरुरे जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था और तेजस हर्षद कुमार जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और पीसी में भेजा है, क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है, उसमें क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में इस ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
15: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की युवती अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे।
16: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी मनीषा हवलदार, इन्हें इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज शिरुरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है, बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार पोर्स कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल डाला था, जिसे दोनों की मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा यह है कि जब आज आरोपियों को नाचते गाते देखा गया, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आम जनता का, आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है।
18: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा किसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में दो बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
19: बहुत बड़ा कोई या कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा का सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है, जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
18: दो साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में दो युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था जिससे ये मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद

0: के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए, एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
1: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का तुषार शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। तुषार शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रही।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं। मैं सबको बोल को ईद मुबारक कहना चाहूंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड

0: जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा। ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
0: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
1: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
2: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
0: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर यह है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
4: जो भी
3: बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
4: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
0: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया। शुभेंदु अधिकारी नौ मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते छी जे।
0: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
6: दामाद है
0: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
7: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
8: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
7: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
8: सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं।
7: आप रहने वाले कहाँ से हो?
8: हम लोग बंगाल का है।
7: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
8: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
7: कब आए थे?
8: हो गया 2-3 साल हो गया।
0: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहाँ पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था।
9: हमें यहाँ इसलिए आपके वश में ना हुआ, वो लोग तो यहाँ अनेक आगे तक सी।
10: आपना स्वामी?
9: स्वामी यहाँ इससे 5 बच्चों आगे।
10: 5 बच्चों?
9: 5 बच्चों।
10: तो आपना स्वामी कौन है?
9: स्वामी यहाँ आते
11: हैं। हमें
0: तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
7: कैसे आए थे?
8: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
7: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
8: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं आप तुम अपना काम धाम करेगा।
7: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
8: नहीं,
7: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
8: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
7: हावड़ा जिला
8: जी।
7: क्या काम करते थे?
8: हम बाइक मैकेनिक है।
0: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
6: আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে। আধার কার্ড? হ্যাঁ,
12: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে। আমাদের আমার কাগজ ছিল না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
3: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रहे हैं।
0: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
13: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
14: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
15: यहाँ पर ऑन सिक्स और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ऑन 63 और दोनों तेसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतरसाती है, वहाँ पर 53 शिविर है, वहाँ पर 52।
0: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
16: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन, बीडीओ, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
17: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
0: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
3: नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी है बच्चों का डॉक्टर जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी और जो दूसरा आरोपी है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब यह है कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं।
18: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
19: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि मनोज शिरूरे डॉक्टर मनोज शिरूरे जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनका अस्पताल है वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए। उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं रसायन के जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज शिरूरे का रोल इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
18: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
20: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरूरे जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था और तेजस हर्षद कुमार जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और बीसी में भेजा है क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है उसमें क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में इस ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
18: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की यूपी अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे।
19: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी मनीषा हवलदार, इन्हें इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज शिरूरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है। बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
3: पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल डाला था, जिसे दोनों की मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा यह है कि जब आज आरोपियों को नाचते गाते देखा गया, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आम जनता का, आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है।
1: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में 2 बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे, तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
21: बहुत बड़ा कोई या कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा का सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
1: 2 साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में 2 युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी।
0: जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे यह मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा।
21: किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
0: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का त्रिशा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्रिशा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो है। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली, विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको फोन को ईद मुबारक कहना चाहूंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया। भैया आया भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे। आप जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी, इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं, वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही चल जा रहे हैं।
9: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
8: सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं।
9: आप रहने वाले कहाँ के हो?
8: हम लोग बंगाल का है।
9: बंगाल के, तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
8: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
9: कब आए थे?
8: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
9: कैसे आए थे?
8: ओई, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
9: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
8: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा।
9: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
8: नहीं,
9: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
8: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
9: जी, क्या काम करते थे?
8: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
7: बांग्लादेश से हमारा मैं आईडी कार्ड सभी आज हमें एखे मैंने बंधु बान्धवर मैंने एक चाकर बंधु बान्धवर साथ चाकरी पाई ना एन देशे फिरते आईडी कार्ड आज
0: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
10: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
11: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
12: यहाँ पर ON6 और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल 83 है ON63 और दोनों तेसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतोशाती है, वहाँ पर 83 शिविर है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहां पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
13: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
14: फिलहाल इसको जहां पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। संभल से लेकर काशी तक, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
15: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
1: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
16: ये सामने इसके चेतगन से आए हैं।
1: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
17: जो ये अफवाहबाज है ये देश के तेजी नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई, ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके। खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
18: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
19: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
1: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
20: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
1: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी, ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
2: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
1: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
21: जितने हमारे धर्मस्थल हैं इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
1: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
22: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
1: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
23: सबसे यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
0: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक आरोपी हों। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर्स का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है।
25: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
25: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
24: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है।
25: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
1: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
26: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है, बीजेपी वाले जातवाद कर रहे हैं, जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
1: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में तीन लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
3: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
1: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
3: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
1: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक

0: जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्ते बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं। मैं सबको
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया
3: भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपको शुभकामना दे,
1: वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे, हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार

0: ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा, यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आ पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
0: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
2: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
4: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ। शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
6: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
7: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
8: इधर बहुत झमेला चल रहा है, इसलिए चल जा रहे हैं।
7: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
8: कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
7: आप रहने वाले कहाँ से हो?
8: हम लोग बंगाल का है।
7: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे?
8: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
7: कब आए थे?
8: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहाँ पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था।
9: हमें यहाँ इस्लाम आदमी वर्ष बना हुआ, वो लोग तो एक ना अनेक आगे तक सीखो।
10: आपना स्वामी?
9: स्वामी एक ना ऐसे 5 बच्चों आगे।
10: 5 बच्चों?
9: 5 बच्चों।
10: तो आपना स्वामी कौन है?
9: स्वामी एक ना आसे।
11: हमें ऐसे अलग से
1: तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
7: कैसे आए थे?
8: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
7: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
8: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते है अब तुम अपना काम धाम करेगा।
7: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
8: नहीं,
7: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
8: यहाँ हम लोग हावड़ा, हावड़ा जिला।
7: हावड़ा जिला
8: जी।
7: क्या काम करते थे?
8: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
12: আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি, আমার আইডি কার্ড আছে।
7: আইডি কার্ড মানে কি? আধার কার্ড?
12: আধার কার্ড, হ্যাঁ।
13: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম।
7: হঠাৎ
13: করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। আমার কাগজ ছিল না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
3: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही है।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
14: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
6: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेतुलिया में हैं, जहां पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर। ये भवन, उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
11: बांग्लादेश यहाँ पर ON 6 और एक दोनों कैंप चरघाट मिलन मंदिर स्कूल 83 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतर साथी है, वहाँ पर 83 है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
15: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन BDO लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो OC है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
16: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे BSF को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
3: नीट पेपर लीक केस में CBI एक्शन में है। CBI ने महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी है बच्चों का डॉक्टर, जिसने केमिस्ट्री के सवाल लीक करने में मदद की थी, और जो दूसरा आरोपी है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। सवाल अब ये कि महाराष्ट्र से ही पेपर लीक के सबसे ज्यादा आरोपी क्यों पकड़े जा रहे हैं?
17: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज CBI ने नीट लीक कांड में दो और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लातूर का डॉक्टर है, जबकि दूसरा पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर। आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के डॉक्टर हैं। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर PV कुलकर्णी के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर में आने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने का इंतजाम किया और उसमें मदद की। उन्होंने अपने अस्पताल में कुलकर्णी के साथ मिलकर तीन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग सेशन भी रखे थे। इन उम्मीदवारों में आरोपी कोचिंग क्लास डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे के साथ दो और उम्मीदवार शामिल थे, जो शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस शाह है, जो पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का लेक्चरर है। उसने एनटीए की एक दूसरी आरोपी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मनीषा हवलदार की मदद से नीट परीक्षा में आने वाले फिजिक्स के सवाल हासिल किए और इसके लिए हवलदार को 20,000 रुपए दिए। उसने सवालों को एक नोटबुक में लिख लिया था और उसकी तस्वीरें भी हवलदार को भेजी थी।
18: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें, इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि मनोज शिरूरे, डॉक्टर मनोज शिरूरे, जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए, उनका एक स्पेशल कोचिंग सेशन रखवाया अपने अस्पताल में। और उस सेशन में जो आरोपी कोचिंग क्लास मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं, उनका बेटा और दो अन्य परीक्षार्थी शामिल हुए। जो दो अन्य परीक्षार्थी हैं वो डॉक्टर मनोज शिरूरे के ही रिश्तेदार हैं, उनका भतीजा और भतीजी हैं। वो दोनों, इन तीनों बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन पीवी कुलकर्णी द्वारा जो सवाल आने वाले हैं, रसायन के जो सवाल आने वाले थे नीट के पेपर में, उसके लिए स्पेशल सेशन रखवाया अपने अस्पताल में लातूर में। ये था डॉक्टर मनोज शिरूरे का रोल, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया।
17: दिल्ली में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
19: नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को सीबीआई हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनमें से प्रहलाद वी कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर यानी एम सर को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं मनोज शिरूरे, जिन्हें लातूर से गिरफ्तार किया गया था, और तेजस हर्षद कुमार, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 10 जून तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। ये सारे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें दिल्ली लाया गया। और दिल्ली में यहाँ की विशेष अदालत ने इस मामले में इन्हें जेसी और बीसी में भेजा है, क्योंकि अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 49 जगह छापे मारे जा चुके हैं और लगातार गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ये सीबीआई कस्टडी में इन लोगों को भेजा गया है, उसमें क्या खुलासे होते हैं, इसका इंतजार सभी लोगों को है। यानी ऐसा 2 साल पहले 2024 में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था, और उसके बाद 2 साल बाद भी ना तो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कोई सबक लिया और ना इसको रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए।
17: इससे पहले 20 मई को सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया था। इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई है और तीनों का नाम मनीषा ही है। विपक्ष नीट परीक्षा लीक होने से छात्रों में उपजी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की यूपी अघाड़ी ने पेपर लीक केस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर एनटीए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गई है। 21 जून को नीट की परीक्षा 550 शहरों में 5,400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं पर भी हमारा फोकस है। सवाल है कि नीट पेपर लीक केस से गिरफ्तार 13 आरोपियों में से ज्यादा आरोपी महाराष्ट्र से ही क्यों निकले, और क्या अभी और आरोपी पुणे या लातूर से गिरफ्तार होंगे।
18: तेजस शाह नामक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लेक्चरर हैं डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी पुणे के। इन्होंने आरोपी एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिन्होंने फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर सेट करने में एनटीए की मदद की थी, मनीषा हवलदार, इनसे मिलकर जो फिजिक्स के आने वाले सवाल थे, भौतिक शास्त्र के आने वाले सवाल थे, उन सवालों को लिया, एक कॉपी में लिखा, उसकी कॉपी की तस्वीर उन्होंने मनीषा हवलदार को भेजी, और इन सवालों के लिए तेजस शाह ने मनीषा हवलदार को 20,000 रुपए दिए। इसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और इसीलिए तेजस शाह को भी अरेस्ट किया गया है। तेजस शाह और मनोज शिरूरे दोनों को ही दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई ने कुल 13 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे देश में इस पेपर लीक नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीबीआई काम कर रही है। बहुत जगह पर सर्चेस भी हुए, बहुत जगह पर छानबीन हुई है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी हुई है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगेकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
3: पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल डाला था, जिसे दोनों की मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा यह है कि जब आज आरोपियों को नाचते गाते देखा गया, जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो आम जनता का, आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा है।
1: इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये माँ आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में 2 बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे, तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो।
20: बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखोल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखोल उड़ा रहा है। ये जनता का माखोल जो कानून, आम जनता का माखोल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुबिनाइल है, जुबिनाइल है तो कुछ भी कर सकता है।
1: 2 साल पहले इसी महीने की बात है, जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में 2 युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी, जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे यह मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा।
20: किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए, एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए।
1: चाहे पुणे का ये मामला या फिर भोपाल का त्रिशा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्रिशा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी। व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको फोन को ईद मुबारक कहने जाऊंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया,
3: भैया
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार सच रहे, हिंदुस्तान सच रहे, बंगाल सच रहे, और जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आ पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
4: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
3: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी, इमाम को भी 3,000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है, शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं, वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
5: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
7: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
8: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
9: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
9: कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ के हो?
9: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही क्यों वहाँ जा रहे
9: हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
9: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं, डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहां पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
9: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
9: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं आप तुम अपना काम दम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
9: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
9: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: जी, क्या काम करते थे?
9: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिये बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
7: बांग्लादेश से हमारा मान आई डी कार्ड सभी आज से मैंने बंधु बान्धव मैंने एक चाकर बंधु बान्धवर साथ चाकर पाई ना एन देशे फिरते आईडी कार्ड आज
0: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
1: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
10: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा जो साधारण लोगों का जनता और सिटीजन को नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
11: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
12: यहाँ पर ON6 और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ON63 और दोनों तेसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत मेदिया बास्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतरसाती है, वहाँ पर तिरान शिविर है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
13: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
14: फिलहाल इसको जहां पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकलना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
0: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। संभल से लेकर काशी तक, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
15: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
1: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
16: ये सामने केलगंज से आए हैं।
1: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
17: जो ये अफवाहबाज है, ये देश के तेजी नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई, ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके। खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
18: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
19: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
1: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
20: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की, वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
1: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
2: जनपद संबल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
1: इसी तरह मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
21: जितने हमारे धर्म स्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
1: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
22: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद PAC और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
1: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
23: सबसे यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
0: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक आरोपी हों। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर्स का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है।
25: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने PDA को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
25: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
24: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा।
25: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
1: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
26: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है।
27: बीजेपी वाले जातवाद कर रहे हैं,
26: जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है।
27: एनकाउंटर
26: किया है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
1: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में 3 लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
24: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
1: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
24: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
1: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
3: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्ते बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धरमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा रहा संकल्प। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था धागी। और तेहरान वॉशिंगटन में समझौते पर ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। ट्रंप हटाएंगे हॉर्मुज से सेना। ईरान खत्म करेगा नाकेबंदी, व्हाइट हाउस ने मनगढ़ंत बताया। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रही।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज
1: करके कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने
3: भैया
2: आपको